सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 जुलाई 2026। सुबह के 7:02 हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन आप सभी के लिए शुभता, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो।

सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ।

पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ रही थी। ये दृश्य देखकर महात्मा ने कहा, बच्ची तू इतना भारी बोझ गोद में लिए कैसे चढ़ पाएगी? लड़की ने तुरंत उत्तर दिया, बाबा ये बोझ नहीं है, ये तो मेरा भाई है। वस्तुतः जहां प्रेम और भावनाएं होती हैं, वहां कोई भी काम भारी नहीं लगता। यदि भावनाएं ना हो तो जीवन ही भारी लगने लगे। सच्ची पारिवारिकता वही है जहां हृदय से उद्भूत भावनिष्ठा ही सर्वोपरि मानी जाती है।

रेडियो आजाद हिंद सुनते रहे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। से कुछ देर में सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि। भक्ति गीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम भक्ति संगीत में 7:20 से। बालकृष्ण भट्ट के पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग सुनेगा 8:00 से। आठ बजकर 30 मिनट पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम बाल सभा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे हर टोका टोक की बुरी नहीं होती, वाचक स्वर होगा मनीषा चतुर्वेदी का। प्रकृति और मनोविज्ञान पर केंद्रित कार्यक्रम प्रकृति की पुकार सुनेगा 9:00 से।

मंगल पांडे पर केंद्रित कार्यक्रम याद करो कुर्बानी सुनेगा 10:30 से। नगर से जुड़ी कुछ खास खबरों पर केंद्रित परिक्रमा आपको सुनवाएंगे 11 बजे और उसके बाद सुनेगा मेरी कृष्णा की रेडियो रिपोर्ट। काव्य गुंजन में आज सुनेगा रश्मि रथी का 7वां भाग 11:30 से।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 167 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणी, देवता हैं इंद्र और मरुद्गण, छंद है त्रिष्टुप।
1: प्रातम विविकिम वकम्यो य एषां मरुतां महिमा सत्यो अस्ति सचा यदीं वृषमणा अहंयुः स्थिरा चिज्जिनीर वहते सुभागाः। इन वीर मरुद्गणों की स्तुत्य महिमा का हम यथावत वर्णन करते हैं। इनकी महिमा के अनुरूप सुस्थिर भूमि भी इनकी अनुगामिनी बनकर इन सामर्थ्यवानों से प्रेम करती हुई, स्वाभिमान की रक्षा करती हुई, सौभाग्यशाली प्रज्ञा का पोषण करती है। पांति मित्रा वरुणा ववद्या चयत ईमर यमो अप्रशस्तान उत च्यवन्ते अच्युता ध्रुवाणि वावृध ईम मरुतो दातिवारह। मित्र वरुण और अर्यमा निंदनीय दोष विकारों एवं निंदनीय पदार्थों के उपयोग से आपको बचाते हैं। हे मरुतो, आप अडिग अपराजेयों को भी पदों से च्युत कर देते हैं। आपका दिया हुआ अनुदान निरंतर बढ़ता रहता है। नहीं नु वो मरुतो अंत्यस्मे आराता चिच्छवसो अंतमापुहु ते धृष्णुना शवसा शूशुवान सोर्णो न द्वेषो धृषता परिष्टुहु। हे वीर मरुतो, आपकी सामर्थ्य अनंत है, जिसका ज्ञान दूर या नजदीक से किसी भी प्रकार कर पाना असंभव है। आपकी शक्ति शत्रु सेना को जल के समान घेर कर विनष्ट कर डालती है। वयमद्येन्द्रस्य प्रेष्ठा वयम श्वो वोचे महि समर्ये वयम पुरा महि च नो अनुद्यून तन्न रिभुक्षा नरा मनुष्यात्। आज हम इंद्रदेव के विशेष कृपा पात्र बने हैं, उसी प्रकार कल अर्थात भविष्य में भी उनके कृपा पात्र बने रहें। हम इंद्रदेव की प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, जिससे हम सदैव विजयश्री का वरण करते हुए महानता को प्राप्त हों। इंद्रदेव की कृपा हम सभी के लिए अनुकूल हो। एष वह स्तोमो मरुत इयम् गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः एषा यासीष्ट तन्वे वयाम् विद्यामेषम् व्रजनम् जीरदानुम्। हे मरुद्गण, ये स्तोत्र आपके निमित्त उच्चरित किए जा रहे हैं, अतएव आनंद प्रद तथा सम्माननीय आप स्तोता के शारीरिक पोषण के निमित्त आए और हमें भी अन्न बल और विजयश्री दिलाने वाला ऐश्वर्य प्रदान करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 167 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना सूक्त 167 का वाचन। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई।
1: रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: झूलोट के घर ना

श्रोताओं, आज के दिन की शुरुआत सत्य और अहिंसा के साथ कीजिए। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति संगीत।

सभी के लिए आज का दिन शुभता, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो। आइए सुनते हैं ये श्लोक।

जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं कि हमने कितना पाया, बल्कि यह है कि हमारे कारण कितने लोगों के जीवन में आशा, विश्वास और मुस्कान आई।

किसी को भी न सताना और न दुख देना। किसी भी प्राणी को तन मन कर्म वचन और वाणी से कोई भी नुकसान न पहुंचाना। मन में किसी का अहित न सोचना। किसी को कटु वाणी के द्वारा नुकसान न पहुंचाना। कर्म से भी किसी भी अवस्था में किसी भी प्राणी की हत्या न करना ही अहिंसा है।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है बाल कृष्ण भट्ट पर।

नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सन 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम, विद्रोह की हुंकार से अंग्रेजी राज की नींव हिल उठी थी और इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की पुरजोर कोशिश। इसी कालखंड में 13 वर्ष का एक बालक अंग्रेजों की बर्बरता को अपनी आंखों से देख रहा था। प्रयागराज के चौक इलाके में अनगिनत क्रांतिकारियों को सरेआम पेड़ से लटका दिया गया था। उस बच्चे ने अपनी आंखों से कितने ही देशभक्तों के शवों को पेड़ से लटकते हुए देखा और यहीं से उसके मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत का भाव पैदा हो गया। आने वाले समय में ये बालक एक सफल पत्रकार, निबंधकार, उपन्यासकार और नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिन्हें हम पंडित बालकृष्ण भट्ट के नाम से पहचानते हैं। वो बेशक राजनीति में नहीं आए, लेकिन इस घटना ने उनके एक दृढ़ चरित्र का निर्माण किया। वो आजीवन गलत के मुखर विरोधी रहे, पूरी बेबाकी से गलत को गलत और सही को सही कहा करते। अपने इसी तेवर और साहस के साथ उन्होंने आजीवन पत्रकारिता और साहित्य सेवा की। पंडित बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के उन्नायक रचनाकारों में से एक हैं। वो भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में स्थान रखते हैं। इस तरह पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार और हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा, नया रंग रूप और मानस प्रदान किया। इस युगांतरकारी कार्य में वो अकेले नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम घन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। लेकिन ये एक स्थापित मान्यता है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और लंबे समय तक संपूर्ण निष्ठा के साथ साहित्य सेवा करने वाले एक समर्पित साहित्यकार थे। सन 1844 में प्रयागराज में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित बेनी प्रसाद भट्ट था और माताजी का नाम था पार्वती देवी। उनके पिता एक व्यापारी थे, जबकि माता एक सुसंस्कृत विदुषी महिला थीं, जिनके कारण बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन के प्रति विशेष रुचि और लालसा जागी। बचपन से ही उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रारंभ में घर पर ही उन्हें संस्कृत की शिक्षा प्रदान की गई और फिर प्रयाग के मिशन स्कूल से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वो अत्यंत मेधावी छात्र थे। शिक्षा के साथ ही उन्होंने संस्कृत, व्याकरण और साहित्य का भी गहन अध्ययन किया। संस्कृत के साथ ही उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य भी किया। आगे चलकर दूसरे स्कूलों में उन्होंने संस्कृत का अध्यापन कार्य भी आरंभ किया था, लेकिन अपने सिद्धांतों, अपनी विचारधारा और दृढ़ स्वभाव के कारण नौकरी उन्हें कभी रास नहीं आई और उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया तथा नई राह की तलाश में चल पड़े।

पंडित बालकृष्ण भट्ट ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इसी के चलते उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। चूंकि उनका विवाह हो गया था, इसलिए अब उन्हें अपनी बेकारी खलने लगी थी। तब वो व्यापार करने के लिए कलकत्ता चले गए, लेकिन उनका मन व्यापार में नहीं रमा और वो वापस लौट आए। साहित्य ही वो विषय था जिसमें उनका मन लगता था। वो संस्कृत साहित्य के अध्ययन और हिंदी साहित्य की सेवा में जुट गए। पिता की मृत्यु के पश्चात ये अपेक्षा उनसे की गई कि वो अपना पैतृक व्यवसाय संभालेंगे। इस व्यवसाय के कारण भी उन्हें गृह कलह का सामना करना पड़ा। उन्होंने गृह त्याग दिया। घोर आर्थिक संकट का सामना करने के बावजूद उन्होंने निरंतर साहित्य सेवा की। अध्यापन कार्य के साथ ही भारतेंदु जी से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदी साहित्य सेवा का व्रत ले लिया था। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला, जिसका संपादन वो स्वयं करते थे। मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप का पहला अंक छात्रों से मिले 5-5 रुपए के चंदे से सन 1877 में प्रकाशित हुआ। इसके एक अंक की कीमत 4 आने थी। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप द्वारा निरंतर 32 वर्षों तक हिंदी की सेवा की। उनकी कलम ब्रिटिश हुकूमत को भयभीत किया करती थी। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध हिंदी प्रदीप पत्र लोगों के भीतर राष्ट्रीयता का भाव भरा करता था। दरअसल उन्होंने हिंदी के प्रचार के लिए प्रयाग में हिंदी वर्धिनी सभा की स्थापना भी की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा की ओर से ही उन्होंने हिंदी प्रदीप पत्र निकालना प्रारंभ किया था। ये एक साहित्यिक पत्र था जिसमें हास्य व्यंग्य और गंभीर दोनों प्रकार की साहित्यिक रचनाओं का प्रकाशन होता था। हिंदी प्रदीप के माध्यम से भट्ट जी ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के साथ ही राष्ट्रीय चेतना को बलवती बनाने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक पद्य रचना तैयार की जो हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पर निरंतर छपती रही। सरकारी नीतियों, ग्राहकों और आर्थिक तंगी से उत्पन्न अनेक समस्याओं का सामना करते हुए पंडित बालकृष्ण भट्ट ने 32 वर्षों तक हिंदी प्रदीप का संपादन प्रकाशन जारी रखा। हिंदी प्रदीप के आरंभिक अंक जहां भारतेंदु युग से पूर्णतः प्रभावित हैं, वहीं द्विवेदी युग में प्रकाशित हिंदी प्रदीप के अंकों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा निर्देशित साहित्य विधाओं की झलक दिखाई देती है। इस तरह पंडित बालकृष्ण भट्ट ने आधुनिक हिंदी साहित्य के दो महत्वपूर्ण युगों, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में अपनी उत्कृष्ट साहित्यिक पत्रकारिता के माध्यम से अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करा के एक अलग पहचान स्थापित की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1906 में सरस्वती पत्रिका के अगस्त के अंक में हिंदी प्रदीप पर लेख भी लिखा था, जिसमें पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा स्थापित हिंदी वर्धिनी सभा और हिंदी प्रदीप निकालने का उल्लेख किया गया था। सरस्वती के पूर्व संपादक पंडित देवीदत्त शुक्ल ने भी लिखा था कि पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी के अत्यंत स्वाभिमानी लेखक थे। स्वदेश और अपनी संस्कृति से उन्हें अत्यधिक प्रेम था। सच तो ये है कि हिंदी साहित्य के लिए व्यक्तिगत रूप से त्याग करने वाले पंडित बालकृष्ण भट्ट जैसे साहित्यकार और पत्रकार हिंदी साहित्य जगत में कठिनाई से ही मिलेंगे। उन्होंने कलम के माध्यम से मां भारती की अद्भुत सेवा की।

हिंदी प्रदीप में छपने वाले तीखे लेखों से ब्रिटिश सत्ता बेचैन थी। सन 1909 में हिंदी प्रदीप के अप्रैल के अंक में माधव शुक्ल की कविता बम क्या है छपी थी। इससे नाराज होकर ब्रिटिश सरकार ने 3,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। पंडित बालकृष्ण भट्ट के पास भोजन तक के पैसे नहीं थे, वो जुर्माना क्या भरते। परिणाम स्वरूप हिंदी प्रदीप की लौ सदा के लिए बुझ गई। लेकिन 32 वर्षों की अपनी सुदीर्घ यात्रा में हिंदी प्रदीप के साहित्यिक लेखों ने जो उजाला पैदा किया, उससे हिंदी साहित्य जगत आज भी आलोकित है। पंडित बालकृष्ण भट्ट एक सजग पत्रकार और संपादक होने के साथ साथ एक उत्कृष्ट रचनाकार भी थे। उन्हें आज की गद्य प्रधान कविता का जनक माना जा सकता है। उनका गद्य गद्य न होकर गद्य काव्य सा प्रतीत होता है। भाषा की दृष्टि से भी अपने समय के लेखकों में उनका बहुत ऊंचा स्थान है। उन्होंने अपनी रचनाओं में यथाशक्ति शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है। कहावतों और मुहावरों का प्रयोग भी उन्होंने सुंदर ढंग से किया। वो हमेशा ही हिंदी की परिधि का विस्तार चाहते थे, इसलिए विषय और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हिंदीतर शब्दों को भी सम्मिलित किया। इसीलिए उनकी लेखनी में कहीं कहीं पूर्वी बोली का प्रयोग भी दिखाई देता है। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने एक ओर जहां आंख, कान, नाक, बातचीत जैसे साधारण विषयों पर लेख लिखे, तो वहीं दूसरी ओर आत्मनिर्भरता, चारुचरित्र जैसे गंभीर विषयों पर भी लेखनी चलाई। साहित्यिक विषय के साथ ही उन्होंने समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए सामाजिक निबंधों की रचना की। पंडित बालकृष्ण भट्ट के निबंधों में विचारों की गहनता, विषय की विस्तृत विवेचना और गंभीर चिंतन के साथ एक अनूठापन भी है। उनके निबंध अधिकतर हिंदी प्रदीप में प्रकाशित होते थे। उनके निबंधों में ईश्वर की भी क्या ठठोल है, नाक निगोड़ी भी बुरी बला है, अकल अजीर्ण रोग, भकुआ कौन कौन है, हम डार डार तुम पात पात, इंग्लिश पढ़े सो बाबू होए, चंद्रोदय, संसार महानाट्यशाला, मेला ठेला, शब्द की आकर्षण शक्ति, बातचीत, भिक्षावृत्ति आदि प्रमुख हैं। उनके निबंधों का संकलन भट्ट निबंधमाला, साहित्य सुमन और आत्मनिर्भरता नाम से प्रकाशित हैं। इसके अलावा उन्होंने नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और 1 सुजान और रहस्य कथा नाम से उपन्यास भी लिखे तथा दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, वृहन्नला, पद्मावती, सीता वनवास, रेल का विकट खेल आदि नाटकों की रचना की। संपूर्ण हिंदी साहित्य में वो प्रथम श्रेणी के निबंध लेखक माने जाते हैं। अपनी लेखन शैली से वो प्रताप नारायण मिश्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निकट मालूम होते हैं। हिंदी प्रदीप के अलावा भट्ट जी ने 2-3 अन्य पत्रिकाओं का भी संपादन किया। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संकलित हिंदी शब्द सागर के संपादन में भी उन्होंने बाबू श्याम सुंदरदास और शुक्ल जी के साथ कार्य किया। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने परंपरावादी होते हुए भी परंपरा का अंधानुकरण कभी नहीं किया। उन्होंने परंपरा का विश्लेषण कर उसे सतर्क बुद्धि विवेक से देखा, परखा, उसके बाद ही उसके अनुकरण के बारे में विचार किया। उन्होंने निष्प्राण परंपरा और पाखंडपूर्ण धर्म को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा भी की तथा लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। पंडित बालकृष्ण भट्ट अत्यंत संयमी और त्यागी व्यक्ति थे। बताया जाता है कि अपने पिताजी के गया श्राद्ध के समय 3 वर मांगते हुए उन्होंने कामना की थी कि पैतृक संपत्ति में मुझे 1 भी पैसा न मिले, मेरे पुत्र और पुत्रियों का चरित्र निर्मल रहे और मेरा 1 पुत्र संस्कृत का विद्वान हो। इस तरह एक अत्यंत संयमित और निर्मल जीवन था उनका। आजीवन साहित्य सेवा करते हुए 20 जुलाई सन 1914 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 रेडियो,
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बाल सभा।
1: आजाद हिंद पर लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है कुछ रोक टोक अच्छी भी होती हैं।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: बच्चों नमस्ते, मैं हूँ आपकी मनीषा दीदी। कैसे हैं आप सब? मुझे पता है जैसे ही आपको रेडियो आजाद हिंद पर बाल सभा की ये धुन सुनाई देती होगी ना, आप बहुत खुश हो जाते होंगे, आपके चेहरे खिल जाते होंगे। और कुछ लोग तो इसे अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू भी सुनते हैं, है ना? अच्छी बात है बच्चों, आप ये कार्यक्रम रविवार के अलावा भी अलग अलग चैनल से कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। और हाँ, अपनी दादी नानी, मौसी मौसा जी, चाचा चाची, सबको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं आज की बात पर। आज की बात ये है बच्चों कि आप जब अपनी पढ़ाई, खेल, शरारतों और ढेर सारी नई नई बातें सीखने में व्यस्त हैं, लेकिन इसी के बीच एक ऐसा सवाल है जो बहुत से बच्चे आकर अक्सर मुझसे कहते हैं, और वो सवाल बताऊं आपको क्या है? दीदी अच्छा नहीं लगता, हर बात पर टोका टाकी करते हैं मम्मा पापा। ठीक, मुझे लगा शायद एक बच्चा कह रहा होगा। एक दिन एक बच्चा आया और उसने तो पूरी कहानी सुना दी। दीदी पता है मेरे घर में क्या होता है? मैंने कहा क्या? बोला सुबह उठते ही जल्दी उठो बेटा, पहले ब्रश कर लो, बिस्तर ठीक कर दो, यूनिफॉर्म ठीक से पहनो, नाश्ता पूरा ख़त्म कर देना, स्कूल बैग चेक कर लिया, होमवर्क पूरा किया क्या, कितना मोबाइल चलाओगे, टीवी बंद कर दो, बहुत देर हो गई, धीरे बोलो, ठीक से बैठो, जूते इधर क्यों छोड़ दिए, लेट के जब उठे तो चदरा क्यों नहीं खड़ी किया, देखो तुम्हारे खिलौने बिखरे पड़े हैं। मैं चौंक गई कि इस बच्चे के पास ना कितनी बातें। मैं थोड़ा सा हंसी मुस्कुराई, लेकिन बात तो जायज़ है भाई। बच्चे ये क्यों सोचते हैं कि इतने सवाल आखिर सुबह से शाम तक कितनी टोका टाकी। मैंने कहा ठीक है चलते हैं, आपकी मम्मा से बात करते हैं, वो मेरी दोस्त भी हैं, तो पूछेंगे भाई कि ये सुबह से उठकर जूते इधर क्यों छोड़ दिए, बैग उधर क्यों पटक दिया, ये सब क्यों पूछती हैं। लेकिन मैंने कहा कि अगर तुम ऐसा करो कि मम्मी कभी ना टोकें तुम्हें, फिर बोले मम्मी अगर कभी नहीं टोकेंगी तो तुम मुझको ही अच्छा नहीं लगेगा ना। मैंने कहा मतलब? बोले हाँ, मम्मा टोकती हैं तो मुझे गुस्सा ज़रूर आता है दीदी, लेकिन अगर वो बिल्कुल नहीं टोकेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा देखो कितना समझदार बच्चा है। मतलब ऐसे ही बोलते थे हमारे यहाँ कि सिक्के के जो दोनों अट और पट होती है ना, मतलब एक साइड और दूसरी साइड, वो दोनों साइड उस बच्चे की थी कि ये भी बात मेरी है और वो भी बात मेरी है। मतलब मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मम्मा टोकती है और मुझे ये भी अच्छा नहीं लगेगा कि मम्मा बिल्कुल ना टोके। कितनी बड़ी बात है ना बच्चों इस बात में। तो कहानी का सीन ये है बच्चों कि कुछ रोक टोक आपके अच्छे के लिए होती है, है ना? कभी मम्मी टोकती हैं, कभी पापा, कभी दादा दादी, कभी बड़े भैया दीदी, और अगर स्कूल पहुंच जाते हो तो आपके शिक्षक भी कभी कभी कह देते बेटा लाइन में ठीक से लगो, लाइन मत तोड़ना, धीरे बोलो, ध्यान से सुनो, पहले काम पूरा कर लो। ये सब क्या है? और अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर सब लोग मुझे ही क्यों टोकते हैं, तो नहीं बच्चों, हर बड़ा हर बच्चों को रोकता टोकता है। और पता है वो क्यों होता है? वो आपको सही शेप देने के लिए होता है। आपने कभी देखा है, आजकल तो मैं देखती हूँ बहुत सारे मेलों में बच्चों को सिखाने के लिए बड़े बड़े चाक लगाए रहते हैं जिसपे एक कुम्हार बैठ के मिट्टी के घड़े और बर्तन बना रहे होते हैं, और अगर कोई बच्चा चाहता है तो उससे भी छोटा सा ग्लास या छोटा सा दीपक बनवा देते हैं। तब आपने ध्यान से देखा होगा कि वो जो कुम्हार है, जो मिट्टी के घड़े को अगर बिल्कुल इधर से उधर से थाप ना देना बच्चों, तो वो शेप में सही नहीं आएगा। छोटा सा जो कोई जेवर होता है ना, छोटा सा आभूषण होता है, जब दोस्तों वो बन रहा होता है ना, तो उसको बहुत छोटी छोटी सी जगह से ठोका पीटा जाता है, इधर से छोटी सी हथौड़ी से इधर इधर इधर कर दिया, फिर उधर से थोड़ा सा ठोक दिया। क्यों? क्योंकि उसे सही शेप में लाना है। अगर हम किसी को नहीं टोकेंगे, नहीं रोकेंगे और उसे नहीं समझाएंगे अपनी बात कि बेटा अगर टोक रहे हैं तो क्यों टोक रहे हैं, तो बच्चों सच मानो आप लोग सही शेप में नहीं आओगे। सही शेप में आने से मेरा मतलब किसी शर्ट पैंट में फिट होने से नहीं है, है ना। मेरा है जिंदगी की जो असलियत है वो आपको सही से समझ में आए, आप अपने उस जिंदगी के दौड़ में सही से कदम मिलाकर चल सको, एक अच्छा नागरिक बन सको और आप अनुशासन से रह सको।
4: उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको समय समय पर रोका भी जाए और टोका भी जाए। जैसे कई बच्चे होते हैं ना कि जिद करते हैं, मम्मा आज बर्थडे है, मम्मा मान भी लेती हैं, पापा भी मान लेते हैं कि ठीक है भेज देंगे, लेकिन वो क्या कहते हैं, बेटा टाइम से आ जाना, अंधेरा होने से पहले आ जाना। भले ही सेम कॉलोनी में बच्चे रहते हैं लेकिन फिर भी माता पिता चिंता करते हैं कि नहीं अंधेरा होने से पहले घर आ जाओ। अब बात ये आती है कि वो यहाँ सिर्फ आपको नहीं टोक रहे हैं, वो खुद भी फॉलो कर रहे हैं ये बात कि नहीं अंधेरा होने से पहले हमें भी घर आ जाना है। क्यों? क्योंकि हर बुजुर्ग यही कहता है कि शाम को थोड़ा समय अपने फैमिली के साथ बिताइए, अपने परिवार वालों के साथ बैठिए, एक साथ खाना खाइए। अब जैसे सुबह अगर आप उठ रहे हो, अगर मम्मा आपको टाइम से नहीं उठाए, कितने दिन आपकी स्कूल बस खड़ी रहेगी, स्कूल वैन खड़ी रहेगी, फिर क्या होगा, फिर बाकी बच्चे आपके कारण लेट होंगे। जैसे मैं हमेशा देखती हूँ कि जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रही होती हूँ तो कई बच्चे वैन के लिए, एक बच्चा लेट होता है और उसके कारण 8-10 बच्चे और लेट होते हैं। तो सोचिए कि आपकी अनुशासनहीनता का असर और बच्चे क्यों झेल रहे हैं, आप टाइम से नहीं उठे, लेट दूसरे बच्चे हो रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा ना कि एक बच्चा हमेशा हाथ में पराठा लिए भाग रहा होता है स्कूल की बस में, क्यों, सोचा है कभी आपने? कभी आपने सोचा है कि एक बच्चे को हमेशा ही डांट पड़ रही होती है कि आज तुम ये कॉपी लेकर नहीं आए, आज तुम वो किताब भूल गए, क्यों? क्योंकि वो अभी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में नहीं है। रोक टोक उसे पसंद नहीं आती होगी, उसने कह दिया होगा मुझे रोको टोको मत, तो बस वो मौज मस्ती से जी रहा है बच्चा, लेकिन इस मौज मस्ती की बहुत कीमत चुकानी पड़ती है बच्चों, है ना। अगर आप अनुशासन में रहोगे तो आप सही समय पे काम करोगे, है ना, आपका कोई होमवर्क डिले नहीं होगा, फिर आप खेलने के लिए भी समय निकालोगे। पता चला कि आप अगर टीवी देखने बैठे तो 3 घंटे टीवी ही देखते रहे, फिर पढ़ोगे कब? तभी तो मम्मी कहती हैं बहुत हो गया टीवी अब बंद करो चलो पढ़ने बैठो, आपको लगता है फिर टोक दिया मम्मी ने। लेकिन अगर वो ना टोके ना तो आप सच मानो आप उठोगे भी नहीं बेटा। आपको पता है घोड़ा जब दौड़ता है ना तो उसकी आंखों के दोनों साइड छोटे छोटे से कवर लगे होते हैं, क्यों लगे रहते हैं? इसलिए लगे रहते हैं बच्चों ताकि वो सीध में जहाँ चल रहा है, जहाँ उसका मालिक लगाम खींच के उसे ले जाना चाहता है, वहीं जाए, ना इधर देखे ना उधर देखे। यही आपसे भी उम्मीद की जाती है कि बच्चों जब आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। महेंद्र सिंह धोनी जो हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, उनके ऊपर जब एक फिल्म बनी थी और मैंने देखा कि वो किस तरीके से खेलने के लिए भागते थे, उनकी इंडियन रेलवे में नौकरी लग गई थी, वो पहले आते थे फिर दूसरे स्टेशन जाते थे और उसके बाद वो भागते ही रहते थे, भागते ही रहते थे, भागते रहते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपने लक्ष्य को पाना था। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए बच्चों दिन रात एक करके अपने देश का नाम रोशन करते हैं। अगर उनमें अनुशासन ना हो तो कितनी बार आपने सुना होगा विराट कोहली जी को कहते हुए और जो खिलाड़ी उनको कहते हुए कि हम तला भुना नहीं खाते, क्या उन्हें अच्छा नहीं लगता कि वो भी आपकी तरह हमारी तरह छोले भटूरे खाएं? लेकिन उन्हें पता है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उनकी फिटनेस पे असर पड़ेगा, उनकी फिटनेस पे असर पड़ा तो किस पे असर पड़ेगा, उनके गेम पे असर पड़ेगा। तो उन्हें तो रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, उनकी मम्मा तो नहीं कह रही कि सुनो बेटा जी आज तुम भटूरे मत खाना, वो तो नहीं कह रही कि आज सुबह 8 बजे सो के उठना आपका मैच है, वो तो नहीं कह रही। लेकिन अब उनका ये खुद का अनुशासन उनमें आ गया है, उन्हें भी बचपन में रोका गया होगा कुछ बातों के लिए और कुछ बातों के लिए टोका गया होगा, तभी वो इतने अच्छे अनुशासन के अंतर्गत अपने जीवन को एक शेप दे पाए हैं कि आज वो भारतीय टीम का नाम न सिर्फ रोशन कर रहे हैं बल्कि देखिए कितने बड़े खिलाड़ी हो चुके हैं, कितने लोगों के लिए वो एक ऊर्जा के स्रोत बन चुके हैं। कभी आप ऐसे बड़े लोगों का, ऐसे अच्छे अच्छे लोगों का इंटरव्यू सुनिएगा बच्चों, वो जरूर बताएंगे कि उनकी जिंदगी में कितना अनुशासन रहा है, कितना अनुशासन रहा है। साइना नेहवाल पर मैंने जब उनकी किताब पढ़ी, उनके बारे में लोगों ने लिखा कि किस तरह से उसने महीनों आइसक्रीम नहीं खाई थी बच्चों, महीनों, और कई बार ये लोग कई कई काम सालों नहीं करते हैं तब जाकर एक देश के लिए मेडल जीतते हैं। तो अनुशासन के बिना तो बेटा कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। एक बार तो मैं हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी का सुन रही थी। उन्होंने बताया था कि उनकी माँ बचपन में उन्हें बहुत अनुशासन में रखती थी और उसका असर ये आया कि उन्हें पढ़ाई में बहुत मन लगने लगा। कितने ऐसे उदाहरण है बच्चों की मैं देना शुरू करूं तो वो खत्म ही नहीं होंगे। वो सिर्फ इसलिए आपको मैं आज बता रही हूँ, आप अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, आप वो भी देखिए कि कैसे उन्हें पता है कि बॉल कब कहाँ जाएगी, किसको मिलेगी, कौन गोल करेगा और कौन अपने देश के लिए विश्व कप जीत लेगा। लेकिन इसके लिए कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत, कड़ा अनुशासन जरूरी होता है। बिस्तर पर लेटे लेटे, टीवी देखते देखते, मोबाइल चलाते चलाते जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मजे तो हासिल हो सकते हैं बच्चों, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाओगे आप। इसलिए अनुशासन में रहिए और अनुशासन के पीछे छिपी हुई अपने माता पिता के त्याग और तपस्या को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। जब वो रोकते टोकते हैं तो बुरा मत मानिए, कई बार वो सब आपको सिखाने के लिए होता है। अब जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए कि आखिरी बार आपको किस बात पर टोका गया था। कर लिया आपने आंखें बंद? सोचिए किस बात पर टोका गया था। ये आपके लिए एक छोटी सी एक एक्सरसाइज है, क्योंकि मेरे पास तो उन सब बच्चों के जवाब हैं जिनसे मैं हर दिन मिल रही हूँ। मैंने ये अपनी कॉलोनी के पार्क में भी एक्सरसाइज कराई थी, तो क्या क्या जवाब आए थे बताऊं? एक बच्चे ने कहा था कि उसकी मम्मी ने बोला कि इतनी देर तक मोबाइल मत देखो। एक बच्चे ने जवाब दिया था कि उसके पापा ने कहा था कि पहले पढ़ाई पूरी कर लो फिर खेलना। एक बच्चे ने जवाब दिया था कि उसकी दादी ने खाना खाते वक्त टोका था कि बेटा खाना खाते समय बोलते नहीं है। और ये तीनों बच्चे उस वक्त बहुत नाराज हुए थे, बोले बताइए दीदी ये कोई बात होती है, पर जो दादी ने कहा ना खाना खाते वक्त बीच में बोलते नहीं है, वो क्यों कहा? वो बच्चों इसलिए कहा क्योंकि कई बार हमारा खाना, अगर हम बात बहुत कर रहे हैं तो अटक जाता है ना, इसलिए सुकून से शांति से खाना खा लीजिए उसके बाद बातें कर लीजिएगा। और बुजुर्ग तो बहुत बहुत किस्मत वालों को अपने घरों में मिलते हैं जो आपको बात समझाने के लिए आपके सामने हैं। ये आपका सौभाग्य है कि आप बुजुर्गों से कुछ सीख सकें, आपके पास रहें वो लोग ताकि आप जान सकें। इतनी अच्छी अच्छी बातें फिर कैसे मिलेंगी आपको? मुझे तो जितनी कहावतें आती हैं ना बच्चों, मेरे को बचपन से अपनी नानी दादी दोनों का बहुत साथ मिला, इसीलिए मुझे मतलब मैं कुछ कहती थी वो तुरंत कह देती थी हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो मुझे तो इतनी सारी बातें कहावतों में याद हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, है ना। एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत जिद कर रही थी जाने की, तो माँ ने कहा कि उस बच्चे के साथ मत खेलो वो बहुत गंदे से बात करता है। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी। तो मेरी दादी ने बस एक बात बोली थी कि बेटा चले तो जाओ लेकिन काजल की कोठरी में काले हाथ। उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये बात क्या है, काजल की कोठरी में काले हाथ। बहुत बहुत दिनों बाद जाकर ये बात समझ में आई कि अगर आप काजल की कोठरी में जाओगे, मतलब ये नहीं कि कोई काजल की कोठरी है, इस कहावत का सिंपल एक मतलब ये है कि आप जैसे लोगों के साथ रहते हो उनका असर आप पर भी चाहे अनचाहे बच्चों आ जाता है, है ना। तो इसलिए किसी बात का बुरा मत मानो, बल्कि सुनो कि बड़े बुजुर्ग घर वाले क्यों टोक रहे रोक रहे। चलो अब इसके बाद एक छोटी सी कविता आपको सुनाती हूँ, बड़ी सुंदर सी है क्योंकि मौसम है इसलिए। मेघ आए बड़े बंठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती प्यार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हूँ गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बड़े बंठन के समर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा, नदी ठिटकी, घूंघट सर के, मेघ आए, बड़े बंठन के समर के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लीनी, बोली अकुलाई लता, ओट हो किवाड़ की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, क्षितिज अटाई गहराई दामिनी दन की, क्षमा करा गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ठर के, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। इतनी सुंदर कविता है, कवि ने एक बहुत सुंदर बात कही है, वो है कि बरस बाद सुध लीनी, बोली अकुलाई लता, ओट हो किवार की। मतलब जो लताएं लगी रहती है ना, बहुत सारी मनी प्लांट की लताएं, लंबी लंबी जो बेलें होती हैं, मधुमालती की बेल बहुत अच्छी होती है, टिकोमा की बेल बहुत अच्छी होती है, तो वो जो बेलें हैं वो किवार की ओट से बोल रही हैं कि बहुत दिनों बाद सुध लीनी। हमारा ख्याल कितने दिनों बाद लिया तुमने बादल, मतलब मेघ यानी बादल, मेघ आए यानी बरसात का शुभारंभ हो रहा है। तो देखिए कैसे कैसे चीजें, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मतलब जो ताल है, जैसे हम भोपाल का ताल मान लें, उसमें और ज्यादा पानी भर जाए, तो हर साया ताल लाया पानी परात भर के, उसका जो पूरा परात बोल रहे हैं इसको कवि यहाँ पर, कि जो पूरा एक तालाब है उसमें पानी भर गया है, तो वो भी कितना खुश है कि उसके परात में इतना पानी भर गया है। अब आप सोचिए कि आगे वो कह रहे हैं कि जो बूढ़ा पीपल है वो भी आगे बढ़कर जुहार लगा रहा है। मतलब कितनी सुंदर सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है ना। तो जब बच्चों, फिर उसी बात पर मैं आती हूँ कि जब आप अपना समय बहुत व्यवस्थित कर लेते हैं ना बच्चों, तो आपको भी समय मिलेगा कि आप कुछ अच्छी कहानी और कुछ अच्छी कविताओं की किताबें पढ़ो। मैं इसलिए ये बात बार बार कहती हूँ कि जितना अच्छा साहित्य पढ़ोगे ना बच्चों, जितनी बचपन से किताबों की आदत डालोगे, उतनी अच्छी भाषा शैली होगी आपकी, और उतनी ही अच्छी तरह से आप अपनी बात को कह पाओगे, रख पाओगे। फिर आप ऐसे बिल्कुल नहीं कहोगे मुझसे कभी, अगर मैं आपको किसी पार्क में मिल गई या कभी बाल सभा में आप स्टूडियो आए, तो आप कभी नहीं कहोगे कि दीदी मुझे गुस्सा आ रहा है, आप भी बड़े साहित्यिक अंदाज में मुझसे बात करोगे, है ना। आप कभी नहीं कहोगे कि मम्मी पापा हमें रोकते टोकते हैं, आप भी समझ जाओगे कि आपके मम्मी पापा भी उसी कुम्हार की तरह आपको एक मिट्टी का घड़ा मान के शेप दे रहे हैं, है ना, ताकि आप में जीवन का जितना गुण रूपी पानी है वो आपके घड़े में भर सके, है ना। इसलिए मम्मी पापा आपको बेटर शेप, बेटर साइज में देखना चाहते हैं, और बस ये रोका टोकी उसी के लिए है बच्चों। हाँ, अब कई बच्चे आपने देखा होगा ये शिकायत करते हैं, बस में भी कहते होंगे आपके दोस्त, अरे मैं बहुत लेट सोया तो मुझे नींद आ रही है। स्कूल में नींद आ जाएगी तो क्या होगा, आपने देखा है डेस्क पे कुछ बच्चे नीचे से रख के सो भी जाते हैं। कई बच्चे मैडम की स्पीड से लिख नहीं पाते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनके पास कोई टाइम ही नहीं है इस चीज का कि वो कब राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। छोटी छोटी कर्सिव राइटिंग की बुक आती है, देखिए आपने, आप उनको लाइए, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कीजिए। आप ये देखिए, पहले इमला लिखवाया जाता था बच्चों, कोई एक जना बोलता था और दूसरा बच्चा जो होता था वो लिखता था, क्यों, ताकि ग्रामेटिकल मिस्टेक कम हो, स्पेलिंग मिस्टेक कम हो। ये सारी प्रैक्टिसेस अपने भीतर लाइए, तब आपको समझ में आएगा कि छोटे छोटे सी चीजें कितनी मायने रखती हैं। अभी आपने सुना था कि एक बहुत छोटी उम्र का बच्चा शतरंज का खिलाड़ी बन गया और उसने पूरा जीता है, दुनिया को दिखाया उसने कि कितना ब्रेनी गेम होने के बावजूद उसने कितनी छोटी उम्र से गेम खेलना शुरू किया। ऐसे ही अभी एक बच्चा तैराकी में बहुत आगे निकल गया, वो मात्र 5 या 6 साल का है या इससे भी कम। तो इन बच्चों में कहां से ये सब आ रहा है, क्योंकि वो अपनी मम्मा की वो अच्छी वाली रोक टोक पर गुस्सा नहीं कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये हमें बेहतर बनाने के लिए है। जैसे छोटी सी बात को आप और याद रखिए कि कभी आपने किसी गार्डन में माली जरूर देखे होंगे, है ना। माली दादा को आप देखेगा कि पौधे की टेढ़ी शाखा को कैसे वो सहारा देते हैं, है? पौधा शायद कुछ नहीं समझता उस वक्त कि ये क्यों ये डंडी लगा रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ष बाद वही पौधा सीधा और मजबूत छायादार पेड़ बन जाता है,
1: लेकिन जब वो कोमल होता है तो उसको डंडी का सहारा देना पड़ता है। ऐसे ही जब कोई लता बच्चों ऊपर बढ़ती है तो उसको रस्सी से बांधना पड़ता है ताकि उसको सहारा मिल जाए, और एक बार उसकी डाल मजबूत हो गई फिर आप भले ही रस्सी काट दीजिए, फिर तो वो अपने शाख पर मजबूती से खड़ी रहती है। तो बस हमारे माता पिता, दादा दादी, शिक्षक सब उस माली की तरह ही होते हैं जो हमें रोकते हैं, टोकते हैं, समझाते हैं, कभी कभी डांट भी देते हैं, क्योंकि उन्हें हमारा आज ही नहीं हमारा आने वाला कल भी दिखाई देता है। जब आपकी मम्मी बार बार कहती है ना कि हाथ धोकर खाना खाओ, तो उन्हें क्या हाथ धोने से फायदा होगा बताइए? आप अगर हाथ धो के नहीं खाएंगे तो जो जर्म्स हैं आपके हाथों के, सड़क की आप गंदगी लेते हुए चले आ रहे हैं, दाएं बाएं हाथ लगाते हुए, आपका पेट खराब होगा। पर मम्मी पापा टोक क्यों रहे? ताकि आपकी एक बार आदत बन गई तो आप बार बार बीमार होना बंद कर दोगे, और अगर आप बार बार बीमार नहीं हुए तो अपने स्कूल में, अपने प्लेग्राउंड पे अच्छा परफॉर्म करोगे, है ना? बस यही छोटी छोटी सी बातें। इसलिए कभी भी बच्चों आप अपने माता पिता के किसी बात का बुरा मानना बंद कर दीजिए, क्योंकि उनसे बेहतर आपके लिए कोई कोई कोई नहीं सोच सकता, है ना? लोग ये भी कहते हैं कि ईश्वर हर जगह नहीं उपस्थित हो सकता, इसलिए उसने धरती पर बच्चों के लिए माता पिता को भेजा है। सोचिए कितना बड़ा मान सम्मान है पिता और माँ का, कितना ऊंचा दर्जा है। तो फिर आप अगर छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? तो आगे से कभी भी ऐसा नहीं सोचना है, है ना? ठीक है, अब चलिए हमारा टाइम है कि हम आंखें बंद कर लें और छोटे छोटे से संकल्प ले लें। आंख बंद कर लिया आपने, सबसे पहली बात हम अनुशासन प्रिय बनेंगे। अब सोचिए कि अगर आपके माता पिता किसी बात के लिए आपको रोक या टोक रहे हैं तो वो आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। तीसरी बात, आपको अपने माता पिता से ना सुनने की भी आदत होनी चाहिए। चौथी बात, उनकी कही हर बात को मानने का प्रयास करना है। और अब आखिरी बात कि पूरी रोका टोकी आपको बेहतर इंसान बनाने की छोटी छोटी कोशिशें हैं। अब आप आंखें खोल सकते हैं और आप ये बात मानेंगे कि अब से अगर आपके माता पिता आपको किसी बात पे रोकेंगे टोकेंगे तो आप उनकी बात भी मानेंगे और खुद भी ये कोशिश करेंगे कि उन्हें आपको टोकने की ज़रूरत बार बार ना पड़े। जैसे बार बार गलती करने के बाद सॉरी बोलकर दोबारा गलती करना और ज़्यादा गलत होता है, उसी तरह जिस चीज़ के लिए आपको आज टोका जा रहा है वो आपको कल ना टोका जाए, इसके लिए आप आज ही उस आदत को सुधार लीजिए। तो बच्चों आज आपसे एक और बात कहनी है, है ना? जो लाइव स्ट्रीमिंग के जितने भी मंच होते हैं वहाँ पर आपको रेडियो आज़ाद हिंद का चैनल मिल ही जाएगा, है ना? तो हमारे जो पॉडकास्ट है ना अच्छे अच्छे, वो सिर्फ आप ही मत सुनिए, आप अपने दोस्तों में, अपने जो छोटे छोटे से आपने बच्चों के क्लब्स बना रखे हैं ना, आप उनमें शेयर करना शुरू कीजिए, क्योंकि अच्छी बातें सब तक पहुंचनी चाहिए। हाँ, और रेडियो आज़ाद हिंद की फ्रीक्वेंसी को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए। बस में बताइए कि 90.8 FM पर क्या आता है? रेडियो आज़ाद हिंद। और रेडियो आज़ाद हिंद पर आप बाल सभा कब सुन सकते हो? रविवार को। तो ये बात बच्चों अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। और अब मुझे जल्दी से अनुमति दे दो, क्योंकि मैं तो आपके कहे के बिना यहाँ से जाती भी नहीं हूँ। तो बस जहाँ बैठे हो वहीं मुस्कुराकर मुझे बाय करो और मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना और अपने अपनों का भी। और हाँ, मम्मा को गुस्सा मत दिलाना बिल्कुल। याद रखो, अगर पापा ने आज किसी बात के लिए टोका है तो कल वो बात रिपीट नहीं होनी चाहिए। चलो बच्चों चलती हूँ, हाँ बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना दीति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और आपके साथ थी मैं आपकी मित्र मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: बाल सभा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्रकृति की पुकार।
1: दोस्तों नमस्कार, कार्यक्रम प्रकृति की पुकार में मैं हूँ मनीषा, और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर पारुल ऋषि, जो पर्यावरण मनोविज्ञान, जलवायु परिवर्तन और व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र में जानी मानी शिक्षाविद और शोधकर्ता हैं। आप पिछले 32 वर्षों से भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM में प्रोफेसर और सेंटर फॉर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की चेयरपर्सन है। पर्यावरण और मानव व्यवहार के संबंधों पर उनके 110 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं, और इस क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें अनेक राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। डॉक्टर पारुल ऋषि जी, आपका हार्दिक स्वागत है स्टूडियो में।
2: धन्यवाद मनीषा जी।
1: आज हम सबसे पहले यहीं से बात शुरू करते हैं कि अक्सर हम सुनते हैं कि प्रकृति के बीच में समय बिताने से मन शांत होता है, इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारण क्या है?
2: देखिए, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें हर समय हम लोग मोबाइल और स्क्रीन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, और उससे जो किरणें निकलती हैं वो हमारे दिमाग पर किसी न किसी तरह से प्रभाव डालती हैं। तो उसका जो प्रभाव है वो हम देखते हैं हमारे व्यवहार में। आजकल हम देखते हैं टीनएजर्स के व्यवहार में चिड़चिड़ापन, और अगर आप उनसे ज़्यादा बात करने की कोशिश करें तो वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम प्रकृति के पास होते हैं तो आप उन्हीं बच्चों का व्यवहार जब आप देखेंगे कि वो प्रकृति के पास हैं, वो पेड़ों के साथ हैं, वो नदी के किनारे बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यवहार आपको उनका नहीं मिलेगा। तो ये सच बात है कि प्रकृति के साथ रहने से हमारा व्यवहार शांत होता है, हमारे मन को शांति मिलती है, हम एक अपनेपन की अनुभूति करते हैं कि जैसे हम अपने साथ हैं। तो मनोविज्ञान में अपने साथ होना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। हम लोग दुनिया के लिए तो बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन हम अपने व्यक्तित्व के साथ हैं, अपने बारे में कुछ कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, ये अनुभूति हमको प्रकृति के साथ जो है ये काफी अच्छे तरीके से होती है।
1: मैडम, माइंडफुलनेस कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि इस पर भी आजकल बहुत बातें हो रही हैं, इवन सोशल मीडिया पर हम ये चीजें बहुत देखते हैं, माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट है क्या?
2: ये माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट ओरिजिनली बुद्धिस्ट फिलोसफी से आया है, और इसका जो है पहले तो इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा था, थेरेपीज़ के लिए यूज़ हो रहा था, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि पर्यावरण से संबंधित विषयों में भी माइंडफुलनेस के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं। एक वैम्सलर ने स्वीडन में काफ़ी स्टडी माइंडफुलनेस के कॉन्सेप्ट पर की है। इसका मतलब यह है कि आप जिस परिस्थिति में जहाँ हैं आप वहीं पर हैं, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति मिला तो हम, या किसी हम परिस्थिति में हैं, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत खराब है, ये पर्सन अच्छा नहीं है, इस तरह का जो हमारा एक इवैल्यूएटिव टाइप का, जजमेंटल टाइप का एटीट्यूड जो होता है ना, इसका ऑपोजिट इज माइंडफुलनेस, कि हम हर परिस्थिति को वैसे देखें जैसी वो है। सो तथागत का जैसे कॉन्सेप्ट होता है कि इट इज एज इट इज, तो इसमें हम हर समय इवैल्यूएशन नहीं करते हैं, हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं डालते हैं, क्योंकि बहुत सारे शेड्स ऑफ ग्रे भी होते हैं। तो माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट यही है कि हम जो भी परिस्थिति है उसमें खो जाएं, उसी में एब्जॉर्ब हों अपने आप को। तो नेचर में जब हम होते हैं, तो जब हम नेचर बेस्ड माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस बहुत सारी होती हैं, तो उसमें हम जब पेड़ों के साथ हैं, हम जब नदी के किनारे बैठे हैं, नर्मदा के किनारे बैठे हैं, तो हम उस पूरे एनवायरनमेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। तो दिस इज व्हाट माइंडफुलनेस इज ऑल अबाउट। तो इससे हमारा जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं उनसे कनेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, और हम लोग एक परिस्थिति में अपने आप को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं।
1: एक चीज और है कि आपकी बात से ही मुझे वो स्थिति प्रज्ञ हमारे यहाँ बोला जाता था कि स्थिति प्रज्ञ हो जाइए तो सारी स्थितियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। एक बात और मैडम आती है कि जब हम बहुत थक जाते हैं और ऐसे वक्त पे अगर हम ठंडे पानी में पैर डाल लें या हम किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएं, तो कहीं ना कहीं हमें सुकून मिलता है। आजकल आप भी देख ही रहे होंगे इस चीज़ को कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि माइंड रिलैक्स करने के लिए आपको प्रकृति का संगीत सुनना चाहिए, तो ये बात सच है क्या?
2: पर्यावरण मनोविज्ञान में मेरी शिक्षा हुई है, तो मेरा काफ़ी रिसर्च इस फील्ड में रहा है। तो बहुत सारी इस तरह की रिसर्च स्टडीज़ हुई हैं जो ये बताती हैं कि आप अगर पर्यावरण के साथ हैं तो आपका अवसाद आप में कम होगा, डिप्रेशन कम होगा, आप आपका स्ट्रेस रिलीव होगा, और इसीलिए लोग पहाड़ों के पास जाते हैं। क्योंकि एक स्टडी मैं आपको कोट करके बताना चाहूंगी कि एक मनोवैज्ञानिक है अल्रिच, उन्होंने एक स्टडी की थी, सर्जरी हुई थी पेशेंट्स की। सो उन सर्जरी पेशेंट्स को जब हॉस्पिटल में वो एक रूम में वो लोग थे, तो उन्होंने एक ग्रुप ऑफ पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स को ऐसे रूम में रखा जहाँ खिड़की से पेड़ पौधे और हरियाली दिख रही थी, और एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को रखा कि जिनको एक कॉन्क्रीट की वॉल दिख रही थी खिड़की से। तो दोनों ग्रुप्स की उन्होंने फिर बाद में उनकी मनस्थिति को और सर्जरी से उनका पोस्ट सर्जरी जो रिकवरी हुई तो उसको उन्होंने कंपेयर किया, तो उन्होंने देखा कि जो पेशेंट्स हरियाली देख रहे थे खिड़की से उनकी रिकवरी सेम सर्जरी से ज्यादा फास्ट हुई इन कंपैरिजन को वो लोग जिनको कॉन्क्रीट की वॉल दिख रही थी। तो इस रिसर्च से उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि हम लोग जब नेचर के पास होते हैं तब हमारा जो है वो साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों तरह की हेल्थ जो है और वेलबींग को जो है वो नेचर प्रमोट करती है। सो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि नेचर के साथ रहना हमारे लिए जो है वो खाली एक सुखद अनुभूति नहीं है, बल्कि ये हमारे शारीरिक रोगों को भी कम करती है, रोगों के प्रभाव को कम करती है, और हम एक

0: करता है।
1: जी
0: सो हम लोग जब पर्यावरण के साथ होते हैं तो पर्यावरण का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, उससे हमारी मनस्थिति जो है वो इम्प्रूव करती है। तो मैं ये मानती हूँ कि ऐसा भी होता होगा कि हम अगर पेड़ों के साथ अच्छे तरह से व्यवहार करेंगे और उनका ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस तरह की रिसर्च स्टडीज तो काफी हुई है। एक हॉर्टिकल्चर थेरेपी आजकल काफी पॉपुलर है। हॉर्टिकल्चर थेरेपी में यह है कि आप जब पेड़ पौधों के साथ होते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, बागवानी करते हैं। एनिमल्स के साथ तो हम लोग देखते ही हैं कि लोग जो पेट्स रखते हैं या गायों का जो है देखभाल करते हैं, तो ये सारा आप देखेंगे कि उनकी साइड से भी एक उसी तरह की रिस्पॉन्स आती है। तो जब हम लोग पेड़ों को प्रभावित करते हैं तो पेड़ भी हमको प्रभावित करते हैं। इस तरह की एक म्यूचुअल
1: रिलेशनशिप।
0: तो बागवानी वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हॉर्टिकल्चर थेरेपी, वो यही है कि जो लोग बागवानी में जुड़े रहते हैं, पेड़ों का ध्यान रखते हैं। आपने कई बार सुना होगा, कहते हैं कि माली रखते हैं तो पेड़ उतने अच्छे ग्रो नहीं करते, लेकिन अगर आप खुद भी साथ में देख रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो पेड़ों की ग्रोथ बेटर होती है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स और आपका उनके साथ एक रिश्ता बन जाता है।
1: जी,
0: और रिलेशनशिप जो है ये पेड़ों की ग्रोथ को डेफिनेटली प्रभावित करता होगा।
1: जी मैडम, आपने चूंकि अभी पेट्स की बात की, तो घर में अगर कोई पालतू जानवर रखते हैं तो क्या उससे भी चिड़चिड़ापन मनुष्यों में और कहीं ना कहीं अवसाद कम होता है?
0: मनोविज्ञान तो डेफिनेटली है, क्योंकि आप पेट्स रखते हैं तो आप ज्यादातर हम लोग जो देखते हैं कि कुछ लोग जो जिनका मनुष्यों के साथ बहुत अच्छा जो है वो बातचीत खुल के नहीं कर पाते हैं, इंट्रोवर्ट्स होते हैं, अंतर्मुखी उनका जो व्यवहार होता है, तो उन लोगों को लगता है कि वो अपने आप को बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपना पेट्स के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, और डेफिनेटली पेट्स भी उसको रेसिप्रोकेट उसी तरह से करते हैं। तो मेरा मानता है कि डेफिनेटली ऐसा होता होगा।
1: आपने जो कहानी सुनाई कि कुछ लोगों को बंजर जमीन दिखाई गई, एक वॉल दिखाई गई, और कुछ लोगों को हरियाली, ये तो एक थेरेपी के तहत किया गया और रिसर्च के तहत किया गया, लेकिन आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे सामने बहुत सारी बिल्डिंग्स बने जा रही हैं और हरियाली कम होती जा रही है, तो आपको लगता है जो हिंसा है, जो चिड़चिड़ापन है लोगों में, क्या उसका रीजन कहीं ना कहीं प्रकृति से दूरी है, आप मानती हैं?
0: बिल्कुल है, और ये चीज रिसर्च से प्रूव हो चुकी है। आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज का भी कॉन्सेप्ट आजकल वर्ल्ड वाइड चल रहा है, तो जो वार्म कंट्रीज हैं वहां पर वायलेंस ज्यादा है, और आप देखेंगे कि समर मंथ्स में वायलेंस के इंसिडेंट्स जो हैं वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और ये वायलेंस और ज्यादा बढ़ रहा है जितना हम टेक्नोलॉजी के करीब आते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ज्यादातर समय तो वही 24 घंटे है। अब हम उसमें अगर ज्यादातर समय अपने मोबाइल और स्क्रीन के साथ निकालेंगे तो जो समय, और वर्क तो आपको करना ही है जो भी आप काम करते हैं, तो जो समय कम होता है वो प्रकृति के साथ रहने का ही समय कम होता है, और उसी का ही प्रभाव किसी ना किसी तरह से हमारे मनोस्थिति पर पड़ता है। और डेफिनेटली बच्चों में जो चिड़चिड़ापन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बच्चों में क्राइम बढ़ रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, मतलब माँ बाप भी बच्चों को जितना टाइम देते थे वही मोबाइल से ही वही टाइम कर्टेल हो रहा है हर जगह। तो कुल मिला के हम देखें कि आपसी रिश्तों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, प्रकृति के साथ रहने का समय कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ये दो चीजें मुझे मनोवैज्ञानिक की उससे समझ में आ रही है कि हम लोग प्रकृति के साथ स्पेंड करने वाला टाइम और अपने रिश्तों को सुदृढ़ करने में लगने वाला टाइम, ये दो टाइम्स हमारे सबसे ज्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, और उसके लिए हमको बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत है।
1: और यहाँ पर एक बात मैं आपकी बात में और जोड़ना चाहती हूँ कि हम प्रकृति को भी स्क्रीन पे ही देख रहे हैं। कई बार मैंने जब इस तरह की बातें करूँ कि पेड़ों के पास बैठो, तो मैं देखती हूँ कई घरों में बच्चे एक धीमा सा संगीत लगा लेंगे और स्क्रीन पे पेड़ आते रहेंगे या बहुत अच्छी हरियाली या पहाड़ दिखते रहेंगे, तो स्क्रीन की प्रकृति से तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है।
0: बिल्कुल, स्क्रीन की प्रकृति से आप ये मान सकते हैं कि जिन लोगों को ये सुविधा नहीं है, जो ऐसी जगह पर रहते हैं कि जहां पर प्रकृति उपस्थित नहीं है, हालांकि प्रकृति तो सभी जगह उपस्थित होती है, लेकिन इतना आपके पास समय नहीं है कि आप स्पेंड कर सकें, तो एक सब्स्टिट्यूट की तरह से वो लोग यूज करते हैं। लेकिन जब आप एक्चुअली में प्रकृति के साथ हैं तो जो प्रकृति की सुगंध आप अनुभव करते हैं, जो पक्षियों का कलरव आप उनको साथ में देखते हुए अनुभव करते हैं, वो सारी चीजें स्क्रीन से सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती, लेकिन हम कह सकते हैं 10-20% कंपनसेशन उसका जो है वो स्क्रीन के थ्रू हो सकता है।
1: मैडम, आप बच्चों के बीच में बहुत, क्योंकि IFM में हैं तो बहुत सारे बच्चे आते होंगे, बहुत आपका क्या अनुभव है इन चीज़ों को लेकर, बच्चों को लेकर? क्योंकि आपने पहले भी कहा कि बच्चे आजकल थोड़ा सा बात करने से बचने लगे हैं, कटने लगे, नई जनरेशन जो है उसको डील करना थोड़ा टफ होता जा रहा है, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, बच्चों को आजकल आप टेक्नोलॉजी से दूर नहीं कर सकते, ये स्थिति को आपको समझ लेना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी के साथ ही हम उनको किस तरह से प्रकृति से जोड़ सकते हैं, यही हमको सोचना है। तो ज़्यादातर फैमिलीज में अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट हो कि मॉर्निंग वॉक में कम से कम साथ में जाएं, भोपाल जैसे शहर में तो हम कह सकते हैं इस तरह की बहुत सुविधाएं हमको उपलब्ध हैं कि हम अपने घर से बाहर निकले और आपको एक बहुत छोटे से एरिया में जाके ही आपको प्रकृति के साथ आपका जो है संबंध हो सकता है। तो पेरेंट्स अगर साथ में बच्चों के साथ जाएं, प्रकृति के साथ वॉक करें, वहां पर आप बर्ड्स को रिकॉग्नाइज करें। आजकल बर्ड वॉचिंग भी एक माइंडफुलनेस के लिए हम लोग एज थेरेपी की तरह से यूज करते हैं। आप फॉरेस्ट में जा रहे हैं या आप किसी भी नेचुरल एरिया में, अर्बन एरिया में जा रहे हैं और वहां पर आप पक्षियों को देख रहे हैं और पक्षियों के फोटोग्राफी भी करते हैं लोग बर्ड्स की, लेकिन उसके अलावा पक्षियों को देखना, उनकी आवाजों को सुनना और उनकी आवाजों के अंतर को पहचानना, ये चीज आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है कि आप वॉइस साउंड्स में डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं कि ये एशियन फ्लाई कैचर की साउंड है, ये गोल्डन ओरियल की साउंड है, ये आउल की साउंड है। तो ये साउंड्स का डिफरेंशिएशन जो होता है ये कॉग्निटिव एबिलिटी को शार्प करता है
1: जी।
0: उसके अलावा जब हम प्रकृति में होते हैं तो एक फीलिंग ऑफ फ्रीडम हमको फील होती है। जैसे हम घर में होते हैं तो हम देखते हैं चारों साइड वॉल्स हैं, तो वो हमारे थॉट प्रोसेसेस को किसी तरह से लिमिट करता है कि ये हमारी बाउंड्री है। लेकिन जब हम खुला आसमान देखते हैं, पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, नदी को देखते हैं, नदी के बहाव को फील करते हैं कि नदी बह रही है, तो उससे हमको लगता है कि हाँ, हम एक फ्री वर्ल्ड में जिंदा हैं और एक लाइफ में एक फ्लो हमको फील होता है। तो उससे हमारी मनस्थिति और हमारे व्यवहार और हमारी सोचने, समझने और निर्णय करने की क्षमता, इन सारी चीजों में हमारा बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता है
1: जी। उन्मुक्तता भी आती है लोगों में वहां जाकर। मैडम, आपने माइंडफुलनेस की एक थेरेपी तो हमको जैसे बर्ड वॉचिंग बताई, माइंडफुलनेस की और भी थेरेपीज होती होंगी, उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी।
0: एक ब्रीदिंग माइंडफुलनेस काफी ज्यादा यूज होता है। हम लोग को लगता है सांस लेना एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है और हम दिन भर सांस लेते ही रहते हैं, लेकिन एक माइंडफुलनेस ब्रीदिंग एक टेक्निक है। तो उसमें हम लोग अपनी सांस को फॉलो करते हैं कि जैसे हमने सांस ली तो हमारा पूरा ध्यान जो है वो उस सांस के साथ, हमने जैसे ब्रीद इन किया तो हमारा ध्यान भी हमारी सांस के साथ साथ जो है वो गया, और फिर उसके बाद ब्रीद आउट किया। सो ये सांस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया के साथ जब हमारी मनस्थिति भी इसके साथ में जुड़ी होती है, सांस लेने और छोड़ने के साथ साथ, तो वो एक माइंडफुलनेस थेरेपी होती है कि हमारा ध्यान इधर उधर जाने की जगह हम अपनी सांस को फील कर रहे हैं और उससे किस तरह से हमको एक ठंडक की अनुभूति हो रही है सांस को बाहर निकालते हुए, और गर्माहट की अनुभूति हो रही है सांस को अंदर लेते हुए। तो इस फीलिंग के साथ अपने आप को कनेक्ट करना और ऐसे रिपीटिशंस करना, ये भी एक ब्रीदिंग माइंडफुलनेस जो है ये कहलाता है। इसके अलावा वॉकिंग माइंडफुलनेस भी होता है, जिसमें जब आप वॉक कर रहे हैं तो आप अपने एक हर एक स्टेप को फील कर रहे हैं कि आपने जमीन पर एक स्टेप रखा, फिर आपने दूसरा रखा, तो आपका मन उस हर स्टेप के साथ आगे बढ़ रहा है। सो ये एक वॉकिंग माइंडफुलनेस कहलाता है। तो मेरी एक रिसर्च एक मेरे स्टूडेंट ने करी थी, पीएचडी स्कॉलर ने थोड़े साल पहले, तो उन्होंने इस माइंडफुलनेस थेरेपी को पेरेंट्स के साथ यूज किया था जिनके बच्चे हाइपर एक्टिव थे, तो उनको मैनेज करने में उनको बहुत चैलेंजेस आते थे, तो उनको माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज के थ्रू उनको ट्रेन किया था। तो उससे उनका बच्चों के साथ जो व्यवहार था, हाइपर एक्टिव बच्चों को डील करना काफी डिफिकल्ट होता है, उनका व्यवहार बहुत इंप्रूव किया इससे, और उनके जो रिलेशनशिप बच्चों के साथ बहुत स्पॉइल हो गए थे क्योंकि वो हर समय कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते थे जिससे कि वो तनाव में आ जाते थे, तो वो उनका तनाव कम हो गया और बच्चों के साथ डील करने की उनकी एबिलिटी और इंप्रूव करी, और बच्चों के व्यवहार में भी उससे अंतर आया। सो माइंडफुलनेस थेरेपी मल्टीपल फॉर्म्स में जो है वो यूज होती है, और इंडस्ट्रीज में जो यूज होती है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, कि अगर आपके एम्प्लॉयज माइंडफुल हैं, उनको माइंडफुलनेस ट्रेनिंग दी गई है, तो वो बेटर परफॉर्मेंस देंगे, कम समय में बेटर परफॉर्मेंस देंगे।
1: तो मैम, वर्क प्लेस पे ये कैसे काम, क्योंकि 10-10 12-12 घंटे का आपका वर्क स्टेशन पे आपको रहना होता है, ऐसे में लोग क्या कर सकते हैं कि उनके काम में सुधार आए, या क्या ऐसे साइकोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें?
0: देखिए, वर्क प्लेस में आजकल बहुत कॉमनली एक वेलनेस प्रोग्राम्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसी वेलनेस प्रोग्राम में ही माइंडफुलनेस को उन लोगों ने इंटीग्रेट किया है। कुछ अच्छी कंपनीज जो हैं वो इस तरह के प्रोग्राम्स अपने एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेशली करवाती हैं जिसमें माइंडफुलनेस ट्रेनिंग देती हैं, तो बहुत ज़्यादा समय का इशू नहीं है, ये बहुत कम समय में, इट्स अ ट्रेनिंग, आपको अपने माइंड को ट्रेन ट्रेन करना है कि वो एक पर्टिकुलर तरह से सोचने की अपनी आदत बनाए और करंट मनस्थिति में रहे। अदरवाइज तो आपने बाकी इंडियन फिलोसफी में ये बताया हुआ है कि मन एक घोड़े की तरह है, अगर आपने उसको लगाम नहीं लगाई तो वो कहीं भी भागेगा, तो वही स्थिति है। तो हम माइंडफुलनेस के थ्रू बेसिकली अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं और उसको ट्रेन करते हैं, कंट्रोल भी नहीं करते हैं, हम उसको ट्रेन करते हैं कि वो जिस समय जो काम कर रहा है वो उसमें पूरी तरह से एब्जॉर्व होके उसको करे। सो इससे डेफिनेटली परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि जब वो फिर उसका रिवर्स सिचुएशन ये होगी जब वो वर्क का काम कर रहा है, जब वो अपने ऑफिस में है और ऑफिस में जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज उनको दी गई हैं वो उसमें भी ऑब्जॉर्व होकर काम करेगा। सो ये एक दूसरी परिस्थिति में भी ट्रांसलेट होता है, जब अपने फैमिली के साथ है, अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर रहा है तो उसमें भी वो एब्जॉर्व होकर करेगा। अदरवाइज आपका वर्क प्लेस का स्ट्रेस घर में ट्रांसफर होता है, घर का स्ट्रेस वर्क प्लेस में ट्रांसफर होता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट होती है।
1: मैडम, आपकी ही बात में से एक बात अभी मुझे ध्यान आ रही है और वो ये है कि पहले हम लोग कहते थे कि तेज़ी से भागो, दुनिया के साथ भागो, अभी कुछ एक चीज़ें सुनने में आ रही कि थोड़ा स्लो हो जाओ, थोड़ा धीमे चलो, थोड़ा धीमे हो जाओ, ज़िंदगी में इतना मत भागो, रुक जाओ, ठहर जाओ। ये जो स्लो का ट्रेंड आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं माइंडफुलनेस को वो करता है कि आप थोड़ा अपनी जिंदगी में थोड़े धीमे हो जाइए।
0: देखिए, माइंडफुलनेस आपका स्लो और फास्ट से रिलेटेड नहीं है, इट इज जस्ट कि आप जो जैसी स्थिति है आप उसको एक्सेप्ट करें कि यही स्थिति है। जो पॉज का आप कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, बर्नआउट के बहुत ज्यादा केसेस आजकल सुनने में आ रहे हैं कि लोग बाग अपने बहुत अर्ली स्टेज ऑफ कैरियर में, जैसे हम लोग के टाइम में होता था कि ठीक है आपने जॉब ली है तो आप अच्छे से आप अपना काम कर रहे हैं और 8-10 साल आपने काम कर लिया, उसके बाद या 15 साल के बाद फिर सोचते थे कि हमको घर बनाना है या हमको कुछ कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है। लेकिन आजकल की जनरेशन जो है उनका वे ऑफ थिंकिंग है कि बहुत अर्ली स्टेज ऑफ कैरियर में उनको सब कुछ मिल जाना चाहिए, उनको कार लेनी है, उनको घर बनाना है, जो भी चीजें, तो एस्पिरेशंस जो है वो बहुत बढ़ रहे हैं। और इसमें मैं कहूंगी कि बहुत हद तक इंटरनेट से जो एक्सपोजर हुआ है लोगों को, जो दूसरे लोगों की स्टोरीज वो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि अरे उसने तो इतनी जल्दी ये सब कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर पाया, तो इसमें एक वो उनको लगता है अच्छा मैं कुछ और ज्यादा तेजी से कर लूंगा तो शायद मुझे भी ये मिल जाएगा। तो ये एक दौड़ने की टेंडेंसी और रशिंग टेंडेंसी लोगों में इसकी वजह से डेवलप होती जा रही है और उसको पॉज करने की बहुत जरूरी है। हर पर्सन में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो बहुत अर्ली स्टेज में बहुत ज्यादा कमा के बहुत हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाए, और आपको ये भी नहीं पता कि अगर वो पहुंच भी गया तो क्या वो वहां खुश है, क्या वो वहां संतुष्ट है, क्या हमारे मन की संतुष्टि ज्यादा जरूरी है या भागकर लाइफ में कुछ बहुत कुछ अचीव कर लेना ज्यादा जरूरी है। तो उस परिस्थिति को अगर हम देखते हैं तो पॉज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा ये नहीं सिखा सकते लेकिन फिर भी जो है एटलीस्ट एक एडवांस मिडिल एज पे आके कम से कम आपको कि पॉज लेना, कि लाइफ में प्रकृति को देखना, अपने आसपास के एनवायरमेंट को एब्जॉर्व करना, उसके साथ एक खुशी की फीलिंग होना और अपने रिलेशनशिप्स के पर फोकस करना, ये सारी चीजें जो है ये बहुत जरूरी है।
1: आपका इंस्टीट्यूट आम लोगों की जिंदगी में इस तरह की कोई मदद कर सकता है, जो लोग चाहें कि उन्हें प्रकृति के निकट आकर अपने अवसाद को या किसी भी तरीके के तनाव को दूर करना है, तो उसमें आपके इंस्टीट्यूट की कोई भूमिका होती है?
0: देखिए, भारतीय वन प्रबंध संस्थान, इसका नाम ही है कि ये वन के प्रबंध का संस्थान है और ये हमारा इंस्टीट्यूट एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और जिसके आसपास काफी जंगल है और हम लोगों का एक क्लब भी, हम लोगों का एक एडवेंचर क्लब भी है, एक नेचर क्लब है। तो नेचर क्लब इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो करता रहता है कि जिसमें बर्ड वॉचिंग के लिए जो है वो स्टूडेंट्स के ग्रुप्स आते हैं तो उनको भी बर्ड वॉचिंग के लिए उनको गाइडेड विजिट कराना फॉरेस्ट का। एक नेचर ट्रेल हमारे यहाँ बनी हुई है, नेचर ट्रेल में जाके बर्ड वॉचिंग कराना, हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो बर्ड वॉचिंग के एक्सपर्ट्स हैं तो वो, और हमारी फैकल्टीज भी हैं तो वो साथ में उनको ले जाके एंड गाइडेड टूर इंस्टीट्यूट का कराते हैं। उसके अलावा और भी बर्ड वॉचिंग के ग्रुप्स हैं और नेचर ट्रेल्स के ग्रुप्स हैं तो उनके साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो है वो स्टूडेंट्स को हम लोग नेचर के क्लोज लाना और नेचुरल वाइल्ड एनिमल्स और नेचर और बर्ड्स, उनके साथ एक कनेक्ट की फीलिंग डेवलप कराना, उसमें हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, करते भी हैं और आगे और भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, सेंटर फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप चेयरपर्सन हैं, हम उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या है वो और कैसे काम करता है।
0: देखिए, सेंटर फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2018 में हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया था। एक इंडस्ट्रीज़ के लिए एक जो कॉर्पोरेट लॉ है उसके अंडर 2% ऑफ प्रॉफिट दे हैव टू स्पेंड इन CSR एक्टिविटीज़। तो उसमें बहुत सारी जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सो उनसे लेके कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो इंडस्ट्रीज़ कर सकती हैं, और वो अपना 2% के अंदर उनको कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलप करने होते हैं, और उन प्रोजेक्ट्स को समाज के लिए और पर्यावरण में सुधार के लिए उनको उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करना होता है। सो हमारी संस्था जो हमारा जो सेंटर है, सेंटर फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग इन प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। इतना मनी जो है वो सारे कॉर्पोरेट्स का आता है जो CSR के लिए उनको स्पेंड करना है, लेकिन क्या ये पैसा सही जगह इस्तेमाल हुआ? जिन प्रोजेक्ट्स में उन्होंने इस पैसे को लगाया, उन प्रोजेक्ट्स ने एक्चुअली में सोसाइटी को कुछ इम्पैक्ट दिया या नहीं दिया? तो इसका आकलन जो है ये एक साइंटिफिक टेक्निक रहती है। सोशल साइंटिस्ट जो हैं हम लोग इन प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। सो बहुत सारी कंपनीज के जो CSR प्रोजेक्ट्स थे, सो उनके इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए हम लोगों ने काफ़ी इस सेंटर में पिछले सालों में काम किया। इसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग्स भी देते हैं, जैसे कॉर्पोरेट्स में जो लोग काम करते हैं वो CSR के लिए किस तरह से इक्विप्ड हैं, उनको नॉलेज है या नहीं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए, किससे सोसाइटी को ज्यादा बेनिफिट होगा, कैसे उनको बेसलाइन स्टडी करें कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नीड बेस्ड हों, कि जो सोसाइटी के लोग चाहते हैं उसी हिसाब से प्रोजेक्ट्स हों।
1: एक और आखिरी सवाल मैडम, कि कुछ बच्चों को प्रकृति के निकट रहना, बर्ड वॉचिंग, कई बच्चों को बड़ा शौक होता है, लेकिन वो इसे अपना प्रोफेशन कैसे बनाए, उसमें IFM क्या हेल्प कर सकता है या किस तरह के कोर्सेज हैं, अगर आप उसके बारे में बताना चाहें।
0: देखिए, बर्ड वॉचिंग तो एक हॉबी की तरह से है,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: कुछ लोग इसको प्रोफेशन बना लेते हैं अगर उनकी फोटोग्राफी स्किल्स भी बहुत अच्छी होती हैं, और उसके अलावा बर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन वो लोग कर लेते हैं, उनको पता होता है कि कौन कौन से बर्ड्स का क्या नाम है, क्या उनका नेचर है, किस सीजन में वो आते हैं। जैसे अभी इस सीजन में एशियन फ्लाई कैचर जो है वो भोपाल में आई हुई है, तो सारे बर्ड वॉचर्स जो है वो उनके नेस्टिंग का टाइम है एंड उनके चिक्स वगैरह देखने के लिए काफी जो है, मुझे भी बहुत शौक है, मैं भी जाती हूँ। और पिट्टा इस समय आया हुआ है तो ये साउथ से आता है, तो ये इनके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। हमारा इंस्टीट्यूट जो है, हम लोगों के यहाँ 4 कोर्सेज MBA प्रोग्राम्स चलते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट डीम टू बी यूनिवर्सिटी अभी 2 साल पहले हम लोग डिक्लेयर हुए थे, 3 साल पहले। तो हम लोग एक कोर्स है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम MBA इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एक प्रोग्राम है MBA इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, और 2 प्रोग्राम्स हम लोगों ने नए लास्ट ईयर स्टार्ट किए हैं। एक है डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल फिनेंस और एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ये प्रोग्राम्स जो हैं इसमें हम लोग मैनेजमेंट एजुकेशन तो स्टूडेंट्स को देते ही हैं, जो कि सारे ही मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस मैनेजमेंट एजुकेशन को हम फॉरेस्ट्री के फील्ड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं
1: जी,
0: इंडस्ट्रीज जो हैं वो सस्टेनेबिलिटी के फील्ड पे कैसे अप्लाई कर सकती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का क्या एप्लीकेशन हो सकता है। आजकल क्लाइमेट फाइनेंस और ग्रीन फाइनेंस के बारे में बहुत बात हो रही है, तो हमारा डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल फाइनेंस का कोर्स जो है वो मैनेजमेंट एजुकेशन बट अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सो इस तरह से ये 4 कोर्सेज हमारे हैं, और हमारा काफ़ी अच्छा, मैं प्लेसमेंट चेयरपर्सन भी हूँ, और काफ़ी अच्छा इंडस्ट्रीज़ का रिस्पांस इसके लिए रहता है। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं आजकल सारी इंडस्ट्रीज़ को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश करना जो है वो कंपलसरी है, सो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और हमारे एल्यूमिनाय जो हैं पास्ट के वो बहुत कंपनीज़ के, कंसल्टिंग कंपनीज़ के पार्टनर्स हैं और CEOs हैं और सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर्स हैं एंड चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर्स तक हैं या कंपनीज ओन करते हैं। सो बिकॉज इस इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री जो है वो काफ़ी पुरानी है, 1982 का ये इंस्टीट्यूट है, सो काफ़ी अच्छा इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स का सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट करने की एक हिस्ट्री रही है।
1: डॉक्टर पारुल ऋषि जी, आप इतने व्यस्त समय में से हमारे लिए इतना समय निकाला और हमें बहुत बहुत सरल शब्दों में ये बताने की कोशिश भी की कि किस तरीके से पर्यावरण हमारे मनोविज्ञान पर असर डालता है, और हमें दोस्तों उम्मीद है कि ये बातचीत सुनने के बाद निश्चित ही आप अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से भले ही आधा घंटा निकालें पर कहीं ना कहीं प्रकृति के करीब जाइए, क्योंकि जैसा आपने मैडम की बातों में सुना कि अगर आप नदी के पास जाते हैं तो आपके भीतर उन्मुक्तता का भाव आता है, जब आप अपनी 4 दीवारी के बीच में से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आप में आज़ादी की भावना आपको अच्छी लगती है और आप उसी की तरीके से जीवन जीने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच मैडम, आप यहाँ पर आए और आपने इतना समय दिया। थैंक यू।
0: थैंक यू मनीषा जी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: कर ले घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी। प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद,

0: पर श्रोताओ, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को और ये कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। श्रोता, यह कार्यक्रम एक छोटा सा प्रयास है हमारा, जिसके माध्यम से हम अपनी भारतीय सेना को, उसके कार्यकलापों को और उसके द्वारा देश के गौरव को बनाए रखने के लिए किए गए तमाम ऑपरेशंस आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हम अपनी सेना को और अधिक सम्मान दे सकें, मान दे सकें और अपने हर सैनिक पर और भी अधिक गर्व कर सकें। इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले वीरों की महान गाथा कारगिल के युद्ध के रूप में हमारे सामने है और हमारे कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में हम इसी पर आपसे चर्चा करते आ रहे हैं। श्रोताओ, ऑपरेशन विजय के रूप में हमने कारगिल से दुश्मन को किस तरह निकाल बाहर किया और उन आसमान छूती हुई चोटियों पर अपना विजय ध्वज लहराया, इसके बारे में लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा से हमने विस्तृत रूप में इन कड़ियों में जाना है। अब इस शौर्य गाथा की चर्चा करते हुए हम कारगिल युद्ध की श्रृंखला की अंतिम कड़ी पर आ पहुंचे हैं। श्रोताओं, बेहद ही मुश्किल और नामुमकिन सी परिस्थितियों को मुमकिन बनाने का नाम था ऑपरेशन विजय। हर सिपाही की बस एक ही धुन थी, या तो विजय या वीरगति। बस ऐसे ही जज्बे के साथ ये जंग लड़ी गई और हमने इसमें विजय पाई। इस युद्ध से जुड़ी और भी बातें और तथ्य, जिनका जिक्र किए बिना हमारी ये श्रृंखला अधूरी रह जाएगी, इन्हें साझा करने के लिए हमारे बीच एक बार फिर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्हें भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने का लगभग 20 वर्षों का अनुभव रहा है और अपनी सेवाओं के दौरान कारगिल क्षेत्र का वृहद अनुभव भी रखते हैं। सर, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: नमस्कार पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं। पूर्वा जी, ये जो जंग है
0: जी,
1: जिसे हम इतने एपिसोड्स में इसका जिक्र किया है
0: जी,
1: तो ये इंटेंस लेवल पे जारी थी
0: जी,
1: और भारतीय सेना प्रयासरत थी कि कुछ भी हो जाए, जो भी इंट्रूडर्स हैं उनको खत्म करना है। और ये जो 130-134 किलोमीटर के एरिया में जो इंट्रूजन हुआ था
0: जी,
1: जैसे हमने देखा धीरे धीरे करके जो है हर जगह हमने विजय प्राप्त करी
0: जी,
1: और इंट्रूडर्स को या तो खत्म किया या उनको वहां से खदेड़ दिया। एंड जितनी नामुमकिन लगने वाली चोटियां थी
0: जी,
1: जैसे टाइगर हिल थी, इस पे हमने विजय प्राप्त करी। एंड नो डाउट इट वाज ए इनक्रेडिबल एंड वेरी ब्रेव एक्ट ऑफ अवर सोल्जर्स, ऑफ अवर ऑफिसर्स हू लेड फ्रॉम द फ्रंट। हमने उनका सबका जिक्र किया हमारे पिछले एपिसोड में, जैसे हमने कैप्टन हनीफुद्दीन का जिक्र किया था
0: जी हाँ, जिन्हें सर वीर चक्र मिला था
1: जी
0: जी,
1: जिन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ते हुए अपने प्राणों को निछावर किया था, ठीक है, शहीद हुए थे। और उनके ही सम्मान में जो है उस सेक्टर को सब सेक्टर हनीफ का नाम दिया गया है
0: जी,
1: और उन्हीं के एफर्ट्स थे जिसके बाद जो है उनकी यूनिट एक बहुत ही मतलब जो है मेजर फीचर 0.5990 जिसको कैप्चर करने में सफल रही थी। तो ऐसे कई वीरों का हमने जिक्र किया और इन सबके जो सामूहिक प्रयास के कारण हमें ये सफलता मिली थी
0: जी। बिल्कुल सर,
1: एक एपिसोड और है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे।
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: 0.5770 एक पीक है, मतलब ये सोल्टोरो रिज जिसका हमने सियाचिन ग्लेशियर में भी जिक्र किया था, तो उसमें सदर्न ग्लेशियर में लोकेटेड है। तो ये जो फीचर है
0: हाँ जी,
1: इसके नीचे मतलब जो है चालुंगला आता है। आपको याद होगा हमने बताया था कि सोल्टोरो रिज के ऊपर सियाला, बिलाफोंडला, चालुंगला ये पासेस हैं
0: जी जी,
1: जिससे कि आप ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवर्स
0: आ जा सकते हैं जी।
1: तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जो ये फीचर है, डोमिनेटिंग फीचर जो है, ये चालुंगला को डोमिनेट करता है।
0: अच्छा,
1: चालुंगला जो है, जो दोनों शोल्डर्स है, मतलब जो दर्रा
0: दोनों छोर है, हाँ,
1: उसके जो दोनों छोर है, दोनों
0: हाँ जी, जी।
1: तो ईस्टर्न शोर जो है वो इंडियन आर्मी के पास है और वेस्टर्न जो है वो पाकिस्तान के पास।
0: अच्छा,
1: और दोनों जो फोर्सेस हैं वो हमेशा ये प्रयासरत रही है कि हमें जो है इसका पूरा कब्जा मिले
0: जी।
1: खासकर पाकिस्तान ने काफी बार अटैक करा कि उनको ईस्टर्न शोल्डर जो है उस पे वो
0: इनके पास कब्जा आ जाए,
1: लेकिन वो हमेशा फेल रहे। क्योंकि 0.5770 जो है वो इसके ऊपर लोकेटेड, मतलब इसको डोमिनेट करती है
0: जी,
1: तो उस लोकेशन के जो टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है
0: जी,
1: बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो दोनों ही आर्मीज जो है, दोनों का ये एफर्ट था कि किसी तरह से इस 5770 के ऊपर
0: हमारा अधिकार हो,
1: हमारा अधिकार
0: जी।
1: तो 98 में भी इंडियन आर्मी ने एफर्ट किया था इसके ऊपर कब्जा करने के लिए, लेकिन अगर आप फीचर की कभी फोटो भी देखेंगे
0: जी,
1: तो इट्स अ वेरी स्टीप क्लाइम।
0: अच्छा जी।
1: एंड बहुत ज्यादा, मतलब हाइट भी बहुत ज्यादा है, स्टीप क्लाइम भी है
0: जी।
1: फिर जो वहाँ वेस्टर्न साइड से, मतलब जो पाकिस्तान की तरफ है, वहां से उसको चढ़ने में फिर भी आसानी है, लेकिन हमारी तरफ से जो उसका ईस्टर्न फेस था वो तो ऑलमोस्ट मतलब बिल्कुल ही वर्टिकल
0: जी, यानी भारत की ओर से जो चढ़ाई थी वो बहुत कठिन है,
1: बिल्कुल बहुत ही ज्यादा ही कठिन थी। तो जब उस समय भी प्रयास किया था तो जो ऑब्जेक्टिव यानी कि चोटी पे नहीं पहुंच पाए थे।
0: अच्छा,
1: बट उसमें एक बात ये रही थी कि इस 5770 के नॉर्थ और साउथ में इस फीचर में हम अपनी पोस्ट एस्टैब्लिश करने में सफल हो गए।
0: अच्छा,
1: लेकिन जब ये पोस्ट एस्टैब्लिश हुई थी तो पाकिस्तान ने उसके बाद से कंटिन्यूसली इसमें इंटरफेरेंस रखा था, तो ये बहुत जरूरी था कि हम इसको पूरी तरह से डोमिनेट करें और इस पे कब्जा करें
0: जी।
1: तो जून 99 में वंस अगेन इट वाज प्लान टू कैप्चर इट, एंड दिस टाइम इट वाज डिसाइडेड कि हम जो है ईस्टर्न फेस से, यानी हमारी तरफ से ही चढ़ेंगे।
0: अच्छा।
1: अब जो ईस्टर्न फेस है इट इज अ वर्टिकल क्लाइम,
0: मतलब सीधी चढ़ाई है,
1: बिल्कुल सीधी आइस वॉल है, और वो भी कम नहीं, मतलब मोर देन 900 to 1000 मीटर्स। ये बहुत मुश्किल होता
0: जी,
1: है
0: जी जी।
1: मैंने खुद अपनी ट्रेनिंग में करा है, तो हम इवन 100 मीटर सीधे चढ़ने में बहुत मुश्किल होता है, 90 डिग्री पे आपको लाइक ए स्पाइडर यू आर क्लाइंबिंग, ठीक है, फोर पॉइंट करना होता है, ठीक है, आइसेक्स की और मदद से
0: जी।
1: तो उसके लिए एक स्पेशल टीम को सेलेक्ट किया गया।
0: अच्छा।
1: और बहुत छोटी टीम थी जिसमें 6 लोग थे, 2% ईच फ्रॉम 27 राजपूत जो यूनिट है।
0: अच्छा।
1: एंड लदाख स्काउट के थे और हॉस हाईल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल
0: जो है जी,
1: तो उसके इंस्ट्रक्टर थे। तो ये जो टीम थी उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई, मतलब आपको जो है इसमें क्लाइंब करना है, पर फिर भी ये देखिए कि इतनी छोटी सी टीम को भेजना
0: जी,
1: मतलब एक अपने आप में आप
0: बहुत बड़ी चुनौती,
1: बहुत बड़ी चुनौती है
0: जी, जी।
1: और उनको नहीं मालूम कि ऊपर जाके क्या होने वाला है, कैसा उनको हालात मिलेंगे। तो इस टीम को लीड कर रहे थे मेजर नवदीप सिंह चीमा, वेरी करेजियस एंड बोल्ड ऑफिसर। जून के एंड में, आई थिंक 27 जून को दिस टीम कमेंस द ऑपरेशन, इन्होंने जो है चढ़ना शुरू किया। और अब ये देखिए कम से कम 7 से 8 घंटे लगातार, मतलब जो है इन्होंने क्लाइम किया है उस समय, मतलब लगातार वर्टिकल क्लाइम करना, मतलब उनकी हिम्मत देखिए, उनकी बहादुरी देखिए, उनका जज्बा देखिए आप जो है। और ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है
0: जी।
1: उस समय जो है आइस के ऊपर जब आप कर रहे होते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना, मतलब जो है कम
0: जी,
1: है। तो ये सब बातों के मद्देनजर रखते हुए, मतलब आई वुड लाइक यू टू अप्रिशिएट दिस कि कितना, मतलब उनके लिए एक डिफिकल्ट टास्क
0: जी,
1: था।
0: बहुत ही साहसिक काम है सर।
1: बिल्कुल। तो ऊपर जब ये पहुंचे हैं एंड टू देयर अटमोस्ट सरप्राइज दे फाउंड कि वहां पे पाकिस्तानी सोल्जर पहले से बैठे हुए थे।
0: ओहो।
1: और शायद वो भी ऑलमोस्ट उसी समय पहुंचे थे।
0: अच्छा।
1: उससे मतलब या तो एक दिन पहले पहुंचे थे, क्योंकि वो लोग वहां देखा गया था कि वो अपनी पोस्ट की तैयारी कर रहे थे।
0: अच्छा।
1: पोस्ट को कंस्ट्रक्ट करने की तैयारी कर रहे थे।
0: जी।
1: अब इन्होंने जब गिनती करी तो वो शायद तकरीबन 11-12 लोग थे। अब ये लोग उनसे आधे 6 लोग थे
0: जी।
1: बट देन मेजर चीमा टुक ए बोल्ड डिसीजन एंड दे अटैक्ड।
0: अच्छा। ऊपर चढ़ने के बाद,
1: ऊपर चढ़ने के बाद जब उन्होंने देखा, क्योंकि इनको एक फायदा ये था कि सरप्राइज इनके साथ था, बिकॉज वो जो टीम थी उन्होंने इनको नहीं देखा था।
0: हाँ, और वो सर वो शायद कल्पना भी नहीं कर पा रहे होंगे कि इस तरफ से कोई आ सकता है जी।
1: एंड सेकेंडली उस समय जो एक स्प्लिट सेकेंड में ये डिसीजन लेना कि करना क्या है
0: जी, जी,
1: ये
0: जी,
1: बहुत बड़ी चुनौती होती है
0: जी। यही तो एक लीडर की पहचान है।
1: बिल्कुल, यही एक लीडर की पहचान है कि मुझसे डबल स्ट्रेंथ है और ये नहीं मालूम है कि इसमें और कितना सपोर्ट अवेलेबल है।
0: जी जी,
1: क्योंकि हमारी तरफ से तो बहुत डिफिकल्ट था चढ़ना, लेकिन उनकी तरफ से फिर भी मतलब आसान था। तो ये तो दिख रहा था कि चलो 11 लोग हैं, पर हो सकता है उसके नीचे और भी काफी लोग हों, एंड उनके पास आर्टिलरी सपोर्ट भी था।
0: अच्छा।
1: जबकि इस पूरे ऑपरेशन में सरप्राइज मेंटेन करने के लिए आरटी सपोर्ट, आरटी फायर भी नहीं किया गया था।
0: तो
1: ये पूरी की पूरी टीम जो थी, इतनी छोटी सी टीम, ये सब कुछ अपने ही लेवल पे कर रही थी। एंड दे टुक द डिसीजन, दे अटैक्ड एंड दे किल्ड ऑल द 11-12 पाकिस्तानीज।
0: क्या बात है
1: जी। और उसके बाद जो उन्होंने स्पोर्ट्स के ऊपर कैप्चर कर लिया, विच वाज अ मेजर मेजर विक्ट्री,
0: बहुत बढ़िया।
1: और जैसे ही आप ये सोचिए, ये नहीं कि उन्होंने पोस्ट करी है, आप पहुंच गए हैं, आपने उनको खत्म कर दिया, वो नहीं है। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। और हुआ भी यही, उसने इमीडिएटली जो है आर्टिफायर आना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने जैसे ही देखा उसने आर्टिफायर शुरू कर दिया, तो ये लोग वहां पे डटे रहे जो है। एंड फाइनली मतलब दे वर एबल टू सस्टेन एंड कैप्चर द पोस्ट जो हमारे पास रही।
0: क्या बात है।
1: एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड टफेस्ट ऑपरेशंस जो कि बाना पोस्ट के बाद मतलब देखा गया था।
0: सर सुनने से ही एक रोमांच आ जा रहा है कि किस तरह से हुआ होगा।
1: क्लाइम कर रहे हैं
0: जी, ठीक है। और इतने घंटों की चढ़ाई के बाद आप पहुंचे और उसके बाद आक्रमण भी कर दिया और विजय भी पाई
1: जी। तो मतलब जो टीम थी, आप उनका देखिए, उनका डिवोशन देखिए
0: जी।
1: सी द इमेजिन द ब्रेवरी ऑफ द सोल्जर्स, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लीडरशिप जो क्वालिटीज हैं, मतलब वो आप सोचिए कि कितना इनमें मतलब जज्बा होता है ना। एंड इट इज मतलब आई मस्ट से इट इज अनपैरेलल्ड, देयर डिवोशन टू ड्यूटी एंड टू
0: अवर नेशन, बिल्कुल
1: असाधारण है जी। तो उन्हीं के ऑनर में जो है स्टॉप को जो है नवदीप टॉप कहा जाता है।
0: अच्छा।
1: एंड इसमें जो इनके साथी थे कैप्टन शामिल सिन्हा, उनको भी अदम्य साहस के लिए भी चक्र मिला था।
0: अच्छा। जी।
1: और जैसे मैंने आपको अभी जिक्र किया था कि सरप्राइज मेंटेन करने के लिए इसमें कोई आर्टिफायर सपोर्ट नहीं था इसको, इनको जो है
0: जी।
1: तो ये भी एक ऐसा ऑपरेशन था जो उस दौरान हुआ था
0: जी,
1: जो हमने अपने इनिशिएटिव पे किया था इंडिया में।
0: सर इतनी ऊंची चढ़ाई पर वो अपने जो हथियार लेकर गए थे उसी से उनने दुश्मन पर विजय पाई।
1: बिल्कुल। और उनके पास सिर्फ अपने हथियार थे और जो हमारा फौज अमनेशन बोलते हैं जो साथ में था वो था। और इमेजिन करिए उसके बाद उनके पास राशन भी था और उनके पास जो है विंटर मतलब इतनी ठंड से बचने के लिए जो इक्विपमेंट भी है, फिर माउंटेनियरिंग का इक्विपमेंट है क्योंकि वो चढ़ने के लिए।
0: हाँ जी।
1: तो इतना सारा सामान और इतनी विपरीत परिस्थितियों में
0: ऊपर लेकर चढ़ना
1: और
0: फिर उसके बाद लड़ाई करना
1: इट्स अ बिग चैलेंज। तो इतने बहादुर सोल्जर्स के होते हुए तो आप यकीन मानिए कि कोई देश का बाल नहीं बाका।
0: इसीलिए तो सर आप हम जैसे जो आम नागरिक हैं वो बहुत निश्चिंत रहते हैं।
1: नहीं, आम तो नहीं है, आप सब लोग खास हैं। एंड यस आई मस्ट से सो कि इट इज द डेडिकेशन एंड डिवोशन ऑफ दिस सोल्जर्स दिस ऑफिसर्स बिकॉज ऑफ विच वी आर सेफ
0: जी,
1: वी आर प्रोटेक्टेड। तो कारगिल का जो ये ऑपरेशन था
0: जी,
1: अगर हमने अभी तक जैसे जितने ऑपरेशंस देखे हैं, हमने सारे जिक्र करा, 47 का किया
0: जी,
1: लड़ाई देखी, फिर उसके बाद 62 का भी किया
0: जी।
1: ड्यूरेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह से सबसे लंबा ड्यूरेशन।
0: हाँ सर, लगभग 2 महीने
1: देख लीजिए, 2 महीने करीब हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि इट वॉज वेरी इंटेंस।
0: हाँ जी।
1: ऑल्दो ये एक बहुत छोटी लोकेशन में मतलब जो है, इट वाज नॉट स्प्रेड आउट ऑन द होल कंट्री ऑन द होल फ्रंटेज
0: जी,
1: लेकिन इसका जो इंटेंस थी,
0: भीषणता बहुत थी सर,
1: बहुत ज्यादा
0: जी जी।
1: जैसे हमने देखते आए हैं लगातार जो है किस तरह से रोज जो ऑपरेशन हो रहे थे, रोज जो है किस तरह से मतलब फायरिंग हो रही है
0: जी।
1: और ये तो आप लोगों ने लाइव भी देखा था, टीवी
0: हाँ
1: भी देखा था
0: सर, हमें भी कुछ ना कुछ मेमोरी में है अभी।
1: उस समय तो मतलब दिस वाज फर्स्ट ऑपरेशन आई थिंक जिसको पूरा लाइव दिखाया गया था।
0: ये क्वेश्चन भी था सर, एक प्रश्न ये भी था आपसे कि पहली बार इस तरह का एक अनुभव था देश के लिए भी, स्वयं सेना के लिए भी, कि एक मीडिया कवरेज उनको मिला। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है सर कि फ्रंट पे क्या हो रहा है, घटित हो रहा है, वो आम जनों तक पहुंचने में काफी देर लगती है। तो ये शायद पहला एक्सपीरियंस रहा सेना का भी और देश का भी कि लोगों ने इस युद्ध को लाइव देखा।
1: हम बिल्कुल लाइव देखा, तो उनको एहसास भी था इस बात का कि क्या हो रहा है।
0: हाँ जी।
1: और कैसे हो रहा है, ठीक है, कितने एफर्ट्स लग रहे हैं
0: जी,
1: कैसे दुश्मन ने हमारे साथ क्या किया है,
0: धोखेबाजी करी है।
1: तो ये सब चीजें भी जो है लोगों को समझ में आई। हमने जिक्र भी किया था कि इसकी जो मतलब डिफिकल्टी थी इन ऑब्जेक्टिव्स को कैप्चर करने की, उसमें मतलब कितना रेशो कितना ज्यादा था,
0: क्योंकि
1: माउंटेन्स क्या है, डिफेंडर को सपोर्ट करते हैं। कई बार तो मतलब दुश्मन के जितने लोग थे उससे 9 से 10 गुना हमको ज्यादा अपनी फोर्सेस एम्प्लॉय करनी पड़ी। और काफी जो बातें सामने आई थी, जैसे हमने देखा कि बफोस का डायरेक्ट फायर जो था बहुत इफेक्टिव रहा
0: जी।
1: और एक जो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि एलओसी क्रॉस नहीं करना।
0: हाँ सर, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी हमारी,
1: सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। लेकिन ये देखिए, इस लिमिटेशन ने पूरे विश्व में हमें एक बहुत ही सम्मान
0: की स्थिति में लाया सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप जी।
1: तो उसके बाद पूरे विश्व में ये स्थापित हुआ कि ये जो कार्य करा गया है, ये जो इंट्रूजन है, ये गलत कार्य पाकिस्तान ने किया है,
0: उनकी ओर से है,
1: उनकी ओर से है। एंड सो दैट्स व्हाई वी वर एबल टू गार्नर वेरी फेवरेबल सपोर्ट
0: जी, पूरे विश्व से हमें इसका समर्थन मिला सर,
1: बिल्कुल एट इंटरनेशनल लेवल वी वर एबल टू गार्नर द गुड सपोर्ट। ये एक ऑपरेशन था, मतलब जिसमें अगेन जो ब्रेवरी थी, डिवोशन ऑफ ड्यूटी था, उसके लिए ऑलमोस्ट मोर देन 260 डिफेंस पर्सनल्स वर कन्फर्ड विद गैलेंट्री अवार्ड्स।
0: जी हाँ सर, मेरे ख्याल से सर आजाद भारत में पहली बार इस एक युद्ध में इतने गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए।
1: बिल्कुल दिए गए
0: जी।
1: और मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर ये 265-270 अवार्ड मिले थे
0: जी,
1: तो आप ये देखिए कि इसके अलावा भी शायद उससे दुगने तिगने बहादुर लोग थे,
0: बिल्कुल सर,
1: जिन्होंने अपना कार्य किया है
0: जी।
1: ये तो ठीक है, देवर आउटस्टैंडिंग जिनको कि अवार्ड मिला है,
0: सबने अपनी अपनी ड्यूटी पूर्णता निभाई।
1: अगर अगर 10 लोग गए हैं तो डेफिनेटली 10 को तो नहीं दिया जा सकता
0: जी सर,
1: तो एक को अगर दिया गया तो बाकी 9 ने भी उससे ज्यादा अच्छा काम
0: जी, क्योंकि सर ये काम तो कोऑर्डिनेशन वाला ही काम है।
1: बिल्कुल, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना हम कोई अवार्ड्स दिए गए हैं
0: जी,
1: उसे आप ये लगाइए कि 4-8 गुना लोग जो हैं उन्होंने उस डिवोशन, उस बहादुरी से
0: लड़ाई की है,
1: वो भी मतलब इक्वली,
0: बिल्कुल सर,
1: इस अवार्ड के मतलब हकदार हैं, रादर उनको भी ये मिला है
0: जी।
1: हम इसका जिक्र कर चुके हैं, 4 PVCs, परमवीर चक्र हाँ, जो मिले थे, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार, ग्रेनेडियर्स योगेंद्र सिंह यादव, ठीक है, और इसमें 9 महावीर चक्र मिले थे, मेजर सोनम वांगचोक, मेजर विवेक गुप्ता, मेजर राजेश सिंह अधिकारी, मेजर पद्मपनी आचार्य, कैप्टन अनुज नायर, कैप्टन एन करग्रूस, कैप्टन के सी नोंगरूम, लेफ्टिनेंट बलबान सिंह, नायक दिगेंद्र सिंह, इसके अलावा 55 वीर चक्र मिले थे, जिसमें कि 2 जो थे इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मिले थे।
0: अच्छा,
1: और भी जो है काफी सारे अवार्ड से जो मिले थे, सर्वोत्तम युद्ध सेना मेडल, सेवा मेडल, देन उत्तम युद्ध सेवा मेडल, ठीक है, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल्स गैलेंट्री से, वायु सेना मेडल से, तो एक तरह से यस, दिस वाज द रिकॉग्निशन ऑफ द एफर्ट्स व्हिच हैज बीन पुट बाय द सोल्जर्स कि दीस अवार्ड्स वर कन्फर्ड टू देम। इस ऑपरेशन के बाद हमें काफी चीजें सीखने को मिली।
0: बिल्कुल सर, मैं इसी पे आना चाहती थी सर कि इस युद्ध ने हमें सिखाया क्या।
1: बहुत कुछ सिखाया, हर युद्ध हमें कुछ ना कुछ सिखाता ही है
0: जी, बिल्कुल।
1: उसके बाद ऑन एवरी फास्ट पेस द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस स्टार्टेड टेकिंग प्लेस
0: जी,
1: हमें इस बात का एहसास हुआ कि हमारे को सेल्फ डिपेंडेंसी
0: बहुत आवश्यक है,
1: एमिनेशन के ऊपर बहुत ज्यादा है, उसी का नतीजा देखिए आप
0: जी, बिल्कुल सर,
1: अच्छा मतलब हम कर रहे हैं, रादर वी हैव स्टार्टेड नाउ एक्सपोर्टिंग
0: जी, अब तो
1: हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स
0: हथियार निर्यात कर रहे हैं सर,
1: बिल्कुल सर, इन मच डिमांड नाउ,
0: बिल्कुल,
1: वी हैड रीच्ड, मतलब वी हैड टेकन अ जायंट लीप, आई मस्ट से
0: जी,
1: एक उस वक्त से कि जब हम पूर्णतः डिपेंडेंट थे और जो है उसके बाद जो है
0: जी,
1: अभी हमारी अपनी मतलब जो है वी आर सेल्फ डिपेंडेंट ऑन आवर सेल्फ, ठीक है
0: जी,
1: मेक इन इंडिया,
0: बिल्कुल सर,
1: वाला जो बात है, देन देयर वर लॉट ऑफ अदर चेंजेस आल्सो व्हिच टुक प्लेस, जो हमें इसमें जो सीखने मिले थे व्हिच एक्चुअली स्ट्रेंथन्ड आवर आर्म फोर्सेस जो है। मैं समझता हूँ कि एक तो बात यह है कि हमें कभी दुश्मन पे भरोसा नहीं करना चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल सर,
1: कुछ भी हो जाए,
0: सही बात है, चाहे वो कितने भी गले मिले लेकिन पीछे से आपको वापस वार कर सकते हैं।
1: You have to be very vigilant,
0: बहुत चौकन्ना रहना जरूरी है,
1: बिल्कुल जो है
0: जी,
1: वो बहुत जरूरी चीज है। तो ये सब चीजें हैं जो चलती रही, एंड I must say we can end this, मेरी तरफ से जो है मैं सिर्फ उन लोगों को सबको जिन्होंने अपने प्राण निछावर किए
0: जी
1: इस युद्ध में, उन सबको श्रद्धांजलि देता हूँ और उन सबको हम हमेशा याद रखेंगे
0: जी, बिल्कुल सर,
1: और जो बहादुर सैनिक जिन्होंने जो है हमारे साथ हैं, जिन्होंने इसमें जो है वीरता दिखाई
0: जी,
1: वो हमारे लिए हमेशा जो है एक प्रेरणा का स्रोत रहेंगे,
0: बिल्कुल सर। तो श्रोताओं, अपने तिरंगे की शान में कोई कमी ना रह जाए, हमारा ये तिरंगा नीचे न झुक जाए, इसके लिए भारतीय सेना के कई जवान कारगिल में शहीद हो गए। ऑपरेशन विजय का विजय पथ हमारे शहीदों के रक्त से रचा गया है, जिसे हम देशवासियों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इस सिलसिले में चंद पंक्तियां हम इस कार्यक्रम के अंत में आपको सुनाना चाहेंगे, जो कि राम नरेश त्रिपाठी जी की हैं, कि यदि रक्त बूंद भर भी होगा कहीं बदन में, नस एक भी फड़कती होगी समस्त तन में, यदि एक भी रहेगी बाकी तरंग मन में, हर एक सांस पर हम आगे बढ़े चलेंगे, वो लक्ष्य सामने है पीछे नहीं टलेंगे। मंजिल बहुत बड़ी है पर शाम ढल रही है, सरिता मुसीबतों की आग उगल रही है, तूफान उठ रहा है प्रलयाग्नि जल रही है, हम प्राण होम देंगे हंसते हुए जलेंगे, पीछे नहीं टलेंगे आगे बढ़े चलेंगे, आगे बढ़े चलेंगे। तो श्रोताओ, कारगिल युद्ध की इस श्रृंखला को इन्हीं पंक्तियों के साथ हम समापन की ओर ले जा रहे हैं और मिलते हैं आपसे कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। कार्यक्रम हमारा है हमारी सेना हमारा गर्व। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सर, आप आज स्टूडियो में आए और आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू पूर्वा जी। एंड जो आपने ये पंक्तियां बोली हैं बहुत ही मायने रखती हैं, बहुत ही अच्छी लगी। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जय हिंद श्रोताओं, जय हिंद पूर्वा जी।
0: जय हिंद सर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना थी अदिति गौर की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का, और मैं थी आपके साथ आपके अपनी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो दीजिए अनुमति अब इस कार्यक्रम से। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार,
2: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम देश के संस्थान।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने जाना था हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल की प्रेरक कहानी। दादू से रुचि ने जाना कि कैसे हाल लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और अन्य वायुयान बनाकर भारत की आकाशीय शक्ति को नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। लेकिन क्या केवल विमान बना लेना ही पर्याप्त है? क्या एक लड़ाकू विमान बिना रडार, बिना संचार प्रणाली और बिना आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है? यही प्रश्न आज रुचि के मन में भी है। आइए चलते हैं दादू और रुचि के घर पर।
1: दादू, पिछली बार हमने हाल के बारे में चर्चा की थी। तेजस लड़ाकू विमान और ध्रुव हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी पाकर अब मेरे मन में और भी सवाल आने लगे हैं दादू। आज आपको उन सभी सवालों के जवाब देने होंगे। बताइए ना, आप मेरे सवालों के जवाब देंगे ना दादाजी?
0: अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है बिटिया, बिल्कुल दूंगा। चलो आज मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाता हूँ।
1: अरे वाह, मैं रेडी हूँ दादाजी। वैसे आज आप किस बारे में बताने वाले हैं?
0: सोचो सोचो, दिमाग लड़ाओ बिटिया।
1: पिछली बार आपने बताया था कि हाल विमान बनाती है, लेकिन विमान को रास्ता कौन दिखाता है? दुश्मन के विमान की पहचान कौन करता है? सैनिकों तक संदेश कौन पहुंचाता है? आज मुझे इसी बारे में जानने को मिलेगा। सही कहा ना मैंने?
0: अरे बिल्कुल सही कहा बिटिया, शाबाश। क्या बात है, लगता है तुम अब इन देश के संस्थानों की विशेषज्ञ बनने वाली हो।
1: क्या दादू, आप भी ना, अब बताइए भी।
0: हाँ हाँ बताता हूँ। सुनो बेटा, जिस प्रकार शरीर में आंखें, कान और मस्तिष्क महत्वपूर्ण होते हैं, उसी तरह किसी भी आधुनिक सेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां महत्वपूर्ण होती हैं। और भारत में ऐसी प्रणालियों के निर्माण का सबसे बड़ा नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL।
1: तो आज हम BEL की कहानी सुनने वाले हैं।
0: हाँ बिटिया, आज हम उस संस्था की कहानी जानेंगे जो दिखाई कम देती है लेकिन देश की सुरक्षा में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है।
1: दादू, BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की शुरुआत हुई कब थी?
0: किसी भी संस्था की कहानी जानने के लिए उसके जन्म का कारण जानना बहुत जरूरी होता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में बेंगलुरु में की गई थी।
1: अच्छा।
0: हाँ, उस समय भारत को रक्षा क्षेत्र में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बहुत जरूरत थी।
1: भला ऐसा क्यों दादाजी?
0: बेटा, आजादी के बाद भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी। देश को अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी थी, सेना को आधुनिक बनाना था और रक्षा क्षेत्र में विदेशी देशों पर निर्भरता भी कम करनी थी। और फिर सरकार चाहती थी कि देश अपनी जरूरतों के लिए किसी विदेशी कंपनियों पर निर्भर ना रहे। बस यही कारण था BEL की स्थापना का।
1: दादाजी, मतलब आत्मनिर्भर भारत का सपना तब से देखा जा रहा था?
0: बिल्कुल, आज जैसे हम आत्मनिर्भर भारत कहते हैं ना बेटा, उसकी नींव ऐसे ही संस्थानों ने दशकों पहले रखनी शुरू कर दी थी।
1: मतलब उस समय भारत में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं बनते थे?
0: बहुत कम बनते थे बेटा। सेना को रडार, संचार उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। युद्ध या संकट के समय ये निर्भरता बहुत बड़ी समस्या बन सकती थी।
1: तभी सरकार ने इसका समाधान खोजा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना करके। अच्छा दादाजी, तो आज BEL कितनी बड़ी संस्था है?
0: आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत सरकार का एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये केवल एक कारखाना नहीं है बल्कि देश भर में फैली अनेक उत्पादन इकाइयों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों का विशाल नेटवर्क है बेटा। इसके 9 प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं, जहां हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ कार्य करते हैं। और तुम्हें पता है,
2: इसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त है।
1: नवरत्न का क्या मतलब हुआ दादाजी?
2: देखो बेटा, भारत सरकार कुछ उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उनके शानदार प्रदर्शन, लाभप्रदता, तकनीकी क्षमता और राष्ट्रीय योगदान के आधार पर विशेष दर्जा देती है। इसे नवरत्न का दर्जा कहा जाता है।
1: तो क्या ये रक्षा मंत्रालय के अधीन बनाया गया संस्थान है?
2: बिल्कुल, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की विशेष और चुनौतीपूर्ण जरूरतों को पूरा करना था, इसलिए इसे रक्षा मंत्रालय के अधीन रखा गया।
1: तो दादाजी, इसका पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया?
2: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बेटा।
1: बेंगलुरु में?
2: उस समय बेंगलुरु धीरे धीरे विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा था, इसलिए BEL की पहली उत्पादन इकाई वहीं स्थापित की गई।
1: दादू, आपने

0: रहा होगा ना?
1: बिल्कुल, जैसे जैसे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की आवश्यकता बढ़ती गई, BELB नई तकनीकों और नए उत्पादों के साथ आगे बढ़ती गई। छोटे से कारखाने ने धीरे धीरे एक विशाल संगठन का रूप लेना शुरू कर दिया बेटा।
0: पर दादू, इसकी इतनी सारी इकाइयाँ क्यों हैं?
1: क्योंकि BEL अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती है। अलग अलग इकाइयाँ अलग अलग तकनीकों और प्रणालियों के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है बेटा।
0: मतलब किसी एक बड़ी मशीन के पुर्जे अलग अलग जगह बनाकर फिर वो एक जगह पहुँचाए जाते हैं।
1: बिल्कुल, इसके अलावा देश भर में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं बेटा, और न्यूयॉर्क और सिंगापुर में भी इसके कार्यालय स्थापित हैं।
0: वाह, यानी BEL की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करती है।
1: बिल्कुल बेटा।
0: दादू,
1: हाँ?
0: आखिर BEL ऐसा क्या बनाती है जो सेना के लिए इतना महत्वपूर्ण है?
1: यदि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को हम सेना की उड़ान कहें, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उसकी आँख, कान और मस्तिष्क है बेटा।
0: पर ये भला कैसे?
1: बिटिया रानी, अभी तो बताया मैंने तुम्हें, BEL रडार प्रणालियां बनाती है, और रडार दूर स्थित वस्तुओं को पता लगाने में मदद करता है। तुम है ना बेटा, बादाम खाना शुरू करो रुचि।
0: दादू, आप भी ना, जब देखो तब मेरा मजाक बनाते रहते हैं। मैं भूल जाती हूँ कभी कभी, पर मेरे प्यारे दादू है ना मुझे सब कुछ बताने के लिए, तो फिर से बता दीजिए।
1: अच्छा है बेटा, दादू को पेड़ पर चढ़ाते जाओ तुम।
0: क्या दादू, आप भी ना, आप मुझे ये बताइए कि क्या इन रडार प्रणालियों से दुश्मन का विमान सीमा से दूर हो तब भी उसका पता लगाया जा सकता है?
1: बिल्कुल लगाया जा सकता है बेटा। इसके अलावा BEL सैन्य संचार उपकरण बनाती है, जिससे सैनिक सुरक्षित रूप से संदेश भेज और प्राप्त कर सकते हैं।
0: अच्छा दादाजी, ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली क्या है?
1: देखो बेटा, आज युद्ध केवल हथियारों से नहीं तकनीक से लड़े जाते हैं, है ना? तो ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली दुश्मन की संचार व्यवस्था और रडार को बाधित करने में सहायता करती है।
0: यानी अब तकनीक को भी हथियार बना लिया गया है।
1: BEL नौसेना प्रणालियाँ, टैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर ऊर्जा प्रणालियाँ और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी विकसित करती है।
0: दादू, ये रडार किस तरह की तकनीक है?
1: रडार को समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं बेटा। मान लो तुम किसी पहाड़ी के सामने खड़ी होकर जोर से आवाज लगाओ, कुछ समय बाद वही आवाज लौट कर तुम्हारे पास आती है, जिससे प्रतिध्वनि या इको कहते हैं।
0: हाँ, मैंने पहाड़ों में ऐसा होते देखा है।
1: हाँ, रडार भी ऐसा ही कुछ करता है बेटा।
0: अच्छा,
1: वो रेडियो तरंगें भेजता है, ये तरंगें किसी विमान, जहाज या मिसाइल से टकराकर वापस लौटती है। लौटने में लगे समय से उसकी दूरी, दिशा और गति का पता लगाया जाता है।
0: वाह दादाजी, यानी रडार हवा में देखने वाली आँख की तरह काम करता है।
1: बिल्कुल बेटा।
0: दादू, फिल्मों में तो युद्ध बंदूक और टैंकों से होता है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्या होता है?
1: बेटा, आज के आधुनिक युद्ध में ना जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। बिटिया रानी, यदि दुश्मन की संचार व्यवस्था बंद कर दी जाए, उसके रडार को भ्रमित कर दिया जाए या उसके संकेतों को पकड़ लिया जाए, तो बिना गोली चलाए भी बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
0: फिर वही बात कि आज तकनीक भी युद्ध का हिस्सा बन चुकी है।
1: तभी तो BEL जैसी संस्थाएं देश की सुरक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
0: दादू, ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होता है? मैंने इसके बारे में कहीं तो पढ़ा है।
1: देखो बेटा, जब किसी मशीन के अंदर विशेष कार्य करने वाला सॉफ्टवेयर लगाया जाता है, तो उसे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, जैसे वॉशिंग मशीन, कार, मोबाइल या मिसाइल के अंदर लगे विशेष प्रोग्राम।
0: तो इसका मतलब कि BEL केवल हार्डवेयर नहीं बनाती, सॉफ्टवेयर भी बनाती है।
1: हाँ बिल्कुल, आधुनिक रक्षा प्रणाली में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है।
0: दादू, अगर कोई BEL ज्वाइन करना चाहे तो उसे क्या तैयारी करनी होगी? कितने पद होते हैं, उसमें भर्ती कैसे होती है, जरा ये सब भी तो बताइए।
1: हाँ हाँ बेटा, बताता हूँ। ये सवाल केवल तुम्हारे मन में नहीं, बल्कि देश के लाखों विद्यार्थियों के मन में आता है। BEL केवल कंपनी नहीं बल्कि ऐसा संस्थान है जहां विज्ञान, तकनीक, अनुसंधान और प्रबंधन से जुड़े अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं।
0: मतलब वहां केवल इंजीनियर ही काम नहीं करते?
1: नहीं, अक्सर लोग सोचते हैं कि BEL में केवल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ही काम करते होंगे, लेकिन वास्तव में यहाँ अनेक प्रकार के विशेषज्ञ कार्य करते हैं बेटा।
0: जैसे
1: यहाँ वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, डेटा विश्लेषक, तकनीशियन, प्रोजेक्ट मैनेजर, वित्त अधिकारी, मानव संसाधन अधिकारी और कई अन्य विशेषज्ञ कार्य करते हैं बेटा।
0: इतने सारे लोग? यानी अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के लिए बहुत सारे अवसर हैं दादाजी।
1: बिल्कुल, किसी भी बड़े संगठन की सफलता के पीछे अनेक प्रकार की प्रतिभाएं मिलकर काम करती हैं बेटा।
0: दादू, वैसे यहाँ कौन कौन से पद होते हैं?
1: कुछ ही पद मुख्य रूप से होते हैं बेटा, जैसे कि ट्रेनी इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोबेशनरी इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान विशेषज्ञ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, तकनीशियन, डिप्लोमा इंजीनियर, वित्त अधिकारी, मानव संसाधन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, परियोजना प्रबंधक, ये सब होते हैं बेटा।
0: मतलब पढ़ाई के अनुसार अलग अलग अवसर मिल सकते हैं?
1: बिल्कुल मिल सकते हैं।
0: दादू, फिर यदि कोई छात्र अभी स्कूल में पढ़ रहा हो तो उसे किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए?
1: सबसे पहले गणित और विज्ञान की नींव मजबूत होनी चाहिए।
0: इसका कोई खास कारण है दादाजी?
1: क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और तकनीकी विषयों की जड़ गणित और विज्ञान ही है बेटा।
0: और आगे?
1: यदि कोई BEL में तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या संबंधित विषयों में अध्ययन करना चाहिए।
0: तो क्या केवल इंजीनियरिंग करने वाले ही BEL में जा सकते हैं?
1: नहीं, वित्त प्रबंधन, मानव संसाधन, कानून और प्रशासन से जुड़े पदों के लिए अन्य शैक्षणिक योग्यताएं भी मान्य होती हैं बेटा।
0: दादाजी, क्या BEL में भर्ती मुश्किल से होती है?
1: नहीं, बहुत कठिन भी नहीं होती। भर्ती के लिए BEL समय समय पर विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी करती है बेटा।
0: फिर आगे की प्रक्रिया क्या होती है?
1: उम्मीदवारों को आवेदन करना होता है। कई पदों के लिए लिखित परीक्षा होती है, कुछ पदों के लिए गेट जैसी परीक्षाओं के अंकों को भी महत्व दिया जाता है।
0: और फिर उसके बाद?
1: फिर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है। उम्मीदवार के ज्ञान, समस्या समाधान क्षमता और तकनीकी समझ का मूल्यांकन किया जाता है।
0: इसका मतलब ये है कि केवल डिग्री होना ही काफी नहीं है?
1: बिल्कुल नहीं बेटा, व्यावहारिक ज्ञान, आत्मविश्वास और सीखने की इच्छा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक कौशल जरूरी होता है।
0: दादू, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए?
1: बेटा, आज के समय में केवल किताबों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है।
0: सो तो है दादू।
1: विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की भी खासी जरूरत होती है, जैसे कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, प्रोग्रामिंग की मूलभूत समझ, संचार कौशल, टीम वर्क की समझ होना, समस्या समाधान में दक्षता होना चाहिए, तार्किक सोच होनी चाहिए, नई नई तकनीकें सीखने की आदत के साथ उसे इन सब विषयों के बारे में जिज्ञासु भी होना चाहिए।
0: मतलब दादू, पढ़ाई और कौशल दोनों जरूरी है?
1: बिल्कुल जरूरी है बेटा।
0: पर दादू, अब मुझे थोड़ा ना डर लग रहा है।
1: अच्छा?
0: ये सब सुनकर इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ बस बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही पहुँच सकते होंगे।
1: नहीं बिटिया, प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है मेहनत, अनुशासन और निरंतर सीखने की इच्छा।
0: ये तो सही कहा आपने। लेकिन दादू, जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है ना, क्या भविष्य में भी BEL जैसी संस्थाओं की आवश्यकता उस समय भी रहेगी?
1: पहले से भी अधिक होगी बिटिया।
0: अच्छा?
1: आज दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्या कहते हो तुम लोग, AI, AI, साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक, रोबोटिक्स और क्वांटम संचार की ओर बढ़ रही है बेटा।
0: इसका मतलब कि BEL भी इन क्षेत्रों पर फोकस कर रही है।
1: हाँ, आधुनिक रक्षा तकनीकों में इनका महत्व लगातार बढ़ रहा है। इसलिए आने वाले वर्षों में तकनीकी ज्ञान रखने वाले युवाओं के लिए अनेक अवसर होंगे।
0: दादू, BEL की कहानी से विद्यार्थियों को सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है?
1: तीन बातें हैं रुचि, जिनका ध्यान हर एक पढ़ने वाले बच्चे को रखना चाहिए।
0: अच्छा।
1: पहला, आत्मनिर्भर बनो। दूसरी बात कि विज्ञान और तकनीक को अपनाओ, उसे समझो, उसे जानो। तीसरी बात, अपनी प्रतिभा का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के विकास के लिए करो।
0: यानी पढ़ाई केवल नौकरी के लिए नहीं, राष्ट्र निर्माण के लिए भी होना चाहिए दादाजी।
1: हाँ बेटा, ये बात समझदार है मेरी पढ़ाकू बिटिया। बिल्कुल सही समझा बेटा तुमने। जब कोई वैज्ञानिक नया रडार बनाता है, कोई इंजीनियर नई प्रणाली विकसित करता है, या कोई शोधकर्ता नई तकनीक खोजता है, तब वो केवल अपना करियर नहीं बना रहा होता बेटा,
0: बल्कि वो देश को भी मजबूत बना रहा होता है दादाजी। और बड़े राष्ट्र केवल सैनिकों की बहादुरी से नहीं बनते, उनके पीछे वैज्ञानिकों की बुद्धि, इंजीनियरों की मेहनत, तकनीशियनों का कौशल और विद्यार्थियों के सपने होते हैं। सही कहा ना मैंने दादाजी?
1: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल 10 में से 10 नंबर देता हूँ बेटा मैं तुमको।
0: अच्छा।
1: देखो बेटा, BEL जैसे संस्थान देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का विद्यार्थी ही कल का वैज्ञानिक, इंजीनियर और राष्ट्र निर्माता बनेगा।
0: अच्छा दादू, एक और सवाल है, क्या BEL केवल सेना के लिए काम करती है?
1: नहीं बिटिया, BEL का योगदान आम नागरिकों के जीवन में भी दिखाई देता है।
0: वो भला कैसे?
1: क्या तुमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी AVM का नाम सुना है?
0: वो तो चुनाव में उपयोग होती है ना?
1: हाँ, इन मशीनों के निर्माण में BEL की महत्वपूर्ण भूमिका है बेटा।
0: मतलब लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भी BEL का बड़ा योगदान है?
1: बिल्कुल है। इसके अलावा BEL ने सौर ऊर्जा चलित ट्रैफिक सिग्नल, सेटअप बॉक्स और कम लागत वाला टैबलेट भी बनाया था, जिसका उपयोग जनगणना के दौरान किया गया बेटा।
0: वाह दादू, BEL तो रक्षा और विकास दोनों में योगदान देती है।
1: बिल्कुल बेटा।
0: क्या BEL अन्य कंपनियों के साथ मिलकर भी काम करती है?
1: हाँ हाँ, इसे संयुक्त तो उपक्रम कहा जाता है बेटा।
0: तो फिर इसका कोई उदाहरण बताइए ना दादाजी।
1: देखो बेटा, BEL ने GE हेल्थ केयर के साथ मिलकर चिकित्सा उपकरणों के निर्माण का कार्य किया।
0: मतलब रक्षा क्षेत्र से बाहर स्वास्थ्य क्षेत्र में भी योगदान?
1: हाँ, वही तो बता रहा हूँ बेटा। एक अन्य संयुक्त उपक्रम ब्रिटेन की मल्टीटोन कंपनी के साथ भी स्थापित किया गया।
0: उसमें BEL का क्या योगदान था?
1: उसमें बेटा BEL उन्नत मोबाइल संचार उपकरण और डिजिटल संचार प्रणालियाँ विकसित करता है।
0: अच्छा। क्या BEL के सामने कभी कठिन समय भी आया दादाजी?
1: हाँ बेटा, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए, तब कुछ देशों ने भारत पर तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए थे।
0: फिर क्या हुआ?
1: फिर विदेशी तकनीक और उपकरण प्राप्त करना कठिन हो गया।
0: दादू, ये तो बड़ी समस्या रही होगी।
1: हाँ बेटा, लेकिन BEL के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्वदेशी तकनीक विकसित करने का संकल्प ले लिया।
0: यानी संकट अवसर बन गया।
1: हाँ, यही आत्मनिर्भरता की शुरुआत थी बेटा।
0: दादाजी, आज आत्मनिर्भर भारत की चर्चा हर जगह होती है, आप ये बताइए BEL इसमें कैसी योगदान देती है?
1: हाँ बेटा, जब देश स्वयं अपने रक्षा उपकरण और तकनीक विकसित करता है तो विदेशी निर्भरता कम होती है, तो ये आत्मनिर्भर बनना ही तो हुआ ना।
0: यानी देश का धन भी बचता है और तकनीक भी देश में ही विकसित होती है।
1: हाँ, इससे रोजगार बढ़ता है, अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है और राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होती है।
0: दादू, क्या BEL समाज के लिए भी कुछ करती है?
1: हाँ बेटा, BEL केवल उत्पादन नहीं करती बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाती है।
0: वो भला कैसे?
1: देखो, विद्यालयों, अस्पतालों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संस्थाओं को सहायता भी प्रदान करती है।
0: दादू, ये तो बहुत प्रेरणादायक है।
1: हाँ बेटा, सच्ची प्रगति वही है जिसमें समाज का हर वर्ग शामिल हो।
0: और हमारा पर्यावरण?
1: BEL पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके कारखानों को शून्य प्रदूषण उद्योग माना गया है बेटा।
0: शून्य प्रदूषण उद्योग?
1: हाँ, यानी ऐसे उद्योग जहाँ जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम रखा जाता है।
0: और सौर ऊर्जा वाले ट्रैफिक सिग्नल्स?
1: वो भी इसी सोच का हिस्सा है, ऊर्जा बचाओ, पर्यावरण बचाओ।
0: दादू, आज मुझे समझ में आया कि BEL केवल एक कंपनी नहीं है, ये भारत की सुरक्षा, तकनीकी प्रगति, लोकतंत्र, समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण की मजबूत आधारशिला है।
1: बिल्कुल बिटिया, BEL उसे देखने, समझने और सुरक्षित रखने की तकनीकी शक्ति प्रदान करता है। आत्मनिर्भर भारत का सपना ऐसे ही संस्थानों के प्रयासों से साकार हो रहा है बिटिया।
0: सही कहा दादाजी आपने।
2: तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड केवल एक औद्योगिक संस्था नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। तकनीक, सुरक्षा, समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण, हर क्षेत्र में इसका योगदान प्रेरणादायक है। तो इसी संदेश के साथ अब हम आपसे लेते हैं विदा।
1: नमस्कार
2: श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, वाचन स्वर था भगवती सक्सेना,
1: दीपक नेमा,
2: लेखन था स्वाति गिरी का। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल, देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश के संस्थान। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं मंगल पांडे पर केंद्रित कार्यक्रम याद करो कुर्बानी।
1: सुनाओ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है याद करो कुर्बानी। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं मंगल पांडे की।
2: याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी।
1: श्रोताओं, एक बहुत पुरानी कहावत है, बीज हमेशा मिट्टी के नीचे काम करता है। जब वह अंकुर के रूप में सिर उठाकर के प्रकट होता है तभी लोग उसे देख पाते हैं। और सन 1857 का विद्रोह इसी प्रकार उस समय सामने आया जब विद्रोह फूट पड़ा, पर वह बहुत पहले से जमीन के भीतर नीचे नीचे दौड़ रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुराने राजकुलों को एक न एक बहाने से समाप्त करने की नीति जारी रखी हुई थी। यहां जो थोड़े बहुत उद्योग धंधे थे, जैसे कि कपड़े का धंधा, उसे मैनचेस्टर और लंकाशायर के स्वार्थ की दृष्टि से नष्ट कर डाला गया। यहां तक कि बुनकरों के अंगूठे काट दिए गए और इन्हीं कारणों से जनता में विद्रोह की भावना बढ़ रही थी। मुख्यतः लोगों में विदेशियों के प्रति द्वेष था, पर यह कहना गलत होगा कि जनता की कोई आवाज नहीं थी, केवल राजाओं और सामंतों का ही षड्यंत्र और विद्रोह था। इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा ब्योरा मिल जाता है, मगर यहां पर बरेली के आंदोलन की कुछ घोषणाएं हुई थी उसकी चर्चा हम करते हैं। उसमें कहा गया था, ईश्वर की दी हुई वस्तुओं में सबको आजादी है, जिसने हमें इन्हें अलग कर दिया है क्या वह हमेशा हमको इनसे अलग रख पाएगा? क्या ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध ऐसा ही होता रहेगा? नहीं, फिरंगियों ने इतना अत्याचार किया है कि अब उनका प्याला भर चुका है, वे अब हमारे धर्म को भी बिगाड़ने पर उतारू हैं। क्या ईश्वर की यह इच्छा है कि तुम इन्हें बैठे बैठे देखा करो? उठो, ईश्वर ने अंग्रेजों को निकालकर बाहर करने के लिए जोश पैदा करो। सभी भाई भाई हैं, हमें किसी तरह का भेद नहीं होना चाहिए। बात सन 1853 में पहले पहल भारतीय फौज में नए कारतूस बांटे गए थे। इन कारतूसों में चर्बी का प्रयोग हुआ था और वह चर्बी सुअर या गाय की चर्बी थी। फौज के अंदर भारतीयों में इससे बड़ा असंतोष था, लेकिन इन कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। कहा जाता था कि एक दिन कलकत्ता के पास दमदम नामक गांव में एक ब्राह्मण सिपाही लोटे में पानी भर करके रास्ते में जा रहा था और उसी समय वहां पर एक सरहरा समाज का व्यक्ति आया और उसने कहा कि ये लोटा मुझे दे दो, मैं पानी पीऊंगा। इस पर ब्राह्मण ने कहा, यह कैसे हो सकता है? तेरे छूने से मेरा लोटा अपवित्र हो जाएगा। इस पर उस महाशय ने कहा, अब वे दिन लद गए महाराज, क्या आपको मालूम नहीं है कि जल्दी ही तुम्हें दांत से उन कारतूसों को खोलना पड़ेगा जिनमें गाय की चर्बी लगी हुई होती है। नए कारतूस इसलिए जानबूझकर गाय की चर्बी डाल करके बनाए गए ताकि तुम्हारा अभिमान दूर हो सके। इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे, मगर आप पहले सुनिए एक छोटा सा देशभक्ति गीत, उसके बाद बताएंगे कि आगे क्या हुआ।

फरंगियों ने जानबूझकर यह सब किया था ताकि हिंदू और मुसलमानों का धर्म नष्ट हो सके। खबर यह थी कि कारतूसों में गाय का खून और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। सब सिपाही फौरन जुलूस बनाकर फरंगी अफसर के पास पहुंच गए। उनसे पूछा गया कि क्या ऐसी बात है, कारतूसों में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए निषिद्ध वस्तुओं का प्रयोग किया गया है। इस पर फिरंगी अधिकारी ने कहा, नहीं। पर अधिकारी ने झूठ बोला था, जैसे कि अब अंग्रेजों के लिखे ब्योरे से पता लगता है। लॉर्ड रॉबर्ट आदि जिन लोगों ने भी ये लिखा स्वीकार किया कि सचमुच निषिद्ध वस्तुएं कारतूसों में इस्तेमाल की गई थीं। उस समय के लिए सिपाही लौट गए, पर भीतर ही भीतर असंतोष और बेचैनी की धुंध उनके ऊपर छाती रही। अन्य सैकड़ों आर्थिक सामाजिक कारणों में एक यह भी कारण जुड़ा था कि लोगों में किस तरह से फिरंगियों के प्रति द्वेष सुलग रहा था, और इसका प्रमाण एक अंग्रेज पादरी रविंद्रन कैनेडी के ब्योरे से ज्ञात होता है। मेरे साथ एक अच्छी जान पहचान वाला एक मौलवी मृत्युशैया पर था। यह आदमी हम लोगों का दोस्त लगता था। मैं मृत्युशैया पर पहुंचा तो मैंने पूछा, क्यों मौलवी साहब, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? वह मौलवी उत्तेजित हो गया कि मुझे अफसोस है तो बस इस बात का कि मैंने अपने जीवन में दो अंग्रेज भी नहीं मारे। श्रोताओं, इस तरह से आम जनता के अंदर असंतोष बढ़ता रहा, बातें होती रहीं। आगे इसके बाद क्या हुआ यह हम आपको बताएंगे एक छोटे से देशभक्ति गीत के बाद। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो उन दिनों ब्रिटिश सरकार की थी, सब कुछ जानते हुए चर्बी वाले कारतूसों को बंगाल में मौजूद सैनिकों को देने का इरादा कर लिया था उसने। बैरकपुर की सेनाएं इसके लिए चुनी गई थी। मजे की बात तो यह है कि पहले से ही ये सेनाएं वजीर अली खां के नेतृत्व में विद्रोह में भाग लेने की शपथ ले चुकी थीं। और तय यह हुआ था कि 19 नवंबर को रेजिमेंट को नए कारतूस दिए जाएंगे। पर यह रेजिमेंट तो पहले से ही क्रांति का पुजारी बन चुका था। उसने कारतूस लेने से इनकार कर दिया और अंग्रेजों से यह कह दिया गया कि जरूरत पड़ी तो इस मामले पर तलवार भी चला सकते हैं। इस पर अंग्रेज अफसरों ने रेजिमेंट के दमन का निश्चय किया, पर जब देखा कि सैनिकों ने तलवार निकाल ली है तो अधिकारी पीछे हट गए, क्योंकि आसपास कहीं भी गौरी फौज नहीं थी। और यह तय हुआ कि बर्मा से जल्दी गौरी फौज का एक रेजिमेंट यहां बुलाया जाए। और साथ ही यह भी तय हुआ 19 नवंबर के रेजिमेंट में भारतीयों को अस्त्रहीन कर दिया जाए और उस रेजिमेंट को तोड़ दिया जाए। बागियों को इसकी खबर लग गई, यद्यपि इसका पूरी तरह पक्का पता नहीं लग सका। अजीब सी बात थी कि बैरकपुर में ही सबसे ज्यादा उतावलापन था और ब्रिटिश अधिकारियों ने यहीं पर दमन चक्र चालू करना चाहा। ब्रिटिश अधिकारी ये सोच रहे थे और उधर बागी कुछ और सोच रहे थे। वे सोच रहे थे कि किसी भी हालत में अपना अपमान नहीं होने देंगे। सैनिक का सबसे बड़ा अपमान है उसके अस्त्र छीन लेना। मंगल पांडे इन दिनों सैनिकों में सबसे ज्यादा जोशीला था। उसने जब सुना कि फिरंगी अधिकारी सारी तैयारियां कर रहे हैं तो उसने यह चाहा कि क्रांति फौरन शुरू कर दी जाए। पर जो लोग क्रांति के लिए तैयार और संगठित हो रहे थे उन्हें एक तारीख तय कर दी गई और वे चाह रहे थे कि उस दिन एक साथ सारी छावनियों में विद्रोह का बिगुल बज उठे। मंगल पांडे की समझ में यह बात नहीं आई कि उसने यह कहा कि दूसरी तारीख पर विद्रोह का झंडा बुलंद करें पर मंगल पांडे वाला रेजिमेंट पहले विद्रोह करे, क्योंकि निर्धारित तारीख तक शायद मंगल पांडे रेजिमेंट में रहें या ना रहें। मंगल पांडे विद्रोह का निमंत्रण देते हुए परेड के मैदान में एक सिंह की तरह फिरता रहा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा, यद्यपि सभी उत्तेजित थे। इतने में अंग्रेज सार्जेंट मेजर ह्यूसन ने मंगल पांडे को देखा। उसमें स्वयं कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, पर उसने खड़े खड़े तमाशा देखने वाले सिपाहियों से कहा, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लो। पर किसी भी सिपाही ने उंगली नहीं हिलाई और कोई भी मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। सिपाही स्वयं विद्रोह में शरीक नहीं हो रहे थे, पर वे इस हद तक मंगल पांडे के साथ हो चुके थे कि अंग्रेज और बागियों की लड़ाई में निष्पक्ष तो नहीं, क्योंकि उनकी सहानुभूति मन से मंगल पांडे की थी। बहुत ही कठिन समय था। मंगल पांडे के हाथ में भरी हुई बंदूक थी। उनकी आत्मा रक्तदान और रक्त लेने के लिए तड़प रही थी। उसमें भारतीय साथी इधर उधर खड़े थे और गोरे अफसर ने एक आदेश दिया। इतने में लोगों ने देखा कि मंगल पांडे ने बंदूक संभाल ली है और ठाए ठाए की आवाज हुई और सार्जेंट मेजर ह्यूसन वहीं जमीन पर लुढ़क गया। इसी समय एक दूसरा अंग्रेज अफसर घटनास्थल पर आया। अफसर का नाम था लेफ्टिनेंट बाग। यह अफसर घोड़े पर था। मंगल पांडे ने फिर बंदूक उठाई और उसकी गोली घोड़े पर जाकर के लगी। घोड़ा और सवार दोनों जमीन पर लुढ़क गए। मंगल पांडे बंदूक फिर से भर ही रहा था कि गोरा अफसर उठ करके खड़ा हुआ और उसने अपनी पिस्तौल निकाल करके मंगल पांडे पर चलाई। मंगल पांडे अभी बंदूक भर भी नहीं पाया था, पर लेफ्टिनेंट का निशाना चूक गया और मंगल पांडे ने तलवार निकाल ली। तब गोरे लेफ्टिनेंट ने भी तलवार निकाल ली, पर गोरा अभी वार नहीं कर पाया था कि मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट का काम तमाम कर दिया। श्रोताओं, आगे बहुत ही दिलचस्प किस्सा है, हम आपको बताएंगे इस छोटे से देशभक्ति गीत के बाद। आइए सुनते हैं पहले प्यारा सा देशभक्ति गीत।

यह सब एक क्षण में हो गया। मंगल पांडे ने दो गोरे अफसरों को मार दिया था। इतने में एक गोरा और आया, उसने मंगल पांडे पर हमला कर दिया। वह अभी हमला कर ही भी नहीं पाया था कि एक सिपाही ने उसे देखा और वह शायद मंगल पांडे को गिरा देगा। तो उस सिपाही ने बड़े जोर से गोरे के सिर पर अपनी बंदूक का कुंदा मार दिया। अब तो विद्रोह केवल मंगल पांडे तक नहीं बल्कि उससे आगे बढ़ चुका था। गोरे आ रहे थे और इतने में एक आवाज सी उठी, भारतीय सिपाहियों के अंदर से मंगल पांडे को मत छुओ, उसे अलग छोड़ो। और इसके बाद सेना का एक बड़ा गोरा अफसर कर्नल व्हीलर घटनास्थल पर पहुंच गया। उसने स्वयं कुछ नहीं किया पर यह हुक्म दिया, सिपाहियों मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लो। भारतीय सैनिकों की भीड़ एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई, पर अगले ही मुहूर्त उसमें से आवाज उठी कि हम ब्राह्मण देवता का बाल बाका नहीं होने देंगे, कह करके सिपाही गुमसुम हो गए। जब कर्नल व्हीलर ने यह देखा कि मंगल पांडे अंग्रेजों के रक्त से सना खड़ा है, अंग्रेजों की लाशें पड़ी हैं और सिपाही हुक्म नहीं मान रहे हैं, तो वह अपने बंगले पर लौट गया। मंगल पांडे अभी तक हाथों को जोर से फटकारते हुए लोगों को बगावत करने के लिए कह रहे थे, भाइयों बगावत करो, अब देर नहीं करनी चाहिए, पर सिपाही उसी तरह चुप खड़े रहे। बागी तो वे हो ही चुके थे, फिर भी किसी झिझक के कारण वे आगे नहीं आना चाहते थे, पर अंग्रेज चुपचाप बैठने वाले नहीं थे। जब खबर पहुंची कि इस तरह मंगल पांडे ने भयंकर रूप से बगावत कर दी है, तो जनरल हेयरिस दूसरे गोरे सिपाहियों को लेकर के घटनास्थल पर पहुंच गया। मंगल पांडे ने जब यह देखा तो गोरों की एक और टुकड़ी आई है, तो भारतीय सिपाही खुल करके फिर तो सामने आ गए। वे समझ गए कि अब गिरफ्तारी से बच नहीं सकते हैं। वे किसी भी हालत में जिंदा पकड़े जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बंदूक अपने सीने से लगा ली और दाग दी। मंगल पांडे वहीं परेड के मैदान में अपनी ही गोली से घायल होकर के गिर पड़े। जब अंग्रेजों ने देखा कि मंगल पांडे गिर पड़ा है, तो वे उसके पास गए, जबकि मंगल पांडे तब मरे नहीं थे, इसलिए उन्हें अस्पताल भेज दिया गया और अंग्रेज अफसर अपने स्थान पर लौट गए। श्रोताओं, इसके बाद क्या हुआ हम आपको बताएंगे इस छोटे से देशभक्ति गीत के बाद। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा देशभक्ति गीत।

0: मंगल पांडे ने यह समझकर गोली मारी थी कि मैं मर जाऊंगा, पर वे अस्पताल में ठीक हो गए। उनसे पूछा गया कि तुम्हारे और साथी कौन कौन हैं। इस पर उन्होंने सभी साथियों का नाम लेने से इंकार कर दिया और साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जिन अंग्रेज अफसरों पर उन्होंने गोली चलाई है उनसे उनका किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं था। झगड़ा व्यक्तियों का नहीं था बल्कि राष्ट्रों का था। वे किसी प्रकार बदला लेने के लिए बागी नहीं हुए थे बल्कि उनका उद्देश्य देश को फ्रेंगियों के राज से छुटकारा दिलाना था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने गोली चलाकर के क्रांति का झंडा बुलंद किया था। जल्द ही उन पर मुकदमा चला। सभी जानते थे कि इस मुकदमे में क्या होने वाला है। मंगल पांडे भी जानते थे कि उन्हें कुछ परवाह नहीं थी। वे मातृभूमि के लिए बलिदान होने के लिए तैयार थे। उस समय शायद मातृभूमि का विचार इतना प्रबल नहीं था जितना कि धर्म का था। अफसोस है कि मंगल पांडे के मुकदमे का और उन्होंने जो बयान दिया उसका ब्यौरा प्राप्त नहीं है हमारे पास। उस समय कौन जानता था कि मंगल पांडे का स्थान भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में सबसे अव्वल आएगा। वे ब्रिटिश युग के प्रथम महत्वपूर्ण क्रांतिकारी शहीद माने जाएंगे। श्रोताओं, सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी। 1857 के 8 अप्रैल को फांसी का दिन निर्धारित हुआ। उस दिन मंगल पांडे को फांसी देने के लिए बैरकपुर के अंदर कोई भी आदमी नहीं मिला क्योंकि एक योद्धा के रूप में उनकी ख्याति फैल चुकी थी। लोग यह जान चुके थे कि धर्म की रक्षा के लिए मंगल पांडे ने लड़ाई की है, इसलिए कोई उन्हें फांसी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। और अंत में कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाए गए जो नहीं जानते थे कि उन्हें किसे फांसी देनी है। उन्होंने मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया और इस प्रकार भारत भूमि अपने वीर संतान के रक्त से एक बार फिर पवित्र हो गई। मंगल पांडे शहीद हो गए। उनका आतंक बहुत दिनों तक अंग्रेजों के मन पर छाया रहा। श्रोताओं, ये शहादत की कहानी थी मंगल पांडे की, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे पहले रणयोद्धा थे। इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: याद करो कुर्बानी, याद करो।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मंगल पांडे की शहादत की कहानी आप सुन रहे थे कार्यक्रम याद करो कुर्बानी में 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
3: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं परिक्रमा। प्रस्तुत है शहर में आज की सांस्कृतिक और साहित्यिक जगत से जुड़ी कुछ प्रमुख गतिविधियाँ। भारत भवन में शाम को पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह की नृत्य नाट्य प्रस्तुति कथा सियाराम की आयोजित की जा रही है। ये कार्यक्रम भारतीय शास्त्रीय नृत्य और आध्यात्मिक परंपरा का सुंदर संगम प्रस्तुत करेगा। सियाराम में डॉक्टर मानसिंह ने भरतनाट्यम और ओडिसी शैली अभिनय, शास्त्रीय संगीत और काव्यात्मक प्रस्तुति के माध्यम से रामायण के प्रमुख प्रसंगों की भावपूर्ण यात्रा कराई। 83 साल की उम्र में भी नृत्य साधना कैसे हो सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण इस प्रस्तुति में मिला। सालों से मंच पर रामायण को खास अंदाज में आगे बढ़ाती आ रही इस प्रस्तुति ने वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण से लिए गए कई राम प्रसंगों को दोहों चौपाइयों के माध्यम से कथा के रूप में आगे बढ़ाया। रविंद्र भवन में मेरे कृष्ण नामक भव्य रंगमंची प्रस्तुति का आज भी मंचन होगा। ये नाटक भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है और इसमें संगीत, नृत्य और आधुनिक मंच तकनीक का समावेश है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में रविवार की सांस्कृतिक श्रृंखला के अंतर्गत जनजातीय लोक नृत्य, लोक संगीत और पारंपरिक वाद्य प्रस्तुतियां आयोजित की जा रही हैं, जहां प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति का आनंद लिया जा सकता है। यदि आप कविता, कहानी या संगीत में रुचि रखते हैं, तो आज शाम S2S ओपन एरा माइक का आयोजन भी है। इसमें कवि, गायक, कहानीकार और स्टैंड अप कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। भोपाल की पहचान केवल झीलों की नगरी के रूप में ही नहीं, बल्कि कला, साहित्य और रंगमंच के प्रमुख केंद्र के रूप में भी है। ऐसे आयोजन शहर की सांस्कृतिक परंपरा को निरंतर समृद्ध कर रहे हैं। रविंद्र भवन में इन दिनों रंगमंच प्रेमियों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही 24 से 29 जुलाई तक होने वाले हरिहर राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव की तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं। इस महोत्सव में देश भर की नाट्य संस्थाएं अपनी प्रस्तुति देंगी। अनहद प्रतिष्ठा समारोह में कथा सियाराम की नृत्य नाट्य प्रस्तुति होगी। भगवान श्री राम और सीता के जीवन आदर्शों और भारतीय संस्कृति मूल्यों को नृत्य, संगीत और अभिनय से साकार किया जाएगा। भारत भवन में शाम 7 बजे आप इसका आनंद ले सकते हैं। बंसल प्लाजा में आज शाम 6:30 बजे से स्वर कोकिला आशा भोसले के सदाबहार गीतों पर विशेष लाइव म्यूजिकल शो होगा। अनुभवी कलाकार बॉलीवुड के स्वर्णिम दौर के लोकप्रिय नगमों की प्रस्तुति देकर संगीत प्रेमियों को यादगार संगीतमय शाम का एहसास कराएंगे। ट्राइबल म्यूजियम में आज दोपहर 2 बजे से मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में नियमित गतिविधि संभावना के अंतर्गत जनजातीय नृत्य, गायन, वादन की रंगारंग प्रस्तुतियाँ होंगी। पिट्ठन मार्केट के दशहरा मैदान में चल रहे उमंग आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपो में इस बार देश भर के शिल्पकार पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प को एक नए अंदाज में पेश कर रहे हैं। मानसून और आगामी फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखकर तैयार किए गए परिधानों में परंपरा और

अभी आप सुन रहे थे नगर से जुड़ी कुछ खास खबरें परिक्रमा में। आइए आप सुनते हैं मेरे कृष्णा की रेडियो रिपोर्ट।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं रविंद्र भवन के हंसध्वनि सभागार में, जहां शनिवार को संगीतमय नाट्य प्रस्तुति मेरे कृष्ण का मंचन किया गया। जिसका निर्देशन किया राजीव सिंह दिनकर ने। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रविंद्र भवन के हंसध्वनि सभागार में।

0: थे तभी।
1: अभ्यास रोक दो शिष्य, तुम ये शिक्षण है संग्राम नहीं, और तुम नियम तोड़कर युद्ध करो इससे प्रसन्न बलराम नहीं। अपने भाई पर शत्रु अपराध कर रहे हो, जब कमर के नीचे वज्र है तो गदा अपराध क्यों कर रहे हो?
2: दाऊ दाऊ दाऊ तुम क्या कहने आपके शिष्यों के, दोनों महान बलधारी है, इस गदा युद्ध में ये दोनों लाखों वीरों पर भारी है ना?
1: आज के शिक्षण को यही समाप्त करते हैं, प्रातः पुनः आरंभ करेंगे। जा सकते हैं आप लोग।
2: कहना मुझको बदलाना, तुम ये कैसा खेल तुम्हारा, मेरी ना समझ में कुछ आता मैंने 100 बार विचारा, आखिर क्यों जरासंध जैसे पापी का मुंह ना मरोड़ा है? कितनी ही बार कृष्ण तुमने दुश्मन को जीवित छोड़ा है,
1: लज्जा है नहीं पराजय की? वो सेना नहीं बनाएगा देखना, महा दो माह बाद फिर हम पर चढ़कर आएगा।
2: भाव आप ठीक कह रहे हो, वो फिर से चढ़कर आएगा, फिर से यमुना होगी अशांत और उसका जल बढ़ जाएगा। ये आए दिन का रक्तपात एक ही दिन में खत्म करूंगा,
1: इस जरासंध के सैन्य सहित छटके में प्राण हरूंगा,
2: गाऊं
1: या फिर मैं आगे बढ़कर इस पापी का ताप उतारूंगा। तुम शेष सैन्य का वध कर, मैं जरासंध को मारूंगा।
2: गाऊं भूल गए आप इसके धरा पर आए, क्या कार्य जरूरी करने हैं, क्या क्या संकल्प उठाए हैं? इस धरती पर जितने भी राजा अन्यायी और पापी, उन सब का सर्वनाश कर धरती का बोझ हटाना है, मानवता के वक्ष स्थल में ममता का भाव जगाना है।
1: तुम सीधी बात नहीं करते ना काना, बातों को खूब घुमाते हो। कुछ और पूछता हूँ तुमसे, उत्तर कुछ और बता।
2: दाऊ सीधी सी बातों का सीधा उत्तर है मेरा
1: घना।
2: अरे जरासंध की सेना का आयोजन होता है भैया, मैं तू जानता हूँ दाऊ, वो हार न किंचित मानेगा, लेकर के पापियों की सेना वो फिर से रण को ठानेगा। हर बार हरा कर उसका हर संकल्प तोड़ देते हैं हम, संहार कर सभी पापियों को केवल उसे चीज छोड़ देते हैं। दाओ धीरे धीरे वो संसार के सारे पापी ले आएगा, हम दोनों के हाथों से बीच में मरवाएगा।
1: परंतु जरासंध,
2: बताता हूँ दाओ ठहरे तो रखो, किंतु ये जान लो इस बार वो नूतन नीति सहेजेगा, आएगा स्वयं नहीं चलकर, वो काल यवन को भेजेगा।
1: काल यवन?
2: आमना सामना जब होगा मैं उससे ना टकराऊंगा।
1: तो
2: दाऊ इधर आओ।
1: नहीं नहीं
2: दाऊ,
1: अरे कोई चाल चल रहे हो ना, मैं साफ दिख रहा।
2: दाऊ वो पाप करेगा तब जब घर को वापस जाएगा, वो मेरे हाथों से नहीं स्वयं ही संघारा जाएगा।
1: स्वयं कैसे?
2: मैं भागता हुआ उस भालू को कंदरा में दे ले जाऊंगा, मुझको भूख के हाथों से उसे मैं जीते जी भस्म कराऊंगा।
1: मुझको तो भूख?
2: हाँ दाऊ, मुझको भूख ने देवोहित असुर से था संग्राम किया, वर्षों तक सोए नहीं, क्षण एक नहीं विश्राम किया, तब से गिरी गुफा मध्य मुझको शांति से सोते हैं। हर घटना के पीछे दाऊ कुछ कार्य नियति के होते हैं, और देवराज का है उनको, यदि कोई उन्हें जगाएगा पड़ेगी प्रथम दृष्टि जिस पर, वो वही भस्म हो जाएगा। ये खेद बुद्धि का है दाऊ।
1: काना
2: अरे अब आप ही कहो क्या अनुचित है, रणछोड़ कहाँ जाने में मेरा और जनता का ही हित है।
1: तुम्हारी लीला सुनो कला के स्वामी, जो भी करना है वही करो काना, तुम अंतर्यामी, परंतु फिर भी जीवित है जरासंध, काना तुम कब इसको मारोगे? ये मुख्य शत्रु है मथुरा का, इसको कैसे संहारोगे?
2: दाऊ वो नहीं हमारा आखिर जो हम उसे संहारेंगे, हे भीम उनकी बुआ के पुत्र जो वो से लड़ने मारेंगे। हाँ तब तक इस मानवता के बैरी का रक्त उबलने दो, चिंता की कोई बात नहीं है दाऊ, जैसा चलता है।
1: दर्शन अपने कहना हर इच्छा पर परिहारी मुझे हर बार भ्रमित करती है लीला जब तुम्हारी वो चिंता मुक्त नगरवासी ये नगरी वैभवशाली हो कुछ ऐसा सोचो वासुदेव मथुरा में शांति बहाली
2: शांति और बहाली हो
0: अब गाँव ने कहा है तो कुछ तो सोचना पड़ेगा है ना राधे
3: पूर्वक श्री कृष्ण ने काले वन को भस्म करा दिया। मथुरा लौटकर उन्होंने गहन विचार किया, मेरे ही कारण जरासंध मथुरा पर बार-बार आक्रमण कर रहा है। मेरे रहते मथुरा पूर्णतः सुरक्षित नहीं। और उसी संध्या उन्होंने देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा का आह्वान किया और पश्चिम दिशा में अरब सागर के पावन तट पर एक दिव्य अभेद्य नगरी बसाने का आदेश दिया। लहरों की गोद में जन्मी वो स्वर्णिम नगरी थी द्वारका। माता पिता को साथ लेकर जब कृष्ण वहां पधारे तब बलराम ने प्रेम और गौरव से उन्हें द्वारकाधीश के रूप में प्रतिष्ठित किया।
4: ये थी आज की रेडियो रिपोर्ट। अगली रेडियो रिपोर्ट तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आप सुनते हैं काव्य कुंजन में रश्मि रथी का सातवां भाग।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। इस पुष्प विन्यास में आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस सर्ग में जहां रण की गर्जना से पहले संकल्प की दीप्ति जन्म लेती है। श्रोताओं, रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग की तपा भूमि से आगे बढ़ते हुए अब हम तृतीय सर्ग के द्वार पर हैं, जहां वनवास की अग्नि में तपे पांडव नव तेज के साथ लौटते हैं और विपत्ति से निखरा मानव साहस अपना स्वर पाता है। यहां शब्द शंखनाद नहीं, संकल्प की धधकती हुई शपथ है।
2: आइए श्रोताओं, अब प्रवेश करें रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में, जहां यह रथ अपने ज्वलंत अश्वों सहित इतिहास की सीमाएं लांघता हुआ हमें नई विभा, नए संघर्ष और नए उत्कर्ष की ओर ले चलेगा। आइए सुनते हैं रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का भाग एक।
1: हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से सहास, पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं।
2: मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आपड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के आगे पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी के जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है, पीसा जाता जब इक्षु दंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोहे जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं।
1: रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का यह आरंभ हमें एक गहरे जीवन सत्य की ओर ले जाता है। अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हुई और पांडव वन से लौटे, पर यह मात्र लौटना नहीं था, ये रूपांतरण था। वे जैसे गए थे वैसे नहीं लौटे, वे तपे हुए, निखरे हुए और भीतर से और अधिक दीप्त होकर लौटे।
2: यहाँ एक गूढ़ दार्शनिक संदेश निहित है, विपत्ति दंड नहीं अवसर है, वह हमारे व्यक्तित्व की छिपी शक्तियों को जागृत करने का माध्यम है। संघर्ष की अग्नि में ही मनुष्य अपने वास्तविक सामर्थ्य को पहचानता है और उसी प्रक्रिया में उसका व्यक्तित्व दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। आइए श्रोताओं, अब हम सुनते हैं रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का दूसरा भाग।
1: वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर।
2: विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षाग्रह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। श्रोताओं, तृतीय सर्ग के भाग दो में मानो दिनकर जी ने कहीं अपने ही जीवन के संघर्षों से उत्पन्न भावों को पांडवों की कहानी में उकेर दिया हो। जीवन जीना मानो पत्थर पर फूल उगाने की कोई कला जैसा होता है। जो पुरुष कर्मशील है उसे विपत्तियों से भयभीत नहीं होना चाहिए, और जो धीर है वह सुखों में डूबकर अपने लक्ष्य को नहीं भूलता।
1: श्रोताओं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। इन पंक्तियों में केवल पांडवों के लिए संदेश नहीं है, बल्कि भारत की युवा शक्ति के लिए एक कालजयी पुकार है। मानो कवि सीधे युवा हृदय से संवाद कर रहा हो और कह रहा हो, हे नवयुवक, तू कठिनाइयों से भागने के लिए नहीं जन्मा, तू उन्हें परास्त करने के लिए जन्मा है। संघर्ष तेरी बाधा नहीं, तेरी निर्माण भूमि है। विपत्ति तेरा शत्रु नहीं, तेरा शिक्षक है। यदि तू आराम में डूबा रहेगा तो सो जाएगा, पर यदि तू संघर्ष को अपनाएगा तो जाग जाएगा। तेरी नसों में केवल रक्त नहीं, ऊर्जा, स्वप्न और परिवर्तन की शक्ति बह रही है। समय उसी का साथ देता है जो साहस करता है। इसलिए उठ, अपने भीतर की अग्नि को पहचान, विपत्तियों पर छा जा और अपने पुरुषार्थ से अपना ही नहीं युग का भाग्य लिख दे।
2: श्रोताओं, हमें अब उस रथ की आवाज सुनाई दे रही है जिसके रथ से संसार के मनोरथ जुड़ते हैं, जिसके रथ के पहिए पहिए न होकर हम सभी के काल चक्र की ओर घूमते हुए हमारे जीवन और हमारी मृत्यु का विधान तय करते हैं। आइए उसी रथ के साथ तृतीय सर्ग के भाग तीन में प्रवेश करते हैं और सुनते हैं इस तृतीय सर्ग का भाग तीन। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। कृष्ण कहते हैं,
1: दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे।
2: दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले।
1: जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय। मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोट सूर्य शतकोट चंद्र, शतकोट सरित सर सिंधु मंद्र।
2: श्रोताओं, अभी आपने तृतीय सर्ग का ये भाग सुना। कथा महाभारत से ली गई है, पर दृष्टि दिनकर जी की है। यही तो विशेषता है रश्मि रथी की कि ये केवल अतीत का आख्या नहीं, यह वर्तमान का मार्गदर्शन है। जीवन में शांति मार्ग सदैव श्रेष्ठ होता है। कृष्ण पहले दूत बनकर आते हैं, शस्त्र लेकर नहीं। ये हमें सिखाता है कि संवाद युद्ध से बड़ा होता है। अब समस्या ये है कि हमारा अहंकार उन्हें पहचान नहीं पाता। जब तक हम अपने भीतर के दुर्योधन को नहीं पहचानेंगे, तब तक विराट सत्य सामने होते हुए भी हम अंधे ही रहेंगे। दिनकर जी की कलम हमें झकझोरती है। यह काव्य केवल सुनने के लिए नहीं, आत्ममंथन के लिए है। आइए अब प्रवेश करें उस क्षण में जहां मनुष्य ईश्वर को बांधने चलता है और उत्तर में ईश्वर ब्रह्मांड का पट खोल देते हैं। सुनते हैं तृतीय सर्ग के भाग 4 का काव्य पाठ। इसे श्री कृष्ण की चेतावनी के नाम से भी सुनते और जानते हैं।
1: शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, पर मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रीगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा।
2: थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।
1: श्रोताओं, दिनकर जी की अमर कृति रश्मि रथी हमें केवल महाभारत की कथा नहीं सुनाती, वो हमारे भीतर के कुरुक्षेत्र को उजागर करती है। अतः आइए इस प्रसंग से ये सीख लेकर आगे बढ़ें कि शांति का मार्ग ही श्रेष्ठ है, विनम्रता ही बल है और आत्मचिंतन ही वो दीप है जो हमें विनाश से बचा सकता है।
2: आइए सुनते हैं तृतीय सर्ग के भाग 5 का काव्य पाठ। भगवान सभा को छोड़ चले, कर केरण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चले उसे अपने रथ पर। रथ चला परस पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा,
1: हाय अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहां तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वी, तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मती गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्षण विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है, मैं और क्या करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू मानी, तो शांति नहीं जल सकती है, समराग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग ना उसका छोड़ेगा, वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शरचाप उठाए 8 प्रहार, पांडव से लड़ने हो तत्पर। मां का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहां 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चमर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। हा हा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, हसली स्वरूप में जानेंगे। कोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली ना समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई ना कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज्य समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं। यश मुकुटमान सिंहासन ले ले, बस बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तजरण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके।
2: श्रोताओं, अभी आपने कृष्ण की वाणी सुनी, वह वाणी जो केवल शब्द नहीं करुणा का समुद्र है, केवल तर्क नहीं समय की अंतिम पुकार है। वे कर्ण को समझा रहे हैं, पर वस्तुतः मनुष्य के भीतर बैठे उस द्वंद को संबोधित कर रहे हैं, जहां कर्तव्य और कृतज्ञता, जन्म और पालन, सत्य और संबंध आमने सामने खड़े हो जाते हैं। कृष्ण जैसे कोई दीपक लेकर अंधेरी सुरंग में उतर आए हों, वे कर्ण को उसका वास्तविक स्वरूप दिखाते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा,
3: हे कृष्ण, बड़ी ये माया है जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूं, ग्लानि व्यथा। मैं ध्यान जन्म का धरता हूं, उन मन ये सोचा करता हूं, कैसी होगी वो मां कराल। निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वो नारी नहीं। हे कृष्ण, आप चुप ही रहिए, इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए, सुनना ना चाहते तनिक श्रवण। जिस मां ने मेरा किया जनन, वो नहीं नारी कुलपाली थी, सर्पणी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका हीय था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया, मां का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वो तो यशस्वनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही, कन्या वो रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलीन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं, मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा, मां की ममता पर हुई वृथा, छिपकर भी तो सुधी ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी, पांच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही, क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है, क्या पांच पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं, कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही, वो पाप अभी भी है मुझ में, वो शाप अभी भी है मुझ में, क्या हुआ कि वो डर जाएगा, कुंती को काट ना खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ, कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय, ये अभिनंदन नूतन क्या है, केशव ये परिवर्तन क्या है, मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी, पर ऐसा भी था एक समय, जब ये समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित ना स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था, उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर, राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। हे कृष्ण, जरा ये भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, दोनों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमा पान किया, अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन, निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए, कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया, राधा ने मां का कर्म किया।
1: श्रोताओं, कर्ण के शब्दों में अभी आपने केवल आक्रोश को नहीं सुना, एक ऐसे पुत्र का रिश्ता हुआ हृदय सुना है, जिसे जन्म तो मिला पर अपनापन नहीं मिला। यह संवाद तीर की तरह बाहर नहीं आता, भीतर धसता चला जाता है, कर्ण आज प्रश्न कर रहा है, पर यह प्रश्न केवल कुंती से नहीं है, ये उस समाज से भी है जो समय देखकर रिश्तों की चादर ओढ़ता और उतारता है। सच ही कहा गया है श्रोताओं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जिस बालक ने जन्म से ही तिरस्कार की धूप सही हो, वो अचानक मिले स्नेह पर सहज कैसे विश्वास कर ले।
2: और देखिए ना, कर्ण की वेदना केवल मातृत्व के अनुपस्थिति तक सीमित नहीं है, उसके भीतर वर्षों का अपमान अंगार बनकर धधक रहा है। वह पूछ रहा है, जब संसार मुझे सूत पुत्र कहकर ठुकराता था, तब किसने मेरा हाथ थामा था, कौन मेरे आंसुओं पर मरहम रखता था। यही कारण है कि उसका मन आज जन्म से अधिक पालन को सत्य मानता है। श्रोताओं, लोक में कहा जाता है कि जिसने दुख की धूप में साथ दिया वही अपना कहलाया। कर्ण के लिए राधा केवल पालक माता नहीं, उसकी आत्मा का आश्रय है।
1: दोस्तों, दिनकर जी यहां केवल कर्ण की कथा नहीं लिखते, वे मनुष्य के भीतर के उस खालीपन को शब्द देते हैं जहां अपनापन और उपेक्षा आमने सामने खड़े होते हैं। कृष्ण उसे उसके जन्म का सत्य दिखा रहे हैं, पर कर्ण जीवन का सत्य सामने रख रहा है। यही इस प्रसंग की महत्ता है। यहां धर्म केवल शास्त्रों में नहीं, संबंधों की कसौटी पर भी परखा जा रहा है।
2: श्रोताओं, अभी कर्ण का मन पूरी तरह खुला नहीं है, उसके हृदय में वर्षों से दबा हुआ लावा अभी और फूटना बाकी है। उसकी वाणी में अभी भी कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो समय के सीने पर चोट करने वाले हैं। अगले भाग में कर्ण अपने जीवन, अपनी मित्रता, अपने अपमान और अपने धर्म का ऐसा पक्ष रखेगा जहां करुणा और प्रतिज्ञा एक साथ दिखाई देंगी। अगले अंक में सुनेंगे सूर्यपुत्र कर्ण के अंतर मन का वह ज्वालामुखी जो अब धीरे धीरे पूर्ण रूप से फटने को है। तो श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का, पर यह विदा केवल एक विराम है, इस काव्य यात्रा का अंत नहीं। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, रेडियो प्रस्तुति और लेखन दीपक नेमा का, वाचन स्वर मैं भगवती सक्सेना,
4: मैं संदीप शर्मा
5: और मैं दीपक नेमा।
2: इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा अब यहीं पर विराम लेती है। आपसे हम फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा,
1: नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: काव्य कुंजन कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे रश्मि रथी का भाग 7। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब यहीं संपन्न होती है। दोपहर की सभा के कार्यक्रमों को सुनने के लिए सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नाइन्टी पॉइंट एट मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज की इस दोपहर कालीन प्रसारण सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं सुनीता सिंह। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू करें उसके पहले कार्यक्रमों की जानकारी आपके लिए। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम तराने आज़ादी के। 1 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम भारत भारती। 2 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनो कहानी। इसमें आज सुनिएगा मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। और 2:30 पर हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक। 3 बजे भारत भारती कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा और 4 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम तराने आज़ादी के। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज की दोपहर कालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों की। एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और उसके बाद प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम तराने आज़ादी के।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने आजादी के।

गाने आजादी के इस कार्यक्रम में आज आपके साथ थी मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब इजाजत दें इस कार्यक्रम से मुझे, नमस्कार। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती

श्रोताओं, आज भारत भारती कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में मिट्टी की सौंधी सी महक आपके लिए। जरा पहचानिए तो आपको हम किस ओर ले चल रहे हैं। जी हाँ श्रोताओं, ये है मिट्टी की सौंधी सी महक बघेलखंड की धरती से उठती हुई। भारत भारती के आज के अंक में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मणिमाला सिंह और साथियों के गाए हुए कुछ बघेली लोकगीत। तो क्यों ना आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करें इस गणेश वंदना से।

श्रोताओं, लोक संगीत यानी जन जन का संगीत, ऐसे गीत जो हमारी मिट्टी में रचे बसे हैं, सदियों से हमारी परंपरा, हमारे संस्कारों से जुड़े हुए हैं, जीवन के सुख दुख से जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एक गीत है सोहर, जो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। तो आइए जीवन के उत्सव का ये गीत सुनते हैं मणिमाला सिंह और साथियों की आवाजों में।

सोहर बच्चे के जन्म पर खुशी में गाया जाने वाला लोकगीत है। वैसे बच्चे की बधाई तरह तरह से दी जाती है। अगर घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो बहुत तरह से मिठाइयाँ बांटकर बधाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन बधाई गीत का एक अपना ही महत्व है। तो आइए वही बधाई गीत सुनते हैं मणिमाला सिंह और साथियों के स्वरों में।

श्रोताओं, बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद माँ के द्वारा कुआं के पूजन का विधान है। जी हाँ, सिर पर गगरी रख माँ कुएं तक जाती है और घर के सभी लोग उसके पीछे पीछे साथ में गाते बजाते पहुँचते हैं कुएं तक और उसका पूजन करते हैं। तो आइए इसी अवसर पर गाया जाने वाला ये लोकगीत सुनते हैं। स्वर मणिमाला सिंह और साथियों के हैं।

श्रोताओं, भारत भारती कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मणिमाला सिंह और साथियों के गाए हुए कुछ बघेली लोकगीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ये पारंपरिक रचना।

बघेलखंड का लोक संगीत, जी हाँ, सरस, मीठा, मधुर। इस लोक संगीत में संस्कार गीतों की परंपरा बहुत ही समृद्ध है। आइए कुछ शादी ब्याह से संबंधित गीत आपको सुनवाते हैं इन्हीं कलाकारों के स्वरों में। भाई, दूल्हा तैयार हो चुका है, शादी की पूरी तैयारी हो गई है और घर के लोग बारात लेकर निकलने की तैयारी में हैं। अब ये कि बनरा गाया जाएगा, जी हाँ, यही वो लोकगीत है जो इस अवसर पर गाया जाता है। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, लोक जीवन में कितनी अनुपम और सुंदर बातें होती हैं। जी हाँ, अगर बच्चे का जन्म हुआ तो वो या तो कान्हा कहलाता है या राम, माँ कौशल्या हो जाती है या यशोदा कहलाती है। इसी तरह जब शादी के लिए तैयार होता है दूल्हा तो उसमें सभी लोग छवि देखते हैं भगवान श्री राम की, और ये बारात चाहे कहीं भी जा रही हो, लेकिन हम अपने लोकगीतों में गाते हैं कि बारात चली जनकपुर को। अब जब बारात जनकपुर पहुंची तो भाई वहां स्वागत की तैयारी भी पूरी तरह से है, बारात द्वार पर है। अब उसके स्वागत में जो गीत गाया जाता है वो है गैलहाई। आइए सुनते हैं इन्हीं कलाकारों के स्वरों में।

द्वार पर बारात का स्वागत तो एक बात, लेकिन कुछ हंसी ठिठोली भी होती है। जी हाँ, एक दूसरे से जान पहचान हो जाए, कुछ मेल मिलाप हो जाए, एक दूसरे से बातचीत में हम खुल जाएं, इस उद्देश्य को लेकर गारी भी गाई जाती है। कुछ छेड़छाड़, थोड़ा सा आमोद प्रमोद। आइए सुनते हैं द्वारचार की गारी, स्वर मणिमाला सिंह और साथियों के।

श्रोताओं, ये था दूर से बारात को देखना। जी हाँ, कभी छज्जे से तो कभी दीवार से लगे हुए एड़ियां उठाकर पूरे उत्साह के साथ और थोड़ी सी शरारत भी की गई, गारी गाई गई, बारातियों की थोड़ी सी खिंचाई की गई। जी हाँ, लेकिन अब बारात लग चुकी है द्वार पर। घराती और बाराती दोनों का ही उत्साह देखते ही बन रहा है। इस अवसर पर गाया जाता है बारात के स्वागत में ये पारंपरिक लोकगीत।

0: घर में बिटिया की शादी है। कितनी ही भावनाएं मन में हिलोरें ले रही हैं। खुशी है कि बेटी सुहागन होगी, और वहीं बचपन से लेकर आज तक जुड़ी कितनी ही यादें बार बार आती हैं, मन को भिगा जाती हैं। कभी ये लगता है कि बिटिया इतनी जल्दी बड़ी हो गई, और कभी ये लगता है कि कितनी खुशी की बात है कि बारात द्वार पर आई है। और इन्हीं मनोभावों के बीच बेटी के अनंत सुहाग की कामना लिए गाया जा रहा है सुहाग। आइए सुनते हैं मणिमाला सिंह और साथियों के स्वरों में।
1: मोरे के बोला चाहत सुहाग गीत मवा प्रसंग है कि जौने घर में बिटिया कुमार होती सबको सो जाती, सब सो जाती, लेकिन वह घर के प्राणी बाबा आजा काका उन्हें स्वामी उन्हें कितनी चिंता होती, वह चिंता कर लेते हैं अपना के सामने हाजिर।

श्रोताओं, हंसी ठिठोली एक जगह, लेकिन बारातियों से बड़ा भला कौन मेहमान, तो उनके स्वागत के लिए तैयारी भी पूरे जोर शोर से है। जी हाँ, नाना प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं और बेली जा रही हैं पूड़ियाँ। बारातियों को खिलाई जाएंगी ये पूड़ियाँ, और ये पूड़ी भी यूं ही थोड़ी बेली जाएगी, यहाँ भी तो कोई मंगल गीत होगा। जी हाँ, गांव भर की महिलाएं इकट्ठी हैं, बारातियों के लिए बेल रही हैं पूड़ी और इस अवसर पर खुशी के साथ मंगल गीत गा रही हैं, जिसे हम कहते हैं बेलनहाई। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, बेलनहाई गाते हुए पूड़ियां तो बन गई और अब समधी जी तैयार हैं जेवनार के लिए। और खाने के इस अवसर पर गारी तो होगी, लेकिन मर्यादित शब्दों में। और आपको पता है, बघेलखंड में नाम ले लेकर गारी देने का रिवाज है। और सबसे मजेदार बात ये कि अगर किसी का नाम न लिया जाए तो वो बुरा मान जाता है, यानी गारी दी भी जाती है प्रेम से और ली भी जाती है प्रेम से।

0: जितने जने हमारे यहाँ थोड़ी का सुना थे उनसे सबसे पूछी थी, कहा थी हमरे बघेल खंड में जाकर नाम लेके गाली ना गाई जाओ, बुरा मान जाते, बुरा बिल्कुल ना माना। हम सबसे पूछी थी अपना पंचन के बगल से निकली 50,000 छोकरी,
1: कहो कैसे निकली
0: आज जैसे बजे से।

और श्रोताओं, यूं ही गाते गुनगुनाते, हंसी ठिठोली करते, आमोद प्रमोद करते, खाते खिलाते, सभी रस्में होने लगीं और हर रस्म के साथ कोई न कोई लोकगीत जरूर जुड़ा हुआ है। तो आइए सुनते हैं ये भंवरी, जिसके भाव बहुत ही करुण हैं। तो इसी भाव के साथ सुनिएगा मणिमाला सिंह और साथियों के स्वरों में ये लोकगीत।

श्रोताओं, भारत भारती कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। बघेली संस्कार गीतों की श्रृंखला में अगली प्रस्तुति ये लोकगीत, स्वर मणिमाला सिंह और साथियों के हैं।

श्रोताओं, बारात द्वार पर आई, उसका स्वागत किया गया, कुछ आमोद प्रमोद भी हुआ, गारी गाई गई और तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। विवाह की इस मंगल बेला में अब गाई जा रही है अंजुरी। आइए सुनते हैं मणिमाला सिंह और साथियों के स्वरों में।

विवाह संपूर्ण हुआ और अब बेला आई विदाई की। मन भीग भीग जा रहा है। वो बिटिया जिसने इस आंगन में जन्म लिया, यहीं खेली कूदी बड़ी हुई, संस्कार पाए, माता पिता की लाडली, भाई बहनों की दुलारी, आज इस आंगन को छोड़कर चली जाएगी। कैसी कठिन घड़ी है कि माता पिता अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विदाई गीत। कलाकार हैं मणिमाला सिंह और साथी।

और श्रोताओं, विदा होकर बिटिया आ गई अपने ससुराल। जी हाँ, ससुराल में खुशी का वातावरण, लोग प्रसन्न हैं कि गृह लक्ष्मी आ गई। और यहाँ भी तो घर की लक्ष्मी को घर में प्रवेश करवाने से पहले कितनी ही रस्में हैं। गृह लक्ष्मी का स्वागत हो रहा है परछन से, तो आइए इसी अवसर पर गाया जाने वाला ये लोकगीत सुनते हैं मणिमाला सिंह और साथियों के स्वरों में।

0: श्रोताओं, भारत भारती कार्यक्रम में आज थी महक बघेलखंड की माटी की। जी हाँ, आपने सुने कुछ बघेली लोकगीत और वहाँ के कुछ संस्कार गीत। हमारे आज के कलाकार थे मणिमाला सिंह और साथी। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही संपन्न होता है भारत भारती का आज का अंक। अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

0: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूँ आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। कहानियां जो अपने भीतर समेटे होती हैं अथाह भाव सागर, अपने समय को जीती सांस लेती हैं शब्दों में, धड़कती हैं किताबों में। ऐसी कहानियां जो श्रोताओं के मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, वही कहानियां लेकर हम आएंगे इस कार्यक्रम में। शीर्षक है दो बहनें।

दोनों बहनें 2 साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिली और खूब रोध होकर खुश हुई। बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सिर से पैर तक गहनों से लदी हुई है, कुछ उसका रंग भी खुल गया है, स्वभाव में कुछ गरिमा आ गई है और बातचीत करने में ज्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलदार उन्नावी मखमल के जम्पर ने उसके रूप को और भी चमका दिया। वही राम दुलारी लड़कपन में सिर के बाल खोले फूहड़ से इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार रूप कुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था 2 साल पहले। तब भी उसकी शक्ल सूरत में कुछ ज्यादा अंतर न हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर थी उतनी ही दुबली पतली और फूहड़ उतनी ही और साथ में मंदबुद्धि भी, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो हालत कुछ और ही है, जैसे कली खिल गई हो। और ये रूप इसने कहाँ छिपा रखा था? नहीं नहीं, आंखों को धोखा हो रहा है। ये रूप नहीं, केवल आंखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम मखमल और सोने के बल पर वो रूपरेखा थोड़ी ही बदल जाएगी, फिर भी आंखों में समाई जाती है। 50 स्त्रियां जमा हैं मगर ये आकर्षण, ये जादू किसी में नहीं। कहीं आईना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी देखती, इस बार तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी। राम दुलारी में ये आकर्षण आखिर आया कहां से, इस रहस्य का पता लगाएगी। उठकर ड्राइंग रूम में गई और कद्दे आदम शीशे में अपनी सूरत देखी। वहां इस वक्त कोई नहीं था। देखा, उसकी मुख छवि निष्कलंक है मगर वो ताजगी, वो मादकता, वो माधुर्य नहीं है। हाँ, नहीं है, वो अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यही कि राम दुलारी आज खिली है और उसे खिले जमाना हो गया। लेकिन इस ख्याल से उसका चित्त शांत नहीं होता। वो राम दुलारी से हेठी बनकर नहीं रह सकती है। ये पुरुष भी कितने गावदी होते हैं, किसी में भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं। अरे, असली रूप तो वो है जो समय की परवाह न करे। उसके कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहां उड़ जाता है, चुड़ैल सी नजर आए। फिर सोचने लगी, मगर राम दुलारी के घर वाले तो इतने संपन्न न थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे वे भी बहुत निराशाजनक थे। खुशहाली का कोई दूसरा सामान भी न था। इसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ता था। इन 2 साल में कहां से ये हुन बरस गया? कौन जाने गहने भी कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी मांगे हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की लत होती है। तो ये स्वांग राम दुलारी को मुबारक हो भाई, मैं तो जैसी हूँ अच्छी हूँ। प्रदर्शन का ये रोग कितना बढ़ता जाता है, घर में रोटियों का ठिकाना नहीं। मर्द 25-30 रुपए पर कलम घिस रहा है लेकिन देवी जी, वो तो निकलेंगी तो इस तरह बन ठन कर मानो कहीं की राजकुमारी हूँ। राम दुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांग लिए होंगे, बेशर्म जो है। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। न सही उसके पास जेवर और कपड़े, उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता। 1-1 लाख के 2 लड़के हैं उसके, भगवान उन्हें चिरायु करे, वो इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं पर उनकी इज्जत तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, अरे किसी का श्राप तो नहीं लेते। इस तरह अपने मन को ढांढस देकर वो फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देखकर कहा, जीजा जी की कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी भी वही 75 रुपए पर कलम घिस रहे हैं? रूप कुमारी की देह में आग सी लग गई, मानो उसका पति तो लाठ ही हो। अकड़ कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल तो ये भी गनीमत है, नहीं तो अच्छे अच्छे MA पास को देखती हूँ, कोई टके को नहीं पूछता। वैसे तेरा शौहर तो अब BA में होगा? राम दुलारी ने नाक सिकोड़ कर कहा, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया बहन, पढ़कर औकात खराब करना था और क्या। एक कंपनी में एजेंट हो गए हैं, अब 250 रुपए माहवार पाते हैं और कमीशन ऊपर से 5 रुपए रोज सफर खर्च के मिलते हैं।
ये समझ लो 500 का औसत तो पढ़ ही जाता है। 150 माहवार तो उनका निज खर्च हो गया। भाई ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए ना। 350 बेदाग घर को दे देते हैं, इसमें से 100 रुपए मुझे मिलते हैं और 250 में घर का खर्च खुशफैली से चल जाता है। एमए पास करके क्या करते? रूप कुमारी इस कथन को शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहती, मगर रामदुलारी के लहजे में इतनी विश्वासोत्पादकता है कि वो अपनी निम्न चेतना में उससे प्रभावित हो रही है और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। इस कथन की सच्चाई को वो 1/4 तक तो सह सकती है, पर इससे ज्यादा उससे न सहा जाएगा। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है कि कहीं ये कथा पूरी सत्य निकली तो वो रामदुलारी को कैसे मुंह दिखाएगी। उसे भय है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू न निकल पड़े। कहां 75 और कहां 500? इतनी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों न मिले, फिर भी रूप कुमारी के लिए असह्य है। आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 रुपए हो सकता है, 500 तो किसी हालत में भी नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा, जब एजेंटी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो ये जो सारे कॉलेज हैं ये बंद क्यों नहीं हो जाते? अरे हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं? रामदुलारी बहन के खिसियानेपन का आनंद उठाती हुई बोली, बहन तुम यहाँ भूल कर रही हो, एमए तो सभी पास हो जाते हैं मगर एजेंटी बिरले ही कर पाते हैं। ये तो भाई ईश्वर की देन है, कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे मगर ये जरूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट भी हो जाएगा। रुपए पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना दूसरी बात। अरे अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा कर देना, ये दिल में जमा देना कि इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में मिल ही नहीं सकता, कोई आसान काम नहीं है। एक से एक घाघों से इनका सामना पड़ता है, अब तो अगले साल तरक्की भी होने वाली है इनकी। रूप कुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे मंद हुई जा रही थी। निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता? पाषाण हृदया धरती फट क्यों नहीं जाती? ये कहां का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीजदार है, सुघड़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से ज्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी ये दुर्गति? और ये घमंडिन, बदतमीज, विलासिनी, चंचल मुंहफट छोकरी जो अभी तक सिर खोले घूमा करती थी रानी बन जाए? मगर उसे अब कुछ भी आशा बाकी न दिखी। शायद आगे चलकर उसके चित्त की शांति का कोई मार्ग निकल आए। उसी परिहास के स्वर में बोली, तब तो शायद 1000 रुपए मिलने लगे ना, 1000 तो नहीं पर 600 में संदेह नहीं। कोई आंखों का अंधा मालिक ही फंसा होगा।

0: डॉक्टर हैं, सभी ठग विद्या करते हैं। अरे दीदी, आजकल दुनिया पैसा देखती है। आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की ही महिमा रही है। भाई पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता। जो पैसे वाला है बस उसी की पूजा होती है। जो अभागी हैं, अयोग्य हैं या भीरू हैं, वे आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोछते रहते हैं। नहीं, आत्मा और सदाचार को कौन पूछता है। रूप कुमारी खामोश हो गई। अब उसे ये सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ा कि राम दुलारी उससे ज्यादा भाग्यवान है। परिहास या अनादर से वो अपनी तंगदिली का प्रमाण देने के सिवा और क्या कर पाएगी। उसे किसी बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो रूप कुमारी अपनी किस्मत ठोंक कर बैठी रहेगी। समझ लेगी कि दुनिया में कहीं भी न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। मगर क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोष होगा। यहां कौन ईमानदार है, वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है और ना इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वो अवसर पैदा कर ले। उसके पति 75 रुपए कमाते हैं, पर क्या 10-20 रुपए ऊपर से मिल जाएं तो वो खुश होकर ले न लेंगे। उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक जब तक अवसर नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी। और क्या रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वो अपने पति को दूसरों का माल हजम करने से रोक दे। रोकना तो दूर की बात, शायद वो प्रसन्न होगी और पतिदेव की पीठ भी ठोकेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा था। कोई गाए कोई नाचे उससे प्रयोजन नहीं, वो तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, एक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, एक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन, मुझे लेने के लिए कार आती होगी। चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो फिर चली जाना, मैं जीजा जी से कहला भेजूंगी, तुम्हारा इंतजार न करें। रूप कुमारी का अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हालचाल की टोह लेने की इच्छा गायब हो गई। बोली, नहीं अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, बच्चे घबरा रहे होंगे, मैं फिर कभी आऊंगी। सहसा राम दुलारी के पति मिस्टर गुरुसेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सजधज, मुंह में चुरुट, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे से जहानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना रूपवान और सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान न था। कपड़े जैसे उसकी देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहां ना आती तो मुझसे मुलाकात क्यों होती। गुरुसेवक हंसकर बोला, ये तो उल्टी शिकायत, कभी आपने बुलाया और न मैं गया। मैं नहीं जानती थी कि तुम अपनों को मेहमान समझते हो, वो भी तो तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख रही थी कि मन में उससे ईर्ष्या रखते हुए भी वो कितनी वाणी मधुर, कितनी स्निग्ध, कितनी अनुग्रह प्रार्थनी होती जा रही है। गुरुसेवक ने उदार मन से कहा, हाँ अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है, इस दृष्टि से मैंने विचार नहीं किया था, मगर आज तो आप मेरे घर रहिए। नहीं नहीं, आज मुझे बिल्कुल अवकाश नहीं है, फिर कभी आऊंगी ना, लड़के घबरा रहे होंगे। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। गुरुसेवक ड्राइव करता हुआ चला। जरा ही देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वो न मानी। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और वो ठोस सत्य एक शलाका की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर जाकर गुरुसेवक बोला, भाभी मैं तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया, अगर 2-4 साल इसी तरह काम करता रहा ना तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझसे बताया था, भगवान करे जहां रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पैर संभाल के रहना। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूँ भाभी। दौलत का मजा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या पैसे। मैं ऐसी दौलत को त्याज्य समझता हूँ, और आंख किसकी बचाऊं? सब सियाह सफेद तो मेरे हाथ में है। मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेवा है। उसने सब कुछ मेरे हाथ में ही रख छोड़ा है। मैंने उसका कारोबार संभाल न लिया होता तो सच कहूं सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने ही जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे। मुझे 100 रुपए पर रखा और 1 महीने में 200 रुपए कर दिया। आप लोगों की दुआ से पहले ही महीने में मैंने 12,000 का काम किया।
1: क्या काम करना पड़ता है? रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य के पूछा।
0: वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना, ठंडा सा जवाब था।
1: रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। द्वार पर लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरुसेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर, पर जोर नहीं दिया, और उमानाथ तो गुरुसेवक से मुखातिब भी न हुए। रूप कुमारी को आज वो घर कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, 2-4 टूटी टाटी तिपाहियां, 1 लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी खाटें, बस यही उस घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब ये घर उसे काटे खा रहा था। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को छिड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वो किसी से न बोलेगी, उसे कोई न छेड़े। अभी घर में खाना भी नहीं पका, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, किंतु उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए तो पकाए, पर रूप कुमारी के सिर में दर्द है, मजबूर होकर बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा,
0: तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? मैंने कोई खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखा ली है, जो रात वहीं रह जाती तो? आखिर तुम कोई महाराजन क्यों नहीं रख लेते हो? क्या जिंदगी भर मुझको ही पीसते रहोगे?
1: उमानाथ ने उसकी तरफ आहत विस्मय की आंखों से देखा। उसके बिगड़ने का कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है, निरापद ही नहीं, सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने कई बार उससे महाराजन रख लेने का प्रस्ताव खुद किया था, पर उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिर घर में बैठे बैठे करूंगी क्या, 4-5 रुपए खर्च बढ़ाने से फायदा ही क्या, ये पैसे तो बच्चों के मक्खन में खर्च होते हैं। और आज वही इतनी निर्ममता से उलाहना दे रही है जैसे गुस्से में भरी हो। अपनी सफाई देते हुए बोले, महाराजिन रखने के लिए तो मैंने खुद तुमसे कई बार कहा।
0: तो लाकर रख क्यों न दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते।
1: हाँ, ये गलती तो हुई।
0: तुमने कभी सच्चे दिल से कहा ही नहीं, केवल मेरा मन लेने के लिए कहा। अरे मैं ऐसी भोली नहीं हूं कि तुम्हारे मन का रहस्य ना समझूं। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी सेविका मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर की जरूरतों से बचे तब। 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है किस तरीके से घर चलाती हूँ, क्या पहनूं और क्या ओढ़ूं। तुम्हारे साथ तो जिंदगी खराब हो गई। अरे संसार में ऐसे मर्द भी हैं जो स्त्री के लिए आसमान से तारे तोड़ लाते हैं। दूर क्यों जाते हो, गुरु सेवक को ही देखो। तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कम ही है, मगर 500 रुपए महीना लाता है और राम दुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए तो बस ये 75 रुपए ही बहुत हैं। जिंदगी नरक हो गई।
1: व्यंग्य बाणों का ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दिया। उनका वेतन कम है ये सत्य है, पर ये उनके बस की बात तो नहीं। वो दिल लगाकर अपना काम करते हैं। अगर गुरुसेवक वास्तव में 500 रुपए लाता है तो बेशक वो भाग्य का बली है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता ना। किसी संयोग से उसे ये अवसर मिल गया, मगर हर एक को तो ऐसे अवसर नहीं मिलते। वो इसका पता लगाएंगे कि सचमुच उसे 500 रुपए ही मिलते हैं या ये महज डींग है। और मान लिया कि 500 रुपए मिलते हैं, तो क्या इससे रूप कुमारी को यह हक है कि वो उनको ताने दे, जलीकटी सुनाए? अगर इसी तरह वो भी रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती और सुशीला रमणी को देखकर रूप कुमारी को कोसना शुरू कर दें तो कैसा हो? फिर भी उन्हें रूप कुमारी से सहानुभूति ही हुई। वो एक उदार प्रकृति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उसकी कटु बातों का कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन के ठाठ बाट देखकर एक क्षण के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक, अन्यायपूर्ण, दुखद भावों का उठना बिल्कुल स्वाभाविक था। रूप कुमारी कोई सन्यासिनी नहीं, विरागिनी भी नहीं कि वो हर एक दशा में अविचलित रहे। एक सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही। बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीब को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद न आता, बेगार सी टालती रहती। बच्चे माँ से बोलते डरते थे, उमानाथ तो उसके साये से भी भागते। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरुसेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थिति से सहयोग कर लिया था और इस वक्त झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाहियां साफ कर रही थी कि अचानक गुरुसेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल ही दिल में कट कर रह गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उसका मुंह नोच ले। उन्हें लाकर यहां क्यों खड़ा कर दिया? न कहना न सुनना, बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरुसेवक दिल में क्या कहता होगा, मगर इन्हें अक्ल आई ही कब थी? वो अपना पर्दा ढांपती फिरती है और ये इसे खोलते फिरते हैं। फिर भी आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरुसेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है, मैं उनकी दावत पर तो ना आता, लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी भाभी की जिद है तो भाई मुझे समय निकालना पड़ा। रूप कुमारी ने भी बात बनाई और घर का कलह छिपा लिया। गुरुसेवक ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाकर कहा, इस पिंजरे में तो आप लोगों को काफी तकलीफ होती होगी। कुछ चिढ़कर वो बोली, पिंजरे में? कटघरे में रहने से अच्छा है, पिंजरे में तो निरीह पक्षी रहते हैं, कटघरा तो घातक जंतुओं का ही निवास स्थान है। गुरुसेवक शायद ये संकेत न समझ सका, बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट जाए। मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करा दूंगा, खूब लंबा चौड़ा, आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। भाई मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी उसी के एक मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान हैं उनके पास, सैकड़ों, और सबके सब मेरे अख्तियार में हैं। जिसे जो मकान चाहूं दे दूं, किराया लूं ना लूं, भाई मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा मकान ठीक करा दूंगा। वो क्या है ना कि मैं आपका बहुत अदब करता हूं। रूप कुमारी समझ गई कि महाशय इस वक्त नशे में हैं, अभी यूं बहक रहे हैं। अब उसने गौर से देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गई थी, गाल कुछ फूल गए थे। उसे इस हालत में देखकर जैसे घृणा सी होती थी। उसने एक क्षण बाद फिर बहकना शुरू किया, मैं आपका बहुत अदब करता हूँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं, आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है, आपके लिए एक मकान नहीं 100-100 मकान तैयार हैं। मैं मिसेस लोहिया का मुख्तार हूँ भाभी, सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ, मैं जो कह दूं वो आंख बंद करके मंजूर कर लेती हैं। मुझे अपना बेटा समझती हैं, उनकी सारी जायदाद का मालिक मैं ही हूं। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए पर रखा, 20 रुपए पर, बड़ा मालदार आदमी था, मगर किसी को नहीं मालूम कि उसकी दौलत कहां से आती थी। बस मुझे पता था, पता है वो खुफिया फरोश था, वो नशीली चीजें बेचकर पैसे कमाता था। वही व्यापार मैं करता हूँ। मजाल है कोई मुझे गिरफ्तार कर ले। अरे बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है, उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूंस ठूंस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूँ। कोई चू नहीं करता। दिन दहाड़े बेचता हूँ सब। और हिसाब में लिखता हूँ 1000 रिश्वत दी, देता हूँ 500, बाकी यारों का मजे हैं। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है। 70 चूहे खा के अब हज को चली है, कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है भाभी। जेबों से नोटों का बंडल निकाल कर वो उसकी चरणों की भेंट करता है और कहता है, मुझे दुआ दीजिए कि इसी शान से जिंदगी कट जाए। जो आत्मा और सदाचार के उपासक हैं उन्हें कुबेर लातें मारता है, लक्ष्मी तो उनको पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मुझे बुरा ना कहिए, मैं कौन मालदार हूं, जितने धनी हैं वे सबके सब लुटेरे हैं, पक्के लुटेरे, डाकू हैं डाकू। कल मेरे पास रुपए हो जाएं तो मैं भी एक धर्मशाला बनवा दूं। फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है। अरे कौन पूछता है कि मुझे दौलत कहां से मिली, जिस महात्मा को कहिए बुलाकर उससे प्रशंसा करवा लूं। मिस्टर लोहिया को महात्माओं ने धर्म भूषण की उपाधि दी, इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने ये किया, उस बुढ़े को जिससे बड़ा कुकर्मी इस संसार में कोई नहीं था। तो भाई मैं भी वही करता हूं जो दूसरे करते हैं, जीवन का उद्देश्य है ऐसा करना, खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा। और बुढ़ापे में खूब खैरात करूंगा और एक दिन लीडर बन जाऊंगा भाभी। सहसा उमानाथ ने आकर कहा, मिस्टर गुरुसेवक क्या कर रहे हो, चाय पी लो, चाय ठंडी हो रही है। गुरुसेवक ऐसा हड़बड़ा उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पांव लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झूमता ठोकरें खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आजादी की सांस ली। वहीं बैठे बैठे उसे हॉल दिल सा हो रहा था, कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणाएं कई दिन से अच्छे अच्छे मनोहर रूप भरकर उसके मन में आ रही थीं, आज उसे उनका असली विभत्स और घिनावना रूप नजर आया। उसने सोचा वो अपने हाल में खुश है, राम दुलारी पर उसे दया आई, जो भोग विलास की धुन और अमीर कहलाने के मोह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वो बेचारी भी क्या करे, और गुरुसेवक का भी क्या दोष है, जिस समाज में दौलत पूजती है, जहां मनुष्य का मोल उसकी बैंक अकाउंट और टीम टाम से आंका जाता है, जहां पग पग पर प्रलोभनों का जाल बिछा हुआ है और समाज में कुव्यवस्था आदमी में ईर्ष्या द्वेष अपहरण और नीचता के भावों को उकसाती और उभारती रहती है, गुरुसेवक और राम दुलारी उस जाल में फंस जाएं, उस प्रवाह में बह जाएं, तो कोई अचरज नहीं है। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, ये गुरुसेवक यहाँ बैठा बैठा क्या कह रहा था, मैंने तो उसे विदा कर दिया, जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे न लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाऊं। रूप कुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उन्हें देखकर जवाब दिया, वही अपनी खुफिया फरोशी की डिंग मार रहा था। अच्छा, मुझे भी मिसेस लोहिया से मिलने को कह गया, जी नहीं, आप अपनी क्लर्की किए जाइए, इसी में हमारा कल्याण है। मगर क्लर्की में वो ऐश कहाँ, क्यों ना साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया की भी सैर करूं, मुझे अब उस ऐश का मोह नहीं रहा। जी दिल से कहती हो, सच्चे दिल से। उमानाथ एक मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोले, सुनो मैं आकर तुमसे ये वृत्तांत कहता तो तुम्हें विश्वास आता या नहीं, सच कहना। कभी नहीं, मैं तो कल्पना नहीं कर सकती थी कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैं चाहता था वो अपने मुंह से तुमसे कहे, इसलिए नशे की हालत में उसे यहां ले आया। जानता था वो सब कुछ उगल देगा। ललचाता तो तुम्हारा भी जी था। हाँ, ललचाता तो था और अब भी ललच रहा है, मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वो कहाँ से लाऊंगा। ईश्वर ना करे वो हुनर तुम में आए, मुझे तो उस बेचारे पर तरस आती है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंच गया या नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूप कुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, सुनो तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो, अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है उसके चारों ओर निशाचर घात लगाए बैठे हैं, शायद मैं उसे बचा सकूं। उमानाथ ने देखा रूप कुमारी की छवि कितनी दया पुलकित हो उठी है। तो श्रोताओं, ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहनें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम के अगले अंक में एक नई कहानी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।
2: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
3: ₹90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।

0: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद प्रस्तुत करता है प्राचीन भारत में वैज्ञानिक चिंतन की गौरवशाली परंपरा की वानगी देने वाला अपना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।
2: इस कार्यक्रम में हर सप्ताह हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे भारतीय ऋषि वैज्ञानिक से जिनकी सृष्टि और जीवन के किसी विशिष्ट अंग से जुड़ी अवधारणा ने एक महती वैज्ञानिक परिकल्पना को जन्म दिया।
1: वो परिकल्पना और सिद्धांत जिसका विकास पश्चिमी जगत 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद ही कर पाया। उदाहरणार्थ ज्यामिति का 29वां प्रमेय जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, वस्तुतः ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस का नहीं है। इसकी खोज शताब्दियों पूर्व ऋषि बोधायन कर चुके थे। ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा हमें बताएगी वेदकालीन भारत में ज्ञान विज्ञान अपने शिखर पर था, चाहे वो सृष्टि की उत्पत्ति या सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि नक्षत्रों की गतियों का सटीक हिसाब हो या सूर्य चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणियों का अथवा कैलेंडर का निर्माण, पदार्थों की संरचना की बात हो अथवा पेड़ पौधों के औषधीय गुणों की चर्चा।
2: दोस्तों, हमारे ऋषियों ने ग्रहों नक्षत्रों ज्योतिष गणित से लेकर वनस्पति चिकित्सा शल्य औषधि रसायन आदि विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में अनुसंधान की सुव्यवस्थित और सुदृढ़ प्रणाली को जन्म दिया।
1: ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा देश की नई पीढ़ी को रूबरू कराएगी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में वेदकालीन भारत की अद्वितीय और गौरवशाली उपलब्धियों से, ताकि हमारे युवा साथी हमारे गौरवशाली अतीत से परिचित हो सकें, उस पर गर्व कर सकें और प्राचीन भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों की खोज के लिए प्रेरित हो सकें।
3: अंजू, तुम आज फिर मोबाइल लेकर आई हो? देखा शौरी, मोबाइल लेकर आई है।
4: लगा दिया हेडफोन कान में। पता है मेरे पापा कहते हैं जो कान में 24 घंटे ईयरफोन रखता है उसके कान के पर्दे फट जाते हैं और बहरा हो जाता है। तो
3: अरे मैं रोज रोज कान सुनती हूँ। वो तो आज नया गाना निकला है ना, इस वजह से उसकी म्यूजिक और लिरिक्स इतनी अच्छी है कि तुम लोग भी सुनोगे।
4: हमें नहीं सुनना।
3: अरे अरे अरे गुरुजी मोबाइल छुपा ले, छुपा ले, बैग कहाँ है? अरे बैग, अरे हाँ चलो। प्रणाम गुरुजी।
5: हाँ प्रणाम भाई, वो क्या कहते हैं आयुष्मान भाव। हाँ क्या क्या कह रहे थे तुम, बोलो बोलो।
6: कुछ नहीं गुरुजी।
5: अच्छा अच्छा हाँ, अरे आज तो ये सामने वाली सीट ही खाली पड़ी है, ये गौरव को क्या हुआ आज?
6: गुरुजी गौरव को कुछ नहीं हुआ है।
5: तो फिर
6: वो इंटर कॉलेज ड्रामा प्रतियोगिता में विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है।
5: अच्छा, वेरी गुड। तो वो फिर कहाँ गया है अभी?
6: गुरुजी वो रिहर्सल के लिए गया है।
5: अच्छा अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई, वो एक अच्छा कलाकार है, ये हमें पता ही नहीं था। अच्छा बच्चों, क्या तुम्हें पता है कलाएं प्रमुख रूप से कितने प्रकार की होती हैं? बताओ। नहीं ना, 64 प्रकार की बताई गई हैं कलाएं। इनमें से बहुत सी ऐसी कलाएं हैं जिनका अपना विज्ञान है। महर्षि शुक्राचार्य नाम के अपने यहाँ महर्षि हुए हैं, वो इन कलाओं के भाष्यकार माने जाते हैं
6: जी,
5: और उन्होंने इन पर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है नीति सार, समझे?
3: हाँ गुरुजी। गुरुजी आज हमें महर्षि शुक्राचार्य के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बताइए ना।
7: बताइए गुरुजी।
5: ठीक है ठीक है, हम तुम्हें महर्षि शुक्राचार्य के आश्रम में लिए चलते हैं।
7: चलिए गुरुजी।

0: प्रिय शिष्यों, हमारे यहां शिक्षा क्रम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। कला की शिक्षा भी शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कला को परिभाषित करने के लिए कहा जा सकता है, शक्तो मूकोपि यत कर्तुम कला संज्ञम तु तत स्मृतम, अर्थात वो विद्या जिसे वर्णोच्चारण न कर सकने वाला भी कर सके वो कला है। यूं तो कलाएं अनंत हैं, पर विभिन्न ग्रंथाकार आचार्यों ने प्रमुख कलाएं 64 बताई हैं। वे चाहे केलदी वसव राजेंद्र हो या वात्सायन अथवा जयमंगल, इन सभी आचार्यों द्वारा वर्णित कलाओं में कुछ कलाएं समान हैं और कुछ भिन्न भी हैं।
1: आचार्य श्री, इन कलाओं में प्रत्येक कला के अपने शास्त्र तो होंगे ही।
0: हाँ, क्यों नहीं। सृष्टि में घटित और उपस्थित हर घटना, हर वस्तु का शास्त्र होता है। शास्त्र चिंतन का प्रतिफल जो है, इसमें कुछ ज्ञात हैं और कुछ अज्ञात। वैसे हमारे वैदिक साहित्य में सब कुछ उपलब्ध है, वो बहुत समृद्ध है।
1: जी गुरुजी।
0: वत्स, ये शास्त्र ही है जो किसी भी घटना, किसी भी क्रिया के कार्य कारण की व्याख्या करता है, यही विज्ञान कहलाता है।
2: इसका अर्थ तो ये हुआ आचार्य श्री कि कलाओं का भी विज्ञान होता है।
0: हाँ वत्स, सच तो ये है कि विज्ञान का जन्म कला से ही हुआ है। जैसे कि दर्शन अथवा सिद्धांत का जन्म चिंतन से हुआ है। और यदि हम आदि मानव तक जाएं तो आदि मानव भी घटनाओं तथा तथ्यों के कार्य कारण संबंध से सर्वथा अनभिज्ञ नहीं था। आदि मानव में भी जानने की भूख थी। आदि मानव जो सबसे पहले सृष्टि में जन्मा, उसके सामने बहुत कुछ सीखने और जानने को था। पता नहीं उस मानव के पास इन चीजों को नाम देने के लिए शब्द थे या नहीं, किंतु ये सत्य है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही उसके ज्ञान का कोष भी बढ़ता गया।
1: तो क्या यही विज्ञान का जन्म हुआ गुरुजी?
0: नहीं वत्स, ये मनुष्य का व्यवहारिक ज्ञान था। विज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान में अंतर है, पर अंतर के बाद भी दोनों में एक समानता है। वो ये कि दोनों का लक्ष्य एक ही है। व्यवहारिक ज्ञान से भी मनुष्य तैरने वाली नौका बना लेता है, उसे समुद्र के वक्ष पर दौड़ाता है, डूबने से बचाता है और किनारे पर ले आता है। वैज्ञानिक ज्ञान के सहारे भी वो यही सब कुछ करता है। व्यवहारिक ज्ञान क्रियात्मक होता है, कला के रूप में होता है, पर विज्ञान नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होता है। फिर भी विज्ञान का जन्म व्यवहारिक ज्ञान से ही, कला से ही होता है। विज्ञान के पहले व्यवहारिक ज्ञान कला ही जन्मती है।
2: फिर तो आचार्य श्री, आदि मानव मूल वैज्ञानिक हुए।
0: निश्चय ही वत्स, वे आदि मानव ही थे जिन्होंने पत्थरों के हथियार तथा औजारों का निर्माण किया, डंडे के सहारे भारी पेड़ों के तने ढकेलना, चप्पू से नाव खेना, नाव बनाना, गन्ने को बटकर मरोड़कर रस निकालना, कुएं से पानी खींचने के लिए चरखी का उपयोग करना, फेंकन अथवा बरही बनाना, धनुष बाण बनाना, धोकनी बनाना, सुई सिल पत्थर का उपयोग करना, कृषि भोजन, पशुपालन, वस्त्र अलंकार, टोकरी भांड आदि बनाना, अग्नि उत्पन्न करना, धातु बनाना आदि कलाएं सीखी। हाँ, ये सत्य है, आदि मानव को इन कलाओं के अंदर छिपे वैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान नहीं था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक तैराक तैरना जानता है पर तैरने वाली वस्तुओं के सिद्धांत और जल के उछाल का संबंध नहीं जानता।
1: आचार्य श्री, ये सभी कलाएं भी 64 कलाओं में सम्मिलित होंगी?
0: हाँ, ये सभी कलाएं भी और अन्य कलाएं भी 64 कलाओं में सम्मिलित हैं।
1: जी गुरुजी।
0: वत्स, कलाओं के नाम भिन्न भिन्न नहीं, उनके लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि क्रिया के पार्थक्य से ही कलाओं में भेद हो जाता है। जो व्यक्ति जिस कला का अवलंबन करता है उसकी जाति भी उस कला के नाम से जानी जाती है।
1: जी।
0: हमारे हिसाब से पहली कला नृत्य है। हाव भाव के साथ गति नृत्य कहलाती है। नृत्य में करण, अंगहार, विभाव, भाव, अनुभाव और रसों की अभिव्यक्ति की जाती है। नृत्य दो प्रकार के होते हैं, एक नाट्य दूसरा अनाट्य। नटराज शिव को नृत्य का आदि गुरु माना जाता है। भरत मुनि ने नृत्य की कुल 108 मुद्राएं बताई हैं। नृत्य एक स्वाभाविक वस्तु है जो हृदय में प्रसन्नता का उद्रेक होते ही बाहर व्यक्त हो जाता है।
2: जैसे वर्षा ऋतु में घन गर्जना से आनंदित होकर मोर झूम झूम कर नाच उठता है।
0: हाँ वत्स, दूसरी प्रमुख कला है विविध प्रकार के वाद्यों का निर्माण और उन्हें बजाने की कला। वाद्यों के मुख्य चार प्रकार होते हैं।
2: कौन से गुरुजी?
0: तंत, सुपिर, अवनद्ध और घन। तार अथवा तांत का जिसमें उपयोग हो वे तंत वाद्य हैं, जैसे वीणा, तानपुरा, सारंगी, बेला, सरोद आदि, जिनका भीतरी भाग पोला और जो सच्छिद्र होते हैं तथा जिनमें वायु का प्रयोग होता है वे सुपिर वाद्य कहलाते हैं, जैसे बांसुरी, अलगोजा, शहनाई आदि। ऐसे ही चमड़े से मड़े हुए वाद्य अवनद्ध कहलाते हैं, जैसे ढोल, नगाड़ा, तबला, मृदंग आदि। जबकि परस्पर आघात से बजने वाले वाद्य घन कहलाते हैं, जैसे झांझ, मंजीरा, करताल आदि। ये गायन कला से संबंध रखती है। प्राचीन ग्रंथों में सरस्वती और नारद को वीणा वादन में, श्री कृष्ण भगवान को बंसी बजाने में और महादेव शिव को डमरू वादन में निपुण बताया गया है।
1: आचार्य श्री, आपने बताया वादन कला गायन कला से संबंध रखती है।
0: हाँ, वादन के बिना गायन अधूरा लगता है, ऐसे ही गायन वादन के बिना नृत्य। गायन, वादन और नृत्य की त्रयी वैसे ही तीर्थ बन जाती है जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम। गायन तीसरी प्रमुख कला है जिसे गांधर्व विद्या भी कहा गया है। संगीत का प्रमुख उपादान नाद होता है। नाद के माध्यम से ही संगीत कला की उत्पत्ति, अभिव्यक्ति एवं प्रस्तुति संभव होती है। शारंग देव ने संगीत की परिभाषा देते हुए गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते कहा है, अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य तीनों को सम्मिलित करने से संगीत कहा गया है। ऐसे ही शारंग देव ने नाद को ब्रह्म स्वरूप निरूपित किया है। अस्ति ब्रह्म चिदानंदम स्वयं ज्योति निरंजनम ईश्वरम लिंग मित्युक्तम द्वितीयमजम विभु निर्विकारम निराकारम सर्वेश्वर मनश्वरम सर्वशक्ति च सर्वज्ञम तदंशा जीव संगकाह। संगीत और व्याकरण दोनों के तत्व माहेश्वर सूत्र हैं। व्याकरण में 5 शुद्ध स्वर और 2 मिश्रित स्वर होते हैं। ऐसे ही संगीत में भी 5 स्वर प्रधान और 2 गौण हैं। गांधर्व गान में ये 5 स्वर मध्यम, गांधार, ऋषभ, षडज तथा धैवत हैं। मध्यम मतलब म, गांधार मतलब ग, ऋषभ मतलब री, षडज मतलब सा और धैवत मतलब ध।
1: जी गुरुजी।
0: हाँ, ये सरल स्वरों में समझाया। गौण स्वर पंचम यानी प और निषाद हैं, नी। संगीत और व्याकरण दोनों में नाद के 66 भिन्न रूप होते हैं जिन्हें श्रुति कहते हैं। आओ हम संगीत कक्ष की ओर चलें।
1: जी गुरुजी।
2: जी गुरुजी।
0: देख रहे हैं आप लोग?
1: जी गुरुजी।
0: गायन, वादन और नृत्य की त्रयी, क्योंकि संगीत और व्याकरण में साम्य है अतः इस त्रयी में भी साम्य है। इन तीनों रूपों में एक लय है, ताल है, सम्मिति है। तीनों एक गणित में बंधे हैं, अतः इन कलाओं का भी एक विज्ञान है, ध्वनि तरंगों का विज्ञान, गति संचलन का विज्ञान। आइए यहाँ वृक्ष के नीचे बैठें। आइए।
2: जी गुरुजी।
1: जी गुरुजी।
2: आचार्य श्री।
0: हाँ?
2: आप 64 कलाओं की चर्चा कर रहे थे।
0: हाँ शिष्यों, आगे की 5 कलाएं हैं, यानी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं, क्रमशः स्त्री और पुरुषों को वस्त्र और अलंकार सुरुचि रूप से पहनाने की कला, अनेक प्रकार के रूपों का आविर्भाव करने की कला, शैया और अस्तरण सुंदर रीति से बिछाने और पुष्पों को विभिन्न तरह से गूंथने की कला, दूत क्रीड़ा की कला और अनेक प्रकार के आसनों द्वारा सुरत क्रीड़ा की कला। इन 8 कलाओं का उल्लेख गांधर्व वेद में किया गया है।
1: आचार्य श्री, इनमें गायन, वादन और नृत्य भी सम्मिलित है।
0: हाँ वत्स, आगे की 10 कलाओं का संबंध आयुर्वेद से है। नवी कला से लेकर 18 कला तक की ये कलाएं हैं, विविध मकरंदों से आसव, मद्य आदि बनाने की कला, शल्य की पीड़ा को कम कर देना, शिरा और फोड़े आदि की चीर फाड़ करने की कला, इसमें हकीमों और आयुर्वेदाचार्यों की चीर फाड़ भी सम्मिलित है। वृक्षों से प्राप्त रस आदि से अन्न पकाने की कला, वृक्ष गुल्म लता आदि को लगाने, फल फूलों को उत्पन्न करने और वृक्षों के संरक्षण की कला, पत्थर सोने चांदी आदि धातुओं का खनन, उनकी भस्म बनाने की कला, इक्षु से राव गुड़ खांड मिश्री कंद आदि बनाने की कला, स्वर्ण आदि अनेक धातु और उनसे औषधि निर्माण की कला, मिश्रित धातुओं को उनके मिश्रण से पृथक करने की कला, धातुओं का अपूर्व मिश्रण बनाने की कला, समुद्री जल और मृदा से नमक आदि पदार्थों को निकालने की कला, इन कलाओं में वनस्पति शास्त्र, वानिकी, धातुकर्म, रसायन शास्त्र आदि विज्ञान आ जाते।
1: जी गुरुजी।
2: आचार्य श्री, इनमें से अनेक क्षेत्रों में आचार्य नागार्जुन और महर्षि चरक आदि ऋषियों ने भी काम किया है।
0: हाँ वत्स, तुम ठीक कह रहे हो। प्रिय शिष्यों, आगे की पांच कलाएं युद्ध कला से संबंधित हैं।
2: जी गुरुजी।
0: ये धनुर्वेद का अंग है, यथा 19वीं कला पैतरा बदलते हुए शस्त्रों के संचालन की कला है, 20वीं कला मल्ल युद्ध और बाहु युद्ध की कला, 21वीं कृत और प्रतिकृत मुष्ट युद्ध की कला, 22वीं अस्त्रों से अभिलक्षित देश को निशाना बनाने की कला और 23वीं हाथी घोड़ों और रथों की विशिष्ट गतियों के द्वारा युद्ध के आयोजन की कला। ये तो तुम लोग जानते ही हो कि युद्ध कला का अपना शास्त्र होता है, अपना पूरा पूरा विज्ञान होता है।
2: जी गुरुजी।
1: महर्षि, महाभारत ग्रंथ में भी तो इसका विशद वर्णन है। आचार्य द्रोणाचार्य इन कलाओं के विशेषज्ञ माने जाते हैं ना?
0: हाँ वत्स, अपने आश्रम में भी तो इन कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। तुम लोग भी तो ये प्रशिक्षण ले रहे हो ना? अब तक तो तुम लोग इन कलाओं के अंतर्निहित सिद्धांतों को समझ ही गए होगे।
1: जी गुरुजी।
0: शिष्यों, आगे की कलाएं विविध कलाओं से और क्षेत्रों से संबंधित हैं। यथा 24वीं कला विविध प्रकार के आसनों में बैठकर दोनों हाथों की उंगलियों से विविध आकृतियां बनाकर ईश्वराधन करना, 25वीं कला रथ हाँकने की कला, 26वीं मिट्टी पत्थर लकड़ी तथा धातुओं के बर्तन बनाने की कला और 27वीं चित्रांकन की कला।
2: अद्भुत, इस कला में तो भारत ने बहुत उपलब्धियां प्राप्त कर रखी हैं। प्राचीन मंदिरों, महलों, गुफाओं में उकेरे गए चित्रों की वानगी देखते ही बनती है। इनके रंग शताब्दियों बाद भी धुंधलाए नहीं हैं।
0: तुम्हारा कथन सत्य है वत्स, पर हमें तो तुम लोगों के भांड और उन पर की गई चित्रकारी देखनी है। वसंतोत्सव के अवसर पर होने वाले वार्षिकोत्सव में हम इनकी प्रदर्शनी आयोजित करने जा रहे हैं। आप लोग तैयार रहें।
2: जी गुरुजी।
0: हाँ तो शिष्यों, 28वीं कला तालाब, कूप, बावड़ी, महल, मंदिर, घर बनाने और भूमि समतल करने से संबंधित है, जबकि 29वीं कला समय बताने वाली घड़ियों के निर्माण से संबंधित। इनमें जल घड़ी, बालू घड़ी और धूप घड़ी आदि बनाने की शिक्षा दी जाती है। ये तो तुम जानते ही हो कि ये कला ज्योतिर्विज्ञान से संबंधित है।
1: हाँ आचार्य श्री, हम जानते हैं ब्रह्मगुप्त, वाराहमिहिर, भास्कराचार्य आदि अनेक महर्षियों ने इस क्षेत्र में विशेष काम किया है।
0: शिष्यों, 30वीं कला विभिन्न अनुपात में रंगों के मिश्रण से विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को रंगना है। किस वस्त्र को कैसे रंगे ताकि उसकी चमक स्थायी रहे और रंग फीका ना पड़े, निश्चित ही विशिष्ट कला है। सूती कपड़ों की रंगाई की विधि निश्चित ही रेशमी कपड़ों की रंगाई से या ऊनी कपड़ों की रंगाई से भिन्न होगी। इसमें अंतर्निहित रंगों का अपना विज्ञान है। ऐसे ही 31वीं कला जल, वायु, भाप संचालित यंत्रों के निर्माण से संबंधित है, जबकि 32वीं कला नौका, रथ आदि जल थल के वाहन बनाने से संबंधित है। यंत्र सर्वस्व, यंत्र विधान ग्रंथों में इनका विशद वर्णन है। आवागमन के इन साधनों पर व्यापार भी निर्भर करता है।
2: वाह आचार्य श्री, महर्षि पाराशर ने तो नौका निर्माण के लिए वृक्षों की लकड़ी का भी वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया है।
0: हाँ वत्स, 33वीं कला सूत, सन आदि तंतुओं से रस्सी बनाने और 34वीं कला विभिन्न तंतुओं से पटबंध अर्थात वस्त्र बनाने से संबंधित है। वैदिक काल में परिष्कृत कपड़ा बुनने की तकनीक चली आ रही है। अथर्ववेद के अनुसार बुनाई महिलाओं का विशेष अधिकार था। वैदिक काल में 3 वस्त्र, निवी यानी अंतःवस्त्र, वसा यानी पोशाक एवं आदिवसा यानी उत्तरे या ओढ़नी प्रचलित थे। साड़ी भी अपने प्रारंभिक रूप में प्रचलित थी। आइए हम अपने करघा कक्ष की ओर चलें।
2: जी गुरुजी।
0: देख रहे हैं ना, करघे पर धोती बुनी जा रही है और उधर दूसरे करघे पर साड़ी।
2: जी गुरुजी।
0: किनार या किनारी साड़ी और धोती का एक महत्वपूर्ण अनुषंग होता है। आप देख सकते हैं धोती की किनार एकदम सादा है जबकि साड़ी की किनारी आकर्षक बनाई जा रही है जो पूरी साड़ी को आकर्षक रूप प्रदान करती है।
2: आह कितना सुंदर है ये दृश्य।
0: जितना धोती या साड़ी का आकलपन एक विशिष्ट कला है उतना ही करघे को चलाना भी एक कला है। आओ अब हम उद्यान की ओर चले।
1: आचार्य श्री, हमने चोल स्त्रियों को मत्स्य वल्का शैली में साड़ी पहने देखा है जिसमें साड़ी को पैरों के बीच से निकालकर पीछे खोसा जाता है।
0: हाँ वत्स, दूसरी से चौथी शताब्दी तक आते आते साड़ी पहनने की शैली में कई परिवर्तन आए। शिष्यों, आगे की चार कलाएं आभूषण निर्माण से संबंधित हैं।
1: जी गुरुजी।
0: 35वीं कला रत्नों की पहचान और उनके वेधन से संबंधित है, जबकि 36वीं कला स्वर्ण रजत की शुद्धता की जांच से संबंधित है। 37वीं नकली सोने चांदी हीरे मोती बनाने की कला है, जबकि 38वीं कला सोने चांदी का लेप चढ़ाने, आभूषण बनाने और मीनाकारी करने की कला है।
2: आचार्य श्री, रत्नों के धारण का उद्देश्य तो श्रृंगार से अधिक उनके धारण से होने वाले शुभाशुभ फल से होता है, फिर नकली रत्नों का निर्माण किस लिए?
0: वत्स, नकली आभूषण केवल शोभा बढ़ाने के लिए ही धारण किए जाते हैं। इनकी चमक आभा में कोई कमी नहीं होती। अब जैसे मिश्री से जो कृत्रिम हीरा बनाया जाता है उसे सामान्य जौहरी भी आसानी से नहीं पहचान पाते। आगे से दो कलाएं अर्थात 49वीं और 40वीं चर्म कलाएं हैं जो पशुओं के शरीर पर से चमड़ा निकालकर अलग करने और चमड़े को मुलायम करके उपयोगी सामान बनाने से संबंधित है।
1: आचार्य श्री, पहले तो चमड़े का उपयोग प्रमुखतः चर्म आसन और चर्म वस्त्र के रूप में होता था, अब तो यह आवरण, थैला और डोलची बनाने के लिए भी उपयोग में आने लगा है।
0: हाँ वत्स, समय के साथ हर वस्तु के नए नए उपयोग विकसित होते जाते हैं। 41वीं कला गाय भैंस से दूध दुहकर मक्खन घी दही आदि बनाने की कलाओं से संबंधित है, जबकि 42वीं कला वस्त्रों की सिलाई है। 43वीं कला तैराकी है, जबकि 44वीं बर्तन मांजने, 45वीं वस्त्रों को धोने साफ करने और 46वीं शौर कर्म कला है। फिर 47वीं कला तिल रेंडी आदि बीजों से तेल निकालने की, 48वीं पेड़ों पर ऊंचे चढ़ने की और 49वीं हल जोतने की कलाएं हैं।
2: आचार्य श्री, पेड़ों पर चढ़ने को भी कला की श्रेणी में रखा गया है?
0: हाँ वत्स, खजूर ताड़ नारियल सुपारी आदि के पेड़ों पर चढ़ने के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। ऐसे ही दूसरों की सेवा करना भी एक कला है, ये 50वीं कला है। जबकि 51वीं कला बांस खजूर ताड़ आदि के पंखे टोकरी आदि पात्र बनाना है।
1: आचार्य श्री, अपने आश्रम में भी तो छोटे बड़े अनेक प्रकार के बिजना बनाए जा रहे हैं और लगभग 2500 प्रकार की टोकरियां और सूपे बनाए जाते हैं।
0: हाँ, टोकरियां तो जैसे सामान रखने के लिए सर्वसाधारण उपकरण है। विभिन्न उपयोगों के लिए विभिन्न प्रकार की टोकरियां बनाने का प्रचलन है।
1: जी।
0: फिर ठहरी हुई वायु को बिजना ही चलाता है, चाहे वो मोर पंख का बना हो, खजूर के पत्तों का हो या बांस का। बस तुमने अपने लिए कितने प्रकार के पंखे बनाए हैं?
2: जी गुरुजी, 3 प्रकार के।
0: अच्छा।
2: एक खजूर का सादा, दूसरा बांस का बुनाई वाला और तीसरा उरई की सीकों को रंगीन धागों में बुनकर।
0: इन्हें हम देखेंगे कितनी कलमकारी या कलाकारी की है तुमने।
2: जी जी अवश्य गुरुजी।
0: अब हम 52वीं कला पर आते हैं जो कांच के बर्तन आदि बनाने से संबंधित है।
1: जी गुरुजी।
0: रेत चूना और सोडे के मिश्रण से गलाकर कांच बनाना एक विशिष्ट कला है, ये कीमियागिरी विज्ञान से संबंधित है। आगे की कलाएं हैं 53वीं स्रोतों से सिंचाई, 54वीं संहरण यानी अधिक जल वाले स्थान से जल हटाना, 55वीं हाथी घोड़े ऊंटों आदि के सवारी के आसन बनाना, 56वीं लोहे के अस्त्र बनाना और 57वीं 58वीं और 59 बच्चों की कलाएं, बच्चों का पालन पोषण और खेलने के लिए खिलौने बनाने से संबंधित।
1: यानी आचार्य श्री, जीवन से संबंधित हर गतिविधि एक कला है?
0: हाँ बस, क्योंकि उसके सुचारू संपादन का आधार कुछ नियम और सिद्धांत हैं। अब जैसे कि अपराधियों को दंड देना 60वीं कला है, विभिन्न लिपियों को सुंदरता से लिखना 61वीं कला, और तो और पान का संरक्षण भी 62वीं कला है, और आदान 63वीं तथा प्रतिदान 64वीं कला है।
2: आचार्य श्री, इन 64 कलाओं का पाठ्यक्रम तो काफी व्यापक है, इसमें से तो प्रायः सभी विषयों का समावेश हो जाता है।
0: हाँ वत्स, शिक्षा का उद्देश्य भी तो यही है, सर्वांगीण विकास, ज्ञान की वृद्धि हो, सदाचार में प्रवृत्ति हो और जीविकोपार्जन में सहायता मिले। इस पाठ्यक्रम में इन सब का ध्यान रखा गया है। इतना ही नहीं, पारलौलिक कल्याण भी नहीं छोड़ा गया है। संक्षेप में कहें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को ध्यान में रखकर ही शिक्षा का ये क्रम निश्चित किया गया है। श्री कृष्ण को इन सभी विषयों की पूरी शिक्षा दी गई थी और वे प्रायः सभी में प्रवीण भी थे।
1: आचार्य श्री, गुरुकुलों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि सभी बालकों को प्रायः इन सभी विषयों की शिक्षा दी जाती है, क्या वे सभी कलाओं में दक्ष हो जाते हैं?
0: वत्स, हम यूं कह सकते हैं कि सभी को सभी विषयों का सामान्य ज्ञान हो जाता है। निपुण तो व्यक्ति अपने स्वभाव और प्रकृति के आधार पर किसी का या किन्हीं विशिष्ट विषयों में ही हो पाता है
1: जी।
0: जिसकी जिस ओर प्रवृत्ति है उसे उसी में अभ्यास करने से कुशलता प्राप्त होती है। इसीलिए हमने कहा है, याम याम कलाम समाश्रित्य निपुणो यो हि मानवः नैपुण्य करणे सम्यक ताम ताम कुर्यात् स एव हि। सच तो यह है वत्स, वंशागत कला के सीखने में पर्याप्त सुगमता होती है। एक बड़ई का लड़का बड़ई गिरी जितनी शीघ्रता और सुगमता के साथ सीखकर उसमें निपुण हो सकता है, उतना दूसरा नहीं, क्योंकि वंश परंपरा और बालपन से ही उसे उस कला के योग्य संस्कार बन जाते हैं। ये शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार है। अब सांध्य संध्या का समय हो चला है, आओ हम सब यज्ञशाला की ओर चलें।
1: जी गुरुजी।

0: तो बच्चों, ये थी महर्षि शुक्राचार्य के गुरुकुल की एक झलक।
1: तो घंटी बज गई, चलो चलो।
2: अरे चलो, नहीं। चलो। और सुन, मोबाइल ज्यादा कान में, वो हेडफोन मत लगाया कर।
3: लेके भी नहीं आऊंगी मैं स्कूल में,
2: नहीं तो तेरे कान बहरे हो जाएंगे। तू ऐ करके सुनना।

0: साथियों, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी किसी और ऋषि वैज्ञानिक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें,
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने आजादी के।

देशभक्ति गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति रचना।

तराने आजादी के इस कार्यक्रम में आज आपके साथ थी मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब इजाजत दें इस कार्यक्रम से मुझे, नमस्कार। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: झूलोट के घर न आए।
2: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती

श्रोताओं, आज भारत भारती कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में मिट्टी की सौंधी सी महक आपके लिए। जरा पहचानिए तो आपको हम किस ओर ले चल रहे हैं। जी हाँ श्रोताओं, ये है मिट्टी की सौंधी सी महक बघेल खंड की धरती से उठती हुई। भारत भारती के आज के अंक में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मणिमाला सिंह और साथियों के गाए हुए कुछ बघेली लोकगीत। तो क्यों ना आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करें इस गणेश वंदना से।

श्रोताओं, लोक संगीत यानी जन जन का संगीत, ऐसे गीत जो हमारी मिट्टी में रचे बसे हैं, सदियों से हमारी परंपरा, हमारे संस्कारों से जुड़े हुए हैं, जीवन के सुख दुख से जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एक गीत है सोहर, जो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। तो आइए जीवन के उत्सव का ये गीत सुनते हैं मणिमाला सिंह और साथियों की आवाजों में।

बच्चे का जन्म हुआ और महिलाओं ने मिलकर गाया सोहर। जी हाँ, सोहर बच्चे के जन्म पर खुशी में गाया जाने वाला लोकगीत है। वैसे बच्चे की बधाई तरह तरह से दी जाती है। अगर घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो बहुत तरह से मिठाइयाँ बांटकर बधाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन बधाई गीत का एक अपना ही महत्व है। तो आइए वही बधाई गीत सुनते हैं मणिमाला सिंह और साथियों के स्वरों में।

श्रोताओ, बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद माँ के द्वारा कुआं के पूजन का विधान है। जी हाँ, सिर पर गगरी रख माँ कुएं तक जाती है और घर के सभी लोग उसके पीछे पीछे साथ में गाते बजाते पहुँचते हैं कुएं तक और उसका पूजन करते हैं। तो आइए इसी अवसर पर गाया जाने वाला ये लोकगीत सुनते हैं। स्वर मणिमाला सिंह और साथियों के हैं।

श्रोताओं, भारत भारती कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मणिमाला सिंह और साथियों के गाए हुए कुछ बघेली लोकगीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ये पारंपरिक रचना।

बघेलखंड का लोक संगीत, जी हाँ, सरस, मीठा, मधुर। इस लोक संगीत में संस्कार गीतों की परंपरा बहुत ही समृद्ध है। आइए कुछ शादी ब्याह से संबंधित गीत आपको सुनवाते हैं इन्हीं कलाकारों के स्वरों में। भाई, दूल्हा तैयार हो चुका है, शादी की पूरी तैयारी हो गई है और घर के लोग बारात लेकर निकलने की तैयारी में हैं। अब ये कि बनरा गाया जाएगा, जी हाँ, यही वो लोकगीत है जो इस अवसर पर गाया जाता है। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, लोक जीवन में कितनी अनुपम और सुंदर बातें होती हैं। जी हाँ, अगर बच्चे का जन्म हुआ तो वो या तो कान्हा कहलाता है या राम, माँ कौशल्या हो जाती है या यशोदा कहलाती है। इसी तरह जब शादी के लिए तैयार होता है दूल्हा तो उसमें सभी लोग छवि देखते हैं भगवान श्री राम की, और ये बारात चाहे कहीं भी जा रही हो, लेकिन हम अपने लोकगीतों में गाते हैं कि बारात चली जनकपुर को। अब जब बारात जनकपुर पहुंची तो भाई वहां स्वागत की तैयारी भी पूरी तरह से है, बारात द्वार पर है। अब उसके स्वागत में जो गीत गाया जाता है वो है गैलहाई। आइए सुनते हैं इन्हीं कलाकारों के स्वरों में।

द्वार पर बारात का स्वागत तो एक बात, लेकिन कुछ हंसी ठिठोली भी होती है। जी हाँ, एक दूसरे से जान पहचान हो जाए, कुछ मेल मिलाप हो जाए, एक दूसरे से बातचीत में हम खुल जाएं, इस उद्देश्य को लेकर गारी भी गाई जाती है, कुछ छेड़छाड़, थोड़ा सा आमोद प्रमोद। आइए सुनते हैं द्वारचार की गारी, स्वर मणिमाला सिंह और साथियों के।

लेकिन अब बारात लग चुकी है द्वार पर। घराती और बाराती दोनों का ही उत्साह देखते ही बन रहा है। इस अवसर पर गाया जाता है बारात के स्वागत में ये पारंपरिक लोकगीत।

0: घर में बिटिया की शादी है। कितनी ही भावनाएं मन में हिलोरें ले रही हैं। खुशी है कि बेटी सुहागन होगी, और वहीं बचपन से लेकर आज तक जुड़ी कितनी ही यादें बार बार आती हैं, मन को भिगा जाती हैं। कभी ये लगता है कि बिटिया इतनी जल्दी बड़ी हो गई, और कभी ये लगता है कि कितनी खुशी की बात है कि बारात द्वार पर आई है। और इन्हीं मनोभावों के बीच बेटी के अनंत सुहाग की कामना लिए गाया जा रहा है सुहाग। आइए सुनते हैं मणिमाला सिंह और साथियों के स्वरों में।
1: मोरे के बोला चाहो सुहाग गीत मवा प्रसंग है कि जौने घर में बिटिया कुमार होती सबको सो जाती, सब सो जाती, लेकिन वह घर के प्राणी बाबा आजा काका उन्हें स्वामी उन्हें कितनी चिंता होती, वह चिंता का लेते हम अपना के सामने हाजिर।

श्रोताओं, हंसी ठिठोली एक जगह, लेकिन बारातियों से बड़ा भला कौन मेहमान, तो उनके स्वागत के लिए तैयारी भी पूरे जोर शोर से है। जी हाँ, नाना प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं और बेली जा रही हैं पूड़ियाँ। बारातियों को खिलाई जाएंगी ये पूड़ियाँ, और ये पूड़ी भी यूं ही थोड़ी बेली जाएगी, यहाँ भी तो कोई मंगल गीत होगा। जी हाँ, गांव भर की महिलाएं इकट्ठी हैं, बारातियों के लिए बेल रही हैं पूड़ी और इस अवसर पर खुशी के साथ मंगल गीत गा रही हैं, जिसे हम कहते हैं बेलनहाई। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, बेलनहाई गाते हुए पूड़ियां तो बन गई और अब समधी जी तैयार हैं जेवनार के लिए। और खाने के इस अवसर पर गारी तो होगी, लेकिन मर्यादित शब्दों में। और आपको पता है, बघेलखंड में नाम ले लेकर गारी देने का रिवाज है। और सबसे मजेदार बात ये कि अगर किसी का नाम न लिया जाए तो वो बुरा मान जाता है, यानी गारी दी भी जाती है प्रेम से और ली भी जाती है प्रेम से।

0: जितने जने हमारे यहाँ थोड़ी का सुना थे उनसे सबसे पूछी थी, कहा थे हमरे बघेल खंड में जाकर नाम लेके गाली ना गाई जाओ बुरा मान जाते, बुरा बिल्कुल ना मानब। हम सबसे पूछी थी अपना पंचन के बगल से निकली 50,000 छोकरी,
1: कहो कैसे निकली
0: आज जैसे।

और श्रोताओं, यूं ही गाते गुनगुनाते, हंसी ठिठोली करते, आमोद प्रमोद करते, खाते खिलाते सभी रस्में होने लगी और हर रस्म के साथ कोई न कोई लोकगीत जरूर जुड़ा हुआ है। तो आइए सुनते हैं ये भंवरी, जिसके भाव बहुत ही करुण हैं। तो इसी भाव के साथ सुनिएगा मणिमाला सिंह और साथियों के स्वरों में ये लोकगीत।

श्रोताओं, भारत भारती कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। बघेली संस्कार गीतों की श्रृंखला में अगली प्रस्तुति ये लोकगीत, स्वर मणिमाला सिंह और साथियों के हैं।

श्रोताओं, बारात द्वार पर आई, उसका स्वागत किया गया, कुछ आमोद प्रमोद भी हुआ, गारी गाई गई और तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। विवाह की इस मंगल बेला में अब गाई जा रही है अंजुरी। आइए सुनते हैं मणिमाला सिंह और साथियों के स्वरों में।

विवाह संपूर्ण हुआ और अब बेला आई विदाई की। मन भीग भीग जा रहा है। वो बिटिया जिसने इस आंगन में जन्म लिया, यहीं खेली कूदी बड़ी हुई, संस्कार पाए, माता पिता की लाड़ली, भाई बहनों की दुलारी, आज इस आंगन को छोड़कर चली जाएगी। कैसी कठिन घड़ी है कि माता पिता अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विदाई गीत। कलाकार हैं मणिमाला सिंह और साथी।

और श्रोताओं, विदा होकर बिटिया आ गई अपने ससुराल। जी हाँ, ससुराल में खुशी का वातावरण, लोग प्रसन्न हैं कि गृह लक्ष्मी आ गई। और यहाँ भी तो घर की लक्ष्मी को घर में प्रवेश करवाने से पहले कितनी ही रस्में हैं। गृह लक्ष्मी का स्वागत हो रहा है परछन से, तो आइए इसी अवसर पर गाया जाने वाला ये लोकगीत सुनते हैं मणिमाला सिंह और साथियों के स्वरों में।

0: श्रोताओं, भारत भारती कार्यक्रम में आज थी महक बघेल खंड की माटी की। जी हाँ, आपने सुने कुछ बघेली लोकगीत और वहाँ के कुछ संस्कार गीत। हमारे आज के कलाकार थे मणिमाला सिंह और साथी। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही संपन्न होता है भारत भारती का आज का अंक। अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।
1: रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज की दोपहर कालीन प्रसारण सभा में आपके साथ थी मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। उम्मीद है आज दिन की सभी प्रस्तुतियां आपको अच्छी लगी होंगी। अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें जरूर अवगत कराइएगा। फिलहाल समय हो रहा है कि इस प्रसारण सभा में मैं आपसे विदा लूं, तो इजाजत दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। आगे बहुत कुछ खास है आपके लिए हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में। इंतजार कीजिएगा बस जरा सा।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: शुभ संध्या। 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। शाम के 5 बज चुके हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है, जो कि रात्रि के 10 बजे तक जारी रहेगी। सबसे पहले जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारा अगला कार्यक्रम होगा वैदिक ऋचाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्षय निधि। 5:10 पर सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। शाम 6 बजे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग कार्यक्रम आज समर्पित होगा स्वाधीनता संग्राम सेनानी बाल कृष्ण भट्ट को। शाम 6:30 पर कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम में आज का विषय होगा हर टोकाटा की बुरी नहीं होती। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी मनीषा चतुर्वेदी। शाम 7 बजे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इस कार्यक्रम में आज का विषय होगा प्रकृति और मनोविज्ञान। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ पारुल ऋषि से मनीषा चतुर्वेदी की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। शाम 7:30 पर कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज हम कारगिल युद्ध पर आधारित कार्यक्रम का चतुर्थ भाग सुनेंगे। जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और उनसे बातचीत करेंगी पूर्वा खले। रात्रि के 8 बजे कार्यक्रम देश के संस्थान। इस कार्यक्रम में आज का विषय होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस कार्यक्रम को स्वर देंगे दीपक नेमा और भगवती सक्सेना। रात्रि के 8:30 पर स्वाधीनता संग्राम सेनानी मंगल पांडे की जयंती के अवसर पर याद करो कुर्बानी कार्यक्रम का विशेष अंक प्रसारित होगा। रात्रि के 9 बजे भोपाल में आयोजित कार्यक्रम मेरे कृष्णा की रेडियो रिपोर्ट हम आपको सुनवाएंगे और 9:30 पर काव्य गुंजन कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम सुनेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी का पाठ। आज हम इस कार्यक्रम का सप्तम भाग सुनेंगे। तो ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 MHz पर सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है वैदिक ऋचाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 167 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणी, देवता हैं इंद्र और मरुद्गण, छंद है त्रिष्टुप।
1: प्रातम विविकिम वकम्यो य एषां मरुतां महिमा सत्यो अस्ति सचा यदीं वृषमणा अहंयुः स्थिरा चिज्जिनीर वहते सुभागाः। इन वीर मरुद्गणों की स्तुत्य महिमा का हम यथावत वर्णन करते हैं। इनकी महिमा के अनुरूप सुस्थिर भूमि भी इनकी अनुगामिनी बनकर इन सामर्थ्यवानों से प्रेम करती हुई, स्वाभिमान की रक्षा करती हुई, सौभाग्यशाली प्रज्ञा का पोषण करती है। पांति मित्रा वरुणा ववद्या चयत ईमर यमो अप्रशस्तान उत च्यवन्ते अच्युता ध्रुवाणि वावृध ईम मरुतो दातिवारह। मित्र वरुण और अर्यमा निंदनीय दोष विकारों एवं निंदनीय पदार्थों के उपयोग से आपको बचाते हैं। हे मरुतो, आप अडिग अपराजेयों को भी पदों से च्युत कर देते हैं। आपका दिया हुआ अनुदान निरंतर बढ़ता रहता है। नहीं नु वो मरुतो अंत्यस्मे आरात्ता चिच्छवसो अंतमापुः ते धृष्णुना शवसा शूशुवान सोर्णो न द्वेषो धृषता परिष्टुः। हे वीर मरुतो, आपकी सामर्थ्य अनंत है, जिसका ज्ञान दूर या नजदीक से किसी भी प्रकार कर पाना असंभव है। आपकी शक्ति शत्रु सेना को जल के समान घेर कर विनष्ट कर डालती है। वयमद्येन्द्रस्य प्रेष्ठा वयम श्वो वोचे महि समर्ये वयम पुरा महि च नो अनुद्यून तन्न रिभुक्षा नरा मनुष्यात्। आज हम इंद्रदेव के विशेष कृपा पात्र बने हैं, उसी प्रकार कल अर्थात भविष्य में भी उनके कृपा पात्र बने रहें। हम इंद्रदेव की प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, जिससे हम सदैव विजयश्री का वरण करते हुए महानता को प्राप्त हों। इंद्रदेव की कृपा हम सभी के लिए अनुकूल हो। एष वह स्तोमो मरुत इयम् गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः एषा यासीष्ट तन्वे वयाम विद्यामेषम व्रजनम जीरदानुम। हे मरुद्गण, ये स्तोत्र आपके निमित्त उच्चरित किए जा रहे हैं, अतएव आनंद प्रद तथा सम्माननीय आप स्तोता के शारीरिक पोषण के निमित्त आए और हमें भी अन्न बल और विजय श्री दिलाने वाला ऐश्वर्य प्रदान करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 167 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।

नमस्कार, मैं हूं मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। जीवन में अवसर तो आएंगे ही, अंतहीन अवसर पूरे जीवन मिलते रहेंगे। आलस ना करें, वरना अच्छे अवसर हाथ से निकल जाएंगे। ऐसा समय जिसमें हमें महान बनना था, जो समय हमें ऊंचाइयां देने आया था, जिस

प्रेम, करुणा, त्याग, संयम, अनुराग और भक्ति जैसे गुण महापुरुषों के स्वभाव में रहते हैं। ये सभी सद्गुण हम सभी में हैं। इन गुणों को जगाना पड़ता है। अपने भीतर प्रेम, माधुर्य और संयम को जगाएं, अपने भीतर की सरलता को जगाएं। जब हम ऐसा ठान लेंगे कि हमारे सद्गुण चैतन्य हो, हमारी दिव्यताएं उजागर हो, हमारी श्रेष्ठताएं एक साथ जीवंत हो, तब निःसंदेह हम बड़े कार्य कर पाएंगे।

हम अपने काम के लिए कितने गंभीर हैं, कितने अच्छे संकल्प और श्रम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, इन बातों से हमारी सफलता तय होती है। अगर हम स्वयं के प्रति गंभीर हैं, निष्ठावान हैं, हमारे विचार सही हैं, हम कोरी कल्पनाओं से काम नहीं चलाते, तब हमारे लक्ष्य पूरे होते हैं।

शुभ कर्म ही मूल पूंजी है। शुभ कर्म का अर्थ है दूसरों के प्रति सेवा की भावना, दूसरों के दुर्गुणों और दोष पर ध्यान नहीं देना। जहाँ सद्गुण है, शुभता है और प्रियता है, वहाँ पर हमें रहना चाहिए। भाषा में सकारात्मक भाव लाना चाहिए। हम किसी के उस पक्ष को ना देखें जहाँ दुर्गुण है, हमेशा कुछ अच्छा देखने का प्रयास करें।

नवाचार करना हमारा एक स्वाभाविक गुण है। हम कभी भी नया सृजन, नई खोज और नए काम कर सकते हैं। मनुष्यों ने संचार, सूचना, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, आधुनिक उपकरण जैसे हर क्षेत्र में अब तक कई आविष्कार किए हैं, कई बड़ी बड़ी खोजें की हैं। ये सब मनुष्यों के सामर्थ्य की वजह से ही हो रहा है। हमें अपनी रचनाओं को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए।

हमारी वर्तमान स्थिति हमारी पुरानी कामनाओं और कर्मों का ही प्रतिफल है। हमारा जो कुछ भी है अपने संकल्प, कर्म और विचारों की वजह से ही है। हम जो कुछ अच्छा बुरा प्राप्त करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। जब हम वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करते हैं, अपने इंद्रियों पर संयम रखते हैं, तब हमारा भविष्य सुखद बनता है।

माता पिता के साथ ही गुरु, उम्र में बड़े और विद्वान लोगों का भी आदर करना चाहिए। भारतीय संस्कृति के अनुसार ये सभी भगवान की साकार प्रतिमाएं हैं, क्योंकि इनमें परमात्मा के अंश और संदेश हैं।

पुराने भूलों को बीते समय में जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें अपने भूलों से सीखकर अपने भविष्य को संवारते रहना चाहिए।

जीवन बदलता रहता है और जो लोग बदलाव को सकारात्मक सोच के साथ अपना लेते हैं उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। बीते समय की बुरी बातों को भूलकर वर्तमान पर ध्यान दीजिए। खोई हुई चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे तो उन चीज़ों का आनंद नहीं ले पाएंगे जो हमारे पास है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
2: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सन 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम, विद्रोह की हुंकार से अंग्रेजी राज की नींव हिल उठी थी और इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की पुरजोर कोशिश। इसी कालखंड में 13 वर्ष का एक बालक अंग्रेजों की बर्बरता को अपनी आंखों से देख रहा था। प्रयागराज के चौक इलाके में अनगिनत क्रांतिकारियों को सरेआम पेड़ से लटका दिया गया था। उस बच्चे ने अपनी आंखों से कितने ही देशभक्तों के शवों को पेड़ से लटकते हुए देखा और यहीं से उसके मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत का भाव पैदा हो गया। आने वाले समय में ये बालक एक सफल पत्रकार, निबंधकार, उपन्यासकार और नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिन्हें हम पंडित बालकृष्ण भट्ट के नाम से पहचानते हैं। वो बेशक राजनीति में नहीं आए, लेकिन इस घटना ने उनके एक दृढ़ चरित्र का निर्माण किया। वो आजीवन गलत के मुखर विरोधी रहे, पूरी बेबाकी से गलत को गलत और सही को सही कहा करते। अपने इसी तेवर और साहस के साथ उन्होंने आजीवन पत्रकारिता और साहित्य सेवा की। पंडित बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के उन्नायक रचनाकारों में से एक हैं। वो भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में स्थान रखते हैं। इस तरह पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार और हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा, नया रंग रूप और मानस प्रदान किया। इस युगांतरकारी कार्य में वो अकेले नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम घन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। लेकिन ये एक स्थापित मान्यता है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और लंबे समय तक संपूर्ण निष्ठा के साथ साहित्य सेवा करने वाले एक समर्पित साहित्यकार थे। सन 1844 में प्रयागराज में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित बेनी प्रसाद भट्ट था और माताजी का नाम था पार्वती देवी। उनके पिता एक व्यापारी थे, जबकि माता एक सुसंस्कृत विदुषी महिला थीं, जिनके कारण बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन के प्रति विशेष रुचि और लालसा जागी। बचपन से ही उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रारंभ में घर पर ही उन्हें संस्कृत की शिक्षा प्रदान की गई और फिर प्रयाग के मिशन स्कूल से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वो अत्यंत मेधावी छात्र थे। शिक्षा के साथ ही उन्होंने संस्कृत, व्याकरण और साहित्य का भी गहन अध्ययन किया। संस्कृत के साथ ही उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य भी किया। आगे चलकर दूसरे स्कूलों में उन्होंने संस्कृत का अध्यापन कार्य भी आरंभ किया था, लेकिन अपने सिद्धांतों, अपनी विचारधारा और दृढ़ स्वभाव के कारण नौकरी उन्हें कभी रास नहीं आई और उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया तथा नई राह की तलाश में चल पड़े।

सेवा में जुट गए। पिता की मृत्यु के पश्चात ये अपेक्षा उनसे की गई कि वो अपना पैतृक व्यवसाय संभालेंगे। इस व्यवसाय के कारण भी उन्हें गृह कलह का सामना करना पड़ा। उन्होंने गृह त्याग दिया। घोर आर्थिक संकट का सामना करने के बावजूद उन्होंने निरंतर साहित्य सेवा की। अध्यापन कार्य के साथ ही भारतेंदु जी से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदी साहित्य सेवा का व्रत ले लिया था। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला, जिसका संपादन वो स्वयं करते थे। मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप का पहला अंक छात्रों से मिले 5-5 रुपए के चंदे से सन 1877 में प्रकाशित हुआ। इसके एक अंक की कीमत 4 आने थी। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप द्वारा निरंतर 32 वर्षों तक हिंदी की सेवा की। उनकी कलम ब्रिटिश हुकूमत को भयभीत किया करती थी। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध हिंदी प्रदीप पत्र लोगों के भीतर राष्ट्रीयता का भाव भरा करता था। दरअसल उन्होंने हिंदी के प्रचार के लिए प्रयाग में हिंदी वर्धिनी सभा की स्थापना भी की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा की ओर से ही उन्होंने हिंदी प्रदीप पत्र निकालना प्रारंभ किया था। ये एक साहित्यिक पत्र था जिसमें हास्य व्यंग्य और गंभीर दोनों प्रकार की साहित्यिक रचनाओं का प्रकाशन होता था। हिंदी प्रदीप के माध्यम से भट्ट जी ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के साथ ही राष्ट्रीय चेतना को बलवती बनाने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक पद्य रचना तैयार की जो हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पर निरंतर छपती रही। सरकारी नीतियों, ग्राहकों और आर्थिक तंगी से उत्पन्न अनेक समस्याओं का सामना करते हुए पंडित बालकृष्ण भट्ट ने 32 वर्षों तक हिंदी प्रदीप का संपादन प्रकाशन जारी रखा। हिंदी प्रदीप के आरंभिक अंक जहां भारतेंदु युग से पूर्णतः प्रभावित हैं, वहीं द्विवेदी युग में प्रकाशित हिंदी प्रदीप के अंकों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा निर्देशित साहित्य विधाओं की झलक दिखाई देती है। इस तरह पंडित बालकृष्ण भट्ट ने आधुनिक हिंदी साहित्य के दो महत्वपूर्ण युगों, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में अपनी उत्कृष्ट साहित्यिक पत्रकारिता के माध्यम से अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करा के

करने वाले पंडित बालकृष्ण भट्ट जैसे साहित्यकार और पत्रकार हिंदी साहित्य जगत में कठिनाई से ही मिलेंगे। उन्होंने कलम के माध्यम से मां भारती की अद्भुत सेवा की।

हिंदी प्रदीप में छपने वाले तीखे लेखों से ब्रिटिश सत्ता बेचैन थी। सन 1909 में हिंदी प्रदीप के अप्रैल के अंक में माधव शुक्ल की कविता बम क्या है छपी थी। इससे नाराज होकर ब्रिटिश सरकार ने 3,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। पंडित बालकृष्ण भट्ट के पास भोजन तक के पैसे नहीं थे, वो जुर्माना क्या भरते। परिणाम स्वरूप हिंदी प्रदीप की लौ सदा के लिए बुझ गई। लेकिन 32 वर्षों की अपनी सुदीर्घ यात्रा में हिंदी प्रदीप के साहित्यिक लेखों ने जो उजाला पैदा किया, उससे हिंदी साहित्य जगत आज भी आलोकित है। पंडित बालकृष्ण भट्ट एक सजग पत्रकार और संपादक होने के साथ साथ एक उत्कृष्ट रचनाकार भी थे। उन्हें आज की गद्य प्रधान कविता का जनक माना जा सकता है। उनका गद्य गद्य न होकर गद्य काव्य सा प्रतीत होता है। भाषा की दृष्टि से भी अपने समय के लेखकों में उनका बहुत ऊंचा स्थान है। उन्होंने अपनी रचनाओं में यथाशक्ति शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है। कहावतों और मुहावरों का प्रयोग भी उन्होंने सुंदर ढंग से किया। वो हमेशा ही हिंदी की परिधि का विस्तार चाहते थे, इसलिए विषय और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हिंदीतर शब्दों को भी सम्मिलित किया। इसीलिए उनकी लेखनी में कहीं कहीं पूर्वी बोली का प्रयोग भी दिखाई देता है। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने एक ओर जहां आंख, कान, नाक, बातचीत जैसे साधारण विषयों पर लेख लिखे, तो वहीं दूसरी ओर आत्मनिर्भरता, चारुचरित्र जैसे गंभीर विषयों पर भी लेखनी चलाई। साहित्यिक विषय के साथ ही उन्होंने समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए सामाजिक निबंधों की रचना की। पंडित बालकृष्ण भट्ट के निबंधों में विचारों की गहनता, विषय की विस्तृत विवेचना और गंभीर चिंतन के साथ एक अनूठापन भी है। उनके निबंध अधिकतर हिंदी प्रदीप में प्रकाशित होते थे। उनके निबंधों में ईश्वर की भी क्या ठठोल है, नाक निगोड़ी भी

बुरी बला है, अकल अजीर्ण रोग, भकुआ कौन कौन है, हम डार डार तुम पात पात, इंग्लिश पढ़े सो बाबू होए, चंद्रोदय, संसार महानाट्यशाला, मेला ठेला, शब्द की आकर्षण शक्ति, बातचीत, भिक्षावृत्ति आदि प्रमुख हैं। उनके निबंधों का संकलन भट्ट निबंधमाला, साहित्य सुमन और आत्मनिर्भरता नाम से प्रकाशित हैं। इसके अलावा उन्होंने नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और 1 सुजान और रहस्य कथा नाम से उपन्यास भी लिखे तथा दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, विहन्नला, पद्मावती, सीता वनवास, रेल का विकट खेल आदि नाटकों की रचना की। संपूर्ण हिंदी साहित्य में वो प्रथम श्रेणी के निबंध लेखक माने जाते हैं। अपनी लेखन शैली से वो प्रताप नारायण मिश्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निकट मालूम होते हैं। हिंदी प्रदीप के अलावा भट्ट जी ने 2-3 अन्य पत्रिकाओं का भी संपादन किया। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संकलित हिंदी शब्द सागर के संपादन में भी उन्होंने बाबू श्याम सुंदरदास और शुक्ल जी के साथ कार्य किया। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने परंपरावादी होते हुए भी परंपरा का अंधानुकरण कभी नहीं किया। उन्होंने परंपरा का विश्लेषण कर उसे सतर्क बुद्धि विवेक से देखा, परखा, उसके बाद ही उसके अनुकरण के बारे में विचार किया। उन्होंने निष्प्राण परंपरा और पाखंडपूर्ण धर्म को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा भी की तथा लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। पंडित बालकृष्ण भट्ट अत्यंत संयमी और त्यागी व्यक्ति थे। बताया जाता है कि अपने पिताजी के गया श्राद्ध के समय 3 वर मांगते हुए उन्होंने कामना की थी कि पैतृक संपत्ति में मुझे 1 भी पैसा न मिले, मेरे पुत्र और पुत्रियों का चरित्र निर्मल रहे और मेरा 1 पुत्र संस्कृत का विद्वान हो। इस तरह एक अत्यंत संयमित और निर्मल जीवन था उनका। आजीवन साहित्य सेवा करते हुए 20 जुलाई सन 1914 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, जिसमें आज की कड़ी स्वाधीनता संग्राम सेनानी बाल कृष्ण भट्ट की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके जीवन पर केंद्रित थी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: टोक अच्छी भी होती हैं।
1: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
0: बच्चों नमस्ते, मैं हूँ आपकी मनीषा दीदी। कैसे हैं आप सब? मुझे पता है जैसे ही आपको रेडियो आजाद हिंद पर बाल सभा की ये धुन सुनाई देती होगी ना, आप बहुत खुश हो जाते होंगे, आपके चेहरे खिल जाते होंगे। और कुछ लोग तो इसे अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू भी सुनते हैं, है ना? अच्छी बात है बच्चों, आप ये कार्यक्रम रविवार के अलावा भी अलग अलग चैनल से कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। और हाँ, अपनी दादी नानी, मौसी मौसा जी, चाचा चाची, सबको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं आज की बात पर। आज की बात ये है बच्चों कि आप जब अपनी पढ़ाई, खेल, शरारतों और ढेर सारी नई नई बातें सीखने में व्यस्त हैं, लेकिन इसी के बीच एक ऐसा सवाल है जो बहुत से बच्चे आकर अक्सर मुझसे कहते हैं, और वो सवाल बताऊं आपको क्या है? दीदी अच्छा नहीं लगता, हर बात पर टोका टाकी करते हैं मम्मा पापा। ठीक, मुझे लगा शायद एक बच्चा कह रहा होगा। एक दिन एक बच्चा आया और उसने तो पूरी कहानी सुना दी। दीदी पता है मेरे घर में क्या होता है? मैंने कहा क्या? बोला सुबह उठते ही जल्दी उठो बेटा, पहले ब्रश कर लो, बिस्तर ठीक कर दो, यूनिफॉर्म ठीक से पहनो, नाश्ता पूरा ख़त्म कर देना, स्कूल बैग चेक कर लिया, होमवर्क पूरा किया क्या, कितना मोबाइल चलाओगे, टीवी बंद कर दो, बहुत देर हो गई, धीरे बोलो, ठीक से बैठो, जूते इधर क्यों छोड़ दिए, लेट के जब उठे तो चदरा क्यों नहीं खड़ी किया, देखो तुम्हारे खिलौने बिखरे पड़े हैं। मैं चौंक गई कि इस बच्चे के पास ना कितनी बातें हैं। मैं थोड़ा सा हंसी मुस्कुराई, लेकिन बात तो जायज है भाई। बच्चे ये क्यों सोचते हैं कि इतने सवाल आखिर सुबह से शाम तक कितनी टोका टाकी। मैंने कहा ठीक है चलते हैं, आपकी मम्मा से बात करते हैं, वो मेरी दोस्त भी हैं, तो पूछेंगे भाई कि ये सुबह से उठकर जूते इधर क्यों छोड़ दिए, बैग उधर क्यों पटक दिया, ये सब क्यों पूछती हैं। लेकिन मैंने कहा कि अगर तुम ऐसा करो कि मम्मी कभी ना टोके तुम्हें, फिर बोले मम्मी अगर कभी नहीं टोकेंगी तो तुम मुझको ही अच्छा नहीं लगेगा ना। मैंने कहा मतलब? बोले हाँ, मम्मा टोकती हैं तो मुझे गुस्सा जरूर आता है दीदी, लेकिन अगर वो बिल्कुल नहीं टोकेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा देखो कितना समझदार बच्चा है। मतलब ऐसे ही बोलते थे हमारे यहाँ कि सिक्के के जो दोनों अट और पट होती है ना, मतलब एक साइड और दूसरी साइड, वो दोनों साइड उस बच्चे की थी कि ये भी बात मेरी है और वो भी बात मेरी है। मतलब मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मम्मा टोकती है और मुझे ये भी अच्छा नहीं लगेगा कि मम्मा बिल्कुल ना टोके। कितनी बड़ी बात है ना बच्चों इस बात में। तो कहानी का सीन ये है बच्चों कि कुछ रोक टोक आपके अच्छे के लिए होती हैं, है ना? कभी मम्मी टोकती हैं, कभी पापा, कभी दादा दादी, कभी बड़े भैया दीदी। और अगर स्कूल पहुंच जाते हो तो आपके शिक्षक भी कभी कभी कह देते बेटा लाइन में ठीक से लगो, लाइन मत तोड़ना, धीरे बोलो, ध्यान से सुनो, पहले काम पूरा कर लो। ये सब क्या है? और अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर सब लोग मुझे ही क्यों टोकते हैं, तो नहीं बच्चों, हर बड़ा हर बच्चों को रोकता टोकता है। और पता है वो क्यों होता है? वो आपको सही शेप देने के लिए होता है। आपने कभी देखा है, आजकल तो मैं देखती हूँ बहुत सारे मेलों में बच्चों को सिखाने के लिए बड़े बड़े चाक लगाए रहते हैं, जिसपे एक कुम्हार बैठ के मिट्टी के घड़े और बर्तन बना रहे होते हैं, और अगर कोई बच्चा चाहता है तो उससे भी छोटा सा ग्लास या छोटा सा दीपक बनवा देते हैं। तब आपने ध्यान से देखा होगा कि वो जो कुम्हार है, जो मिट्टी के घड़े को अगर बिल्कुल इधर से उधर से थाप ना देना बच्चों, तो वो शेप में सही नहीं आएगा। छोटा सा बोल रही हूँ, छोटा सा जो कोई जेवर होता है ना, छोटा सा आभूषण होता है, जब दोस्तों वो बन रहा होता है ना, तो उसको बहुत छोटी छोटी सी जगह से ठोका पीटा जाता है, इधर से छोटी सी हथौड़ी से इधर इधर इधर कर दिया, फिर उधर से थोड़ा सा ठोक दिया। क्यों? क्योंकि उसे सही शेप में लाना है। अगर हम किसी को नहीं टोकेंगे, नहीं रोकेंगे और उसे नहीं समझाएंगे अपनी बात कि बेटा अगर टोक रहे हैं तो क्यों टोक रहे हैं, तो बच्चों सच मानो आप लोग सही शेप में नहीं आओगे। सही शेप में आने से मेरा मतलब किसी शर्ट पैंट में फिट होने से नहीं है, है ना, मेरा है जिंदगी की जो असलियत है वो आपको सही से समझ में आए, आप अपने उस जिंदगी के दौड़ में सही से कदम मिलाकर चल सको, एक अच्छा नागरिक बन सको और आप अनुशासन से रह सको,
2: उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको समय समय पर रोका भी जाए और टोका भी जाए। जैसे कई बच्चे होते हैं ना कि जिद करते हैं, मम्मा आज बर्थडे है, मम्मा मान भी लेती हैं, पापा भी मान लेते हैं कि ठीक है भेज देंगे, लेकिन वो क्या कहते हैं, बेटा टाइम से आ जाना, अंधेरा होने से पहले आ जाना, भले ही सेम कॉलोनी में बच्चे रहते हैं लेकिन फिर भी माता पिता चिंता करते कि नहीं अंधेरा होने से पहले घर आ जाओ। अब बात ये आती है कि वो यहाँ सिर्फ आपको नहीं टोक रहे हैं, वो खुद भी फॉलो कर रहे हैं ये बात कि नहीं अंधेरा होने से पहले हमें भी घर आ जाना है। क्यों? क्योंकि हर बुजुर्ग यही कहता है कि शाम को थोड़ा समय अपनी फैमिली के साथ बिताइए, अपने परिवार वालों के साथ बैठिए, एक साथ खाना खाइए। अब जैसे सुबह अगर आप उठ रहे हो, अगर मम्मा आपको टाइम से नहीं उठाए, कितने दिन आपकी स्कूल बस खड़ी रहेगी, स्कूल वैन खड़ी रहेगी, फिर क्या होगा, फिर बाकी बच्चे आपके कारण लेट होंगे। जैसे मैं हमेशा देखती हूँ कि जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रही होती हूँ तो कई बच्चे वैन के लिए, एक बच्चा लेट होता है और उसके कारण 8-10 बच्चे और लेट होते हैं। तो सोचिए कि आपकी अनुशासनहीनता का असर और बच्चे क्यों झेल रहे हैं, आप टाइम से नहीं उठे, लेट दूसरे बच्चे हो रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा ना कि एक बच्चा हमेशा हाथ में पराठा लिए भाग रहा होता है स्कूल की बस में, क्यों, सोचा है कभी आपने? कभी आपने सोचा है कि एक बच्चे को हमेशा ही डांट पड़ रही होती है कि आज तुम ये कॉपी लेकर नहीं आए, आज तुम वो किताब भूल गए, क्यों? क्योंकि वो अभी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में नहीं है। रोक टोक उसे पसंद नहीं आती होगी, उसने कह दिया होगा मुझे रोको टोको मत, तो बस वो मौज मस्ती से जी रहा है बच्चा, लेकिन इस मौज मस्ती की बहुत कीमत चुकानी पड़ती है बच्चों, है ना। अगर आप अनुशासन में रहोगे तो आप सही समय पे काम करोगे, है ना, आपका कोई होमवर्क डिले नहीं होगा, फिर आप खेलने के लिए भी समय निकालोगे। पता चला कि आप अगर टीवी देखने बैठे तो 3 घंटे टीवी ही देखते रहे, फिर पढ़ोगे कब? तभी तो मम्मी कहती है बहुत हो गया टीवी अब बंद करो चलो पढ़ने बैठो, आपको लगता है फिर टोक दिया मम्मी ने, लेकिन अगर वो ना टोके ना तो आप सच मानो आप उठोगे भी नहीं बेटा। आपको पता है घोड़ा जब दौड़ता है ना तो उसकी आंखों के दोनों साइड छोटे छोटे से कवर लगे होते हैं, क्यों लगे रहते हैं? इसलिए लगे रहते हैं बच्चों ताकि वो सीध में जहां चल रहा है, जहां उसका मालिक लगाम खींच के उसे ले जाना चाहता है, वहीं जाए, ना इधर देखे ना उधर देखे। यही आपसे भी उम्मीद की जाती है कि बच्चों जब आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए अनुशासन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। महेंद्र सिंह धोनी जो हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, उनके ऊपर जब एक फिल्म बनी थी और मैंने देखा कि वो किस तरीके से खेलने के लिए भागते थे, उनकी इंडियन रेलवे में नौकरी लग गई थी, वो पहले आते थे फिर दूसरे स्टेशन जाते थे और उसके बाद वो भागते रहते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपने लक्ष्य को पाना था। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए बच्चों दिन रात एक करके अपने देश का नाम रोशन करते हैं, अगर उनमें अनुशासन ना हो तो। कितनी बार आपने सुना होगा विराट कोहली जी को कहते हुए और जो खिलाड़ी उनको कहते हुए कि हम तला भुना नहीं खाते, क्या उन्हें अच्छा नहीं लगता कि वो भी आपकी तरह हमारी तरह छोले भटूरे खाएं? लेकिन उन्हें पता है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उनकी फिटनेस पे असर पड़ेगा, उनकी फिटनेस पे असर पड़ा तो किस पे असर पड़ेगा, उनके गेम पे असर पड़ेगा। तो उन्हें तो रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, उनकी मम्मा तो नहीं कह रही कि सुनो बेटा जी आज तुम भटूरे मत खाना, वो तो नहीं कह रही कि आज सुबह 8 बजे सो के उठना, आपका मैच है, वो तो नहीं कह रही। लेकिन अब उनका ये खुद का अनुशासन उनमें आ गया है, उन्हें भी बचपन में रोका गया होगा कुछ बातों के लिए, कुछ बातों के लिए टोका गया होगा, तभी वो इतने अच्छे अनुशासन के अंतर्गत अपने जीवन को एक शेप दे पाए हैं कि आज वो भारतीय टीम का नाम न सिर्फ रोशन कर रहे हैं बल्कि देखिए कितने बड़े खिलाड़ी हो चुके हैं, कितने लोगों के लिए वो एक ऊर्जा के स्रोत बन चुके हैं। कभी आप ऐसे बड़े लोगों का, ऐसे अच्छे अच्छे लोगों का इंटरव्यू सुनिएगा बच्चों, वो जरूर बताएंगे कि उनकी जिंदगी में कितना अनुशासन रहा है, कितना अनुशासन रहा है। साइना नेहवाल पर मैंने जब उनकी किताब पढ़ी, उनके बारे में लोगों ने लिखा कि किस तरह से उसने महीनों आइसक्रीम नहीं खाई थी बच्चों, महीनों, और कई बार ये लोग कई कई काम सालों नहीं करते हैं तब जाकर एक देश के लिए मेडल जीतते हैं। तो अनुशासन के बिना तो बेटा कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। एक बार तो मैं हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी का सुन रही थी। उन्होंने बताया था कि उनकी माँ बचपन में उन्हें बहुत अनुशासन में रखती थी और उसका असर ये आया कि उन्हें पढ़ाई में बहुत मन लगने लगा। कितने ऐसे उदाहरण हैं बच्चों की, मैं देना शुरू करूं तो वो खत्म ही नहीं होंगे। वो सिर्फ इसलिए आपको मैं आज बता रही हूँ। आप अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, आप वो भी देखिए कि कैसे उन्हें पता है कि बॉल कब कहाँ जाएगी, किसको मिलेगी, कौन गोल करेगा और कौन अपने देश के लिए विश्व कप जीत लेगा। लेकिन इसके लिए कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत, कड़ा अनुशासन जरूरी होता है। बिस्तर पर लेटे लेटे, टीवी देखते देखते, मोबाइल चलाते चलाते जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मजे तो हासिल हो सकते हैं बच्चों, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाओगे आप। इसलिए अनुशासन में रहिए। और अनुशासन के पीछे छिपी हुई अपने माता पिता के त्याग और तपस्या को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। जब वो रोकते टोकते हैं तो बुरा मत मानिए। कई बार वो सब आपको सिखाने के लिए होता है। अब जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए कि आखिरी बार आपको किस बात पर टोका गया था। कर लिया आपने आंखें बंद? सोचिए किस बात पर टोका गया था। ये आपके लिए एक छोटी सी एक एक्सरसाइज है। क्योंकि मेरे पास तो उन सब बच्चों के जवाब हैं जिनसे मैं हर दिन मिल रही हूँ। मैंने ये अपनी कॉलोनी के पार्क में भी एक्सरसाइज कराई थी, तो क्या क्या जवाब आए थे बताऊं? एक बच्चे ने कहा था कि उसकी मम्मी ने बोला कि इतनी देर तक मोबाइल मत देखो। एक बच्चे ने जवाब दिया था कि उसके पापा ने कहा था कि पहले पढ़ाई पूरी कर लो फिर खेलना। एक बच्चे ने जवाब दिया था कि उसकी दादी ने खाना खाते वक्त टोका था कि बेटा खाना खाते समय बोलते नहीं है। और ये तीनों बच्चे उस वक्त बहुत नाराज हुए थे। बोले बताइए दीदी, ये कोई बात होती है? पर जो दादी ने कहा ना खाना खाते वक्त बीच में बोलते नहीं है, वो क्यों कहा? वो बच्चों इसलिए कहा क्योंकि कई बार हमारा खाना, अगर हम बात बहुत कर रहे हैं तो अटक जाता है, है ना। इसलिए सुकून से, शांति से खाना खा लीजिए, उसके बाद बातें कर लीजिएगा। और बुजुर्ग तो बहुत बहुत किस्मत वालों को अपने घरों में मिलते हैं जो आपको बात समझाने के लिए आपके सामने हैं। ये आपका सौभाग्य है कि आप बुजुर्गों से कुछ सीख सकें, आपके पास रहें वो लोग ताकि आप जान सकें। इतनी अच्छी अच्छी बातें फिर कैसे मिलेंगी आपको। मुझे तो जितनी कहावतें आती है ना बच्चों, मेरे को बचपन से अपनी नानी दादी दोनों का बहुत साथ मिला। इसीलिए मुझे, मतलब मैं कुछ कहती थी वो तुरंत कह देती थी हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो मुझे तो इतनी सारी बातें कहावतों में याद हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, है ना। एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत जिद कर रही थी जाने की, तो माँ ने कहा कि उस बच्चे के साथ मत खेलो, वो बहुत गंदे से बात करता है। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी। तो मेरी दादी ने बस एक बात बोली थी कि बेटा चले तो जाओ लेकिन काजल की कोठरी में काले हाथ। उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये बात क्या है, काजल की कोठरी में काले हाथ। बहुत बहुत दिनों बाद जाकर ये बात समझ में आई कि अगर आप काजल की कोठरी में जाओगे, मतलब ये नहीं कि कोई काजल की कोठरी है। इस कहावत का सिंपल एक मतलब ये है कि आप जैसे लोगों के साथ रहते हो उनका असर आप पर भी चाहे अनचाहे बच्चों आ जाता है, है ना। तो इसलिए किसी बात का बुरा मत मानो, बल्कि सुनो कि बड़े बुजुर्ग घर वाले क्यों टोक रहे रोक रहे। चलो अब इसके बाद एक छोटी सी कविता आपको सुनाती हूँ, बड़ी सुंदर सी है क्योंकि मौसम है इसलिए। मेघ आए बड़े बंठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हूँ गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बड़े बंठन के समर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बरस बाद सुध लीनी बोली अकुलाई लता, ओट हो किवाड़ की। हर साया ताल
0: लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े पन ठन के संवर के, क्षितिज अटाई गहराई दामिनी दन के, क्षमा करा गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ठर के, मेघ आए बड़े पंठन के समर के। कितनी सुंदर कविता है। कवि ने एक बहुत सुंदर बात कही है, वो है कि बरस बाद सुधिलीन ही बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। मतलब जो लताएं लगी रहती है ना, बहुत सारी मनी प्लांट की लताएं, लंबी लंबी जो बेलें होती हैं, मधुमालती की बेल बहुत अच्छी होती है, टिकोमा की बेल बहुत अच्छी होती है, तो वो जो बेलें हैं वो किवाड़ की ओट से बोल रही हैं कि बहुत दिनों बाद सुधिलीनी, हमारा ख्याल कितने दिनों बाद लिया तुमने बादल, मतलब मेघ यानी बादल, मेघ आए यानी बरसात का शुभारंभ हो रहा है। तो देखिए कैसे कैसे चीजें, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मतलब जो ताल है, जैसे हम भोपाल का ताल मान लें, उसमें और ज्यादा पानी भर जाए तो हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, उसका जो पूरा परात बोल रहे हैं इसको कवि यहाँ पर, कि जो पूरा एक तालाब है उसमें पानी भर गया है, तो वो भी कितना खुश है कि उसके परात में इतना पानी भर गया है। अब आप सोचिए कि आगे वो कह रहे हैं कि जो बूढ़ा पीपल है वो भी आगे बढ़कर जुहार लगा रहा है। मतलब कितनी सुंदर सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है ना। तो जब बच्चों, फिर उसी बात पर मैं आती हूँ कि जब आप अपना समय बहुत व्यवस्थित कर लेते हैं ना बच्चों, तो आपको भी समय मिलेगा कि आप कुछ अच्छी कहानी और कुछ अच्छी कविताओं की किताबें पढ़ो। मैं इसलिए ये बात बार बार कहती हूँ कि जितना अच्छा साहित्य पढ़ोगे ना बच्चों, जितनी बचपन से किताबों की आदत डालोगे, उतनी अच्छी भाषा शैली होगी आपकी और उतनी ही अच्छी तरह से आप अपनी बात को कह पाओगे, रख पाओगे। फिर आप ऐसे बिल्कुल नहीं कहोगे मुझसे कभी, अगर मैं आपको किसी पार्क में मिल गई या कभी बाल सभा में आप स्टूडियो आए, तो आप कभी नहीं कहोगे कि दीदी मुझे गुस्सा आ रहा है, आप भी बड़े साहित्यिक अंदाज में मुझसे बात करोगे, है ना। आप कभी नहीं कहोगे कि मम्मी पापा हमें रोकते टोकते हैं, आप भी समझ जाओगे कि आपके मम्मी पापा भी उसी कुम्हार की तरह आपको एक मिट्टी का घड़ा मान के शेप दे रहे हैं, है ना, ताकि आप में जीवन का जितना गुण रूपी पानी है वो आपके घड़े में भर सके, है ना। इसलिए मम्मी पापा आपको बेटर शेप बेटर साइज में देखना चाहते हैं, और बस ये रोका टोकी उसी के लिए है बच्चों। हाँ, अब कई बच्चे आपने देखा होगा ये शिकायत करते हैं, बस में भी कहते होंगे आपके दोस्त, अरे मैं बहुत लेट सोया तो मुझे नींद आ रही है। स्कूल में नींद आ जाएगी तो क्या होगा, आपने देखा है डेस्क पे कुछ बच्चे नीचे सिर रख के सो भी जाते हैं। कई बच्चे मैडम की स्पीड से लिख नहीं पाते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनके पास कोई टाइम ही नहीं है इस चीज का कि वो कब राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। छोटी छोटी कर्सिव राइटिंग की बुक आती है, देखिए आपने, आप उनको लाइए, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कीजिए। आप ये देखिए, पहले इमला लिखवाया जाता था बच्चों, कोई एक जना बोलता था और दूसरा बच्चा जो होता था वो लिखता था, क्यों, ताकि ग्रामेटिकल मिस्टेक कम हो, स्पेलिंग मिस्टेक कम हो। ये सारी प्रैक्टिसेस अपने भीतर लाइए, तब आपको समझ में आएगा कि छोटे छोटे सी चीजें कितनी मायने रखती हैं। अभी आपने सुना था कि एक बहुत छोटी उम्र का बच्चा शतरंज का खिलाड़ी बन गया और उसने पूरा जीता है, दुनिया को दिखाया उसने कि कितना ब्रेनी गेम होने के बावजूद उसने कितनी छोटी उम्र से गेम खेलना शुरू किया। ऐसे ही अभी एक बच्चा तैराकी में बहुत आगे निकल गया, वो मात्र 5 या 6 साल का है या इससे भी कम। तो इन बच्चों में कहां से ये सब आ रहा है, क्योंकि वो अपनी मम्मा की वो अच्छी वाली रोक टोक पर गुस्सा नहीं कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये हमें बेहतर बनाने के लिए है। जैसे छोटी सी बात को आप और याद रखिए कि कभी आपने किसी गार्डन में माली जरूर देखे होंगे, है ना। माली दादा को आप देखेगा कि पौधे की टेढ़ी शाखा को कैसे वो सहारा देते हैं, है? पौधा शायद कुछ नहीं समझता उस वक्त कि ये क्यों ये डंडी लगा रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ष बाद वही पौधा सीधा और मजबूत छायादार पेड़ बन जाता है, लेकिन जब वो कोमल होता है तो उसको डंडी का सहारा देना पड़ता है। ऐसे ही जब कोई लता बच्चों ऊपर बढ़ती है तो उसको रस्सी से बांधना पड़ता है ताकि उसको सहारा मिल जाए, और एक बार उसकी डाल मजबूत हो गई, फिर आप भले ही रस्सी काट दीजिए, फिर तो वो अपने
2: शाख पर मजबूती से खड़ी रहती है, तो बस हमारे माता पिता, दादा दादी, शिक्षक सब उस माली की तरह ही होते हैं जो हमें रोकते हैं, टोकते हैं, समझाते हैं, कभी कभी डांट भी देते हैं, क्योंकि उन्हें हमारा आज ही नहीं, हमारा आने वाला कल भी दिखाई देता है। जब आपकी मम्मी बार बार कहती है ना कि हाथ धोकर खाना खाओ, तो उन्हें क्या हाथ धोने से फायदा होगा बताइए? आप अगर हाथ धोके नहीं खाएंगे तो जो जम्स हैं आपके हाथों के, सड़क की आप गंदगी लेते हुए चले आ रहे हैं, दाएं बाएं हाथ लगाते हुए, आपका पेट खराब होगा। पर मम्मी पापा टोक क्यों रहे? ताकि आपकी एक बार आदत बन गई तो आप बार बार बीमार होना बंद कर दोगे, और अगर आप बार बार बीमार नहीं हुए तो अपने स्कूल में, अपने प्ले ग्राउंड पे अच्छा परफॉर्म करोगे, है ना? बस यही छोटी छोटी सी बातें। इसलिए कभी भी बच्चों, आप अपने माता पिता के किसी बात का बुरा मानना बंद कर दीजिए, क्योंकि उनसे बेहतर आपके लिए कोई कोई कोई नहीं सोच सकता, है ना? लोग ये भी कहते हैं कि ईश्वर हर जगह नहीं उपस्थित हो सकता, इसलिए उसने धरती पर बच्चों के लिए माता पिता को भेजा।

अनुशासन प्रिय बनेंगे। अब सोचिए कि अगर आपके माता पिता किसी बात के लिए आपको रोक या टोक रहे हैं, तो वो आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। तीसरी बात, आपको अपने माता पिता से ना सुनने की भी आदत होनी चाहिए। चौथी बात, उनकी कही हर बात को मानने का प्रयास करना है। और अब आखिरी बात, कि पूरी रोका टोकी आपको बेहतर इंसान बनाने की छोटी छोटी कोशिशें हैं। अब आप आंखें खोल सकते हैं और आप ये बात मानेंगे

अच्छी बातें सब तक पहुंचनी चाहिए। हाँ, और रेडियो, हाँ, और रेडियो आजाद हिंद की फ्रीक्वेंसी को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए। बस में बताइए कि 90.8 FM पर क्या आता है, रेडियो आजाद हिंद। और रेडियो आजाद हिंद पर आप बाल सभा कब सुन सकते हो, रविवार को। तो ये बात बच्चों अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। और अब मुझे जल्दी से अनुमति दे दो, क्योंकि मैं तो आपके कहे के बिना यहाँ से जाती भी नहीं हूँ। तो बस जहाँ बैठे हो वहीं मुस्कुराकर मुझे बाय करो, और मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना।

0: यो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: भारतीय रसायन विज्ञान के थ्री मस्केटियर्स 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की प्रयोगशालाओं में एक गहरा बौद्धिक परिवर्तन आकार ले रहा था। प्रतिष्ठित रसायन शास्त्री F.G. डोनन के मार्गदर्शन में तीन युवा भारतीय विद्वानों ने एक ऐसा बंधन बनाया जो अंततः उनके स्वदेश के वैज्ञानिक और औद्योगिक परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने वाला था। इतिहास में रसायन विज्ञान के थ्री मस्केटियर्स के रूप में प्रसिद्ध इस समूह में शांति स्वरूप भटनागर, ज्ञानचंद्र घोष और ज्ञानेंद्र नाथ मुखर्जी शामिल थे। उनकी ब्रिटेन की यात्रा भारतीय छात्रों के उस रणनीतिक आंदोलन का हिस्सा थी जो सर्वोत्तम वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पश्चिम में उच्च शिक्षा की तलाश कर रहे थे। यूनिवर्सिटी कॉलेज में उन्हें डोनन के रूप में एक ऐसा गुरु मिला जिसने उपनिवेशिक परिधि और महानगरीय वैज्ञानिक प्रतिष्ठान के बीच एक महत्वपूर्ण संस्थागत सेतु के रूप में कार्य किया। डोनन की प्रयोगशाला एक ऐसी भट्टी साबित हुई जहाँ इन विद्वानों के साथ औपनिवेशिक अधीनस्थों जैसा व्यवहार नहीं किया गया, बल्कि उन्हें एक वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के समान भागीदारों के रूप में देखा गया। लंदन में इन वर्षों के दौरान बनी इस मित्रता ने आपसी समर्थन का एक आजीवन नेटवर्क तैयार किया जो उपमहाद्वीप में लौटने पर अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। 1920 के दशक में भारत लौटने पर थ्री मस्केटियर्स ने एक ऐसी शैक्षणिक दुनिया में प्रवेश किया जो तेजी से विस्तार कर रही थी। जेसी बोस और पीसी राय जैसे वरिष्ठ दिग्गजों की सलाह पर शांति स्वरूप भटनागर को 1921 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भौतिक रसायन विज्ञान के अध्ययन के रूप में नियुक्त किया गया। भटनागर का करियर भारतीय वैज्ञानिक उत्कृष्टता का प्रमाण बन गया। वे रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। उन्हें उनकी सेवाओं के लिए नाइट की उपाधि दी गई। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का पहला महानिदेशक उन्हें ही नियुक्त किया गया। जेसी घोष ने भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया और बाद में स्वतंत्र भारत के योजना आयोग में सेवा दी। मुखर्जी के साथ मिलकर इन तीनों ने भारतीय वैज्ञानिकों की उस नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व किया जिसने यूरोपीय सिद्धांतकारों के लिए केवल तथ्य संग्रहकर्ता की उपनिवेशिक भूमि को अस्वीकार कर दिया था। उनकी सफलता H.B. मेडलिकॉट जैसे ब्रिटिश अधिकारियों के उन नस्लीय पूर्वाग्रहों को सीधा जवाब थी जिन्होंने कभी दावा किया था कि भारतीय मौलिक कार्य करने में पूरी तरह असमर्थ हैं। इन थ्री मस्केटियर्स ने साबित कर दिया कि भारत का वैज्ञानिक तार मौलिक और प्रभावशाली था। अपने स्वयं के शोध संस्थानों और संघों की स्थापना करके उन्हें भारतीय विज्ञान का ध्यान शुद्ध प्रयोगशाला अनुसंधान और औद्योगिक अनुप्रयोग की ओर स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने वैज्ञानिक गुरुओं के रूप में कार्य किया और विज्ञान के आधुनिक मंदिर में शोधकर्ताओं की एक नई पीढ़ी को तैयार किया। अंततः उनकी कहानी दर्शाती है कि कैसे एक महानगरीय गुरु और उनके भारतीय शिष्यों के बीच का व्यक्तिगत संबंध एक राष्ट्रवादी वैज्ञानिक भावना को जन्म दे सकता है जिसने भारत को एक आत्मनिर्भर और आधुनिक वैज्ञानिक शक्ति में बदल दिया।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इस कार्यक्रम में आज का विषय है प्रकृति और मनोविज्ञान। इस कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ पारुल ऋषि से बातचीत कर रही हैं मनीषा चतुर्वेदी।
3: दोस्तों नमस्कार, कार्यक्रम प्रकृति की पुकार में मैं हूं मनीषा और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर पारुल ऋषि, जो पर्यावरण मनोविज्ञान, जलवायु परिवर्तन और व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र में जानी मानी शिक्षाविद और शोधकर्ता हैं। आप पिछले 32 वर्षों से भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM में प्रोफेसर और सेंटर फॉर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की चेयरपर्सन है। पर्यावरण और मानव व्यवहार के संबंधों पर उनके 110 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं और इस क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें अनेक राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। डॉक्टर पारुल ऋषि जी, आपका हार्दिक स्वागत है स्टूडियो में।
4: धन्यवाद मनीषा जी।
3: आज हम सबसे पहले यहीं से बात शुरू करते हैं कि अक्सर हम सुनते हैं कि प्रकृति के बीच में समय बिताने से मन शांत होता है, इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारण क्या है?
4: देखिए, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हर समय हम लोग मोबाइल और स्क्रीन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं और उससे जो किरणें निकलती हैं वो हमारे दिमाग पर किसी न किसी तरह से प्रभाव डालती हैं। तो उसका जो प्रभाव है वो हम देखते हैं हमारे व्यवहार में। आजकल हम देखते हैं टीनएजर्स के व्यवहार में चिड़चिड़ापन, और अगर आप उनसे ज़्यादा बात करने की कोशिश करें तो वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम प्रकृति के पास होते हैं तो आप उन्हीं बच्चों का व्यवहार जब आप देखेंगे कि वो प्रकृति के पास हैं, वो पेड़ों के साथ हैं, वो नदी के किनारे बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यवहार आपको उनका नहीं मिलेगा। तो ये सच बात है कि प्रकृति के साथ रहने से हमारा व्यवहार शांत होता है, हमारे मन को शांति मिलती है, हम एक अपनेपन की अनुभूति करते हैं कि जैसे हम अपने साथ हैं। तो मनोविज्ञान में अपने साथ होना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। हम लोग दुनिया के लिए तो बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन हम अपने व्यक्तित्व के साथ हैं, अपने बारे में कुछ कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, ये अनुभूति हमको प्रकृति के साथ जो है ये काफी अच्छे तरीके से होती है।
3: मैडम, माइंडफुलनेस कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि इस पर भी आजकल बहुत बातें हो रही हैं, इवन सोशल मीडिया पर हम ये चीजें बहुत देखते हैं, माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट है क्या?
4: ये माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट ओरिजिनली बुद्धिस्ट फिलोसफी से आया है और इसका जो है पहले तो इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा था, थेरेपीज़ के लिए यूज़ हो रहा था, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि पर्यावरण से संबंधित विषयों में भी माइंडफुलनेस के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं। एक वैम्सलर ने स्वीडन में काफ़ी स्टडी माइंडफुलनेस के कॉन्सेप्ट पर की है। इसका मतलब यह है कि आप जिस परिस्थिति में जहाँ हैं आप वहीं पर हैं, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति मिला तो हम, या किसी हम परिस्थिति में हैं, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत खराब है, ये पर्सन अच्छा नहीं है, इस तरह का जो हमारा एक इवैल्यूएटिव टाइप का, जजमेंटल टाइप का एटीट्यूड जो होता है ना, इसका ऑपोजिट इज माइंडफुलनेस, कि हम हर परिस्थिति को वैसे देखें जैसी वो है। सो तथागत का जैसे कॉन्सेप्ट होता है कि इट इज एज इट इज, तो इसमें हम हर समय इवैल्यूएशन नहीं करते हैं, हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं डालते हैं, क्योंकि बहुत सारे शेड्स ऑफ ग्रे भी होते हैं। तो माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट यही है कि हम जो भी परिस्थिति है उसमें खो जाएं, उसी में एब्जॉर्ब हों अपने आप को। तो नेचर में जब हम होते हैं, तो जब हम नेचर बेस्ड माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस बहुत सारी होती हैं, तो उसमें हम जब पेड़ों के साथ हैं, हम जब नदी के किनारे बैठे हैं, नर्मदा के किनारे बैठे हैं, तो हम उस पूरे एनवायरनमेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। तो दिस इज व्हाट माइंडफुलनेस इज ऑल अबाउट। तो इससे हमारा जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं उनसे कनेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है और हम लोग एक परिस्थिति में अपने आप को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं।
3: एक चीज और है कि आपकी बात से ही मुझे वो स्थिति प्रज्ञ हमारे यहाँ बोला जाता था कि स्थिति प्रज्ञ हो जाइए तो सारी स्थितियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। एक बात और मैडम आती है कि जब हम बहुत थक जाते हैं और ऐसे वक्त पे अगर हम ठंडे पानी में पैर डाल लें या हम किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएं, तो कहीं ना कहीं हमें सुकून मिलता है। आजकल आप भी देख ही रहे होंगे इस चीज़ को कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि माइंड रिलैक्स करने के लिए आपको प्रकृति का संगीत सुनना चाहिए, तो ये बात सच है क्या?
4: पर्यावरण मनोविज्ञान में मेरी शिक्षा हुई है तो मेरा काफ़ी रिसर्च इस फील्ड में रहा है। तो बहुत सारी इस तरह की रिसर्च स्टडीज हुई हैं जो ये बताती हैं कि आप अगर पर्यावरण के साथ हैं तो आपका अवसाद आप में कम होगा, डिप्रेशन कम होगा, आपका स्ट्रेस रिलीव होगा, और इसीलिए लोग पहाड़ों के पास जाते हैं। क्योंकि एक स्टडी मैं आपको कोट करके बताना चाहूंगी कि एक मनोवैज्ञानिक है अल्रिच, उन्होंने एक स्टडी की थी, सर्जरी हुई थी पेशेंट्स की। सो उन सर्जरी पेशेंट्स को जब हॉस्पिटल में वो एक रूम में वो लोग थे, तो उन्होंने एक ग्रुप ऑफ पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स को ऐसे रूम में रखा जहां खिड़की से पेड़ पौधे और हरियाली दिख रही थी, और एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को रखा कि जिनको एक कॉन्क्रीट की वॉल दिख रही थी खिड़की से। तो दोनों ग्रुप्स की उन्होंने फिर बाद में उनकी मनस्थिति को और सर्जरी से उनका पोस्ट सर्जरी जो रिकवरी हुई तो उसको उन्होंने कंपेयर किया, तो उन्होंने देखा कि जो पेशेंट्स हरियाली देख रहे थे खिड़की से, उनकी रिकवरी सेम सर्जरी से ज्यादा फास्ट हुई इन कंपैरिजन को वो लोग जिनको कंक्रीट की वॉल दिख रही थी। तो इस रिसर्च से उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि हम लोग जब नेचर के पास होते हैं तब हमारा जो है वो साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों तरह की हेल्थ जो है और वेलबींग को जो है वो नेचर प्रमोट करती है। सो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि नेचर के साथ रहना हमारे लिए जो है वो खाली एक सुखद अनुभूति नहीं है, बल्कि ये हमारे शारीरिक रोगों को भी कम करती है, रोगों के प्रभाव को कम करती है, और हम एक अच्छी फीलिंग हमारे अंदर जो है ना ये प्रोवाइड करती
3: जी
4: है।
3: मैडम, दूसरी तरफ ये भी सुनने में आता है कि कोई पेड़ मान लीजिए सूख रहा है और उससे आप प्यार से जाकर उस पेड़ पर हाथ फेरने लगें या उससे बातें करने लगें, कई लोग करते भी हैं ये कि पेड़ के नीचे गए और बातें भी कर रहे हैं, क्या पेड़ों का भी कोई मनोविज्ञान होता है?
4: देखिए, इस क्षेत्र में मेरा बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, इसलिए मैं मनुष्यों के मनोविज्ञान के बारे में ही जानती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि मनुष्य जो हैं वो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करता है। सो हम लोग जब पर्यावरण के साथ होते हैं तो पर्यावरण का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, उससे हमारी मनस्थिति जो है वो इम्प्रूव करती है। तो मैं ये मानती हूँ कि ऐसा भी होता होगा कि हम अगर पेड़ों के साथ अच्छे तरह से व्यवहार करेंगे और उनका ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस तरह की रिसर्च स्टडीज तो काफी हुई हैं। एक हॉर्टिकल्चर थेरेपी आजकल काफी पॉपुलर है। हॉर्टिकल्चर थेरेपी में यह है कि आप जब पेड़ पौधों के साथ होते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, बागवानी करते हैं। एनिमल्स के साथ तो हम लोग देखते ही हैं कि लोग जो पेट्स रखते हैं या गायों का जो है देखभाल करते हैं, तो ये सारा आप देखेंगे कि उनकी साइड से भी एक उसी तरह की रिस्पॉन्स आती है। तो जब हम लोग पेड़ों को प्रभावित करते हैं तो पेड़ भी हमको प्रभावित करते हैं, इस तरह की एक म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो बागवानी वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया हॉर्टिकल्चर थेरेपी, वो यही है कि जो लोग बागवानी में जुड़े रहते हैं, पेड़ों का ध्यान रखते हैं, आपने कई बार सुना होगा, कहते हैं कि माली रखते हैं तो पेड़ उतने अच्छे ग्रो नहीं करते, लेकिन अगर आप खुद भी साथ में देख रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो पेड़ों की ग्रोथ बेटर होती है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स और आपका उनके साथ एक रिश्ता बन जाता है
3: जी।
4: और रिलेशनशिप जो है ये पेड़ों की ग्रोथ को डेफिनेटली प्रभावित करता है
3: जी। मैडम, आपने चूंकि अभी पेट्स की बात की, तो घर में अगर कोई पालतू जानवर रखते हैं तो क्या उससे भी चिड़चिड़ापन मनुष्यों में और कहीं ना कहीं अवसाद कम होता है?
4: मनोविज्ञान तो डेफिनेटली है, क्योंकि आप पेट्स रखते हैं तो आप ज्यादातर हम लोग जो देखते हैं कि कुछ लोग जो जिनका मनुष्यों के साथ बहुत अच्छा जो है वो बातचीत खुल के नहीं कर पाते हैं, इंट्रोवर्ट्स होते हैं, अंतर्मुखी उनका जो व्यवहार होता है, तो उन लोगों को लगता है कि वो अपने आप को बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपना पेट्स के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, और डेफिनेटली पेट्स भी उसको रेसिप्रोकेट उसी तरह से करते हैं। तो मेरा मानता है कि डेफिनेटली ऐसा होता होगा।
3: आपने जो कहानी सुनाई कि कुछ लोगों को बंजर जमीन दिखाई गई, एक वॉल दिखाई गई, और कुछ लोग को हरियाली, ये तो एक थेरेपी के तहत किया गया और रिसर्च के तहत किया गया, लेकिन आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे सामने बहुत सारी बिल्डिंग्स बने जा रही हैं और हरियाली कम होती जा रही है, तो आपको लगता है जो हिंसा है, जो चिड़चिड़ापन है लोगों में, क्या उसका रीजन कहीं ना कहीं प्रकृति से दूरी है, आप मानती हैं?
4: बिल्कुल है, और ये चीज रिसर्च से प्रूव हो चुकी है। आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज का भी कॉन्सेप्ट आजकल वर्ल्ड वाइड चल रहा है, तो जो वार्म कंट्रीज हैं वहां पर वायलेंस ज्यादा है, और आप देखेंगे कि समर मंथ्स में वायलेंस के इंसिडेंट्स जो हैं वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और ये वायलेंस और ज्यादा बढ़ रहा है जितना हम टेक्नोलॉजी के करीब आते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ज्यादातर समय तो वही 24 घंटे है, अब हम उसमें अगर ज्यादातर समय अपने मोबाइल और स्क्रीन के साथ निकालेंगे तो जो समय, और वर्क तो आपको करना ही है जो भी आप काम करते हैं, तो जो समय कम होता है वो प्रकृति के साथ रहने का ही समय कम होता है, और उसी का ही प्रभाव किसी ना किसी तरह से हमारे मनोस्थिति पर पड़ता है, और डेफिनेटली बच्चों में जो चिड़चिड़ापन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बच्चों में क्राइम बढ़ रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, मतलब माँ बाप भी बच्चों को जितना टाइम देते थे वही मोबाइल से ही वही टाइम कर्टेल हो रहा है हर जगह। तो कुल मिला के हम देखें कि आपसी रिश्तों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, प्रकृति के साथ रहने का समय कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ये दो चीजें मुझे मनोवैज्ञानिक की उससे समझ में आ रही है कि हम लोग प्रकृति के साथ स्पेंड करने वाला टाइम और अपने रिश्तों को सुदृढ़ करने में लगने वाला टाइम, ये दो टाइम्स हमारे सबसे ज्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, और उसके लिए हमको बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत है।
3: और यहाँ पर एक बात मैं आपकी बात में और जोड़ना चाहती हूँ कि हम प्रकृति को भी स्क्रीन पे ही देख रहे हैं, कई बार मैंने जब इस तरह की बातें करूं कि पेड़ों के पास बैठो, तो मैं देखती हूं कई घरों में बच्चे एक धीमा सा संगीत लगा लेंगे और स्क्रीन पे पेड़ आते रहेंगे या बहुत अच्छी हरियाली या पहाड़ दिखते रहेंगे। तो स्क्रीन की प्रकृति से तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है।
4: बिल्कुल, स्क्रीन की प्रकृति से आप ये मान सकते हैं कि जिन लोगों को ये सुविधा नहीं है, जो ऐसी जगह पर रहते हैं कि जहां पर प्रकृति उपस्थित नहीं है, हालांकि प्रकृति तो सभी जगह उपस्थित होती है, लेकिन इतना आपके पास समय नहीं है कि आप स्पेंड कर सकें, तो एक सब्स्टिट्यूट की तरह से वो लोग यूज करते हैं। लेकिन जब आप एक्चुअली में प्रकृति के साथ हैं, तो जो प्रकृति की सुगंध आप अनुभव करते हैं, जो पक्षियों का कलरव आप उनको साथ में देखते हुए अनुभव करते हैं, वो सारी चीजें स्क्रीन से सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती, लेकिन हम कह सकते हैं 10-20% कंपनसेशन उसका जो है वो स्क्रीन के थ्रू हो सकता है।
3: मैडम, आप बच्चों के बीच में बहुत, क्योंकि IIFM में है तो बहुत सारे बच्चे आते होंगे, बहुत आपका क्या अनुभव है इन चीज़ों को लेकर, बच्चों को लेकर? क्योंकि आपने पहले भी कहा कि बच्चे आजकल थोड़ा सा बात करने से बचने लगे हैं, कटने लगे, नई जनरेशन जो है उसको डील करना थोड़ा टफ होता जा रहा है, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे?
4: देखिए, बच्चों को आजकल आप टेक्नोलॉजी से दूर नहीं कर सकते, ये स्थिति को आपको समझ लेना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी के साथ ही हम उनको किस तरह से प्रकृति से जोड़ सकते हैं, यही हमको सोचना है। तो ज़्यादातर फैमिलीज में अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट हो कि मॉर्निंग वॉक में कम से कम साथ में जाएं, भोपाल जैसे शहर में तो हम कह सकते हैं इस तरह की बहुत सुविधाएं हमको उपलब्ध हैं कि हम अपने घर से बाहर निकले और आपको एक बहुत छोटे से एरिया में जाके ही आपको प्रकृति के साथ आपका जो है संबंध हो सकता है। तो पेरेंट्स अगर साथ में बच्चों के साथ जाएं, प्रकृति के साथ वॉक करें, वहां पर आप बर्ड्स को रिकॉग्नाइज करें। आजकल बर्ड वॉचिंग भी एक माइंडफुलनेस के लिए हम लोग एज थेरेपी की तरह से यूज करते हैं। आप फॉरेस्ट में जा रहे हैं या आप किसी भी नेचुरल एरिया में, अर्बन एरिया में जा रहे हैं और वहां पर आप पक्षियों को देख रहे हैं और पक्षियों के फोटोग्राफी भी करते हैं लोग बर्ड्स की, लेकिन उसके अलावा पक्षियों को देखना, उनकी आवाजों को सुनना और उनकी आवाजों के अंतर को पहचानना, ये चीज आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है कि आप वॉइस साउंड्स में डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं कि ये एशियन फ्लाई कैचर की साउंड है, ये गोल्डन ओरियल की साउंड है, ये आउल की साउंड है। तो ये साउंड्स का डिफरेंशिएशन जो होता है, ये कॉग्निटिव एबिलिटी को शार्प करता है।

0: में हमारा बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है।
1: जी, उन्मुक्तता भी आती है लोगों में
0: बिल्कुल
1: वहाँ जाकर।
0: बिल्कुल
1: मैडम, आपने माइंडफुलनेस की एक थेरेपी तो हमको जैसे बर्ड वॉचिंग बताई, माइंडफुलनेस की और भी थेरेपीज होती होंगी, उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी
0: एक
1: दें।
0: ब्रीदिंग माइंडफुलनेस काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। हम लोग को लगता है सांस लेना एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है और हम दिन भर सांस लेते ही रहते हैं, लेकिन एक माइंडफुलनेस ब्रीदिंग एक टेक्निक है। तो
1: जी
0: उसमें हम लोग अपनी सांस को फॉलो करते हैं कि जैसे हमने सांस ली तो हमारा पूरा ध्यान जो है वो उस सांस के साथ, हमने जैसे ब्रीद इन किया तो हमारा ध्यान भी हमारी सांस के साथ साथ जो है वो गया, और फिर उसके बाद ब्रीद आउट किया। तो ये सांस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया के साथ, जब हमारी मनस्थिति भी इसके साथ में जुड़ी होती है सांस लेने और छोड़ने के साथ साथ, तो वो एक माइंडफुलनेस थेरेपी होती है कि हमारा ध्यान इधर उधर जाने की जगह हम अपनी सांस को फील कर रहे हैं और उससे किस तरह से हमको एक ठंडक की अनुभूति हो रही है सांस को बाहर निकालते हुए, और गर्माहट की अनुभूति हो रही है सांस को अंदर लेते हुए। तो इस फीलिंग के साथ अपने आप को कनेक्ट करना और ऐसे रिपिटिशंस करना, ये भी एक ब्रीदिंग बेस्ड माइंडफुलनेस जो है ये कहलाता है। इसके अलावा वॉकिंग माइंडफुलनेस भी होता है, जिसमें जब आप वॉक कर रहे हैं तो आप अपने एक हर एक स्टेप को फील कर रहे हैं कि आपने जमीन पर एक स्टेप रखा, फिर आपने दूसरा रखा, तो आपका मन उस हर स्टेप के साथ आगे बढ़ रहा है। सो ये एक वॉकिंग माइंडफुलनेस कहलाता है। तो मेरी एक रिसर्च एक मेरे स्टूडेंट ने करी थी, PhD स्कॉलर ने थोड़े साल पहले, तो उन्होंने इस माइंडफुलनेस थेरेपी को पेरेंट्स के साथ यूज किया था जिनके बच्चे हाइपर एक्टिव थे,
1: जी
0: तो उनको मैनेज करने में उनको बहुत चैलेंजेस

0: बताना चाहें हमको?
1: देखिए, वर्क प्लेस में आजकल बहुत कॉमनली एक वेलनेस प्रोग्राम्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है. उसी वेलनेस प्रोग्राम में ही माइंडफुलनेस को उन लोगों ने इंटीग्रेट किया है. कुछ अच्छी कंपनीज जो हैं वो इस तरह के प्रोग्राम्स अपने एम्प्लॉयज के लिए स्पेशली करवाती हैं, जिसमें माइंडफुलनेस ट्रेनिंग देती हैं. तो बहुत ज्यादा समय का इशू नहीं है, ये बहुत कम समय में इट्स अ ट्रेनिंग. आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है कि वो एक पर्टिकुलर तरह से सोचने की अपनी आदत बनाए और करंट मनस्थिति में रहे. अदरवाइज तो आपने बाकी इंडियन फिलोसफी में ये बताया हुआ है कि मन एक घोड़े की तरह है. हाँ. अगर आपने उसको लगाम नहीं लगाई तो वो कहीं भी भागेगा. तो वही स्थिति है. तो हम माइंडफुलनेस के थ्रू बेसिकली अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं और उसको ट्रेन करते हैं. कंट्रोल भी नहीं करते हैं, हम उसको ट्रेन करते हैं कि वो जिस समय जो काम कर रहा है वो उसमें पूरी तरह से एब्जॉर्व होके उसको करे. सो इससे डेफिनेटली परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि जब वो फिर उसका रिवर्स सिचुएशन ये होगी जब वो वर्क का काम कर रहा है, जब वो अपने ऑफिस में है और ऑफिस में जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज उनको दी गई हैं वो उसमें भी ऑब्जॉर्व होकर काम करेगा. सो ये एक दूसरी परिस्थिति में भी ट्रांसलेट होता है. जब अपने फैमिली के साथ है, अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर रहा है, तो उसमें भी वो एब्जॉर्व होकर करेगा. अदरवाइज आपका वर्क प्लेस का स्ट्रेस घर में ट्रांसफर होता है, घर का स्ट्रेस वर्क प्लेस में ट्रांसफर होता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट होती है.
0: मैडम, आपकी ही बात में से एक बात अभी मुझे ध्यान आ रही है, और वो ये है कि पहले हम लोग कहते थे कि तेज़ी से भागो, दुनिया के साथ भागो. अभी कुछ एक चीज़ें सुनने में आ रही कि थोड़ा स्लो हो जाओ, थोड़ा धीमे चलो, थोड़ा धीमे हो जाओ, ज़िंदगी में इतना मत भागो, रुक जाओ, ठहर जाओ. ये जो स्लो का ट्रेंड आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं माइंडफुलनेस को करता है कि आप थोड़ा अपनी जिंदगी में थोड़े धीमे हो जाइए.
1: देखिए, माइंडफुलनेस आपका स्लो और फास्ट से रिलेटेड नहीं है. इट इज जस्ट कि आप जो जैसी स्थिति है आप उसको एक्सेप्ट करें कि यही स्थिति है. जो पॉज का आप कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, बर्नआउट के बहुत ज्यादा केसेस आजकल सुनने में आ रहे हैं कि लोग बाग अपने बहुत अर्ली स्टेज ऑफ कैरियर में, जैसे हम लोग के टाइम में होता था कि ठीक है आपने जॉब ली है तो आप अच्छे से आप अपना काम कर रहे हैं और 8-10 साल आपने काम कर लिया, उसके बाद या 15 साल के बाद फिर सोचते थे कि हमको घर बनाना है या हमको कुछ कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है. लेकिन आजकल की जनरेशन जो है उनका वे ऑफ थिंकिंग है कि बहुत अर्ली स्टेज ऑफ कैरियर में उनको सब कुछ मिल जाना चाहिए. उनको कार लेनी है, उनको घर बनाना है, जो भी चीजें, तो एस्पिरेशंस जो है वो बहुत बढ़ रहे हैं. और इसमें मैं कहूंगी कि बहुत हद तक इंटरनेट से जो एक्सपोजर हुआ है लोगों को, जो दूसरे लोगों की स्टोरीज वो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि अरे उसने तो इतनी जल्दी ये सब कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर पाया. हाँ. तो इसमें एक वो उनको लगता है अच्छा मैं कुछ और ज्यादा तेजी से कर लूंगा तो शायद मुझे भी ये मिल जाएगा. तो ये एक दौड़ने की टेंडेंसी और रशिंग टेंडेंसी लोगों में इसकी वजह से डेवलप होती जा रही है. और उसको पॉज करने की बहुत जरूरी है. हर पर्सन में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो बहुत अर्ली स्टेज में बहुत ज्यादा कमा के बहुत हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाए. और आपको ये भी नहीं पता कि अगर वो पहुंच भी गया तो क्या वो वहां खुश है, क्या वो वहां संतुष्ट है. क्या हमारे मन की संतुष्टि ज्यादा जरूरी है या भागकर लाइफ में कुछ बहुत कुछ अचीव कर लेना ज्यादा जरूरी है. तो उस परिस्थिति को अगर हम देखते हैं तो पॉज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. आप यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा ये नहीं सिखा सकते लेकिन फिर भी जो है एटलीस्ट एक एडवांस मिडिल एज पे आके कम से कम आपको कि पॉज लेना, कि लाइफ में प्रकृति को देखना, अपने आसपास के एनवायरमेंट को एब्जॉर्व करना, उसके साथ एक खुशी की फीलिंग होना और अपने रिलेशनशिप्स के पर फोकस करना, ये सारी चीजें जो है ये बहुत जरूरी है.
0: आपका इंस्टीट्यूट आम लोगों की जिंदगी में इस तरह की कोई मदद कर सकता है, जो लोग चाहें कि उन्हें प्रकृति के निकट आकर अपने अवसाद को या किसी भी तरीके के तनाव को दूर करना है, तो उसमें आपके इंस्टीट्यूट की कोई भूमिका होती है?
1: देखिए, भारतीय वन प्रबंध संस्थान, इसका नाम ही है कि ये वन के प्रबंध का संस्थान है. और ये हमारा इंस्टीट्यूट एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और जिसके आसपास काफी जंगल है. और हम लोगों का एक क्लब भी, हम लोगों का एक एडवेंचर क्लब भी है, एक नेचर क्लब है. तो नेचर क्लब इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो करता रहता है कि में बर्ड वॉचिंग के लिए जो है वो स्टूडेंट्स के ग्रुप्स आते हैं तो उनको भी बर्ड वॉचिंग के लिए उनको गाइडेड विजिट कराना फॉरेस्ट का. एक नेचर ट्रेल हमारे यहाँ बनी हुई है, नेचर ट्रेल में जाके बर्ड वॉचिंग कराना. हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो बर्ड वॉचिंग के एक्सपर्ट्स हैं तो वो, और हमारी फैकल्टीज भी हैं तो वो साथ में उनको ले जाके एंड गाइडेड टूर इंस्टीट्यूट का कराते हैं. उसके अलावा और भी बर्ड वॉचिंग के ग्रुप्स हैं और नेचर ट्रेल्स के ग्रुप्स हैं तो उनके साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं. तो इस तरह से जो है वो स्टूडेंट्स को हम लोग नेचर के क्लोज लाना और नेचुरल वाइल्ड एनिमल्स और नेचर और बर्ड्स उनके साथ एक कनेक्ट की फीलिंग डेवलप कराना, उसमें हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, करते भी हैं और आगे और भी कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। सेंटर फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप चेयर पर्सन हैं, हम उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या है वो और कैसे काम करता है?
1: देखिए, सेंटर फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2018 में हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया था। एक इंडस्ट्रीज के लिए एक जो कॉर्पोरेट लॉ है उसके अंडर 2% ऑफ प्रॉफिट दे हैव टू स्पेंड इन CSR एक्टिविटीज। तो उसमें बहुत सारी जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सो उनसे लेके कुछ कुछ एक्टिविटीज हैं जो इंडस्ट्रीज कर सकती हैं और वो अपना 2% के अंदर उनको कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलप करने होते हैं और उन प्रोजेक्ट्स को समाज के लिए और पर्यावरण में सुधार के लिए उनको उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करना होता है। सो हमारी संस्था जो हमारा जो सेंटर है, सेंटर फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग इन प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। इतना मनी जो है वो सारे कॉर्पोरेट्स का आता है जो CSR के लिए उनको स्पेंड करना है, लेकिन क्या ये पैसा सही जगह इस्तेमाल हुआ? जिन प्रोजेक्ट्स में उन्होंने इस पैसे को लगाया, उन प्रोजेक्ट्स ने एक्चुअली में सोसाइटी को कुछ इम्पैक्ट दिया या नहीं दिया? तो इसका आकलन जो है ये एक साइंटिफिक टेक्निक रहती है। सोशल साइंटिस्ट जो हैं हम लोग इन प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। सो बहुत सारी कंपनीज के जो CSR प्रोजेक्ट्स थे, सो उनके इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए हम लोगों ने काफ़ी इस सेंटर में पिछले सालों में काम किया। इसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग्स भी देते हैं, जैसे कॉर्पोरेट्स में जो लोग काम करते हैं वो CSR के लिए किस तरह से इक्विप्ड हैं, उनको नॉलेज है या नहीं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए, किससे सोसाइटी को ज़्यादा बेनिफिट होगा, कैसे उनको बेसलाइन स्टडी करें कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नीड बेस्ड हों, कि जो सोसाइटी के लोग चाहते हैं उसी हिसाब से प्रोजेक्ट्स हों।
0: एक और आखिरी सवाल मैडम, कि कुछ बच्चों को प्रकृति के निकट रहना, बर्ड वॉचिंग, कई बच्चों को बड़ा शौक होता है, लेकिन वो इसे अपना प्रोफेशन कैसे बनाएं, उसमें IFM क्या हेल्प कर सकता है या किस तरह के कोर्सेज हैं, अगर आप उसके बारे में बताना चाहें।
1: देखिए, बर्ड वॉचिंग तो एक हॉबी की तरह से है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: कुछ लोग इसको प्रोफेशन बना लेते हैं अगर उनकी फोटोग्राफी स्किल्स भी बहुत अच्छी होती हैं और उसके अलावा बर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन वो लोग कर लेते हैं, उनको पता होता है कि कौन कौन से बर्ड्स का क्या नाम है, क्या उनका नेचर है, किस सीजन में वो आते हैं। जैसे अभी इस सीजन में एशियन फ्लाई कैचर जो है वो भोपाल में आई हुई है, तो सारे बर्ड वॉचर्स जो है वो उनके नेस्टिंग का टाइम है एंड उनके चिक्स वगैरह देखने के लिए काफी जो है, मुझे भी बहुत शौक है, मैं भी जाती हूँ। और पिट्टा इस समय आया हुआ है तो ये साउथ से आता है, तो ये इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। हमारा इंस्टीट्यूट जो है, हम लोगों के यहाँ 4 कोर्सेज MBA प्रोग्राम्स चलते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अभी 2 साल पहले हम लोग डिक्लेयर हुए थे, 3 साल पहले। तो हम लोग एक कोर्स है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम MBA इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एक प्रोग्राम है MBA इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, और 2 और प्रोग्राम्स हम लोगों ने नए लास्ट ईयर ही स्टार्ट किए हैं। एक है डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल फिनेंस और एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ये प्रोग्राम्स जो हैं इसमें हम लोग मैनेजमेंट एजुकेशन तो स्टूडेंट्स को देते ही हैं, जो कि सारे ही मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस मैनेजमेंट एजुकेशन को हम फॉरेस्ट्री के फील्ड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं,
0: जी
1: इंडस्ट्रीज जो हैं वो सस्टेनेबिलिटी के फील्ड पे कैसे अप्लाई कर सकती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का क्या एप्लीकेशन हो सकता है। आजकल क्लाइमेट फाइनेंस और ग्रीन फाइनेंस के बारे में बहुत बात हो रही है, तो हमारा डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल फाइनेंस का कोर्स जो है वो मैनेजमेंट एजुकेशन बट अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सो इस तरह से ये 4 कोर्सेज हमारे हैं और हमारा काफ़ी अच्छा, मैं प्लेसमेंट चेयरपर्सन भी हूँ और काफ़ी अच्छा इंडस्ट्रीज का रिस्पांस इसके लिए रहता है। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं आजकल सारी इंडस्ट्रीज को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश करना जो है वो कंपलसरी है। सो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और हमारे एल्यूमिनाई जो हैं पास्ट के वो बहुत कंपनीज के, कंसल्टिंग कंपनीज के पार्टनर्स हैं और CEOs हैं और सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर्स हैं एंड चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर्स तक हैं या कंपनीज ओन करते हैं। सो बिकॉज इस इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री जो है वो काफ़ी पुरानी है, 1982 का ये इंस्टीट्यूट है, सो काफ़ी अच्छा इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स का सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट करने की एक हिस्ट्री रही है।
0: डॉक्टर पारुल ऋषि जी, आप इतने व्यस्त समय में से हमारे लिए इतना समय निकाला और हमें बहुत बहुत सरल शब्दों में ये बताने की कोशिश भी की कि किस तरीके से पर्यावरण हमारे मनोविज्ञान पर असर डालता है। और हमें दोस्तों उम्मीद है कि ये बातचीत सुनने के बाद निश्चित ही आप अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से भले ही आधा घंटा निकालें पर कहीं ना कहीं प्रकृति के करीब जाइए, क्योंकि जैसा आपने मैडम की बातों में सुना कि अगर आप नदी के पास जाते हैं तो आपके भीतर उन्मुक्तता का भाव आता है। जब आप अपनी चार दीवारी के बीच में से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आप में आज़ादी की भावना आपको अच्छी लगती है और आप उसी की तरीके से जीवन जीने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच मैडम, आप यहाँ पर आए और आपने इतना समय दिया। थैंक यू।
1: थैंक यू मनीषा जी।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: प्रकृति की पुकार। इस कार्यक्रम में आज का विषय था प्रकृति और मनोविज्ञान। इस विषय पर विषय विशेषज्ञ पारुल ऋषि से बातचीत कर रही थी मनीषा चतुर्वेदी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद।
3: नॉर्मन रॉबर्ट पॉक्सन, सूर्य के धब्बे और अकाल का ब्रह्मांडीय चक्र। 19वीं सदी के अंत में मद्रास वैद्यशाला की भीषण गर्मी में नॉर्मन रॉबर्ट पॉक्सन नामक व्यक्ति अपनी रातें आसमान का सूक्ष्म मानचित्रण करने में बिताता था। 1861 से 1891 के बीच उन्होंने 5000 तारों को सूचीबद्ध किया और 6 लघु ग्रहों की खोज की, जिससे पारंपरिक खगोल विज्ञान के इतिहास में उन्होंने एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया। हालांकि दिन का उजाला एक अधिक दबावपूर्ण और भयानक चुनौती लेकर आता था, सूर्य। ब्रिटिश राज के लिए 19वीं सदी मृत्यु के एक दुखद चरमोत्कर्ष द्वारा परिभाषित थी, क्योंकि आवर्ती अकालों में लाखों लोग मारे गए थे। औपनिवेशिक प्रशासन, जो दुनिया की अपनी सबसे बड़ी जमींदारी की रक्षा के लिए बेताब था, इन आपदाओं को एक क्रूर और चंचल प्रकृति के प्रति भारतीय संवेदनशीलता के संकेत के रूप में देखता था। पॉक्सन को विश्वास हो गया था कि भारत के सूखे का रहस्य उसकी मिट्टी में नहीं बल्कि सूर्य की सतह पर होने वाले उग्र विस्फोटों में छिपा है। उन्होंने सौर्य कलंक की गतिविधि और स्थलीय मौसम के पैटर्न के बीच संबंध की जांच शुरू की। यह एक ऐसा अध्ययन था जिसने केवल तथ्य जुटाने वाले निम्न विज्ञान को साम्राज्य के अस्तित्व के लिए एक शक्तिशाली उपकरण में बदलने का वादा किया था। 1878 में पॉक्सन भारतीय अकाल आयोग के सामने खड़े हुए और क्रांतिकारी दावा पेश किया। उन्होंने तर्क दिया कि सूर्य के धब्बे सीधे तौर पर पृथ्वी की मौसम स्थितियों को प्रभावित करते हैं और इन सौर चक्रों पर नजर रखकर सरकार विनाशकारी सूखे की शुरुआत की भविष्यवाणी कर सकती है। 1864 के विनाशकारी कलकत्ता चक्रवात और 1866 के उड़ीसा अकाल के बाद उपनिवेशिक राज्य मौसम विज्ञान को लेकर बेहद चिंतित था। ऐसे में पॉक्सन के सिद्धांत ने एक गहरा वैज्ञानिक तार छेड़ दिया। प्रशासन को समझ आया कि सौर भौतिकी अब केवल जिज्ञासा का विषय नहीं बल्कि राज्य की वित्तीय और राजनीतिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यदि सूर्य के पास मानसून की चाबी थी तो उसका अध्ययन करना साम्राज्य का कर्तव्य था। पॉक्सन के अथक प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि सौर भौतिकी के लिए सरकारी वित्त पोषण में भारी वृद्धि हुई। इसका समापन 1895 में कोडाईकनाल वैद्यशाला की स्थापना के साथ हुआ। इस संस्था ने तेजी से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की और साबित कर दिया कि उपनिवेशों में होने वाले शोध हमेशा दोयम दर्जे के या मौलिक खोजों से अलग थलग नहीं होते। 1899 तक सौर अध्ययन को औपचारिक रूप से विस्तार करते हुए मौसम विज्ञान विभाग में एकीकृत कर दिया गया, जिससे स्वयं सूर्य भी राज की नौकरशाही की नजर के दायरे में आ गया। पॉक्सन के सिद्धांत ने ब्रिटिशों के भारतीय परिदृश्य को देखने के नजरिए को बदल दिया। उन्होंने रहस्यमय आकाश को वायुमंडलीय अशांति के एक तर्कसंगत साम्राज्यवादी मानचित्र में बदल दिया। भूख के ब्रह्मांडीय चक्र की पॉक्सन की ये खोज उस समय का प्रमाण है जब अंग्रेजों का मानना था कि पश्चिमी विज्ञान के माध्यम से वे अंततः उष्णकटिबंधीय दुनिया की अप्रत्याशित लय को वश में कर सकते हैं। आगे चलकर इसी कोडाईकनाल वैधशाला में जॉन एवरशेड ने एवरशेड प्रभाव की खोज की, जिसने सौर भौतिकी की दुनिया में भारत का नाम हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया।
2: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद। हमारा अगला कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज का विषय है करगिल युद्ध। आज हम इस कार्यक्रम का चतुर्थ भाग सुनेंगे। जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत करेंगे पूर्वा खले।
4: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
5: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को और ये कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। श्रोता, यह कार्यक्रम एक छोटा सा प्रयास है हमारा, जिसके माध्यम से हम अपनी भारतीय सेना को, उसके कार्यकलापों को और उसके द्वारा देश के गौरव को बनाए रखने के लिए किए गए तमाम ऑपरेशंस आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हम अपनी सेना को और अधिक सम्मान दे सकें, मान दे सकें और अपने हर सैनिक पर और भी अधिक गर्व कर सकें। इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों की महान गाथा कारगिल के युद्ध के रूप में हमारे सामने है और हमारे कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में हम इसी पर आपसे चर्चा करते आ रहे हैं। श्रोताओं, ऑपरेशन विजय के रूप में हमने कारगिल से दुश्मन को किस तरह निकाल बाहर किया और उन आसमान छूती हुई चोटियों पर अपना विजय ध्वज लहराया, इसके बारे में लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा से हमने विस्तृत रूप में इन कड़ियों में जाना है। अब इस शौर्य गाथा की चर्चा करते हुए हम कारगिल युद्ध की श्रृंखला की अंतिम कड़ी पर आ पहुंचे हैं। श्रोताओं, बेहद ही मुश्किल और नामुमकिन सी परिस्थितियों को मुमकिन बनाने का नाम था ऑपरेशन विजय। हर सिपाही की बस एक ही धुन थी, या तो विजय या वीरगति। बस ऐसे ही जज्बे के साथ ये जंग लड़ी गई और हमने इसमें विजय पाई। इस युद्ध से जुड़ी और भी बातें और तथ्य, जिनका जिक्र किए बिना हमारी ये श्रृंखला अधूरी रह जाएगी, इन्हें साझा करने के लिए हमारे बीच एक बार फिर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्हें भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने का लगभग 20 वर्षों का अनुभव रहा है और अपनी सेवाओं के दौरान कारगिल क्षेत्र का वृहद अनुभव भी रखते हैं। सर, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
6: नमस्कार पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं। पूर्वा जी, ये जो जंग है जी, जिसे हम इतने एपिसोड्स में इसका जिक्र किया है
5: जी,
6: तो ये इंटेंस लेवल पे जारी थी
5: जी,
6: और भारतीय सेना प्रयासरत थी कि कुछ भी हो जाए
5: जी,
6: जो भी इंट्रूडर्स हैं उनको खत्म करना है। और ये जो 130-134 किलोमीटर के एरिया में जो इंट्रूजन हुआ था
5: जी,
6: जैसे हमने देखा धीरे धीरे करके जो है हर जगह हमने विजय प्राप्त करी
5: जी,
6: और इंट्रूडर्स को या तो खत्म किया या उनको वहां से खदेड़ दिया। एंड जितनी नामुमकिन लगने वाली चोटियां थी
5: जी,
6: जैसे टाइगर हिल थी, इस पे हमने विजय प्राप्त करी। एंड नो डाउट इट वाज ए इनक्रेडिबल एंड वेरी ब्रेव एक्ट ऑफ अवर सोल्जर्स, ऑफ अवर ऑफिसर्स हु लेड फ्रॉम द फ्रंट। हमने उनका सबका जिक्र किया हमारे पिछले एपिसोड में, जैसे हमने कैप्टन हनीफुद्दीन का जिक्र किया था
5: जी हाँ, जिन्हें सर वीर चक्र मिला था
6: जी
5: जी,
6: जिन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ते हुए अपने प्राणों को निछावर किया
5: जी,
6: था, ठीक है, शहीद हुए थे। और उनके ही सम्मान में जो है उस सेक्टर को सब सेक्टर हनीफ का नाम दिया गया है और उन्हीं के एफर्ट्स थे जिसके बाद जो है उनकी यूनिट एक बहुत ही मतलब जो है मेजर फीचर 0.5990 जिसको कैप्चर करने में सफल रही थी। तो ऐसे कई वीरों का हमने जिक्र किया और इन सबके जो सामूहिक प्रयास के कारण हमें ये सफलता मिली थी।
5: जी बिल्कुल सर।
6: एक एपिसोड और है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे।
5: हाँ जी बिल्कुल।
6: 0.5770 एक पीक है मतलब
5: जी।
6: ये सोल्टोरो रिज जिसका हमने सियाचिन ग्लेशियर में भी जिक्र किया
5: जी,
6: था तो उसमें सदर्न ग्लेशियर में लोकेटेड है। तो ये जो फीचर है
5: हाँ जी।
6: इसके नीचे मतलब जो है चालुंगला आता है। आपको याद होगा हमने बताया था कि सोल्टोरो रिज के ऊपर सियाला बिलाफोंडला चालुंगला पासेस हैं
5: जी जी
6: जिससे कि आप ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवर्स
5: आ जा सकते हैं।
6: तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जो ये फीचर है डोमिनेटिंग फीचर जो है ये चालुंगला को डोमिनेट करता है।
5: अच्छा
6: चालुंगला जो है जो दोनों शोल्डर्स हैं मतलब जो दर्रा
5: दोनों छोर है
6: हाँ, उसके जो दोनों छोर है दोनों
5: हाँ, जी, जी।
6: तो ईस्टर्न शोर जो है वो इंडियन आर्मी के पास है और वेस्टर्न जो है वो पाकिस्तान के पास।
5: अच्छा।
6: और दोनों जो फोर्सेस हैं वो हमेशा ये प्रयासरत रही है कि हमें जो है इसका पूरा कब्जा मिले।
5: जी।
6: खासकर पाकिस्तान ने काफी बार अटैक करा कि उनको ईस्टर्न शोल्डर जो है उस पे वो
5: इनके पास कब्जा आ जाए
6: लेकिन वो हमेशा फेल रहे क्योंकि 0.5770 जो है वो इसके ऊपर लोकेटेड मतलब इसको डोमिनेट करती है
5: जी।
6: तो उस लोकेशन के जो टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है
5: जी।
6: बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो दोनों ही आर्मीज जो है दोनों का ये एफर्ट था कि किसी तरह से इस 0.5770 के ऊपर
5: हमारा अधिकार
6: जी। तो 98 में भी इंडियन आर्मी ने एफर्ट किया था इसके ऊपर कब्जा करने के लिए लेकिन अगर आप फीचर की कभी फोटो भी देखेंगे
5: जी
6: तो इट्स अ वेरी स्टीप क्लाइम।
5: अच्छा जी।
6: एंड बहुत ज्यादा मतलब हाइट भी बहुत ज्यादा है स्टीप क्लाइम भी है
5: जी।
6: फिर जो वहाँ वेस्टर्न साइड से मतलब जो पाकिस्तान की तरफ है वहां से उसको चढ़ने में फिर भी आसानी है लेकिन हमारी तरफ से जो ईस्टर्न फेस था वो तो ऑलमोस्ट मतलब बिल्कुल ही वर्टिकल
5: जी यानी भारत की ओर से जो चढ़ाई थी वो बहुत कठिन है
6: बिल्कुल बहुत ही ज्यादा ही कठिन थी। तो जब उस समय भी प्रयास किया था तो जो ऑब्जेक्टिव यानी कि चोटी पे नहीं पहुंच पाए थे बट उसमें एक बात ये रही थी कि इस 0.5770 के नॉर्थ और साउथ में इस फीचर में हम अपनी पोस्ट एस्टैब्लिश करने में सफल हो गए।
5: अच्छा।
6: लेकिन जब ये पोस्ट एस्टैब्लिश हुई थी तो पाकिस्तान ने उसके बाद से कंटिन्यूसली इसमें इंटरफेरेंस रखा था तो ये बहुत जरूरी था कि हम इसको पूरी तरह से डोमिनेट करें और इस पे कब्जा करें। तो जून 99 में वंस अगेन इट वॉज प्लान टू कैप्चर इट एंड दिस टाइम इट वॉज डिसाइडेड कि हम जो है ईस्टर्न फेस से यानी हमारी तरफ से ही चढ़ेंगे।
5: अच्छा।
6: अब जो ईस्टर्न फेस है इट इज अ वर्टिकल क्लाइम
5: मतलब सीधी चढ़ाई है
6: बिल्कुल सीधी आइस वॉल है ठीक है और वो भी कम नहीं मतलब मोर देन 900 to 1000 meters। ये बहुत मुश्किल होता है।
5: जी जी।
6: मैंने खुद अपनी ट्रेनिंग में करा है तो हम इवन 100 meters सीधे चढ़ने में बहुत मुश्किल होता है 90 degree पे आपको लाइक ए स्पाइडर यू आर क्लाइंबिंग ठीक है 4 point करना होता है ठीक है आइसेक्स की और मदद से
5: जी।
6: तो उसके लिए एक स्पेशल टीम को सेलेक्ट किया गया।
5: अच्छा।
6: और बहुत छोटी टीम थी जिसमें 6 लोग थे 2 persons each from 27 राजपूत जो यूनिट है।
5: अच्छा।
6: एंड लद्दाख स्काउट के थे और हॉस हाईल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल
5: जो जी,
6: है
5: जी,
6: तो उसके इंस्ट्रक्टर थे। तो ये जो टीम थी उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई मतलब आपको जो है इसमें क्लाइम करना है पर फिर भी ये देखिए कि इतनी छोटी सी टीम को भेजना मतलब एक अपने आप में आप
5: बहुत बड़ी चुनौती
6: बहुत बड़ी चुनौती है
5: जी, जी।
6: और उनको नहीं मालूम कि ऊपर जाके क्या होने वाला है कैसा उनको हालात मिलेंगे। तो इस टीम को लीड कर रहे थे मेजर नवदीप सिंह चीमा।
5: अच्छा।
6: वेरी करेजियस एंड बोल्ड ऑफिसर। जून के एंड में आई थिंक 27 जून को दिस टीम कमेंस द ऑपरेशन। इन्होंने जो है चढ़ना शुरू किया और अब ये देखिए कम से कम 7 to 8 hours लगातार मतलब जो है इन्होंने क्लाइम किया है। उस समय मतलब लगातार वर्टिकल क्लाइम करना मतलब उनकी हिम्मत देखिए उनकी बहादुरी देखिए उनका जज्बा देखिए आप जो है और ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है
5: जी।
6: उस समय जो है आइस के ऊपर जब आप कर रहे होते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना मतलब जो है कम है तो ये सब बातों के मद्देनजर रखते हुए मतलब आई वुड लाइक यू टू अप्रिशिएट दिस कि कितना मतलब उनके लिए एक डिफिकल्ट टास्क था।
7: बहुत ही साहसिक काम है सर।
6: बिल्कुल, तो ऊपर जब ये पहुंचे हैं एंड टू देयर अटमोस्ट सरप्राइज दे फाउंड कि वहां पे पाकिस्तानी सोल्जर पहले से बैठे हुए थे।
7: ओहो जी।
6: और शायद वो भी ऑलमोस्ट उसी समय पहुंचे थे।
7: अच्छा,
6: उससे मतलब या तो एक दिन पहले पहुंचे थे क्योंकि वो लोग वहां देखा गया था कि वो अपनी पोस्ट की तैयारी कर रहे थे।
7: अच्छा,
6: पोस्ट को कंस्ट्रक्ट करने की तैयारी कर रहे थे।
7: जी,
6: अब इन्होंने जब गिनती करी तो वो शायद तकरीबन 11-12 लोग

0: डिफायर भी नहीं किया गया था। तो ये पूरी की पूरी टीम जो थी, इतनी छोटी सी टीम, ये सब कुछ अपने ही लेवल पे कर रही थी। एंड दे टुक द डिसीजन, दे अटैक्ड एंड दे किल्ड ऑल द 11-12 पाकिस्तानीज।
1: क्या बात है
0: जी। और उसके बाद जो उन्होंने पोस्ट के ऊपर कैप्चर कर लिया, विच वॉज अ मेजर मेजर विक्ट्री।
1: बहुत बढ़िया।
0: और जैसे आप ये सोचिए, ये नहीं कि उन्होंने पोस्ट करी है, आप पहुंच गए हैं, आपने उनको खत्म कर दिया, वो नहीं है। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। और हुआ भी यही, उसमें इमीडिएटली जो है आर्टिफायर आना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने, जैसे देखा उसने आर्टिफायर शुरू कर दिया। तो

0: कैप्टन श्यामल सिन्हा, उनको भी अदम्य साहस के लिए वीर चक्र मिला था।
1: अच्छा, जी जी।
0: और जैसे मैंने आपको अभी जिक्र किया था कि सरप्राइज मेंटेन करने के लिए इसमें कोई आर्टिफायर सपोर्ट नहीं था इसको, इनको जो है
1: जी।
0: तो ये भी एक ऐसा ऑपरेशन था जो उस दौरान हुआ था
1: जी,
0: जो हमने अपने इनिशिएटिव पे किया था इंडियन आर्मी ने।
1: सर, इतनी ऊंची चढ़ाई पर वो अपने जो हथियार लेकर गए थे उसी से उन्हें दुश्मन पर विजय पाई।
0: बिल्कुल, और उनके पास सिर्फ अपने हथियार थे और जो हमारा फौज अमनेशन बोलते हैं जो साथ में था वो था, और इमेजिन करिए उसके बाद उनके पास राशन भी था
1: जी।
0: और उनके पास जो है विंटर मतलब इतनी ठंड से बचने के लिए जो इक्विपमेंट भी है, फिर माउंटेनियरिंग का इक्विपमेंट है क्योंकि वो चढ़ने के लिए,
1: हाँ जी।
0: तो इतना सारा सामान
1: जी।
0: और इतनी विपरीत परिस्थितियों में
1: ऊपर लेकर चढ़ना,
0: लेके चढ़ना
1: और उसके बाद लड़ाई करना,
0: इट्स अ बिग चैलेंज। तो इतने बहादुर सोल्जर्स के होते हुए तो आप यकीन मानिए कि कोई देश का बाल नहीं बाक।
1: इसीलिए तो सर हम जैसे जो आम नागरिक हैं वो बहुत निश्चिंत रहते हैं।
0: नहीं, आम तो नहीं है, आप सब लोग खास हैं। एंड यस, आई मस्ट से सो कि इट इज द डेडिकेशन एंड डिवोशन ऑफ दिस सोल्जर्स, दिस ऑफिसर्स, बिकॉज ऑफ विच वी आर सेफ,
1: वी आर
0: प्रोटेक्टेड। तो कारगिल का जो ये ऑपरेशन था
1: जी,
0: अगर हमने अभी तक जैसे जितने ऑपरेशंस देखे हैं, हमने सारे जिक्र करा, 47 का किया
1: जी,
0: लड़ाई देखी हमने, फिर उसके बाद 62 का भी किया
1: जी।
0: ड्यूरेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह से सबसे लंबा ड्यूरेशन।
1: हाँ सर, लगभग 2 महीने
0: देख लीजिए, 2 महीने करीब हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि इट वॉज वेरी इंटेंस
1: जी।
0: ऑल्दो ये एक बहुत छोटी लोकेशन में मतलब जो है, इट वॉज नॉट स्प्रेड आउट ऑन द होल कंट्री, ऑन द होल फ्रंटेज, लेकिन इसका जो इंटेंस थी,
1: भीषणता बहुत थी सर,
0: बहुत ज्यादा
1: जी जी।
0: जैसे हमने देखते आए हैं लगातार जो है किस तरह से रोज जो ऑपरेशन हो रहे थे, रोज जो है किस तरह से मतलब फायरिंग हो रही है
1: जी।
0: और ये तो आप लोगों ने लाइव भी देखा था, टीवी
1: हाँ जी,
0: भी
1: बिल्कुल सर, हमें भी कुछ ना कुछ मेमोरी में है अभी।
0: उस समय तो मतलब दिस वाज फर्स्ट ऑपरेशन आई थिंक जिसको पूरा लाइव दिखाया गया था।
1: ये क्वेश्चन भी था सर, एक प्रश्न ये भी था आपसे कि पहली बार इस तरह का एक अनुभव था देश के लिए भी, स्वयं सेना के लिए भी, कि एक मीडिया कवरेज उनको मिला। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है सर कि फ्रंट पे क्या हो रहा है, घटित हो रहा है, वो आम जनों तक पहुंचने में काफी देर लगती है। तो ये शायद पहला एक्सपीरियंस रहा सेना का भी और देश का भी कि लोगों ने इस युद्ध को लाइव देखा।
0: बिल्कुल लाइव देखा, तो उनको एहसास भी था इस बात का कि क्या हो रहा है,
1: हाँ जी,
0: और कैसे हो रहा है, ठीक है, कितने एफर्ट्स लग रहे हैं
1: जी,
0: कैसे दुश्मन ने हमारे साथ क्या किया है,
1: धोखेबाजी की,
0: धोखेबाजी करी है। तो ये सब चीजें भी जो है लोगों को समझ में आई
1: जी।
0: हमने जिक्र भी किया था कि इसकी जो मतलब डिफिकल्टी थी इन ऑब्जेक्टिव्स को कैप्चर करने की, उसमें मतलब कितना रेशो कितना ज्यादा था,
1: क्योंकि
0: माउंटेन्स क्या है, डिफेंडर को सपोर्ट करते हैं। कई बार तो मतलब दुश्मन के जितने लोग थे उससे 9 से 10 गुना हमको ज्यादा अपनी फोर्सेस एम्प्लॉय करनी पड़ी। और काफी जो बातें सामने आई थी, जैसे हमने देखा कि बफोस का डायरेक्ट फायर जो था बहुत इफेक्टिव रहा
1: जी।
0: और एक जो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि एलओसी क्रॉस नहीं करना।
1: हाँ सर, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी हमारी,
0: सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। लेकिन ये देखिए, इस लिमिटेशन ने पूरे विश्व में हमें एक बहुत ही सम्मान
1: की स्थिति में लाया। सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप जी।
0: तो उसके बाद पूरे विश्व में ये स्थापित हुआ कि ये जो कार्य करा गया है, ये जो इंट्रूजन है, ये गलत कार्य पाकिस्तान ने किया है,
1: उनकी ओर से है,
0: उनकी ओर से है। एंड सो दैट्स व्हाई वी वर एबल टू गार्नर वेरी फेवरेबल सपोर्ट
1: जी, पूरे विश्व से हमें इसका समर्थन मिला सर।
0: बिल्कुल, एट इंटरनेशनल लेवल वी वर एबल टू गार्नर द कुछ सपोर्ट। ये एक ऑपरेशन था मतलब जिसमें अगेन जो ब्रेवरी थी, डिवोशन ऑफ ड्यूटी था, उसके लिए ऑलमोस्ट मोर देन 260 डिफेंस पर्सनल्स वर कंफर्ड विद गैलेंट्री अवार्ड्स।
1: जी हाँ सर, मेरे ख्याल से सर आजाद भारत में पहली बार इस एक युद्ध में इतने गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए।
0: बिल्कुल दिए गए
1: जी।
0: और मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर ये 265-270 अवार्ड मिले थे
1: जी,
0: तो आप ये देखिए कि इसके अलावा भी शायद उससे दुगने तिगने बहादुर लोग थे।
1: बिल्कुल सर,
0: जिन्होंने अपना कार्य किया है
1: जी,
0: ये तो ठीक है, देवर आउटस्टैंडिंग जिनको कि अवार्ड मिला है,
1: सबने अपनी अपनी ड्यूटी पूर्णता निभाई।
0: अगर अगर 10 लोग गए हैं तो डेफिनेटली 10 को तो नहीं दिया जा सकता
1: जी सर,
0: तो एक को अगर दिया गया तो बाकी 9 ने भी उससे ज्यादा अच्छा काम
1: जी किया। क्योंकि सर ये काम तो कोऑर्डिनेशन वाला ही काम है।
0: बिल्कुल, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना हम कोई अवार्ड्स दिए गए हैं
1: जी,
0: उसे आप ये लगाइए कि 4 से 8 गुना लोग जो हैं उन्होंने उस डिवोशन उस बहादुरी से
1: लड़ाई की है,
0: वो भी मतलब इक्वली
1: बिल्कुल सर
0: इस अवार्ड के मतलब हकदार हैं, राधन उनको भी ये मिला है
1: जी।
0: हम इसका जिक्र कर चुके हैं, 4 पीवीसी परमवीर चक्र
1: हाँ,
0: जो मिले थे, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार, ग्रेनेडियर्स योगेंद्र सिंह यादव, ठीक है, और इसमें 9 महावीर चक्र मिले थे, मेजर सोनम वांगचोक, मेजर विवेक गुप्ता, मेजर राजेश सिंह अधिकारी, मेजर पद्मपनी आचार्य, कैप्टन अनुज नायर, कैप्टन एन करग्रूस, कैप्टन के सी नोंगरूम, लेफ्टिनेंट बलबान सिंह, नायक दिगेंद्र सिंह। इसके अलावा 55 वीर चक्र मिले थे, जिसमें कि 2 जो थे इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मिले थे।
1: अच्छा,
0: और भी जो है काफी सारे अवार्ड थे जो मिले थे, सर्वोत्तम युद्ध सेना मेडल, सेवा मेडल, देन उत्तम युद्ध सेवा मेडल, ठीक है, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल्स गैलेंट्री से, वायु सेना मेडल से, तो एक तरह से यस, दिस वाज द रिकॉग्निशन ऑफ द एफर्ट्स व्हिच हैज बीन पुट बाय द सोल्जर्स कि दीस अवार्ड्स वर कन्फर्ड टू देम। ठीक है, इस ऑपरेशन के बाद हमें काफी चीजें सीखने को मिली।
1: बिल्कुल सर, मैं इसी पे आना चाहती थी सर कि इस युद्ध ने हमें सिखाया क्या।
0: बहुत कुछ सिखाया, हर युद्ध हमें कुछ ना कुछ सिखाता ही है।
1: जी बिल्कुल।
0: उसके बाद ऑन एवरी फास्ट पेस द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस स्टार्टेड टेकिंग प्लेस।
1: जी,
0: हमें इस बात का एहसास हुआ कि हमारे को सेल्फ डिपेंडेंसी
1: बहुत आवश्यक है,
0: एमिनेशन के ऊपर बहुत ज्यादा है।
1: जी,
0: उसी का नतीजा देखिए आप,
1: बिल्कुल सर,
0: अच्छा मतलब हम कर रहे हैं, रादर वी हैव स्टार्टेड नाउ एक्सपोर्टिंग।
1: जी, अब तो
0: हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स
1: हथियार निर्यात कर रहे हैं सर।
0: बिल्कुल, दिस आर इन मच डिमांड नाउ।
1: बिल्कुल,
0: वी हैड रीच्ड, मतलब वी हैड टेकन अ जायंट लीप, आई मस्ट से, एक उस वक्त से कि जब हम पूर्णतः डिपेंडेंट थे और जो है उसके बाद जो है अभी हमारी अपनी मतलब जो है वी आर सेल्फ डिपेंडेंट ऑन आवर सेल्फ, ठीक है, मेक इन इंडिया,
1: बिल्कुल सर,
0: वाला जो बात है। देन देयर वर लॉट ऑफ अदर चेंजेस आल्सो व्हिच टुक प्लेस, जो हमें इसमें जो सीखने मिले थे, व्हिच एक्चुअली स्ट्रेंथन्ड आवर आर्म फोर्सेस। जो है मैं समझता हूँ कि एक तो बात यह है कि हमें कभी दुश्मन पे भरोसा नहीं करना चाहिए।
1: हाँ, बिल्कुल सर,
0: कुछ भी हो जाए,
1: सही बात है, चाहे वो कितने भी गले मिले लेकिन पीछे से आपको वापस वार कर सकते हैं।
0: You have to be very vigilant, you have to be always
1: चौकन्ना रहना जरूरी है।
0: बिल्कुल, जो है
1: जी,
0: वो बहुत जरूरी चीज है। तो ये सब चीजें हैं जो चलती रही, एंड आई मस्ट से वी कैन एंड दिस, मेरी तरफ से जो है मैं सिर्फ उन लोगों को सबको जिन्होंने अपने प्राण निछावर किए इस युद्ध में, उन सबको श्रद्धांजलि देता हूँ, और उन सबको हम हमेशा याद रखेंगे।
1: जी बिल्कुल सर,
0: और जो बहादुर सैनिक जिन्होंने जो है हमारे साथ हैं, जिन्होंने इसमें जो है वीरता दिखाई, वो हमारे लिए हमेशा जो है एक प्रेरणा का स्रोत रहेंगे।
1: बिल्कुल।

0: जलते हुए जलेंगे, पीछे नहीं टलेंगे, आगे बढ़े चलेंगे, आगे बढ़े चलेंगे। तो श्रोताओं, कारगिल युद्ध की इस श्रृंखला को इन्हीं पंक्तियों के साथ हम समापन की ओर ले जा रहे हैं और मिलते हैं आपसे कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। कार्यक्रम हमारा है हमारी सेना हमारा गर्व। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर। सर, आप आज स्टूडियो में आए और आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू पूर्वा जी। एंड जो आपने ये पंक्तियाँ बोली हैं बहुत ही मायने रखती हैं, बहुत ही अच्छी लगी। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जय हिंद श्रोताओं, जय हिंद पूर्वा जी।
0: जय हिंद सर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का। और मैं थी आपके साथ आपके अपनी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो दीजिए अनुमति अब इस कार्यक्रम से। नमस्कार। 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण
2: हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज हम करगिल युद्ध पर आधारित कार्यक्रम का चतुर्थ भाग सुन रहे थे। जानकारी दी सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा ने और इनसे बातचीत कर रही थी पूर्वा खले।
3: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: जो आओ डी बैरोस ब्रिटिश और बर्मी साम्राज्य के बीच एक पुर्तगाली जमींदार। क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय इतिहास के सबसे विस्फोटक शरणार्थी संकटों में से एक को संभालने के लिए पुर्तगाली मूल के एक जमींदार पर भरोसा किया था। ये कहानी है जोआओ डी बैरोस की, जिनकी चटगांव सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित जागीर ब्रिटिश कंपनी और विस्तारवादी बर्मी साम्राज्य के बीच एक उच्च स्तरीय राजनयिक गतिरोध का केंद्र बन गई थी। ये नाटक सन 1785 में शुरू हुआ, जब अराकान पर बर्मी आक्रमण के बाद हजारों शरणार्थी ब्रिटिश कब्जे वाले चटगांव की ओर भागने लगे। इन हताश लोगों में केवूटी जैसे उच्च पदस्थ राजनीतिक विद्रोही और अराकान के दिवंगत राजा का परिवार भी शामिल था। तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर चार्ल्स क्रॉफ्ट्स उलझन में थे। वे इन शरणार्थियों को जिले के कम आबादी वाले ग्रामीण इलाकों में बसाने के लिए संभावित श्रम शक्ति के रूप में चाहते थे, लेकिन उनके पास उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त सैन्य संसाधन नहीं थे। लिमिटेड राज की स्थानीय सहयोगियों पर निर्भरता को दर्शाते हुए क्रॉफ्ट्स ने इन शाही शरणार्थियों को जोआओ डी बैरोस के घर में ठहराया। एक पुर्तगाली जमींदार के पास उन्हें रख कर कंपनी डी बैरोस को एक मानव ढाल और प्रशासनिक बफर के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि बर्मी जनरल वानकेचा, जिसने अभी अभी अराकान जीता था, इस व्यवस्था से नहीं डरा। उसने क्रॉफ्ट्स को धमकी भरे पत्रों की एक श्रृंखला भेजी, जिसमें केवूटी और उनके अनुयायियों को तुरंत सौंपने की मांग की गई। क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ जब अंग्रेजों ने बर्मी जनरल की धमकी को हल्के में लिया? क्रॉफ्ट्स ने शुरू में चटगांव बटालियन का एक हिस्सा नाफ नदी के मुहाने पर भेजा, लेकिन प्रांत के सुदूर कोनों में अनिश्चित काल के लिए सेना रखने का खर्च वो नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्होंने जल्द ही उन्हें वापस बुला लिया। कमजोरी के इस संकेत को देखकर वानकेचा ने कंपनी के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और कंपनी की कई बंगाली प्रजा को मार डाला। शरणार्थियों को जल्द ही एहसास हो गया कि जोआओ डी बैरोस की शरण स्थली केवल खोखले वादों का एक जाल थी। वे पहाड़ियों में भाग गए। केवूटी को अंततः बर्मी लोगों ने पकड़ लिया और मार डाला। अपनी मृत्यु से पहले उसने ब्रिटिश शासन पर एक मार्मिक आरोप लगाया। उसने कहा, जो लोग सुरक्षा के लिए भागे थे, उन्हें वो सुरक्षा और संरक्षा नहीं मिली जिसकी वे अंग्रेजों से उम्मीद कर रहे थे। डी बैरोस की देखरेख में मौजूद लोगों की रक्षा करने में विफलता के विनाशकारी परिणाम हुए। सुरक्षा की उम्मीद खो चुके कई शरणार्थी जीवित रहने के लिए लुटेरे और डाकू बन गए। इसी अराजकता के कारण सन 1787 में एक ब्रिटिश नागरिक जेम्स रवि की कुख्यात हत्या हुई। जो आओ डी बैरोस की कहानी हमें एक दिलचस्प सबक सिखाती है। विचारों के साम्राज्य में जब कोई राज्य अपने सबसे कमजोर मेहमानों की रक्षा करने में विफल रहता है, तो वो केवल अपना सम्मान ही नहीं खोता, वो अपनी सीमाओं पर व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता भी खो देता है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूं सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम देश के संस्थान। इस कार्यक्रम में आज हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर आधारित कार्यक्रम सुनेंगे। इस कार्यक्रम को स्वर दे रहे हैं दीपक नेमा और भगवती सक्सेना।
0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने जाना था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल की प्रेरक कहानी। दादू से रुचि ने जाना कि कैसे हाल लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और अन्य वायुयान बनाकर भारत की आकाशीय शक्ति को नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। लेकिन क्या केवल विमान बना लेना ही पर्याप्त है? क्या एक लड़ाकू विमान बिना रडार, बिना संचार प्रणाली और बिना आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है? यही प्रश्न आज रुचि के मन में भी है। आइए चलते हैं दादू और रुचि के घर पर।
1: दादू, पिछली बार हमने हाल के बारे में चर्चा की थी। तेजस लड़ाकू विमान और ध्रुव हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी पाकर अब मेरे मन में और भी सवाल आने लगे हैं दादू। आज आपको उन सभी सवालों के जवाब देने होंगे। बताइए ना, आप मेरे सवालों के जवाब देंगे ना दादाजी?
2: अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है बिटिया, बिल्कुल दूंगा। चलो आज मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाता हूँ।
1: अरे वाह, मैं रेडी हूँ दादाजी। वैसे आज आप किस बारे में बताने वाले हैं?
2: सोचो सोचो, दिमाग लड़ाओ बिटिया।
1: पिछली बार आपने बताया था कि हाल विमान बनाती है, लेकिन विमान को रास्ता कौन दिखाता है? दुश्मन के विमान की पहचान कौन करता है? सैनिकों तक संदेश कौन पहुंचाता है? आज मुझे इसी बारे में जानने को मिलेगा। सही कहा ना मैंने?
2: अरे बिल्कुल सही कहा बिटिया, शाबाश। क्या बात है, लगता है तुम अब इन देश के संस्थानों की विशेषज्ञ बनने वाली हो।
1: क्या दादू, आप भी ना, अब बताइए भी।
2: हाँ हाँ बताता हूँ। सुनो बेटा, जिस प्रकार शरीर में आंखें, कान और मस्तिष्क महत्वपूर्ण होते हैं, उसी तरह किसी भी आधुनिक सेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां महत्वपूर्ण होती हैं। और भारत में ऐसी प्रणालियों के निर्माण का सबसे बड़ा नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL।
1: तो आज हम BEL की कहानी सुनने वाले हैं।
2: हाँ बिटिया, आज हम उस संस्था की कहानी जानेंगे जो दिखाई कम देती है लेकिन देश की सुरक्षा में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है।
1: दादू, BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की शुरुआत हुई कब थी?
2: किसी भी संस्था की कहानी जानने के लिए उसके जन्म का कारण जानना बहुत जरूरी होता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में बेंगलुरु में की गई थी।
1: अच्छा।
2: हाँ, उस समय भारत को रक्षा क्षेत्र में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बहुत जरूरत थी।
1: भला ऐसा क्यों दादाजी?
2: बेटा, आजादी के बाद भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी। देश को अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी थी, सेना को आधुनिक बनाना था और रक्षा क्षेत्र में विदेशी देशों पर निर्भरता भी कम करनी थी। और फिर सरकार चाहती थी कि देश अपनी जरूरतों के लिए किसी विदेशी कंपनियों पर निर्भर ना रहे। बस यही कारण था BEL की स्थापना का।
1: दादाजी, मतलब आत्मनिर्भर भारत का सपना तब से देखा जा रहा था?
2: बिल्कुल, आज जैसे हम आत्मनिर्भर भारत कहते हैं ना बेटा, उसकी नींव ऐसे ही संस्थानों ने दशकों पहले रखनी शुरू कर दी थी।
1: मतलब उस समय भारत में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं बनते थे?
2: बहुत कम बनते थे बेटा। सेना को रडार, संचार उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। युद्ध या संकट के समय यह निर्भरता बहुत बड़ी समस्या बन सकती थी।
1: तभी सरकार ने इसका समाधान खोजा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना करके। अच्छा दादाजी, तो आज BEL कितनी बड़ी संस्था है?
2: आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत सरकार का एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये केवल एक कारखाना नहीं है बल्कि देश भर में फैली अनेक उत्पादन इकाइयों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों का विशाल नेटवर्क है बेटा। इसके 9 प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं, जहां हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ कार्य करते हैं। और तुम्हें पता है, इसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त है।
1: नवरत्न का क्या मतलब हुआ दादाजी?
2: देखो बेटा, भारत सरकार कुछ उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उनके शानदार प्रदर्शन, लाभप्रदता, तकनीकी क्षमता और राष्ट्रीय योगदान के आधार पर विशेष दर्जा देती है। इसे नवरत्न का दर्जा कहा जाता है।
1: वाओ, तो क्या ये रक्षा मंत्रालय के अधीन बनाया गया संस्थान है?
2: बिल्कुल, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की विशेष और चुनौतीपूर्ण जरूरतों को पूरा करना था, इसलिए इसे रक्षा मंत्रालय के अधीन रखा गया।
1: तो दादाजी, इसका पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया?
2: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बेटा।
1: बेंगलुरु में?
2: उस समय बेंगलुरु धीरे धीरे विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा था, इसलिए BEL की पहली उत्पादन इकाई वहीं स्थापित की गई।
1: दादू, आपने बताया था कि इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, तो क्या इसके बाकी सारे कारखाने भी वहीं पर हैं?
2: नहीं बिटिया, जैसे किसी विशाल वृक्ष की शाखाएं दूर दूर तक फैलती हैं, वैसे ही BEL की उत्पादन इकाइयां पूरे देश भर में फैली हुई हैं।
1: सच में दादू? तो फिर बताइए ना, कहाँ कहाँ फैली है?
2: बेंगलुरु के अलावा गाजियाबाद, पंचकुला, कोटद्वार, हैदराबाद, मछलीपट्टनम, नवी मुंबई, पुणे और चेन्नई में इनकी प्रमुख इकाइयां हैं बेटा।
1: इतना विस्तार? दादाजी, कितना रोमांचक रहा होगा ना?
2: बिल्कुल, जैसे जैसे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की आवश्यकता बढ़ती गई, BEL भी नई तकनीकों और नए उत्पादों के साथ आगे बढ़ती गई। छोटे से कारखाने ने धीरे धीरे एक विशाल संगठन का रूप लेना शुरू कर दिया बेटा।
1: पर दादू, इसकी इतनी सारी इकाइयां क्यों हैं?
2: क्योंकि BEL अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती है। अलग अलग इकाइयां अलग अलग तकनीकों और प्रणालियों के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है बेटा।
1: मतलब किसी एक बड़ी मशीन के पुर्जे अलग अलग जगह बनाकर फिर वो एक जगह पहुँचाए जाते हैं?
2: बिल्कुल, इसके अलावा देश भर में इसके क्षेत्रीय कार्यालय है बेटा, और न्यूयॉर्क और सिंगापुर में भी इसके कार्यालय स्थापित हैं।
1: वाह, यानी BEL की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करती है।
2: बिल्कुल बेटा।
1: दादू,
2: आखिर
1: BEL ऐसा क्या बनाती है जो सेना के लिए इतना महत्वपूर्ण है?
2: यदि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को हम सेना की उड़ान कहें, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उसकी आँख, कान और मस्तिष्क है बेटा।
1: पर ये भला कैसे?
2: बिटिया रानी, अभी तो बताया मैंने तुम्हें, BEL रडार प्रणालियां बनाती है, और रडार दूर स्थित वस्तुओं को पता लगाने में मदद करता है। तुम है ना बेटा, बादाम खाना शुरू करो रुचि।
1: दादू, आप भी ना, जब देखो तब मेरा मजाक बनाते रहते हैं। मैं भूल जाती हूँ कभी कभी, पर मेरे प्यारे दादू है ना मुझे सब कुछ बताने के लिए, तो फिर से बता दीजिए।
2: अच्छा है बेटा, दादू को पेड़ पर चढ़ाते जाओ तुम।
1: क्या दादू, आप भी ना, आप मुझे ये बताइए कि क्या इन रडार प्रणालियों से दुश्मन का विमान सीमा से दूर हो तब भी उसका पता लगाया जा सकता है?
2: बिल्कुल लगाया जा सकता है बेटा। इसके अलावा BEL सैन्य संचार उपकरण बनाती है, जिससे सैनिक सुरक्षित रूप से संदेश भेज और प्राप्त कर सकते हैं।
1: अच्छा दादाजी, ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली क्या है?
2: देखो बेटा, आज युद्ध केवल हथियारों से नहीं, तकनीक से लड़े जाते हैं, है ना? तो ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली दुश्मन की संचार व्यवस्था और रडार को बाधित करने में सहायता करती है।
1: यानी अब तकनीक को भी हथियार बना लिया गया है।
2: BEL नौसेना प्रणालियां, टैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर ऊर्जा प्रणालियां और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी विकसित करती है।
1: दादू, ये रडार किस तरह की तकनीक है?
2: रडार को समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं बेटा। मान लो तुम किसी पहाड़ी के सामने खड़ी होकर जोर से आवाज लगाओ, कुछ समय बाद वही आवाज लौट कर तुम्हारे पास आती है, जिससे प्रतिध्वनि या इको कहते हैं।
1: हाँ, मैंने पहाड़ों में ऐसा होते देखा है।
2: हाँ, रडार भी ऐसा ही कुछ करता है बेटा।
1: अच्छा,
2: वो रेडियो तरंगें भेजता है, ये तरंगें किसी विमान, जहाज या मिसाइल से टकराकर वापस लौटती है, लौटने में लगे समय से उसकी दूरी, दिशा और गति का पता लगाया जाता है।
1: वाह दादाजी, यानी रडार हवा में देखने वाली आँख की तरह काम करता है।
2: बिल्कुल बेटा।
1: दादू, फिल्मों में तो युद्ध बंदूक और टैंकों से होता है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्या होता है?
2: बेटा, आज के आधुनिक युद्ध में ना जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। बिटिया रानी, यदि दुश्मन की संचार व्यवस्था बंद कर दी जाए, उसके रडार को भ्रमित कर दिया जाए या उसके संकेतों को पकड़ लिया जाए, तो बिना गोली चलाए भी बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
1: फिर वही बात कि आज तकनीक भी युद्ध का हिस्सा बन चुकी है।
2: तभी तो BEL जैसी संस्थाएं देश की सुरक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
1: दादू, ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होता है? मैंने इसके बारे में कहीं तो पढ़ा है।
2: देखो बेटा, जब किसी मशीन के अंदर विशेष कार्य करने वाला सॉफ्टवेयर लगाया जाता है तो उसे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहते हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, जैसे वॉशिंग मशीन, कार, मोबाइल या मिसाइल के अंदर लगे विशेष प्रोग्राम।
1: तो इसका मतलब कि BEL केवल हार्डवेयर नहीं बनाती, सॉफ्टवेयर भी बनाती है।
2: हाँ बिल्कुल, आधुनिक रक्षा प्रणाली में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है।
1: दादू, अगर कोई BEL ज्वाइन करना चाहे तो उसे क्या तैयारी करनी होगी? कितने पद होते हैं, उसमें भर्ती कैसे होती है, जरा ये सब भी तो बताइए।
2: हाँ हाँ बेटा, बताता हूँ। ये सवाल केवल तुम्हारे मन में नहीं बल्कि देश के लाखों विद्यार्थियों के मन में आता है। BEL केवल कंपनी नहीं बल्कि ऐसा संस्थान है जहाँ विज्ञान, तकनीक, अनुसंधान और प्रबंधन से जुड़े अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं।
1: मतलब वहाँ केवल इंजीनियर ही काम नहीं करते?
2: नहीं, अक्सर लोग सोचते हैं कि BEL में केवल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ही काम करते होंगे, लेकिन वास्तव में यहाँ अनेक प्रकार के विशेषज्ञ कार्य करते हैं बेटा।
1: जैसे
2: यहाँ वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, डेटा विश्लेषक, तकनीशियन, प्रोजेक्ट मैनेजर, वित्त अधिकारी, मानव संसाधन अधिकारी और कई अन्य विशेषज्ञ कार्य करते हैं बेटा।
1: इतने सारे लोग, यानी अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के लिए बहुत सारे अवसर हैं दादाजी।
2: बिल्कुल, किसी भी बड़े संगठन की सफलता के पीछे अनेक प्रकार की प्रतिभाएं मिलकर काम करती हैं बेटा।
1: दादू, वैसे यहाँ कौन कौन से पद होते हैं?
2: कुछ ही पद मुख्य रूप से होते हैं बेटा, जैसे कि ट्रेनी इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोबेशनरी इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान विशेषज्ञ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, तकनीशियन, डिप्लोमा इंजीनियर, वित्त अधिकारी, मानव संसाधन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, परियोजना प्रबंधक, ये सब होते हैं बेटा।
1: मतलब पढ़ाई के अनुसार अलग अलग अवसर मिल सकते हैं।
2: बिल्कुल मिल सकते हैं।
1: दादू, फिर यदि कोई छात्र अभी स्कूल में पढ़ रहा हो तो उसे किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए?
2: सबसे पहले गणित और विज्ञान की नींव मजबूत होनी चाहिए।
1: इसका कोई खास कारण है दादाजी?

0: पदों के लिए अन्य शैक्षणिक योग्यताएं भी मान्य होती हैं बेटा।
1: दादाजी, क्या BEL में भर्ती मुश्किल से होती है?
0: नहीं, बहुत कठिन भी नहीं होती। भर्ती के लिए BEL समय समय पर विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी करती है बेटा।
1: फिर आगे की प्रक्रिया क्या होती है?
0: उम्मीदवारों को आवेदन करना होता है। कई पदों के लिए लिखित परीक्षा होती है, कुछ पदों के लिए गेट जैसी परीक्षाओं के अंकों को भी महत्व दिया जाता है।
1: और फिर उसके बाद?
0: फिर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है। उम्मीदवार के ज्ञान, समस्या समाधान क्षमता और तकनीकी समझ का मूल्यांकन किया जाता है।
1: इसका मतलब ये है कि केवल डिग्री होना ही काफी नहीं है।
0: बिल्कुल नहीं बेटा, व्यवहारिक ज्ञान, आत्मविश्वास और सीखने की इच्छा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक कौशल जरूरी होता है।
1: दादू, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए?
0: बेटा, आज के समय में केवल किताबों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है।
1: सो तो है दादू।
0: विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा करिकुलर

0: एक्टिविटी की भी खासी जरूरत होती है, जैसे कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, प्रोग्रामिंग की मूलभूत समझ, संचार कौशल, टीम वर्क की समझ होना, समस्या समाधान में दक्षता होना चाहिए, तार्किक सोच होनी चाहिए। नई नई तकनीकें सीखने की आदत के साथ उसे इन सब विषयों के बारे में जिज्ञासु भी होना चाहिए।
1: मतलब दादू, पढ़ाई और कौशल दोनों जरूरी है?
0: बिल्कुल जरूरी है बेटा।
1: पर दादू, अब मुझे थोड़ा ना डर लग रहा है।
0: अच्छा?
1: ये सब सुनकर इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ बस बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही पहुँच सकते होंगे।
0: नहीं बिटिया, प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है मेहनत, अनुशासन और निरंतर सीखने की इच्छा।
1: ये तो सही कहा आपने। लेकिन दादू, जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है ना, क्या भविष्य में भी BEL जैसी संस्थाओं की आवश्यकता उस समय भी रहेगी?
0: पहले से भी अधिक होगी बिटिया।
1: अच्छा,
0: आज दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्या कहते हो तुम लोग, AI, AI, साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक, रोबोटिक्स और क्वांटम संचार की ओर बढ़ रही है बेटा।
1: इसका मतलब कि BEL भी इन क्षेत्रों पर फोकस कर रही है।
0: हाँ, आधुनिक रक्षा तकनीकों में इनका महत्व लगातार बढ़ रहा है, इसलिए आने वाले वर्षों में तकनीकी ज्ञान रखने वाले युवाओं के लिए अनेक अवसर होंगे।
1: दादू, BEL की कहानी से विद्यार्थियों को सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है?
0: तीन बातें हैं रुचि, जिनका ध्यान हर एक पढ़ने वाले बच्चे को रखना चाहिए।
1: अच्छा।
0: पहला, आत्मनिर्भर बनो। दूसरी बात कि विज्ञान और तकनीक को अपनाओ, उसे समझो, उसे जानो। तीसरी बात, अपनी प्रतिभा का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के विकास के लिए करो।
1: यानी पढ़ाई केवल नौकरी के लिए नहीं, राष्ट्र निर्माण के लिए भी होना चाहिए दादाजी।
0: हाँ बेटा, ये बात समझदार है मेरी पढ़ाकू बिटिया। बिल्कुल सही समझा बेटा तुमने। जब कोई वैज्ञानिक नया रडार बनाता है, कोई इंजीनियर नई प्रणाली विकसित करता है, या कोई शोधकर्ता नई तकनीक खोजता है, तब वो केवल अपना करियर नहीं बना रहा होता बेटा,
1: बल्कि वो देश को भी मजबूत बना रहा होता है दादाजी। और बड़े राष्ट्र केवल सैनिकों की बहादुरी से नहीं बनते, उनके पीछे वैज्ञानिकों की बुद्धि, इंजीनियरों की मेहनत, तकनीशियनों का कौशल और विद्यार्थियों के सपने होते हैं। सही कहा ना मैंने दादाजी?
0: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल 10 में से 10 नंबर देता हूँ बेटा मैं तुमको।
1: अच्छा।
0: देखो बेटा, BEL जैसे संस्थान देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का विद्यार्थी ही कल का वैज्ञानिक, इंजीनियर और राष्ट्र निर्माता बनेगा।
1: अच्छा दादू, एक और सवाल है। क्या BEL केवल सेना के लिए काम करती है?
0: नहीं बिटिया, BEL का योगदान आम नागरिकों के जीवन में भी दिखाई देता है।
1: वो भला कैसे?
0: क्या तुमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी AVM का नाम सुना है?
1: वो तो चुनाव में उपयोग होती है ना?
0: हाँ, इन मशीनों के निर्माण में BEL की महत्वपूर्ण भूमिका है बेटा।
1: मतलब लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भी BEL का बड़ा योगदान है?
0: बिल्कुल है। इसके अलावा BEL ने सौर ऊर्जा चलित ट्रैफिक सिग्नल, सेटअप बॉक्स और कम लागत वाला टैबलेट भी बनाया था, जिसका उपयोग जनगणना के दौरान किया गया बेटा।
1: वाह दादू, BEL तो रक्षा और विकास दोनों में योगदान देती है।
0: बिल्कुल बेटा।
1: क्या BEL अन्य कंपनियों के साथ मिलकर भी काम करती है?
0: हाँ हाँ, इसे संयुक्त उपक्रम कहा जाता है बेटा।
1: तो फिर इसका कोई उदाहरण बताइए ना दादाजी।
0: देखो बेटा,

0: परमाणु परीक्षण किए तब कुछ देशों ने भारत पर तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए थे।
1: फिर क्या हुआ?
0: फिर विदेशी तकनीक और उपकरण प्राप्त करना कठिन हो गया।
1: दादू, ये तो बड़ी समस्या रही होगी।
0: हाँ बेटा, लेकिन BEL के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्वदेशी तकनीक विकसित करने का संकल्प ले लिया।
1: यानी संकट अवसर बन गया।
0: हाँ, यही आत्मनिर्भरता की शुरुआत थी बेटा।
1: दादाजी, आज आत्मनिर्भर भारत की चर्चा हर जगह होती है। आप ये बताइए, BEL इसमें कैसी योगदान देती है?
0: हाँ बेटा, जब देश स्वयं अपने रक्षा उपकरण और तकनीक विकसित करता है तो विदेशी निर्भरता कम होती है। तो ये आत्मनिर्भर बनना ही तो हुआ ना।
1: यानी देश का धन भी बचता है और तकनीक भी देश में ही विकसित होती है।
0: हाँ, इससे रोजगार बढ़ता है, अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है और राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होती है।
1: दादू, क्या BEL समाज के लिए भी कुछ करती है?
0: हाँ बेटा, BEL केवल उत्पादन नहीं करती बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: वो भला कैसे?
0: देखो, विद्यालयों, अस्पतालों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संस्थाओं को सहायता भी प्रदान करती है।
1: दादू, ये तो बहुत प्रेरणादायक है।
0: हाँ बेटा, सच्ची प्रगति वही है जिसमें समाज का हर वर्ग शामिल हो।
1: और हमारा पर्यावरण?
0: BEL पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके कारखानों को शून्य प्रदूषण उद्योग माना गया है बेटा।
1: शून्य प्रदूषण उद्योग?
0: हाँ, यानी ऐसे उद्योग जहाँ जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम रखा जाता है।
1: और सौर ऊर्जा वाले ट्रैफिक सिग्नल्स?
0: वो भी इसी सोच का हिस्सा है, ऊर्जा बचाओ, पर्यावरण बचाओ।
1: दादू, आज मुझे समझ में आया कि BEL केवल एक कंपनी नहीं है, ये भारत की सुरक्षा, तकनीकी प्रगति, लोकतंत्र, समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण की मजबूत आधारशिला है।
0: बिल्कुल बिटिया, BEL उसे देखने, समझने और सुरक्षित रखने की तकनीकी शक्ति प्रदान करता है। आत्मनिर्भर भारत का सपना ऐसे ही संस्थानों के प्रयासों से साकार हो रहा है बिटिया।
1: सही कहा दादाजी आपने।
2: तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड केवल एक औद्योगिक संस्था नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। तकनीक, सुरक्षा, समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण, हर क्षेत्र में इसका योगदान प्रेरणादायक है। तो इसी संदेश के साथ अब हम आपसे लेते हैं विदा।
3: नमस्कार
2: श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, वाचन स्वर था भगवती सक्सेना,
0: दीपक नेमा,
2: लेखन था स्वाति गिरी का। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश के संस्थान, जिसमें आज हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर जानकारी प्राप्त की। इस कार्यक्रम को स्वर दिया दीपक नेमा और भगवती सक्सेना ने। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नजर जब एक उपहार राजनीतिक आत्मसमर्पण का हथियार बन गया, क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी के भारतीय कूटनीति की दुनिया में एक साधारण सा उपहार राजनीतिक आत्मसमर्पण का हथियार हो सकता था? ये कहानी है नजर की, यानी वो औपचारिक उपहार जो अधीनता का प्रतीक था और इस बात की कि भारत के दूसरे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस इसे प्रतिबंधित करने के लिए इतने जुनूनी क्यों हो गए थे। नजर के डर को समझने के लिए हमें पहले कॉर्नवालिस के पूर्ववर्ती वॉरेन हेस्टिंग्स को देखना होगा। हेस्टिंग्स का मानना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जीवित रहने के लिए मुगल मुखौटा पहनना होगा। वे मुगल राजकुमारों के साथ भव्य जुलूसों में निकलते थे और इस राजनीतिक कल्पना को स्वीकार करते थे कि कंपनी सम्राट की सेवक है। इस दुनिया में नजर का आदान प्रदान शासक और शासित के बीच परिचित संबंधों का मॉडल था। इन उपहारों को भेंट करके ब्रिटिश अधिकारी स्वदेशी वैधता के सदियों पुराने नाटकीय प्रदर्शन में अपनी भूमिका निभा रहे थे। लेकिन जब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आए तो उन्होंने चीजों को बहुत अलग नजरिए से देखा। कॉर्नवालिस एक ब्रिटिश कुलीन और पेशेवर सैनिक थे, जिनके पास उन चीजों के लिए धैर्य नहीं था जिन्हें वे अपमानजनक समारोह कहते थे। उनके लिए किसी भारतीय शासक को नजर भेंट करना कोई शिष्टाचार नहीं था, बल्कि ये एक अपमानजनक स्थिति थी जिसने ब्रिटिश श्रेष्ठता के भ्रम को चकनाचूर कर दिया था। ये तनाव 1789 में चार्ल्स मैलेट नामक एक राजनयिक के साथ चरम पर पहुंच गया। मैलेट मराठा संघ के नेता पेशवा के दरबार में कंपनी के रेजिडेंट थे। एक औपचारिक बैठक के दौरान उम्मीद की गई कि मैलेट अपने हाथों से नजर पेश करेंगे। क्या आप जानते हैं कि कॉर्नवालिस ने उनसे क्या कहा? उन्होंने मैलेट को इनकार करने का आदेश दिया और जोर देकर कहा कि उन्हें कभी भी, यहाँ तक कि किसी नौकर के माध्यम से भी, खुद को ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहिए। कॉर्नवालिस का मानना था कि ब्रिटिश सरकार की गरिमा ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसने साम्राज्य को थाम रखा है। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय समाज अत्यंत सतर्क है और किसी स्थानीय राजकुमार के प्रति व्यक्तिगत सम्मान के किसी भी संकेत को व्यक्तिगत अक्षमता या कमजोरी के रूप में देखा जाएगा। उन्हें डर था कि यदि अंग्रेज अधीनस्थ दिखाई दिए तो उन्हें हीन वर्ग के लोगों के रूप में देखा जाएगा और कंपनी का विचारों का साम्राज्य गायब हो जाएगा। नजर पर प्रतिबंध लगाकर कॉर्नवालिस मुगल मुखौटे को उतार फेंकने और उसकी जगह अंग्रेजों के अडिग चरित्र को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। वे कंपनी को शौकिया और विश्वसनीय व्यापारियों के समूह से एक पेशेवर नौकरशाही में बदलना चाहते थे, जो भारतीय समाज से अलग और उनसे ऊपर खड़ी हो। ये प्रतिबंध केवल शिष्टाचार के बारे में नहीं था, ये मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता की घोषणा थी। कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि प्रतिष्ठा के दम पर टिके राज्य में अंग्रेज अब अधीनस्थ दिखने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। नजर का डर हमें एक दिलचस्प सबक सिखाता है। शुरुआती राज में एक उपहार केवल एक उपहार नहीं था, ये उस साम्राज्य के कवच में एक दरार थी जो अपने दिल में राजनीतिक नाटक का एक नाजुक हिस्सा था।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। आज की कड़ी क्रांतिकारी मंगल पांडे के जीवन पर केंद्रित है।
2: सुनाओ, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। कार्यक्रम है याद करो कुर्बानी। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं मंगल पांडे की।
3: याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी।
2: श्रोताओं, एक बहुत पुरानी कहावत है, बीज हमेशा मिट्टी के नीचे काम करता है। जब वह अंकुर के रूप में सिर उठाकर के प्रकट होता है, तभी लोग उसे देख पाते हैं। और सन 1857 का विद्रोह इसी प्रकार उस समय सामने आया जब विद्रोह फूट पड़ा, पर वह बहुत पहले से जमीन के भीतर नीचे नीचे दौड़ रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुराने राजकुलों को एक न एक बहाने से समाप्त करने की नीति जारी रखी हुई थी। यहां जो थोड़े बहुत उद्योग धंधे थे, जैसे कि कपड़े का धंधा, उसे मैनचेस्टर और लंकाशायर के स्वार्थ की दृष्टि से नष्ट कर डाला गया। यहां तक कि बुनकरों के अंगूठे काट दिए गए। और इन्हीं कारणों से जनता में विद्रोह की भावना बढ़ रही थी। मुख्यतः लोगों में विदेशियों के प्रति द्वेष था, पर यह कहना गलत होगा कि जनता की कोई आवाज नहीं थी। केवल राजाओं और सामंतों का ही षड्यंत्र और विद्रोह था। इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा ब्योरा मिल जाता है, मगर यहां पर बरेली के आंदोलन की कुछ घोषणाएं हुई थी, उसकी चर्चा हम करते हैं। उसमें कहा गया था, ईश्वर की दी हुई वस्तुओं में सबको आजादी है, जिसने हमें इन्हें अलग कर दिया है, क्या वह हमेशा हमको इनसे अलग रख पाएगा? क्या ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध ऐसा ही होता रहेगा? नहीं, फिरंगियों ने इतना अत्याचार किया है कि अब उनका प्याला भर चुका है, वे अब हमारे धर्म को भी बिगाड़ने पर उतारू हैं। क्या ईश्वर की यह इच्छा है कि तुम इन्हें बैठे बैठे देखा करो? उठो, ईश्वर ने अंग्रेजों को निकालकर बाहर करने के लिए जोश पैदा करो। सभी भाई भाई हैं, हमें किसी तरह का भेद नहीं होना चाहिए। बात सन 1853 में पहले पहल भारतीय फौज में नए कारतूस बांटे गए थे। इन कारतूसों में चर्बी का प्रयोग हुआ था और वह चर्बी सुअर या गाय की चर्बी थी। फौज के अंदर भारतीयों में इससे बड़ा असंतोष था, लेकिन इन कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। कहा जाता था कि एक दिन कलकत्ता के पास दमदम नामक गांव में एक ब्राह्मण सिपाही लोटे में पानी भर करके रास्ते में जा रहा था, और उसी समय वहां पर एक सरहरा समाज का व्यक्ति आया और उसने कहा कि ये लोटा मुझे दे दो, मैं पानी पीऊंगा। इस पर ब्राह्मण ने कहा, यह कैसे हो सकता है? तेरे छूने से मेरा लोटा अपवित्र हो जाएगा। इस पर उस महाशय ने कहा, अब वे दिन लद गए महाराज, क्या आपको मालूम नहीं है कि जल्दी ही तुम्हें दांत से उन कारतूसों को खोलना पड़ेगा जिनमें गाय की चर्बी लगी हुई होती है। नए कारतूस इसलिए जानबूझकर गाय की चर्बी डाल करके बनाए गए ताकि तुम्हारा अभिमान दूर हो सके। इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे, मगर आप पहले सुनिए एक छोटा सा देशभक्ति गीत, उसके बाद बताएंगे कि आगे क्या हुआ।

फरंगियों ने जानबूझकर यह सब किया था ताकि हिंदू और मुसलमानों का धर्म नष्ट हो सके। खबर यह थी कि कारतूसों में गाय का खून और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। सब सिपाही फौरन जुलूस बनाकर फरंगी अफसर के पास पहुंच गए। उनसे पूछा गया कि क्या ऐसी बात है, कारतूसों में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए निषिद्ध वस्तुओं का प्रयोग किया गया है। इस पर फिरंगी अधिकारी ने कहा, नहीं। पर अधिकारी ने झूठ बोला था, जैसे कि अब अंग्रेजों के लिखे ब्योरे से पता लगता है। लॉर्ड रॉबर्ट आदि जिन लोगों ने भी ये लिखा स्वीकार किया कि सचमुच निषिद्ध वस्तुएं कारतूसों में इस्तेमाल की गई थीं। उस समय के लिए सिपाही लौट गए, पर भीतर ही भीतर असंतोष और बेचैनी की धुंध उनके ऊपर छाती रही। अन्य सैकड़ों आर्थिक सामाजिक कारणों में एक यह भी कारण जुड़ा था कि लोगों में किस तरह से फिरंगियों के प्रति द्वेष सुलग रहा था, और इसका प्रमाण एक अंग्रेज पादरी रविंद्रन कैनेडी के ब्योरे से ज्ञात होता है। मेरे साथ एक अच्छी जान पहचान वाला एक मौलवी मृत्युशैया पर था। यह आदमी हम लोगों का दोस्त लगता था। मैं मृत्युशैया पर पहुंचा तो मैंने पूछा, क्यों मौलवी साहब, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? वह मौलवी उत्तेजित हो गया कि मुझे अफसोस है तो बस इस बात का कि मैंने अपने जीवन में दो अंग्रेज भी नहीं मारे। श्रोताओं, इस तरह से आम जनता के अंदर असंतोष बढ़ता रहा, बातें होती रहीं। आगे इसके बाद क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से देशभक्ति गीत के बाद। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा देशभक्ति गीत।

श्रोताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो उन दिनों ब्रिटिश सरकार की थी, सब कुछ जानते हुए चर्बी वाले कारतूसों को बंगाल में मौजूद सैनिकों को देने का इरादा कर लिया था उसने। बैरकपुर की सेनाएं इसके लिए चुनी गई थीं। मजे की बात तो यह है कि पहले से ही ये सेनाएं वजीर अली खां के नेतृत्व में विद्रोह में भाग लेने की शपथ ले चुकी थीं। और तय यह हुआ था कि 19 नवंबर को रेजिमेंट को नए कारतूस दिए जाएंगे, पर यह रेजिमेंट तो पहले से ही क्रांति का पुजारी बन चुका था। उसने कारतूस लेने से इनकार कर दिया और अंग्रेजों से यह कह दिया गया कि जरूरत पड़ी तो इस मामले पर तलवार भी चला सकते हैं। इस पर अंग्रेज अफसरों ने रेजिमेंट के दमन का निश्चय किया, पर जब देखा कि सैनिकों ने तलवार निकाल ली है तो अधिकारी पीछे हट गए, क्योंकि आसपास कहीं भी गौरी फौज नहीं थी। और यह तय हुआ कि बर्मा से जल्दी गौरी फौज का एक रेजिमेंट यहां बुलाया जाए। और साथ ही यह भी तय हुआ 19 नवंबर के रेजिमेंट में भारतीयों को अस्त्रहीन कर दिया जाए और उस रेजिमेंट को तोड़ दिया जाए। बागियों को इसकी खबर लग गई, यद्यपि इसका पूरी तरह पक्का पता नहीं लग सका। अजीब सी बात थी कि बैरकपुर में ही सबसे ज्यादा उतावलापन था और ब्रिटिश अधिकारियों ने यहीं पर दमन चक्र चालू करना चाहा। ब्रिटिश अधिकारी ये सोच रहे थे और उधर बागी कुछ और सोच रहे थे। वे सोच रहे थे कि किसी भी हालत में अपना अपमान नहीं होने देंगे। सैनिक का सबसे बड़ा अपमान है उसके अस्त्र छीन लेना। मंगल पांडे इन दिनों सैनिकों में सबसे ज्यादा जोशीला था। उसने जब सुना कि फिरंगी अधिकारी सारी तैयारियां कर रहे हैं तो उसने यह चाहा कि क्रांति फौरन शुरू कर दी जाए। पर जो लोग क्रांति के लिए तैयार और संगठित हो रहे थे उन्हें एक तारीख तय कर दी गई और वे चाह रहे थे कि उस दिन एक साथ सारी छावनियों में विद्रोह का बिगुल बज उठे। मंगल पांडे की समझ में यह बात नहीं आई कि उसने यह कहा कि दूसरी तारीख पर विद्रोह का झंडा बुलंद करें पर मंगल पांडे वाला रेजिमेंट पहले विद्रोह करे, क्योंकि निर्धारित तारीख तक शायद मंगल पांडे रेजिमेंट में रहें या ना रहें। मंगल पांडे विद्रोह का निमंत्रण देते हुए परेड के मैदान में एक सिंह की तरह फिरता रहा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा, यद्यपि सभी उत्तेजित थे। इतने में अंग्रेज सार्जेंट मेजर ह्यूसन ने मंगल पांडे को देखा। उसमें स्वयं कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, पर उसने खड़े खड़े तमाशा देखने वाले सिपाहियों से कहा, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लो। पर किसी भी सिपाही ने उंगली नहीं हिलाई और कोई भी मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। सिपाही स्वयं विद्रोह में शरीक नहीं हो रहे थे, पर वे इस हद तक मंगल पांडे के साथ हो चुके थे कि अंग्रेज और बागियों की लड़ाई में निष्पक्ष तो नहीं, क्योंकि उनकी सहानुभूति मन से मंगल पांडे की थी। बहुत ही कठिन समय था। मंगल पांडे के हाथ में भरी हुई बंदूक थी। उनकी आत्मा रक्तदान और रक्त लेने के लिए तड़प रही थी। उसमें भारतीय साथी इधर उधर खड़े थे और गोरे अफसर ने एक आदेश दिया। इतने में लोगों ने देखा कि मंगल पांडे ने बंदूक संभाल ली है और ठाए ठाए की आवाज हुई और सार्जेंट मेजर ह्यूसन वहीं जमीन पर लुढ़क गया। इसी समय एक दूसरा अंग्रेज अफसर घटनास्थल पर आया। अफसर का नाम था लेफ्टिनेंट बाग। यह अफसर घोड़े पर था। मंगल पांडे ने फिर बंदूक उठाई और उसकी गोली घोड़े पर जाकर के लगी। घोड़ा और सवार दोनों जमीन पर लुढ़क गए। मंगल पांडे बंदूक फिर से भर ही रहा था कि गोरा अफसर उठ करके खड़ा हुआ और उसने अपनी पिस्तौल निकाल करके मंगल पांडे पर चलाई। मंगल पांडे अभी बंदूक भर भी नहीं पाया था, पर लेफ्टिनेंट का निशाना चूक गया और मंगल पांडे ने तलवार निकाल ली। तब गोरे लेफ्टिनेंट ने भी तलवार निकाल ली, पर गोरा अभी वार नहीं कर पाया था कि मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट का काम तमाम कर दिया। श्रोताओं, आगे बहुत ही दिलचस्प किस्सा है, हम आपको बताएंगे इस छोटे से देशभक्ति गीत के बाद। आइए सुनते हैं पहले प्यारा सा देशभक्ति गीत।

यह सब एक क्षण में हो गया। मंगल पांडे ने दो गोरे अफसरों को मार दिया था। इतने में एक गोरा और आया, उसने मंगल पांडे पर हमला कर दिया। वह अभी हमला कर ही भी नहीं पाया था कि एक सिपाही ने उसे देखा और वह शायद मंगल पांडे को गिरा देगा। तो उस सिपाही ने बड़े जोर से गोरे के सिर पर अपनी बंदूक का कुंदा मार दिया। अब तो विद्रोह केवल मंगल पांडे तक नहीं बल्कि उससे आगे बढ़ चुका था। गोरे आ रहे थे और इतने में एक आवाज सी उठी, भारतीय सिपाहियों के अंदर से मंगल पांडे को मत छुओ, उसे अलग छोड़ो। और इसके बाद सेना का एक बड़ा गोरा अफसर कर्नल व्हीलर घटनास्थल पर पहुंच गया। उसने स्वयं कुछ नहीं किया पर यह हुक्म दिया, सिपाहियों मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लो। भारतीय सैनिकों की भीड़ एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई पर अगले ही मुहूर्त उसमें से आवाज उठी कि हम ब्राह्मण देवता का बाल बाका नहीं होने देंगे, कह करके सिपाही गुमसुम हो गए। जब कर्नल व्हीलर ने यह देखा कि मंगल पांडे अंग्रेजों के रक्त से सना खड़ा है, अंग्रेजों की लाशें पड़ी हैं और सिपाही हुक्म नहीं मान रहे हैं, तो वह अपने बंगले पर लौट गया। मंगल पांडे अभी तक हाथों को जोर से फटकारते हुए लोगों को बगावत करने के लिए कह रहे थे, भाइयों बगावत करो, अब देर नहीं करनी चाहिए। पर सिपाही उसी तरह चुप खड़े रहे। बागी तो वे हो ही चुके थे, फिर भी किसी झिझक के कारण वे आगे नहीं आना चाहते थे, पर अंग्रेज चुपचाप बैठने वाले नहीं थे। जब खबर पहुंची कि इस तरह मंगल पांडे ने भयंकर रूप से बगावत कर दी है, तो जनरल हेयरिस दूसरे गोरे सिपाहियों को लेकर के घटनास्थल पर पहुंच गया। मंगल पांडे ने जब यह देखा तो गोरों की एक और टुकड़ी आई है, तो भारतीय सिपाही खुल करके फिर तो सामने आ गए। वे समझ गए कि अब गिरफ्तारी से बच नहीं सकते हैं। वे किसी भी हालत में जिंदा पकड़े जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बंदूक अपने सीने से लगा ली और दाग दी। मंगल पांडे वहीं परेड के मैदान में अपनी ही गोली से घायल होकर के गिर पड़े। जब अंग्रेजों ने देखा कि मंगल पांडे गिर पड़ा है तो वे उसके पास गए, जबकि मंगल पांडे तब मरे नहीं थे, इसलिए उन्हें अस्पताल भेज दिया गया और अंग्रेज अफसर अपने स्थान पर लौट गए। श्रोताओं, इसके बाद क्या हुआ हम आपको बताएंगे इस छोटे से देशभक्ति गीत के बाद। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा देशभक्ति गीत।

0: मंगल पांडे ने यह समझकर गोली मारी थी कि मैं मर जाऊंगा, पर वे अस्पताल में ठीक हो गए। उनसे पूछा गया कि तुम्हारे और साथी कौन कौन हैं। इस पर उन्होंने सभी साथियों का नाम लेने से इनकार कर दिया और साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जिन अंग्रेज अफसरों पर उन्होंने गोली चलाई है उनसे उनका किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं था। झगड़ा व्यक्तियों का नहीं था बल्कि राष्ट्रों का था। वे किसी प्रकार बदला लेने के लिए बागी नहीं हुए थे बल्कि उनका उद्देश्य देश को फ्रेंगियों के राज से छुटकारा दिलाना था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने गोली चला करके क्रांति का झंडा बुलंद किया था। जल्द ही उन पर मुकदमा चला। सभी जानते थे कि इस मुकदमे में क्या होने वाला है। मंगल पांडे भी जानते थे कि उन्हें कुछ परवाह नहीं थी। वे मातृभूमि के लिए बलिदान होने के लिए तैयार थे। उस समय शायद मातृभूमि का विचार इतना प्रबल नहीं था जितना कि धर्म का था। अफसोस है कि मंगल पांडे के मुकदमे का और उन्होंने जो बयान दिया उसका ब्यौरा प्राप्त नहीं है हमारे पास। उस समय कौन जानता था कि मंगल पांडे का स्थान भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में सबसे अव्वल आएगा। वे ब्रिटिश युग के प्रथम महत्वपूर्ण क्रांतिकारी शहीद माने जाएंगे। श्रोताओं, सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी। 1857 के 8 अप्रैल को फांसी का दिन निर्धारित हुआ। उस दिन मंगल पांडे को फांसी देने के लिए बैरकपुर के अंदर कोई भी आदमी नहीं मिला क्योंकि एक योद्धा के रूप में उनकी ख्याति फैल चुकी थी। लोग यह जान चुके थे कि धर्म की रक्षा के लिए मंगल पांडे ने लड़ाई की है, इसलिए कोई उन्हें फांसी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। और अंत में कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाए गए जो नहीं जानते थे कि उन्हें किसे फांसी देनी है। उन्होंने मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया और इस प्रकार भारत भूमि अपने वीर संतान के रक्त से एक बार फिर पवित्र हो गई। मंगल पांडे शहीद हो गए। उनका आतंक बहुत दिनों तक अंग्रेजों के मन पर छाया रहा। श्रोताओं, ये शहादत की कहानी थी मंगल पांडे की, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे पहले रण योद्धा थे। इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। आज का कार्यक्रम क्रांतिकारी मंगल पांडे के जीवन पर केंद्रित था। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं विगत दिनों भोपाल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त रेडियो रिपोर्ट का है। आपके साथ मैं हूँ फराज।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं रविंद्र भवन के हंसध्वनि सभागार में, जहां शनिवार को संगीतमय नाट्य प्रस्तुति मेरे कृष्ण का मंचन किया गया। जिसका निर्देशन किया राजीव सिंह दिनकर ने। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रविंद्र भवन के हंसध्वनि सभागार में।

0: मगध सम्राट जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा था। हर बार उसकी विशाल सेना नष्ट हो गई, पर स्वयं जरासंध श्री कृष्ण द्वारा जीवित छोड़ दिया जाता। श्री कृष्ण का यह निर्णय शेष अवतार बलराम को अंतर से व्यथित करता था। आज जब वे अपने शिष्यों को धर्म और शस्त्र की शिक्षा दे रहे थे, तभी
1: तुम ये शिक्षण है संग्राम नहीं, और तुम नियम तोड़कर युद्ध करो इससे प्रसन्न बलराम नहीं। अपने भाई पर शत्रु प्रहार कर रहे हो, जब कमर के नीचे वज्र है तो गदा प्रहार क्यों कर रहे हो?
2: दाऊ दाऊ दाऊ तुम क्या कहने आपके शिष्यों के, दोनों महान बलधारी है। इस गदा युद्ध में ये दोनों लाखों वीरों पर भारी है ना?
1: आज के शिक्षण को यही समाप्त करते हैं, प्रातः पुनः आरंभ करेंगे। जा सकते हैं आप लोग।
2: कहना मुझको बदलाना तुम, ये कैसा खेल तुम्हारा है? मेरी ना समझ में कुछ आता मैंने 100 बार विचारा। आखिर क्यों जरासंध जैसे पापी का मुंह ना मरोड़ा है? कितनी ही बार कृष्ण तुमने दुश्मन को जीवित छोड़ा है।
1: लज्जा है नहीं पराजय की? वो सेना नहीं बनाएगा, देखना दो माह बाद फिर हम पर चढ़कर आएगा।
2: भाव आप ठीक कह रहे हो, वो फिर से चढ़कर आएगा, फिर से यमुना होगी अशांत और उसका जल बढ़ जाएगा। ये आए दिन का रक्तपात एक ही दिन में खत्म कर रुका।
1: इस जरासंध के सैन्य सहित छटके में प्राण हरोगा
2: भाव,
1: या फिर मैं आगे बढ़कर इस पापी का ताप उतारूंगा। तुम शेष सैन्य का वध कर, मैं जरासंध को मारूंगा।
2: मैं जरासंध को मारूंगा। दाऊ भूल गए हो आप इसके धर्म।

0: सार के सारे पापी ले आएगा, हम दोनों के हाथों से बीच में मरवाएगा। परंतु जरा सर बताता हूँ, जाओ ठहरे तो रखो, किंतु ये जान लो इस बार वो नूतन नीति सहेजेगा, आएगा स्वयं नहीं चलकर वो काल यवन को भेजेगा। काल यवन आमना सामना जब होगा मैं उससे ना टकराऊंगा। तो गाओ इधर आओ।
1: नहीं रे
0: गाओ,
1: अरे कोई चाल चल रहे हो ना, मैं साफ दिख रहा।
0: गाओ वो पाप करेगा तब जब घर को वापस जाएगा, वो मेरे हाथों से नहीं स्वयं ही संघारा जाएगा।
1: स्वयं कैसे?
0: मैं भागता हुआ उस भालू को कंदरा में देने जाऊंगा, मुझको भूख के हाथों से उसे मैं जीते जी भस्म कराऊंगा।
1: मुझको तो भूख
0: आ जाओ, मुझको भूख ने देवोहित असुर से था संग्राम किया, वर्षों तक सोए नहीं क्षण एक नहीं विश्राम किया, तब से तेरी गुफा मध्य मुझको शांति से सोते हैं। हर घटना के पीछे दाव कुछ कार्य नियति के होते हैं, और देवराज का है उनको, यदि कोई उन्हें जगाएगा पड़ेगी प्रथम दृष्टि जिस पर, वो वही भस्म हो जाएगा। ये खेद बुद्धि का है दाव। अरे अब आप ही कहो क्या अनुचित है, रणछोड़ कहाए जाने में मेरा और जनता का ही हित है।
1: सुनो कला के स्वामी, जो भी करना है वही करो, कला तुम अंतर यामी, परंतु फिर भी जीवित है जरा सा, अरे तुम कब इसको मारोगे? ये मुख्य शत्रु है मथुरा का, इसको कैसे संहारोगे?
0: गाओ वो नहीं हमारा आखिर जो हम उसे संहारेंगे। हे भीम, उनकी बुआ के पुत्र जो वो से लड़ने मारेंगे। हाँ, तब तक इस मानवता के बैरी का रक्त उबलने दो, चिंता की कोई बात नहीं है दाव, जैसा चलता है
1: चलने दो। संकर्षण अपने काना, हर इच्छा पर परिहारी, मुझे हर बार भ्रमित करती है लीला जब तुम्हारी, वो चिंता मुक्त नगरवासी ये नगरी वैभवशाली हो, कुछ ऐसा सोचो वासुदेव, मथुरा में शांति बहाली।
0: शांति और बहाली हो, अब गाँव ने कहा है तो कुछ तो सोचना पड़ेगा, है ना राधे?
2: युक्तिपूर्वक श्री कृष्ण ने काले वन को भस्म करा दिया। मथुरा लौटकर उन्होंने गहन विचार किया, मेरे ही कारण जरासंध मथुरा पर बार बार आक्रमण कर रहा है, मेरे रहते मथुरा पूर्णतः सुरक्षित नहीं। और उसी संध्या उन्होंने देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा का आह्वान किया और पश्चिम दिशा में अरब सागर के पावन तट पर एक दिव्य अभेद्य नगरी बसाने का आदेश दिया। लहरों की गोद में जन्मी वो स्वर्णिम नगरी थी द्वारका। माता पिता को साथ लेकर जब कृष्ण वहां पधारे, तब बलराम ने प्रेम और गौरव से उन्हें द्वारकाधीश के रूप में प्रतिष्ठित किया।
3: ये थी आज की रेडियो रिपोर्ट। अगली रेडियो रिपोर्ट तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे भोपाल में आयोजित कार्यक्रम मेरे कृष्णा की रेडियो रिपोर्ट। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गुंजन। इस कार्यक्रम में आज हम कविता रश्मि रथी का पाठ सुनेंगे।
1: तुम बीमार नहीं हो।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। इस पुष्प विन्यास में आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस सर्ग में जहां रण की गर्जना से पहले संकल्प की दीप्ति जन्म लेती है। श्रोताओं, रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग की तपा भूमि से आगे बढ़ते हुए अब हम तृतीय सर्ग के द्वार पर हैं, जहां वनवास की अग्नि में तपे पांडव नव तेज के साथ लौटते हैं और विपत्ति से निखरा मानव साहस अपना स्वर पाता है। यहां शब्द शंखनाद नहीं, संकल्प की धधकती हुई शपथ है।
3: आइए श्रोताओं, अब प्रवेश करें रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में, जहां यह रथ अपने ज्वलंत अश्वों सहित इतिहास की सीमाएं लांघता हुआ हमें नई विभा, नए संघर्ष और नए उत्कर्ष की ओर ले चलेगा। आइए सुनते हैं रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का भाग एक।
2: हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से सहास, पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं।
3: मुख से न कभी उफ कहते हैं संकट का चरण न कहते हैं, जो आपड़ता सब सहते हैं उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के आगे पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी के जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोहे जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं।
2: रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का यह आरंभ हमें एक गहरे जीवन सत्य की ओर ले जाता है। अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हुई और पांडव वन से लौटे, पर यह मात्र लौटना नहीं था, ये रूपांतरण था। वे जैसे गए थे वैसे नहीं लौटे, वे तपे हुए, निखरे हुए और भीतर से और अधिक दीप्त होकर लौटे।
3: यहाँ एक गूढ़ दार्शनिक संदेश निहित है, विपत्ति दंड नहीं अवसर है, वह हमारे व्यक्तित्व की छिपी शक्तियों को जागृत करने का माध्यम है। संघर्ष की अग्नि में ही मनुष्य अपनी वास्तविक सामर्थ्य को पहचानता है और उसी प्रक्रिया में उसका व्यक्तित्व दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। आइए श्रोताओं, अब हम सुनते हैं रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का दूसरा भाग।
2: वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुघर छाया देता केवल अंबर।
3: विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षा ग्रह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है।

0: लक्ष्य को नहीं भूलता।
1: श्रोताओं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, इन पंक्तियों में केवल पांडवों के लिए संदेश नहीं है, बल्कि भारत की युवा शक्ति के लिए एक कालजयी पुकार है। मानो कवि सीधे युवा हृदय से संवाद कर रहा हो और कह रहा हो, हे नवयुवक, तू कठिनाइयों से भागने के लिए नहीं जन्मा, तू उन्हें परास्त करने के लिए जन्मा है। संघर्ष तेरी बाधा नहीं, तेरी निर्माण भूमि है। विपत्ति तेरा शत्रु नहीं, तेरा शिक्षक है। यदि तू आराम में डूबा रहेगा तो सो जाएगा, पर यदि तू संघर्ष को अपनाएगा तो जाग जाएगा। तेरी नसों में केवल रक्त नहीं, ऊर्जा, स्वप्न और परिवर्तन की शक्ति बह रही है। समय उसी का साथ देता है जो साहस करता है। इसलिए उठ, अपने भीतर की अग्नि को पहचान, विपत्तियों पर छा जा और अपने पुरुषार्थ से अपना ही नहीं युग का भाग्य लिख दे।
0: श्रोताओं, हमें अब उस रथ की आवाज सुनाई दे रही है जिसके रथ से संसार के मनोरथ जुड़ते हैं, जिसके रथ के पहिए पहिए न होकर हम सभी के काल चक्र की ओर घूमते हुए हमारे जीवन और हमारी मृत्यु का विधान तय करते हैं। आइए उसी रथ के साथ तृतीय सर्ग के भाग तीन में प्रवेश करते हैं और सुनते हैं इस तृतीय सर्ग का भाग तीन। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। कृष्ण कहते हैं,
1: दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे।
0: दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले।
1: जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोट सूर्य शतकोट चंद्र, शतकोट सरित सर सिंधु मंद्र।
0: श्रोताओं, अभी आपने तृतीय सर्ग का ये भाग सुना। कथा महाभारत से ली गई है, पर दृष्टि दिनकर जी की है। यही तो विशेषता है रश्मिरथी की, कि ये केवल अतीत का आख्या नहीं, यह वर्तमान का मार्गदर्शन है। जीवन में शांति मार्ग सदैव श्रेष्ठ होता है। कृष्ण पहले दूत बनकर आते हैं, शस्त्र लेकर नहीं। ये हमें सिखाता है कि संवाद युद्ध से बड़ा होता है। अब समस्या ये है कि हमारा अहंकार उन्हें पहचान नहीं पाता। जब तक हम अपने भीतर के दुर्योधन को नहीं पहचानेंगे, तब तक विराट सत्य सामने होते हुए भी हम अंधे ही रहेंगे। दिनकर जी की कलम हमें झकझोरती है। यह काव्य केवल सुनने के लिए नहीं, आत्ममंथन के लिए है। आइए अब प्रवेश करें उस क्षण में जहां मनुष्य ईश्वर को बांधने चलता है और उत्तर में ईश्वर ब्रह्मांड का पट खोल देते हैं। सुनते हैं तृतीय सर्ग के भाग 4 का काव्य पाठ। इसे श्री कृष्ण की चेतावनी के नाम से भी सुनते और जानते हैं।
1: शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हां हां दुर्योधन बांधिने, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है, पर मुझे बांध कब सकता है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रीगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा।
0: थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।
2: श्रोताओं, दिनकर जी की अमर कृति रश्मिरथी हमें केवल महाभारत की कथा नहीं सुनाती, वो हमारे भीतर के कुरुक्षेत्र को उजागर करती है। अतः आइए इस प्रसंग से ये सीख लेकर आगे बढ़ें कि शांति का मार्ग ही श्रेष्ठ है, विनम्रता ही बल है, और आत्मचिंतन ही वो दीप है जो हमें विनाश से बचा सकता है।
0: आइए सुनते हैं तृतीय सर्ग के भाग 5 का काव्य पाठ। भगवान सभा को छोड़ चले, कर केरण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चले उसे अपने रथ पर, रथ चला परस पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा,
1: हाय अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल, हे वी तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मती गई मूढ़ की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निर्षण विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, चिंता है मैं और क्या करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हां एक बात यदि तू मानी तो शांति नहीं जल सकती है, समराग्नि अभी टल सकती है, पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग ना उसका छोड़ेगा, वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा? क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल, बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, शरचाप उठाए आठ प्रहार, पांडव से लड़ने हो तत्पर, मां का स्नेह पाया ना कभी, सामने सत्य आया ना कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहां पांच भ्राता तेरे, बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे, कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे, पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चमर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी, हा हा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, हसली स्वरूप में जानेंगे, कोई मणि को जब पाएगी कुंती फूली ना समाएगी, रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई ना कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे, कुरुराज्य समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं, यश मुकुटमान सिंहासन ले ले, बस बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तजरण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके।
0: श्रोताओं, अभी आपने कृष्ण की वाणी सुनी, वह वाणी जो केवल शब्द नहीं करुणा का समुद्र है, केवल तर्क नहीं समय की अंतिम पुकार है, वे कर्ण को समझा रहे हैं पर वस्तुतः मनुष्य के भीतर बैठे उस द्वंद को संबोधित कर रहे हैं, जहां कर्तव्य और कृतज्ञता, जन्म और पालन, सत्य और संबंध आमने सामने खड़े हो जाते हैं। कृष्ण जैसे कोई दीपक लेकर अंधेरी सुरंग में उतर आए हों, वे कर्ण को उसका वास्तविक स्वरूप दिखाते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा,
3: हे कृष्ण, बड़ी ये माया है जो कुछ आपने बताया है, दिन मणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूं, ग्लानि व्यथा मैं ध्यान जन्म का धरता हूं, उन मन ये सोचा करता हूं, कैसी होगी वो मां कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है, सेवती मास दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वो नारी नहीं। हे कृष्ण, आप चुप ही रहिए, इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए, सुनना ना चाहते तनिक श्रवण, जिस मां ने मेरा किया जनन, वो नहीं नारी कुलपाली थी, सर्पणी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया, मां का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वो तो यशस्वनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या वो रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलीन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुधी ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पांच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है? क्या पांच पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर? नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वो पाप अभी भी है मुझ में, वो शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वो डर जाएगा, कुंती को काट ना खाएगा? सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ? कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय? ये अभिनंदन नूतन क्या है केशव, ये परिवर्तन क्या है? मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब ये समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित ना स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको? हे कृष्ण, जरा ये भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में कुनिए, दोनों में मैं था पड़ा हुआ। किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया? निरपता दे महिमा पान किया, अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया। राधा ने मां का कर्म किया।
2: श्रोताओं, कर्ण के शब्दों में अभी आपने केवल आक्रोश को नहीं सुना, एक ऐसे पुत्र का रिश्ता हुआ हृदय सुना है, जिसे जन्म तो मिला पर अपनापन नहीं मिला। यह संवाद तीर की तरह बाहर नहीं आता, भीतर धसता चला जाता है। कर्ण आज प्रश्न कर रहा है, पर यह प्रश्न केवल कुंती से नहीं है, यह उस समाज से भी है जो समय देखकर रिश्तों की चादर ओढ़ता और उतारता है। सच ही कहा गया है श्रोताओं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जिस बालक ने जन्म से ही तिरस्कार की धूप सही हो, वो अचानक मिले स्नेह पर सहज कैसे विश्वास कर ले?
0: और देखिए ना, कर्ण की वेदना केवल मातृत्व के अनुपस्थिति तक सीमित नहीं है, उसके भीतर वर्षों का अपमान अंगार बनकर धधक रहा है। वह पूछ रहा है, जब संसार मुझे सूत पुत्र कहकर ठुकराता था, तब किसने मेरा हाथ थामा था? कौन मेरे आंसुओं पर मरहम रखता था? यही कारण है कि उसका मन आज जन्म से अधिक पालन को सत्य मानता है। श्रोताओं, लोक में कहा जाता है कि जिसने दुख की धूप में साथ दिया, वही अपना कहलाया। कर्ण के लिए राधा केवल पालक माता नहीं, उसकी आत्मा का आश्रय है।
2: दोस्तों, दिनकर जी यहाँ केवल कर्ण की कथा नहीं लिखते, वे मनुष्य के भीतर के उस खालीपन को शब्द देते हैं जहां अपनापन और उपेक्षा आमने सामने खड़े होते हैं। कृष्ण उसे उसके जन्म का सत्य दिखा रहे हैं, पर कर्ण जीवन का सत्य सामने रख रहा है। यही इस प्रसंग की महत्ता है। यहां धर्म केवल शास्त्रों में नहीं, संबंधों की कसौटी पर भी परखा जा रहा है।
0: श्रोताओं, अभी कर्ण का मन पूरी तरह खुला नहीं है। उसके हृदय में वर्षों से दबा हुआ लावा अभी और फूटना बाकी है। उसकी वाणी में अभी भी कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो समय के सीने पर चोट करने वाले हैं। अगले भाग में कर्ण अपने जीवन, अपनी मित्रता, अपने अपमान और अपने धर्म का ऐसा पक्ष रखेगा जहां करुणा और प्रतिज्ञा एक साथ दिखाई देंगी। अगले अंक में सुनेंगे सूर्यपुत्र कर्ण के अंतर मन का वह ज्वालामुखी जो अब धीरे धीरे पूर्ण रूप से फटने को है। तो श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का, पर यह विदा केवल एक विराम है, इस काव्य यात्रा का अंत नहीं। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, रेडियो प्रस्तुति और लेखन दीपक नेमा का, वाचन स्वर मैं भगवती सक्सेना,
4: मैं संदीप शर्मा
5: और मैं दीपक नेमा।
0: इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा अब यहीं पर विराम लेती है। आपसे हम फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा,
2: नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गुंजन, जिसके अंतर्गत हमने कविता रश्मि रथी का पाठ सुना। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है और अब जानकारी हमारी कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी सुबह 7 बजे। सबसे पहले सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ, उसके बाद वैदिक ऋचाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्षय निधि, भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुनेंगे 7:05 पर। सुबह 8 बजे वतन का राग कार्यक्रम कल समर्पित होगा स्वाधीनता संग्राम सेनानी बटुकेश्वर दत्त के जीवन पर। 8:30 पर कहानी कार्यक्रम सुनो कहानी, जिसके अंतर्गत कल हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी गुप्तदान। सुबह 9 बजे कला कल्लोलिनी कार्यक्रम के अंतर्गत कल हम आधुनिक रंगमंच के कलाकार सत्यदेव दुबे पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। 9:30 पर भक्ति संगीत प्रस्तुत करेंगे कलापिनी कोमकली। सुबह 10 बजे परिक्रमा कार्यक्रम का प्रसारण होगा, उसके साथ ही आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। 10:30 पर हिंदोस्तां हमारा कार्यक्रम कल स्वाधीनता संग्राम सेनानी मीराबेन के जीवन पर केंद्रित होगा। सुबह 11 बजे साहित्य पत्रिका शिल्पकार सुबह 11 बजे साहित्य पत्रिका शब्दों के शिल्पकार कल का कार्यक्रम कवि गोपाल दास नीरज के जीवन पर केंद्रित होगा। और 11:30 पर सुने कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो ये थी जानकारी हमारी कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। रात्रि के 10 बज चुके हैं, अब हमारी सांध्यकालीन सेवा संपन्न होती है। कल सुबह हमारी प्रातःकालीन सेवा 7 बजे आरंभ होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार, जय हिंद।